ओम शं शनैश्चराय नमः। कलयुग में न्याय के देवता शनि देव भगवान जो सबको कर्म फल देते हैं, इसीलिए तो कहते हैं शनि की बुरी दशा से बचना हो तो हमेशा अच्छे कर्म करो। एक बार रावण भीषण तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लेते हैं। रावण की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और रावण से वरदान मांगने को बोले। इस पर रावण ने अमर होने का वरदान मांगा। तब ब्रह्मदेव ने रावण को कहा।

हाँ, कि ये तो मेरे वश की बात है ही नहीं, ये तो सिर्फ शनि देव ही कर सकते हैं। शनि देव शत्रु नहीं है, शनि देव मित्र हैं, तुम उन्हीं की पूजा करो।

रावण ने सोचा कि मैं अमर नहीं हुआ तो क्या हुआ, मैं अपने आप को अमर न कर सका तो क्या हुआ, मैं ऐसा काम करूंगा कि मैं अपने होने वाले पुत्र को अवश्य ही अमर बनाऊंगा, चाहे इसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े। ऐसा सोच विचार कर रावण ने सभी ग्रह और नक्षत्रों पर चढ़ाई करके सबको पराजित करके सबको बंदी बना लिया, सभी ग्रह नक्षत्रों को अपने अधीन कर लिया। तीनों लोकों में हाहाकार मचा हुआ था, क्योंकि रावण ने सबको अपने वश में कर लिया था।

महान तपस्वी रावण जो अपनी तपस्या से ब्रह्मदेव को प्रसन्न कर चुका था, उसने अपने पुत्र के जन्म के समय सभी ग्रह और नक्षत्रों को ज्योतिष के हिसाब से अमरत्व के निश्चित स्थान पर बैठाकर अमर योग बना दिया, ताकि उसका होने वाला पुत्र अमर हो, उसके होने वाले पुत्र को कभी कोई मार न सके।

योग बनने से सभी देवता चिंतित हो गए और न्याय के देवता शनिदेव से मदद की गुहार करने लगे। तब शनिदेव सभी देवताओं की करण पुकार सुनकर न्याय करने की बात सोचने लगे और जन्म का शुभ मुहूर्त आने के सही वक्त पर उन्होंने अपना एक पांव आगे बढ़ा दिया, जिससे अमर योग समाप्त हो गया। और अमर योग के समाप्त होने पर रावण ने क्रोध में आकर शनि देव के पैर पर वज्र से प्रहार कर दिया, जिससे एक पैर सदा के लिए लंगड़ा हो गया।

प्रिय भक्तजनों, इस कथा से हमें यही सीख मिलती है कि शनि देव सच में न्याय के देवता हैं। वो अन्याय को दूर करने के लिए स्वयं समस्या में चले जाते हैं, मगर अपने भक्तों के साथ कभी अन्याय नहीं होने देते। इसीलिए तो कहते हैं, सुखी रहना है, चिंता से दूर रहना है, तो शनि देव की पूजा करो, शनि देव की आराधना करो। जय शनि देव।

0: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने, तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
1: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
0: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
2: आवश्यक सूचना, 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन की मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, बरेली।

DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग रीढ़ की हड्डी नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: उन्होंने कहा कि देश 140 करोड़ लोगों की जरूरत को पूरा करते हुए भरोसेमंद वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बन गया है। एक रिपोर्ट।
1: वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि G20 देशों के साथ भारत का व्यापार पारदर्शी, भेदभाव रहित और नियम आधारित व्यवस्था पर निर्भर है। उन्होंने कहा कि मोस्ट फेवर्ड नेशन का प्रावधान इस व्यवस्था की महत्वपूर्ण गारंटी है, जिसके अंतर्गत छोटे और बड़े सभी कारोबारियों के लिए समान शर्तें लागू होती हैं। जबरन मजदूरी को समाप्त करने के विषय पर श्री गोयल ने कहा कि जबरन श्रम के उन्मूलन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पूर्ण और बिना शर्त है। उन्होंने विश्व व्यापार संगठन WTO को केंद्र में रखते हुए निष्पक्ष, समान, भेदभाव रहित और पारदर्शी बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने विकासशील देशों को विकास और खाद्य सुरक्षा के लिए जरूरी नीतिगत गुंजाइश देने तथा सर्वसम्मति से फैसले लेने की व्यवस्था बनाए रखने पर जोर दिया। इस बीच श्री गोयल ने ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरब और दक्षिण कोरिया सहित कई देशों के अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी की। आरजू के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नीदरलैंड की कृषि मंत्री सिल्वियो एरकेंस के साथ दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग पर चर्चा की है। दोनों देशों ने आधुनिक प्रौद्योगिकी, नवाचार और उत्पादकता बढ़ाने का आपसी संकल्प दोहराया। कृषि मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्षों ने कृषि और बागवानी क्षेत्रों में 25 उत्कृष्ट केंद्रों की स्थापना की प्रगति पर चर्चा की। दोनों देश एक प्रभावी और स्पष्ट रूपरेखा तैयार करने और इसके कार्यान्वयन के लिए सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों को रेखांकित करने वाली कार्ययोजना के माध्यम से बीज के क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं पर सहमत हुए हैं। कृषि नवाचार के क्षेत्र में दोनों देश महत्वपूर्ण प्रगति और विकास को मान्यता देते हुए सहयोग के संभावित क्षेत्रों की पहचान करने पर भी सहमत हुए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वैश्विक बागवानी केंद्र से रायलसीमा के किसानों को लाभ होगा। उन्होंने कल आंध्र प्रदेश के अन्नमया जिले में वैश्विक बागवानी केंद्र और भारतीय कृषि विद्यालय की आधारशिला रखी। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि केंद्र और राज्य मिलकर आंध्र प्रदेश में बागवानी को बढ़ावा दे रहे हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय कृषि विद्यालय किसानों को नई तकनीक और खेती के बेहतर तरीकों की जानकारी देगा। वैश्विक बागवानी केंद्र में 10 जिले शामिल होंगे। यहां आम, केला, टमाटर और अनार जैसी फसलों को बढ़ावा दिया जाएगा। इस परियोजना को 3 चरण में पूरा किया जाएगा। इसमें करीब 1,00,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। G7 देशों ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमत पर नियंत्रण के लिए अगले 4 महीने में 10 करोड़ बैलर कच्चा तेल और डीजल जारी करने का निर्णय लिया है। अमेरिका में डीजल की कीमत रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। अमेरिका में नवंबर में मध्यावधि चुनाव के कारण राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार पर दबाव बढ़ गया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि यूरोपीय देश अपने तेल भंडार से बड़ी मात्रा में डीजल और कच्चा तेल जारी करेंगे।
2: Earlier, I spoke with members of the G7 nations, and I'm pleased to report that we have reached an agreement for Europe to release massive amounts of diesel fuel from the heavily stocked reserves, and that's starting immediately.
0: ये फैसला डोनाल्ड ट्रंप और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बीच हुई बातचीत के बाद लिया गया। फ्रांस के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी इस पूरी प्रक्रिया का समन्वय करेगी और ईरान से जुड़े 8 महीने से चल रहे युद्ध के बीच अमेरिका और दूसरे देशों में ईंधन की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं। संयुक्त राष्ट्र ने भारत में हरित ऊर्जा गलियारे के तीसरे चरण को मंजूरी मिलने का स्वागत किया है। केंद्र सरकार ने इस योजना के लिए 1,86,405 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इसमें 54,082 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता शामिल है। एक रिपोर्ट।
3: हरित ऊर्जा गलियारा के तीसरे चरण का उद्देश्य बिजली के ट्रांसमिशन नेटवर्क को मजबूत करना और बैटरी स्टोरेज की सुविधा बढ़ाना है। संयुक्त राष्ट्र के जलवायु परिवर्तन कार्यकारी सचिव साइमन स्टील ने कहा कि इस योजना से भारत अपनी बढ़ती अक्षय ऊर्जा क्षमता का बेहतर इस्तेमाल कर सकेगा। इससे देश की बढ़ती बिजली जरूरत पूरी करने में मदद मिलेगी। श्री साइमन ने कहा कि मजबूत बिजली नेटवर्क और बैटरी स्टोरेज से ऊर्जा सुरक्षा बढ़ेगी तथा रोजगार के अवसर सृजित होंगे। हरित ऊर्जा गलियारा के तीसरे चरण के अंतर्गत राज्यों के भीतर बिजली पहुंचाने की व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा और बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को बढ़ावा दिया जाएगा। समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
4: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़ें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज उज्जैन में 255 करोड़ रुपए के डेयरी संयंत्र का शिलान्यास करेंगे। इस डेयरी संयंत्र की प्रसंस्करण की क्षमता प्रतिदिन 3 लाख लीटर दूध की है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दूध उत्पादन और डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए आज मध्य प्रदेश में गौ पालक सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है।
5: सम्मेलन में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह पशुपालन के क्षेत्र में अच्छा काम करने वाली गोपालक दीदियों को सम्मानित करेंगे और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना के हितग्राहियों को स्वीकृति पत्र वितरित करेंगे। सम्मेलन में 35,000 से ज्यादा गोपालक और दुग्ध सहकारी समितियों से जुड़े सदस्य शामिल होंगे। भोपाल के अलावा सीहोर, बैतूल, राजगढ़, हरदा, गुना, अशोकनगर, शाजापुर, विदिशा समेत कई जिलों से गोपालक कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। सम्मेलन में भोपाल और इंदौर दुग्ध संघ से जुड़े दूध उत्पादकों को बोनस राशि भी दी जाएगी। इस कार्यक्रम में 255 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले डेयरी प्लांट और भोपाल में मिल्क प्रोडक्ट से जुड़ी सुविधा समेत कई परियोजनाओं की शुरुआत भी होगी। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात ने आज 12 वर्ष पूरे कर लिए हैं। मन की बात का पहला कार्यक्रम 3 अक्टूबर 2014 को विजयादशमी के दिन प्रसारित हुआ था। हाल ही में प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम की 138वीं कड़ी में देशवासियों को संबोधित किया। मन की बात के जरिए प्रधानमंत्री देश के लोगों से सीधा संवाद करते हैं। ये कार्यक्रम देश के अलग अलग हिस्सों की उपलब्धियों और सामाजिक बदलाव की कहानियों को सामने लाता है। मन की बात ने कई सामाजिक मुद्दों को लोगों तक पहुंचाने और उन्हें जन भागीदारी से जोड़ने में भी भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता तथा सुशासन से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लिए अनवरत कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में हम बताएंगे कि कैसे ग्रामीण भारत की महिलाएं अब खेती के पारंपरिक काम तक सीमित नहीं हैं, वे आधुनिक कृषि तकनीक के संचालन और सेवाएं देने के क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ रही हैं। इस बदलाव में नमो ड्रोन दीदी योजना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस बारे में सुनते हैं रिपोर्ट।
6: महिलाओं को कृषि क्षेत्र में ड्रोन तकनीक से जोड़ने के उद्देश्य से इस योजना को नवंबर 2023 में केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंजूरी दी गई। योजना के लिए वर्ष 2000

0: तहत चयनित महिलाओं को ड्रोन और उपकरणों की लागत का 80% तक की वित्तीय सहायता दी जाती है। शेष राशि के लिए ऋण सुविधा का भी प्रावधान है। ड्रोन पैकेज में प्रशिक्षण भी शामिल है। उर्वरक कंपनियों ने वर्ष 2023-24 में अपने संसाधनों से महिलाओं को 1094 ड्रोन वितरित किए। इनमें से 500 ड्रोन नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत उपलब्ध कराए गए। राजस्थान में 50 महिलाओं को ड्रोन उपलब्ध कराए गए हैं। सवाईमाधोपुर जिले की नमो ड्रोन दीदी पूजा ने बताया कि इस ट्रेनिंग से उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है।
1: मेरा नाम पूजा जागम है, ग्राम पंचायत शामपुरा, डिस्ट्रिक्ट सवाईमाधोपुर, राजस्थान से नमो ड्रोन दीदी बात कर रही हूँ। मेरे को ड्रोन मार्च 2024 में अप्रूव हो गया था, जब से मैं ड्रोन उड़ा रही हूँ। और मैंने गुड़गांव में 15 दिन की ट्रेनिंग लेके वहाँ से मैंने ड्रोन चलाना सीख कर मैंने अपने गांव में मुझे गवर्नमेंट की तरफ से ड्रोन मिला हुआ है। उससे मैंने गेहूं में चावल में इनमें सब में कीटनाशक छिड़काव किया है और उससे मैंने लगभग 40-47 हजार रुपए तक की इनकम कर ली।
0: कुल मिलाकर नमो ड्रोन दीदी योजना खेतों में तकनीक के इस्तेमाल के साथ साथ ग्रामीण महिलाओं को नए कौशल, नई जिम्मेदारी और आय के नए अवसर उपलब्ध करा रही है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
2: और अब एशियाई खेलों की खबरों के साथ हैं चंद्रशेखर शर्मा।
3: जापान एशियाई खेलों में आज भारत की कुमकुम मोहोद ने महिला रिकर्व तीरंदाजी का स्वर्ण पदक जीत लिया है। पुरुष हॉकी के फाइनल में आज भारत का सामना मलेशिया से होगा। कल भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 6 स्वर्ण पदक जीते। इनमें मुक्केबाजी में 3, महिला हॉकी, कुश्ती और तीरंदाजी में 1-1 स्वर्ण पदक शामिल हैं। भारतीय महिला हॉकी टीम ने चीन को हराकर एशियाई खेलों में 44 साल बाद स्वर्ण पदक जीता। इस जीत के साथ ही भारत ने 2028 में लॉस एंजलिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। पदक तालिका में भारत 17 स्वर्ण, 25 रजत और 35 कांस्य सहित 77 पदक के साथ 5वें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजेता खिलाड़ियों को बधाई दी है।
2: मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश में आज तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी गरज चमक के साथ वर्षा हो सकती है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
4: धन्यवाद मुकेश। फ्लाई दुबई विमान के कैप्टन स्मिथ मच्छार की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से टेलीफोन पर बातचीत की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान के अनुसार मोदी से बोले स्मिथ, मैंने ठान लिया था कि इस विमान में किसी को मरने नहीं दूंगा। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, दर्द में हनुमान चालीसा पढ़ते रहे कैप्टन स्मिथ, गिरते विमान के बीच लगाया आखिरी जोर। अमर उजाला का शीर्षक है, अपनी जान बचाने के लिए लड़ रहा था, दूसरों को मरने नहीं दे रहा था। पत्र के अनुसार पीएमसी स्मिथ बोले, आप मेरे आदर्श हैं। पंजाब केसरी की सुर्खी है, नए वोटरों के नाम जुड़ेंगे, छोटे मतदाता भी शामिल होंगे, राज्यों में विशेष अभियान चलेगा, बीएलओ घर घर जाकर करेंगे सत्यापन। हिंदुस्तान का शीर्षक, यूक्रेन युद्ध खत्म करने को भारत के पास सही समझ, व्लादिमीर पुतिन बोले, हर बार युद्ध खत्म करने का मुद्दा उठाते हैं मोदी। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, ट्रेड डील पर मोदी ट्रंप फिर करेंगे बात, अमरीकी प्रतिनिधि जेमिसन ग्रियर बोले, डील के मुद्दे पहचाने, समाधान पर काम जारी। जनसत्ता के अनुसार यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्री सिबेहा ने कहा कि युद्ध खत्म करने को भारत का प्रस्ताव सबसे बढ़िया। दैनिक भास्कर ने एक्सक्लूसिव खबर में दिया है, अफगान बॉर्डर पर 30 पोस्ट से भागी पाकिस्तान की सेना, अब वहां तालिबानी राज। खैबर पख्तूनख्वा सूबे में अफगान में हमले में और तेज। पत्र के अनुसार पाकिस्तान सैनिक खौफ के कारण अफगान बॉर्डर पोस्टिंग से बच रहे हैं। राजस्थान पत्रिका के अनुसार एनसीईआरटी पढ़ेगी सत्यमेव जयते और सेंगोल का इतिहास, सामाजिक विज्ञान पुस्तक का दूसरा भाग जारी, महात्मा गांधी के रामराज का जिक्र। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है, एशियाई खेलों में गोल्डन सिक्स के साथ पदक तालिका में 5वें स्थान पर पहुंचा भारत, स्वर्णिम शुक्रवार, हरियाणवी खिलाड़ी फिर दमदार।
2: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, भारत ने व्यापार बाधाओं, डंपिंग और अनुचित मूल्य निर्धारण के समाधान के लिए विश्व व्यापार संगठन के अनुरूप उपायों की मांग की। अमेरिका में तेल की कीमत में रिकॉर्ड बढ़त के बाद G7 देशों का 10 करोड़ बैरल डीजल और कच्चा तेल जारी करने का फैसला। संयुक्त राष्ट्र ने भारत के हरित ऊर्जा गलियारे के तीसरे चरण का स्वागत किया। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह उज्जैन में 255 करोड़ रुपए के डेयरी संयंत्र का शिलान्यास करेंगे। और जापानी एशियाई खेलों में भारत की कुमकुम मोहोद ने महिला रिकर्व तीरंदाजी का स्वर्ण पदक जीता। पुरुष हॉकी के फाइनल में आज भारत का सामना मलेशिया से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आकाशवाणी।

0: बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
1: कहा मेरी कसम?
0: मिस कर दिया तो रीलोड।
2: चाहे चाहे चाहे
3: बिंदास मॉर्निंग।
0: सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।
4: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
5: आवश्यक सूचना 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
6: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
4: Hey, you're tuned into FM Muradabad, 89.6 FM.
0: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग।
3: बिंदास मॉर्निंग। बिंदास मॉर्निंग। बिंदास।

श्रोताओं, कहते हैं अच्छे दिन के लिए ना कभी कभी आपको बुरे दिनों से भी लड़ना पड़ता है और बुरे दिनों से भी आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है। अगर आपके अंदर ये साहस, अगर आपके अंदर ये जज्बा है कि आप अपने बुरे समय में भी खुद की हिम्मत को नहीं खोने देंगे और खुद को आगे बढ़ने के लिए निरंतर जो है आप हमेशा यही खुद को मतलब मोटिवेट करते रहेंगे, प्रयास करते रहेंगे खुद से कि हम इस सिचुएशन से भी बाहर निकल जाएंगे। जब मैं आपको सच बताऊँ, जब हम लगातार प्रयास करते हैं कंसिस्टेंसी के साथ उस चीज़ को जो हम पूरी करने का प्रयास करते हैं, तो 100% वो चीज हमें अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकालने में सफल हो जाती है। सुप्रभात, नमस्कारम, वेरी गुड मॉर्निंग। आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज पे। आप जुड़ चुके हैं अपने शहर के पहले कम्युनिटी रेडियो के साथ। आनंद आपके साथ आ चुका है आपका मॉर्निंग मैगजीन शो लेकर। दिस इज बिंदास मॉर्निंग। श्रोताओं, कैसे हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे और अपनी सुबह के सफर की शुरुआत अच्छे से कर रहे होंगे। आज दिन है शनिवार का और इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में वक्त हो रहा है 8:22:12 और आज तारीख की बात करें तो 3 अक्टूबर की सुबह है। श्रोताओं, जी हाँ दोस्तों, जैसे कि मैंने आते ही आज की सफ़र की शुरुआत की, आज के दिन की शुरुआत की कि अगर आपको अच्छे दिन चाहिए तो कभी कभी ज़िंदगी में जो बुरा समय चल रहा होता है, जो बुरा टाइम चल रहा होता है ना, वो भी हमें बहुत कुछ सिखाता है। लेकिन अगर उस स्थिति में, अगर उस सिचुएशन में हम थोड़ा सा खुद पर कंट्रोल रखें और संयम बनाए रखें और पूरी शांति के साथ चीज़ों को करें और स्माइल करते हुए आगे बढ़ें, तो यकीन मानिए वो दिन दूर नहीं जब आपकी सारी प्रॉब्लम्स दूर होंगी और आपको सिर्फ और सिर्फ अच्छी चीज़ों का ही जो इंतज़ार है वो भी जल्द से जल्द आएगा। तो बस अपने समय को जो है याद रखिए और समय के साथ खुद को भी याद रखिए कि आपको किस समय में किस तरह से जो है खुद को लेकर के चलना है। जिंदगी है दोस्तों, यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, बस साथ चलते रहिए। अपनों का साथ होता है तो जिंदगी और भी खूबसूरत हो जाती है। आपका और मेरा जो साथ है वो लगातार 10 बजे तक इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे ऐसे ही बरकरार रहने वाला है, तो आप कहीं नहीं जाएंगे, रेडियो की सुई को बिल्कुल नहीं घुमाएंगे और आनंद के साथ अपने साथ को ऐसे ही बनाए रखेंगे। कहते हैं अच्छे विचार ही अच्छे कर्मों की शुरुआत है, इसीलिए हमेशा अच्छा और सकारात्मकता के साथ ही, सकारात्मक सोच के साथ, पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़िए और कहते रहिए यूं ही कट जाएगा सफर साथ।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग. बिंदास मॉर्निंग. बिंदास
2: मॉर्निंग. यार सोना कितना महंगा हो गया है. काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता.
3: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए.
2: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना. पुराना सोना लाओ नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर. 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस. 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर. किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी. 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस. उत्सव ज्वेलर्स आभूषण एक खुशियां अनेक. आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद. कॉल करें 7055070552.
4: कोई मिल गया. कोई मिल गया.
2: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6. ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने. बातें होती हैं दिल से दिल तक. यादों का सितारा गीतों का सहारा. मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा. सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो. बजाते रहिए गुनगुनाते रहिए.

क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत ट्रैक और एक मैसेज भी देता है कि हंसते हंसते कर जाएंगे रास्ते, बिल्कुल जिंदगी यूं ही चलती रहे और जिंदगी चलाने के लिए मुस्कुराना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम गाड़ी चलाते हैं तो उसमें फ्यूल की ज़रूरत होती है, वैसी लाइफ में ना एक अच्छी ज़िंदगी के लिए एक अच्छी मुस्कुराहट की बहुत ज़रूरत होती है। साथियों 8:36 का समय हो रहा है और आप सुन रहे हैं आपका अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज पे आरजे आनंद को, और यह है आपका फेवरेट प्रोग्राम मिद्दास मॉर्निंग। साथियों कभी कभी ज़िंदगी में ऐसा होता है ना कि हम बहुत कुछ करना चाहते हैं जीवन में, बहुत कुछ पाना चाहते हैं, लेकिन कुछ जीवन में परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं, कुछ समय ऐसा हो जाता है कि हम वो चीज़ कर नहीं पाते हैं, या तो कहें कि समय हमारे साथ नहीं होता है, या फिर यूँ कहें कि कभी कभी हमारा लक हमारे साथ नहीं होता है। लेकिन देखिए जीवन में चाहे परिस्थितियाँ जो भी आ जाएँ, जीवन में चाहे जितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाएँ, अगर आपके अंदर जज्बा है ना, अगर आपके अंदर जुनून है कुछ करने का, अगर आपकी अंदर एक पॉजिटिविटी है, आपको लगता है कि मैं इस चीज़ को कर सकता हूँ और बखूबी मैं कर जाऊँगा, तो यकीन मानिए आपको कोई नहीं रोक सकता आपकी मंजिल पाने से, ना तो समय और ना ही ये मुश्किलें। बस आपके अंदर आपके हौसले जो है वो बुलंद होने चाहिए। श्रोता मुझे ऐसे लगता है कि हमें एक मनुष्य जीवन मिला है, एक मानव जीवन मिला है, तो इसमें जितना हो सकता है ना अपनी तरफ से हमें बेहतर और बेहतरीन करने का प्रयास करना चाहिए और अपनी तरफ से हमेशा पॉजिटिव करने का प्रयास करना चाहिए। देखिए सोच इंसान की ना बहुत आगे लेकर जाती है उसको, तो अगर आप अच्छी सोच रखेंगे, अगर आप सकारात्मक सोच रखेंगे तो यकीन मानिए आप जीवन में बहुत आगे पहुँच सकते हैं। बस सकारात्मक विचारों को अपनाइए। मुश्किलें हर किसी की ज़िंदगी में है, आप जब बाहर निकल के देखेंगे तो दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनकी प्रॉब्लम आपकी प्रॉब्लम से बहुत बड़ी है, लेकिन उसके बाद भी वो अपनी ज़िंदगी को बड़ी खुशी खुशी के तरीके से जी रहे हैं, बड़ी खुशी खुशी के साथ जो है अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। तो बस आपसे हम भी कहना चाहते हैं कि अपनी मुश्किलों को थोड़ा सा साइड रखते हुए, अपनी प्रॉब्लम्स को थोड़ा साइड रखते हुए, समय किस्मत लक को थोड़ा पीछे रखते हुए अपनी मेहनत पर फोकस कीजिए और जो आप पाना चाहते हैं उसके लिए अथक प्रयास कीजिए, यकीनन आपको आपकी सफलता की चाबी ज़रूर मिल जाएगी। श्रोताओं आप अपने प्यारे प्यारे संदेश हमारे साथ साझा कर रहे हैं आज की सुबह, मुझे बेहद ही खुशी है, थैंक यू वेरी वेरी मच इतने वंडरफुल मैसेज पहुंचाने के लिए, आप आनंद के साथ हैं। आज की सुबह आपको पॉजिटिविटी से भर देने आपके लिए ढेर सारे बेहतरीन गीतों का जो है समय यहाँ पर लेकर आ गया हूँ, आपको सुन के बहुत आनंद आने वाला है। 8:38 का समय, लगातार घड़ी आगे भाग रही है। हमारे साथ जुड़े हैं जुल्फी भाई, लिखते हैं आनंद जी सुप्रभात, वेरी गुड मॉर्निंग, आज की सुबह बस इतना ही कहना चाहते हैं कि जीवन है तो प्रॉब्लम होंगी और प्रॉब्लम है तो बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा, तो जिंदगी में अच्छे बुरे की पहचान ये जो वक्त है ना वही कराता है। बिल्कुल जी, थैंक यू। तारिक भाई मेरे साथ जुड़े हैं आज की सुबह, लिखते हैं आपको सुबह का सलाम जी, आपको भी सुबह का प्यार भरा सलाम। दोस्तों आप भी अपने सुंदर सुंदर संदेश हम तक पहुंचा सकते हैं। देखिए हमारे पास एक और संदेश पहुंचा है, लिखते हैं आदाब सलाम नमस्ते चौधरी मुमताज़ आलम, हमारे मित्र हैं राकेश वर्मा जी, और बहुत ही खूबसूरत जो है सुबह सुबह ही गुड मॉर्निंग पहुंचाते हैं, थैंक यू जी। और भी तमाम सारे श्रोता साथी लगातार जुड़ रहे हैं, अभी आपके संदेश को शामिल करेंगे। आज का दिन क्यों स्पेशल है, आज के दिन 3 अक्टूबर को क्या कुछ खास मनाया जाता है, इस पर हम ज़रूर विस्तार से चर्चा करेंगे। आप ऐसे ही हमारे साथ बस जुड़े रहिए, और अभी एक और खूबसूरत नगमा आपका इंतज़ार कर रहा है, तो इस खूबसूरत से गाने को सुनते हैं, बहुत ही प्यारा ट्रैक, कविता कृष्णमूर्ति कुमार शानू की बहुत ही खूबसूरत युगल आवाज़ों में इस ट्रैक को सुबह सुबह सुनेंगे। और हम भी आपसे बस यही कहना चाहेंगे कि अगर आपको जीवन में कुछ बड़ा करना है, अगर आपको अपने कर्मों की किताब पे कुछ बेहतरीन लिखना है, तो उसके लिए कलम को नहीं अपने हौसलों को बुलंद करना है। जी हाँ श्रोताओं, और कहना है आज मैं ऊपर आसमान नीचे, जब आप इस पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ेंगे तो यकीन मानिए आप अपनी मंजिल तक जरूर पहुंच जाएंगे। आप ऐसे ही मोटिवेशन डोज के लिए प्लीज ट्यून इन रहिए आरजे आनंद के साथ, लौट कर आता हूँ अभी जरा सी देर में, गुड मॉर्निंग।

0: बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
1: क्या मेरी कसम,
0: मिस कर दिया तो रीलोड।
2: चाय चाय चाय,
0: सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।
3: क्या आप एक ही जगह पर दुनिया की सैर और जबरदस्त रोमांच का मजा लेना चाहते हैं? तो चले आइए सात अजूबे पार्क। यहाँ शानदार अजूबों के दीदार के साथ आपको मिलेगा तीरंदाजी और मैकेनिकल बुल राइड जैसी एक्टिविटीज का फुल ऑन थ्रिल। तो पूरे परिवार के साथ आ जाइए सात अजूबे पार्क, न्यू मुरादाबाद।
4: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन विलिस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा। 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद। कॉल 7055011681।
5: Hey, you're tuned into FM Muradabad, 89.6 FM.
4: सीने में दर्द, सांस फूलना या तेज धड़कन को बिल्कुल नजरअंदाज ना करें। श्री साई हॉस्पिटल में डॉक्टर अखिल कौशिक डीएम कार्डियोलॉजी द्वारा एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टिक, पेसमेकर एवं अत्याधुनिक कार्डियक कैथ लैब की सुविधा उपलब्ध है। वो भी किफायती रेट्स पर। स्वस्थ दिल, सुरक्षित जीवन। आज ही अपॉइंटमेंट ले श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद। कॉल करें 7060022430।
6: बसंती, इनके सामने मत नाचना।
4: अरे भैया, नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।

सच में यार, कुछ गाने इतने प्यारे होते हैं ना, उन गानों से हमें प्यार हो जाता है और कभी कभी लगता है कि सच में ये गाने हमारे लिए बने। बहुत ही खूबसूरत ट्रैक सुना आपने। एक बार फिर से स्वागत अभिनंदन है एंड वेलकम बैक वंस अगेन। आप सुन रहे हैं आरजे आनंद को ओनली ऑन आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़। चलिए आप ब्रेकफास्ट का सामान लेकर आ रहे हैं, आप ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं, आप जहाँ भी जा रहे हैं ऑल द वे बेस्ट। सैटरडे है एंड बहुत ही बढ़िया दिन है। कल लोगों ने बहुत सारी छुट्टियां सेलिब्रेट कर ली है, मतलब बहुत सारी, इट मींस कि बहुत सारे लोगों की छुट्टियां थी कल यार। 2 अक्टूबर की एक ही छुट्टी थी, आई अंडरस्टैंड, फ्राइडे वीकेंड एंड सैटरडे बोले तो शनिवार का दिन है आज 3 अक्टूबर की सुबह। दिस इज द फेस्टिव वाइब। आई नो बहुत सारे लोगों को ना बड़ी सेल सूल का इंतजार होता है फेस्टिव सीजन में, बहुत सारी चीज़ों का वेट होता है एंड इसके बारे में बात करूंगा थोड़ी देर में। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज 3 अक्टूबर क्यों खास है, क्या स्पेशल है आज की तारीख में। सो इमीडिएटली आपको फटाफट से बता देते हैं, आज के दिन बहुत सारी चीज़ों के लिए 3 अक्टूबर बहुत ही पॉपुलर है, बट आज के दिन कुछ और खास चीज़ें भी की गई जिसके लिए इतिहास का पन्ना हमेशा के लिए थोड़ा डिफरेंट हो गया। जैसे आज इराक का इंडिपेंडेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है लेडीज एंड जेंटलमैन। इसके अलावा 1735 में आज के दिन फ्रांस और छठे केरल सम्राट ने शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए थे आज के दिन। और आज के दिन मैसूर पर ब्रिटेन ने कब्जा किया था सन 1831 में आज के दिन। श्रोताओं एंड पहली मराठी संगीत नाटिका संगीत जो है संगीत शुकंतला का पुणे में मंचन किया गया था सन 1880 में आज ही के दिन। एंड इसके अलावा एक और खास चीज़ आज ही के दिन जो है हुई 1932 में इराक यूनाइटेड किंगडम से स्वतंत्र जो है हुआ आज ही के दिन, यानी कि तभी मैंने आपको बताया आज ही के दिन जो इराक का इंडिपेंडेंट डे होता है 1932 में जो है इसको सेलिब्रेट किया गया आज ही के दिन। एंड आपको बता दें कोलकाता में पहली बार दुनिया के दूसरे टेस्ट ट्यूब बेबी का जन्म हुआ आज ही के दिन 1978 में। श्रोताओं एंड भारत की सबसे लंबी जो है दूरी की ट्रेन हिमा सागर एक्सप्रेस कन्याकुमारी से जम्मू तवी के लिए रवाना हो गई थी 1984 में आज ही के दिन। एंड इसके अलावा आज का दिन और भी तमाम सारी बातों के लिए बहुत खास है श्रोताओं, बस हम उन्हीं कुछ मुख्य बिंदुओं पर जो है चर्चा करते हैं जो बहुत ही ज़्यादा हमारे और आपके लिए महत्वपूर्ण होते हैं श्रोताओं। इसके अलावा आपको बताते चलें आज के दिन जो है निषाद कुमार जी का जन्म हुआ, जो ऊंची कूद के भारतीय पैरा एथलीट है। 1999 में इनका जन्म हुआ था आज के दिन। आज के दिन सन 1967 में जन्म हुआ था गजेंद्र जी का, जो काफ़ी पॉपुलर नाम। एंड इसके अलावा आपको बताते चलें जेपी दत्ता का जन्म हुआ, जो भारतीय फिल्म निर्देशक है 1949 में आज के दिन। एंड इसके अलावा लक्ष्मी नारायण साहू जी का जन्म हुआ, जो उड़ीसा के समाजसेवी और सार्वजनिक कार्यकर्ता हैं। 1819 में इनका भी जन्म हुआ था आज के दिन। और भी तमाम सारी चीज़ें जो है सेलिब्रेट की जाती हैं, हौले हौले आपको बताएंगे। आज ही के दिन जो है एक बहुत स्पेशल दिन भी मनाया जाता है, वर्ल्ड नेचर डे आज मनाया जाता है ना। प्रकृति से जो है कोई खिलवाड़ नहीं करना है, अपनी प्रकृति को जो है हमें बहुत अच्छा रखना है। जो प्रकृति है हमारे आसपास के जो नेचर है दैट इज़ वेरी वेरी स्पेशल, उसका ध्यान रखने की जिम्मेदारी आपकी मेरी हम सभी की होती है, तो कंट्रीब्यूट करना बहुत ज़रूरी है। 3 अक्टूबर दैट इज़ वेरी वेरी स्पेशल तारीख। और आपको बता दें आज विश्व प्राकृतिक दिवस है, ये दिन प्रकृति और पर्यावरण को बचाने के महत्व को और ज़्यादा उजागर करने के लिए, जागरूकता बढ़ाने के लिए इस दिन को जो है सेलिब्रेट किया जाता है, ताकि पेड़ पौधे और स्वच्छ हवा सिर्फ प्राकृतिक नहीं बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों की विरासत भी है। इसीलिए पेड़ पौधों को ज़्यादा लगाना है, जो पेड़ पौधे सूखे हैं उनका ख्याल रखना है, उनको अच्छे से पानी पुनी देना है। तो मतलब काफ़ी सारी चीज़ों को जो है आज के दिन हम इस विषय पर लेकर के चल सकते हैं और अपना कॉन्ट्रीब्यूट देना दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आज के समय में आप पेड़ पौधों से प्यार करते हैं, नेचर से प्यार करते हैं, तो एक

प्राउड आपके नाम। विश्व संयम दिवस आज मनाया जाता है। बहुत ही खूबसूरत सा ये दिन है, बिकॉज देखिए हर इंसान की ज़िंदगी में गुस्सा होता है, लेकिन अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए थोड़ा सा संयम, कहते हैं ना, थोड़ा संयम रखो, थोड़ा सा कंट्रोल करो, कंट्रोल योर सेल्फ, अपने आप पे थोड़ा सा मेडिटेट करने का जो है काम शुरू करो, थोड़ा सा संयम रखो, हर चीज़ को एकदम मत बोला करो। बहुत बारी होता है ना ऐसा, हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते थे, तो बस आज उसी का दिन भी है। एंड जो लोग अपने आप में संयम रखना जानते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। बाकी 3 अक्टूबर को मुख्य रूप से, जैसे मैंने आपको बताया, वर्ल्ड नेचर डे मनाया जाता है। हम प्रकृति की रक्षा जो है हमेशा करते हैं और हमें हमेशा करनी भी चाहिए। कौन कौन सी चीज़ों से जो है हम अपनी प्रकृति को, अपने नेचर को सुंदर बना सकते हैं, ज़रा मुझे आप ये बताओ मैसेज करके 9837896896, दिस इज़ माई नंबर। आप कैसे कंट्रीब्यूट करते हो अपने नेचर को ब्यूटीफुल बनाने में, आपका क्या कंट्रीब्यूशन रहता है, आप किस तरीके से जो है अपने नेचर को सुंदर बनाने के लिए हेल्प करते हो। जैसे कभी कभी क्या होता है ना, कुछ लोग बहुत प्यारे होते हैं, उन्हें पता है कि गीला कचरा कहाँ डालना है, सूखा कचरा कहाँ डालना है। आप मुझे ये भी बताओ, गीला कचरा कौन से डस्टबिन में डाला जाता है और सूखा कचरा कौन से डस्टबिन में डाला जाता है, क्या आपको पता है? तो मुझे मैसेज करके बताना कौन से डस्टबिन में कौन सा कचरा डाला जाता है, ज़रा ये भी नॉलेज चेक कर ली जाए आज की सुबह आपकी। चलिए एक खूबसूरत गीत आ रहा है आपके रेडियो पर, एंड इस गीत के बाद जो है मैं वापस कम बैक करूँगा अगले घंटे में, एंड कुछ खास बातें आज के दिन से जुड़ी आप तक पहुँचाऊँगा इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे। आप तब तक मुझे बताओ आप कैसे अपने नेचर को ब्यूटीफुल रखने के लिए क्या करते हो अपनी तरफ से, किस तरीके से हम अपने नेचर को और भी, प्रकृति को और भी खूबसूरत बना सकते हैं आज वर्ल्ड नेचर डे के मौके पर। एंड इसके अलावा आप मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि गीला कचरा कौन से डस्टबिन में डाला जाता है और सूखा कचरा कौन से डस्टबिन में डाला जाता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, वेरी वेरी पॉपुलर नंबर, एंड व्हाट अ सॉन्ग आज की सुबह।

0: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
1: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
2: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
3: स्किन एलर्जी मस से नाखून बालों की समस्या टैटू हटाना कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग, यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2 निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद 7983153386।
4: Hey, you're tuned into FM मुरादाबाद 89.6 FM।
5: बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
6: क्या मेरी कसम,
5: मिस कर दिया तो रीलोड।
7: चाय चाय चाय
8: बिंदास मॉर्निंग,
5: सुनिए बिंदास मॉर्निंग RJ आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।
9: यार मेरे को ना सच बता रहा हूँ मीठा बहुत पसंद है, मतलब मैं मीठा खाता रहता हूँ, मेरे को मीठा खाने में बहुत मजा आता है। ऐसा मैं नहीं, अगर आप कहते हैं तो भैया रुक जाओ, जरा थम जाओ, क्योंकि आज 3 अक्टूबर को एक स्पेशल दिन मनाया जाता है जिसके बारे में बताता हूँ। हाय, वेलकम बैक, सैटरडे की सुबह आप सुन रहे हैं RJ आनंद को। लेडीज एंड जेंटलमैन, हर साल 3 अक्टूबर को नेशनल नो शुगर डे मनाया जाता है। फेस्टिव सीजन है, अब ऐसे में देखिए मिठाइयाँ थोड़ी ज्यादा हो जाती हैं, भाई देख लेंगे यार, कल जिम कर लेंगे, कोई लोड नहीं लेनी पाजी, जम के लड्डू ही खाओ। और मैं कह जी कोई दिक्कत नहीं है, काजू कतली भी खा लो आप, है। लेकिन अब जरा काम की बात सुन लेते हैं, है ना पाजी। देखो बात ऐसी है, स्टेशन क्लॉक में सुबह के 9 बज चुके हैं, इनफैक्ट 9:04:12 हो रहे हैं, आप सुन रहे हैं आनंद को। रिपीट कर दिया मैंने अपने बारे में, कोई दिक्कत नहीं है यार। जिन लोगों ने रेडियो जस्ट अभी ट्यून इन किया है उनको बता दें, आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग मैगजीन शो, दिस इज बिंदास मॉर्निंग, और ये है आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज पे। आप सुनते हैं आपके शहर का अपना कम्युनिटी रेडियो। आगे बढ़ते हैं और आज हम बात करते हैं उस चीज के बारे में जो हमारी चाय को मीठा बनाती है, लेकिन अगर जरूरत से ज्यादा हो जाए तो हमारी सेहत का स्वाद बिगाड़ सकती है। ओ हाँ जी, भाभी जी चाय में चीनी थोड़ी कम डालिएगा, अगर ज्यादा चीनी होगी तो चाय पीने में थोड़ी सी मुश्किल कर देगी, नहीं स्वाद अच्छा होगा लेकिन बॉडी के लिए थोड़ा सा खतरनाक हो सकता है जी। जी हाँ, आज हम जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं नेशनल नो शुगर डे, तो सवाल यह है क्या हमें चीनी पूरी तरह छोड़ देनी चाहिए या फिर बस उसकी क्वांटिटी का ध्यान रखना चाहिए, आज इसी पर हम बात करेंगे लिसनर्स आपके साथ जरा सी देर में। इसके अलावा आज मनाया जाता है वर्ल्ड नेचर डे, हम आपसे कह रहे थे कि आप कैसे प्रकृति के लिए, कैसे नेचर के लिए अपनी तरफ से कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, आप बताओ मुझे। इनफैक्ट मैंने आपसे ये भी पूछा था कि गीला कचरा और सूखा कचरा कौन कौन से डस्टबिन में डाला जाता है भाई, ग्रीन में कौन सा डाला जाता है, ब्लू में कौन सा डाला जाता है, यू कैन टेल मी 9837896896। क्या मुरादाबाद इसको पता है ये तो अभी पता लगेगा, लेकिन इसी बात पे आपने जो मैसेज किए हैं भाई कमाल कर दिया, धाकड़ मैसेज पहुंचा है यार मुरादाबादीज ने, मानना पड़ेगा, मतलब कि सारे लोग बड़े ब्रिलियंट हैं भाई साहब। देखिए डॉक्टर वर्षिका मेरे साथ जुड़ चुकी हैं, आई थिंक ये अपने ऑफिस के लिए निकल रही हैं, लिखती हैं हाय गुड मॉर्निंग हाउ आर यू, एंड इन्होंने बिल्कुल मुझे को सही सही तरीके से जो एक्सप्लेन कर दिया है कि आनंद जी देखिए अगर हमें नेचर को सुंदर बनाना है तो आई थिंक जो आपने लिखा है ना बिल्कुल सही कहा है आपने, एंड बट वो प्रॉब्लम ये है ना कि हम लोग बड़े प्यारे हैं, हम इस चीज़ को बार बार हजार बार बोलते हैं लेकिन उसके बाद भी डॉक्टर वर्षिका जी वही चीज़ को रिपीट करते रहते हैं, हम इंडियंस की आदत है ना। पर आपने जो लिखा है ना कि ये लास्ट में कि हमें पॉलोथीन में जो कचरा वचरा है इसको फेंकना नहीं चाहिए, इसको बंद कर देना चाहिए, एंड हो सके तो हमें पेपर बैग का इस्तेमाल करना चाहिए। आई नो, मैं जानता हूँ घर से निकलने से पहले हर किसी को कहा जाता है कि भैया पेपर बैग मत लेके जाओ, तो घर के बने हुए बैग ले जाओ भाई, मगर प्लास्टिक का बैग मत लेके जाओ, लेकिन अक्सर लोग वही करते हैं यार, अब क्या ही कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल मैं आज की सुबह आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि आप ये करो वो करो, बट मैं आपसे जानने का प्रयास कर रहा हूँ आपके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू यू लेडीज एंड जेंटलमैन आप मुझे बता सकते हो हो ना मैसेज करके, आप बता दो यार मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, अपने नेचर को अमेजिंग बनाने के लिए, अपनी प्रकृति को ब्यूटीफुल बनाने के लिए हम कैसे अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट दे सकते हैं, क्या स्पेशल कर सकते हैं, ये आप मुझे बता सकते हो। एंड इसके अलावा गीला कचरा कौन से डस्टबिन में डाला जाता है, ग्रीन में या ब्लू में, और सूखा कचरा किस में डालते हैं, जरा बताओ मुझे मैसेज करके 9837896896। अब देखो कोई एक्सक्यूजेस मत देना कि और सुबह सुबह इसके लिए भी गूगल करना पड़ेगा, तो भाई मैं बता रहा हूँ बड़ी दिक्कत हो जाएगी। चांद तारों से नहीं कहना, बस मम्मी से कहना कि मम्मी बताओ गीला कचरा किधर डालते हो और सूखा कचरा किधर डालते हो, फिर वो बताएंगे आपको। मम्मी बेटा घर के पहले छत के कपड़े उतार ला तू, है चांद तारे बाद में लाइयो।
6: तेरे वास्ते पलक से
9: सुबह सुबह पड़ोस वाली दुकान पे दूध लाने में आफत आती है, तुम चांद तारे लाने की बात कर रही हो, ये मम्मी से बेहतर कोई नहीं जानता। चलो जी फिलहाल आप जहां भी जा रहे हैं प्लीज ऐसे ही ट्यून इन रहिए आनंद के साथ और ऐसे ही सुनते रहिए बढ़िया गाने। अभी तो लौट कर आएंगे, करेंगे आपसे और भी ढेर सारी बात, आप कहीं मत जाइए, रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाइए, ऐसे ही ट्यून इन रहिए आनंद के साथ, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद। चलिए एक बेहतरीन गाना, बेहद ही खूबसूरत गाना आपके लिए मैंने निकाल दिया है अपने रेडियो सेट पर, सुनते हुए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग।

0: मेरा इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है,
1: लेकिन सोनिया
0: डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं,
1: नामुमकिन नामुमकिन नामुमकिन।
2: लेकिन बॉलीवुड के गाने पकड़ना बहुत ही मुमकिन है। सुनिए एफएम मुरादाबाद 89.6 पे 90s बॉलीवुड के अमेजिंग गाने। ट्यून इन कीजिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए गुनगुनाते रहिए।
3: बसंती इनके सामने मत नाचना।
2: अरे भैया नाचना है तो एफएम मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
4: यू आर लिसनिंग टू द बिगेस्ट हिट्स, द बिगेस्ट हिट्स नॉन स्टॉप।

0: सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग, बिंदास मॉर्निंग, बिंदास
1: मॉर्निंग। सिरदर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
2: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
3: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
2: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
4: वो आ गया, देखो देखो वो आ गया।
5: अरे आनंद इज बैक।

सॉन्ग यार, क्या गाना है। मैंने जम के डांस कर लिया एंड आई एम श्योर आपने भी कर ही लिया होगा यार, इतना अच्छा गाना अभी आपने सुन ही लिया है। हाय, वेलकम बैक हियर वंस अगेन, यू आर लिसनिंग टू एफएम मुरादाबाद 89.6 पे, आप सुन रहे हैं आनंद को। वक्त हुआ है 9:21 स्टेशन क्लॉक में। पता है क्या होता है यार, कई सारे लोग ना आपको अलग अलग राय देते हैं। आप किसी से एडवाइस मांगने चले जाओ भाई साहब, आपको इतनी गलतियां पता लग जाएंगी अपने बारे में, फिर आपको लगेगा यार मैंने तो अपने सर में खामखा डंडा मार लिया। सच बता रहा हूँ भाई साहब, इसीलिए आप जो हो ना, जैसे हो, आप सर्वगुण संपन्न हो, मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब नई नई चीजें करते रहो, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बट इसके अलावा किसी से कुछ पूछो या मांगो मत यार, मैं आपको बता रहा हूँ, आप जो हो जैसे हो वैसे रहो, नेचुरल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। आप खुद को नेचुरल रखो, जितना आप नेचुरल रहोगे उतना आपके लिए बढ़िया होगा। एंड बाकी मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि क्या लगता है लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल, गीला कचरा कौन से डस्टबिन में डाला जाता है, सूखा कचरा कौन से डस्टबिन में डाला जाता है। दो डस्टबिन होते हैं, ऑप्शन ए ग्रीन एंड ऑप्शन बी ब्लू, इन दोनों में से कोई एक राइट आंसर है। क्या लगता है गीला कचरा कौन से में डालते हैं अपन एंड सूखा कचरा कौन से में डालते हैं। अब इसमें से क्या सही है ये तो आप मुझे बता सकते हो भाई साहब, हालांकि ये पूछने वाली बात नहीं थी, लेकिन सुबह सुबह आपके दिमाग के घोड़े दौड़ाने के लिए मैं पूछ रहा हूँ। चलो जी, चलो फटाफट मुझे व्हाट्सएप कर दो एंड ढेर सारे व्हाट्सएप मेरे पास पहुंचे हैं। हाय, गुड मॉर्निंग, माय नेम इज सुकृति, हाउ आर यू आनंद, आई एम एब्सोल्युटली गुड यार, मैं बहुत ही बढ़िया हूँ। इसी बात पे चरणों में समर्पित होते हुए एक और मैसेज शामिल करूंगा। हाय नमस्ते आनंद भाई, क्या हाल चाल है, सुबह सुबह कमाल करते हो, धोती फाड़ के रुमाल करते हो, माई गॉड, और सॉन्ग ये तो मतलब सॉरी सॉन्ग तो नहीं, अरे क्या ही बोल दिया मैंने, क्या ही बोल दिया, मतलब ये तो आपने मेरी राइमिंग मेरे को शेप दी भाई, मुझे मारो। अरे एक मैसेज और मेरे पास पहुंचा है, गुड मॉर्निंग सर, कैसे हाल चाल है। वेरी गुड मॉर्निंग, हाय माय नेम इज लतिका, आई एम फ्रॉम मुरादाबाद गायत्री नगर, एंड आपने जो बताया ना आज ये गीला कचरा और सूखे कचरे वाली बात है, तो इससे मुझे भी दिमाग में एकदम पिंच कर गई ये बात कि यार ये तो बहुत ही सही बात पूछी आनंद आज आपने। यार एक्चुअली ना मुझे पूछनी पड़ती है, बिकॉज आप लोग इतनी सारी चीज़ें जो है ना मतलब करते रहते हो, है ना, बट मुझे भी लगता है कि मैं भी कुछ नया नया आपके लिए करूँ यार, यहाँ पे कुछ ना कुछ पूछूँ आपसे, एंड आफ्टर ऑल आपका दोस्त हूँ, नई नई चीज़ें आपको बताने का मेरी जिम्मेदारी बनता है यार। लेकिन अभी काम की बात तो सुन लो, अच्छा ये तो आप मुझे बताते रहना, लेकिन अभी मेरे काम की बात यह है कि आज के दिन ना नेशनल बॉयफ्रेंड डे भी मनाया जाता है। ओ माई गॉड, आप सुन के ऐसा लग रहा हो ना, ये क्या है आनंद, मतलब क्या क्या चीज़ें बताता रहता है भाई, सोच लो यार, मतलब कैसी कैसी चीज़ें सेलिब्रेट होती हैं, आई कांट बिलीव दिस यार, मतलब कि हर दिन कुछ ना कुछ स्पेशल होता ही है। और ये सारी खबरें निकाल निकाल के आपके लिए लेकर आता हूँ बड़ी रिसर्च करके, अरे भाई क्या है, क्या नया है, क्या स्पेशल है। लेकिन जो अभी सबसे मेजर पॉइंट जिस पर हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नेशनल नो शुगर डे, इसके बारे में बात करेंगे, एंड दिस इज वेरी वेरी सीरियस टॉपिक आपके हेल्थ के साथ, नो रिस्क नो खिलवाड़। यानी कि ये दिन अगर आज सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल नो शुगर डे, तो उसके पीछे का रीजन भी यही है कि आपको अवेयरनेस मिले, आपको सही इन्फॉर्मेशन मिले, राइट। तो अभी इस पर हम डिस्कस करेंगे, दिस इज वेरी वेरी सीरियस।

नहीं यार, आप उधर डांस करो, मैं इधर कर रहा हूँ। आज की सुबह हमारे रेडियो का पावर हाउस दिलजीत दोसांझ, मेरी है ना इश्क दे तेरे दरू। चलो जिसको सुनते हैं, आगे बढ़ते हैं, कुछ कहना चाहते हैं तो इमीडिएटली व्हाट्सएप कर सकते हैं 9837 8 9 6 8 9 6। लौट कर आता हूँ, कुछ खास अपडेट आपको बताने वाला हूँ आज के दिन के बारे में, एंड नो शुगर टी पे कुछ खास बातें बता रहा हूँ, ठीक है। जल्दी से वापस आ रहा हूँ, डोंट गो एनीवेयर, ट्यून इन रहो आनंद के साथ, सुनते रहो एफएम मुरादाबाद 89.6। कहीं ट्रैफिक है, कहीं जाम वाम में फंसे हो तो इमीडिएटली प्लीज मैसेज करो 9837 8 9।

0: बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
1: क्या मेरी कसम,
0: मिस कर दिया तो रीलोड।
2: चाय चाय चाय,
0: सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।
3: देखो।

हो गया। बहुत अच्छा गाना है गुरु रंधावा के साथ। आप अपनी फीलिंग को जो है एक्सप्रेस करते हुए आगे बढ़ो। बाकी आप जहाँ भी जा रहे हो ऑल द वे बेस्ट। मैं गाने को डिस्टर्ब नहीं करने आया हूँ, मैं बस आपको ये बताने आया हूँ कि इस गाने के बाद ना जितने लोगों ने अपने नाम के साथ मैसेज किए मुझे, चाहे वो आंसर्स किए हो या गुड मॉर्निंग विश किया है या जो भी उन्होंने बोला है, वो सब कुछ आप तक डिलीवर करूंगा जरा सी देर में। इस गाने को उस पर अभी ड्रॉप कर रहा हूँ, एक बहुत ही वंडरफुल ट्रैक नुसरत भारूचा एंड गुरु रंधावा की अमेजिंग परफॉर्मेंस। गाना बहुत अच्छा है, आई लव दिस सॉन्ग। वॉल्यूम बढ़ा के सुनो यार।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का थ्रिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
2: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
3: चलो जी, वापस हम आ गए हैं आपके रेडियो स्टेशन पर आपसे ढेर सारी बात करने। गानों के बीच बीच में जो है आरजे बोलता रहता है, और कुछ लोगों को अच्छा लगता है, कुछ लोगों को अच्छा नहीं भी लगता। अब जिनको नहीं लगता है तो उनके लिए हम कुछ नहीं बोलेंगे बाबा, बट कोई बात नहीं, आगे बढ़ेंगे यार। हाँ जी, एक बार फिर से स्वागत अभिनंदन है। 3 अक्टूबर की ब्रांड न्यू मॉर्निंग है, आप सुन रहे हैं आनंद को। दिस इज सैटरडे की सुबह, एंड आपको अभी बता देते हैं श्रोताओं कुछ बातें। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया चीनी कम है तो लाइफ एकदम बढ़िया है। वो गाना भी ना, चीनी कम है तो, बहुत ही अच्छा गाना है बच्चन साहब के साथ, वो डेफिनेटली प्ले करूँ आज, क्यों तो बनता है यार। फिलहाल आपको बता देता हूँ भैया, देखिए आज नेशनल नो शुगर डे है, और क्या हमें चीनी पूरी तरह छोड़ देनी चाहिए या बस इसकी मात्रा पर ध्यान देना चाहिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो भैया देखिए, क्या शुगर से फैट बढ़ता है? हाँ, ज़रूरत से ज़्यादा अगर आप शुगर को ऐड करोगे तो ये आपका वज़न, आपका बॉडी फैट बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट दे सकती है। और जब हम अपनी ज़रूरत से ज़्यादा कैलोरीज लेते हैं तो शरीर की अतिरिक्त ऊर्जा को स्टोर ये करता है, एंड इसीलिए सिर्फ चीनी ही नहीं बल्कि और भी बहुत सारी चीज़ें जिन पर आपको ध्यान रखना है ना, नमक और चीनी आप जितना कम सेवन करेंगे अपनी जो है डाइट में उतना ही अच्छा है। और आप जितना हो सकता है ना फिजिकल एक्टिविटी को भी इंपॉर्टेंट दें। अगर आप चाय कॉफ़ी ले रहे हैं है ना, अगर आप शुगर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके साथ ही साथ आपको थोड़ा सा जो फिजिकली एक्टिविटी है उसको भी बढ़ाना होगा। और हर मीठी चीज़ चीनी नहीं होती, ये भी आपको देना है ना, ध्यान में रख के आगे बढ़ना है। जैसे फल में जो है एक नेचुरल शुगर होती है, एंड साथ में फाइबर एंड विटामिन भी होते हैं इसमें, एंड जो आपके लिए काफ़ी बढ़िया होती है ना, तो आप उनको ले सकते हैं। जैसे वहीं कुछ सॉफ्ट ड्रिंक्स, मिठाइयाँ, बिस्किट, कुकीज़, केक्स एंड और भी बहुत सारे पैकेट वाले जूसेस होते हैं, अक्सर इसमें शुगर जो है बताया जाता है कि हाँ बहुत कम हो सकता है, यू नो हाफ शुगर हो सकती है, लेकिन सच बताऊँ तो इनमें थोड़ा ज़्यादा शुगर होती है। बट अगर आप नेचुरल शुगर, जैसे आप फ्रूट्स ले रहे हैं, तो वो एक नेचुरल शुगर है, वो आपकी हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छी है, तो आप डेफिनेटली ले सकते हैं। बाकी छिपी हुई शुगर की बात करें तो देखिए दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि चीनी सिर्फ चाय में होती है या फिर कोल्ड ड्रिंक्स में भी होती है, आपको क्या लगता है? मुझे ऐसा लगता है कि देखो यार, आप जो भी ले रहे हैं, आप स्वीट्स ले रहे हैं, आप ड्रिंक्स ले रहे हैं, एंड या आप कॉफ़ी चाय जो भी आप पी रहे हैं, ये देखिए आपकी हेल्थ पर तो डेफिनेटली जो है थोड़ा सा डालती है प्रभाव। इसीलिए ना अपने हिसाब से इन चीज़ों का इस्तेमाल करो यार, कोई भी चीज़ जितनी टेस्टी होती है ना, फिर उतनी वो मतलब आगे चल के हमें नुकसान भी देती है। देखो मैं ये नहीं कहूँगा कि एकदम से आप चाय एकदम बंद कर दो या उसमें चीनी ऐड करना बंद कर दो, लेकिन अगर आप 2 चम्मच चीनी डाल रहे हो तो पाजी उसका थोड़ा सा आप कम कर दो, उसका हाफ कर दो, है ना। एंड स्वाद तो देखिए धीरे धीरे बदलता है, जैसे आपकी धीरे धीरे आदतें बदलती हैं वैसे ही आपके जो है स्वाद भी बदल जाता है ना, तो बस धीरे धीरे क्वान्टिटी कम करिए। ये नहीं है कि भैया आपको जो है फटाफट से चीनी डालनी नहीं है एकदम से, अगर आप ऐसे करोगे तो आपको भी मज़ा नहीं आएगा यार। आज के दिन जो है सेलिब्रेट किया जाता है, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, नो शुगर डे। एग्जैक्टली, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आज पूरे दिन हम शुगर नहीं लेंगे। भाई मैं भी जाके चाय

वाला हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन चीनी की क्वांटिटी थोड़ी कम रखो यार। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं, आपके बहुत सारे व्हाट्सएप मेरे पास पहुंचे हैं, थैंक यू सो मच। हाय गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू डूइंग आनंद, कैसे हो आप, व्हाट अबाउट यू यार, नथिंग, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, एवरीथिंग इज परफेक्ट, थैंक यू सो मच फॉर आस्क मी। ये मैसेज मेरे पास पहुंचा है यहाँ पे तरुण भाई ने, थैंक यू तरुण भाई, थैंक यू सो मच। एक मैसेज और आया, हाय गुड मॉर्निंग आनंद, हाउ यू यार, देखो आप लोग इतना हाउ आर यू पूछते हो ना, मैसेज बता रहा हूँ, मुझे इसमें पैसे कमाने का मौका मिला तो मैं करोड़पति बन जाऊंगा एक दिन में। 9:36 का समय हो रहा है भाई, और हमारे साथ कौन जुड़ रहे हैं जरा इनसे बात कर लेते हैं। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, जिला मुरादाबाद से गोविंदपुर खुर्द से हम बोल रहे हैं, रजा हुसैन साहब जी, गुड मॉर्निंग साहब। एक मैसेज हमारे पास आ रहा है, गुड मॉर्निंग, गुलाम जलानी पाशा जी लिखते हैं, हेलो आनंद जी, कैसे हालचाल है जी? बढ़िया हालचाल है। इन्होंने मेरे को बताया कि भैया गीला कचरा किस में डालना चाहिए और सूखा कचरा किस में डालना चाहिए। भैया बहुत बहुत धन्यवाद। गुड मॉर्निंग, हाय माय नेम इज सुहानी, आई एम फ्रॉम शिवपुरी मुरादाबाद। हाय सुहानी, गुड मॉर्निंग। ये मैसेज आ रहा है मेरे पास बबलू जी का, मुंबई महाराष्ट्र से लिखते हैं, आनंद भाई गुड मॉर्निंग, थोड़ा सा लेट हो गया हूँ आज, थोड़ी आंख लेट खुली है। अच्छा उठो, आंखें खोलो मेरे यार, पानी लेकर आओ, जरा मुंह तो धो लो मेरे भाई। हाय गुड मॉर्निंग, हाउ यू, कैसे हाल चाल है? गीला कचरा, ओहो इन्होंने तो भैया कमाल कर दिया, एकदम सही बता दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर वर्षिका जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम आनंद भाई, गुड वाली मॉर्निंग, कैसे हाल चाल है? ये कल्याणपुर मुरादाबाद से मैसेज मिल रहा है मुझे। रिहाना जुड़ चुकी है हमारे साथ वेरी गुड मॉर्निंग के साथ। एंड हमारे पास मनप्रीत भाई का मैसेज पहुंचा है, गुड मॉर्निंग साहब, ये बताने के लिए कि आज शुगर डे होता है। जी भैया कोशिश तो यही करते हैं कि आपको सारी जानकारियां दे सकें, बैठे बैठे आपको रेडियो पर सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। एक मैसेज और पहुंचा है, हेलो भैया कैसे हो यार, मैं बहुत बढ़िया हूँ, ये लिखते हैं, आपका नंबर नहीं मिलता यार हमको, आपसे बतियाना होता है तो कैसे नंबर आपका मिलाएं? भाई बस अपने मोबाइल पे जाना है, उधर नंबर मेरा टाइप करना है तो आपका नंबर डेफिनेटली मिल जाएगा यार, इसमें कौन सी बहुत बड़ी वाली बात है, बहुत ज़्यादा मशक्कत तो नहीं करनी है आपने, टेंशन ना लो यार फिलहाल अभी। थैंक यू सो मच, वेल एक अच्छा गाने का टाइम हो गया है और बहुत सारी बातें हो गई हैं।

चलो इसी गाने को सुनते हैं और अपने बूस्टर को थोड़ा और बढ़ाते हैं। सैटरडे है, सिर्फ एक दिन और काम करना है, कल छुट्टी वाला दिन है ना। शरगुन मेहता, अमरिंदर पुट्टर की आवाज, एंजॉय करते हैं बढ़िया सा गाना, फिर मिलते हैं थोड़ी देर में।

0: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग, बिंदास मॉर्निंग,
1: अरे भैया इसकी बातें हैं चटपटी, गाने सुनाता है मस्त, और जब ये बोलता है ना तो भाई साहब मॉर्निंग और भी हो जाती है जबरदस्त। सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ ओनली ऑन FM मुरादाबाद 89.6 FM।
2: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
3: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
2: नहीं मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
3: अरे नहीं,
4: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
3: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड क्वाइन जीतने का मौका भी है।
2: अच्छा।
4: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता जैन मंदिर रोड सिविल लाइंस मुरादाबाद।
5: सीने में दर्द, सांस फूलना या तेज धड़कन को बिल्कुल नजरअंदाज ना करें। श्री साई हॉस्पिटल में डॉक्टर अखिल कौशिक DM कार्डियोलॉजी द्वारा एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर एवं अत्याधुनिक कार्डियक कैथ लैब की सुविधा उपलब्ध है। मोबिक किफायती रेट्स पर, स्वस्थ दिल सुरक्षित जीवन। आज ही अपॉइंटमेंट ले, श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद। कॉल करें 7060022430।

0: बसंती इनके सामने मत नाचना।
1: अरे भैया नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
2: You are listening to the biggest hits. The biggest hits, non-stop.

क्या बात है, आफ्टर लॉन्ग टाइम सिम्बा का ये गाना सुन के मजा आ गया। रणवीर सिंह के क्या स्टेप्स थे यार, सारा अली खान एंड बहुत ही अच्छी मूवी तनिष्क फैक्ट्री का म्यूजिक, नेहा कक्कर मीका सिंह की आवाज़, साथ में मजा आ गया यार। शानुदा को आफ्टर लॉन्ग टाइम मतलब इस गाने में सुन के तो सच में बहुत अच्छा लगा। चलो आगे बढ़ते हैं, वक्त हुआ है 9:48, आप सुन रहे हैं आनंद को, ढेर सारी बातें हो रही हैं। 5 अक्टूबर से मुरादाबाद के रामलीला ग्राउंड में रामलीला की शुरुआत हो रही है। अगर आप रामलीला देखने के बहुत बड़ी शौकीन हैं एंड आप अपनी फैमिली के साथ खूब एंजॉय करते हैं एंड आपको बहुत मज़ा आता है, तो 5 अक्टूबर से अपने रामलीला ग्राउंड में रामलीला की शुरुआत हो रही है, तो सभी का स्वागत है। मुरादाबादीज आप पहुंचे और जब भी मौका लगे हमें भी बताइए, हम भी आपको वहीं कहीं मिल ही जाएंगे कुछ ना कुछ कार्य करते हुए। तो अगर आप इधर रामलीला देखने आए तो हमें ज़रूर बताएं, फिलहाल हमारे स्टूडियो पास में पड़ता है। चलो आगे बढ़ते हैं और आज एक बहुत ही अच्छा सा सवाल आपसे पूछ लेता हूँ। एक बहुत ही अच्छी फिल्म आई थी, दिस इज वेरी वेरी आइकॉनिक मूवी, स्टार का नाम नहीं बताऊंगा आप पकड़ लोगे नहीं, तो थोड़ा सा दिमाग आपने चलाना है। एंड बहुत ही पॉपुलर कल्ट क्लासिक फिल्म थी ये, इसमें 3 हीरो थे, मतलब सॉरी 2 हीरो एक हीरोइन थी, बहुत अच्छी मूवी थी। एंड स्टार्टिंग में एक लड़की लड़का बहुत बे इंतहा मोहब्बत करते हैं, लड़का आई डोंट नो क्यों गरीब होता है, मुझे भी नहीं पता वो क्यों होता है, लेकिन लड़की की शादी जो है लड़के की जो मतलब जो गर्ल होती है उसके फादर उसकी शादी एक बड़े घराने में करते हैं, एक शाही घराने में शादी कर देते हैं, लेकिन वो जो लड़की होती है उस लड़के से प्यार नहीं करती, लेकिन धीरे धीरे जो है उनकी नफरत प्यार में बदल जाती है, वो एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं हस्बैंड वाइफ। एंड जो इस लड़की का ये प्रेमी होता है, जो आशिक होता है, जो स्टार्टिंग में गरीब होता है, जिसकी वजह से जो है इस लड़की के पापा उससे शादी नहीं करते हैं, अग्री नहीं करते हैं, एंड बाद में वो जो लड़का होता है वो 500 करोड़ का मालिक बन जाता है। एंड वो आता है उस लड़की को टिच करता है कि नहीं भाई तुम्हें मेरे पास वापस आना चाहिए, देखिए एक टाइम पर मेरे पास पहनने के लिए चप्पल भी फटी हुई थी, लेकिन आज की डेट में मेरे पास 500 करोड़ है, 500 करोड़, तो बताओ मतलब कौन सी फिल्म है ये, वो कौन सी फिल्म थी जिसमें बोलता था मेरे पास आज 500 करोड़ है भाई। एंड आई थिंक ये फिल्मों में हो सकता है, रियल लाइफ में तो नहीं होता है भाई, तो आप मुझे बताओ ये कौन से फिल्म की बात कर रहा हूं मैं आज की सुबह। हालांकि लास्ट में ये इसका प्रेमी वापस छोड़ के फिर इसको चला जाता है, ये दोनों हस्बैंड वाइफ खुशी खुशी जो अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करते हैं। बहुत ही कल्ट क्लासिक मूवी है, 2 हीरो एक हीरोइन की मूवी है, बहुत ही अच्छी फिल्म है। एंड जिससे इस लड़की की शादी होती है उसका नाम बताऊँ या नहीं, थोड़ा सा आपको हिंट दे दिया मैंने, बाकी आप मुझे मैसेज करके बताना कौन सी फिल्म की बात करूँ। दिस इज़ वेरी वेरी आइकॉनिक मूवी, गाने बहुत अच्छे हैं, एक गाना सबसे बड़ा क्लू देता हूँ, एक इसका गाना है जो बहुत ज़्यादा हर शादी में बजता है, इनफैक्ट उस शादी के बिना लगता है कि उस दूल्हे का जो सेहरा है वो सुहाना लगता ही नहीं है। टेलिस 9837896896, अभी तक मैंने कोई रिवील नहीं किया, अब आप ये नहीं कहोगे कि आनंद तुमने तो खुद ही आंसर बता दिया था। है जी देखो मैंने आंसर नहीं बताया, मैंने बस आपके लिए थोड़ा सा इजी कर दिया ताकि आपको ये ना लगे यार कितना टिपिकल क्वेश्चन पूछ लिया, मैं ड्राइव कर रही हूँ कैसे आंसर करूँ। नहीं ये मत करना यार, मुझे कल भी वापस, कल नहीं, कल तो संडे, कल नहीं आना है। चलो फिलहाल पति पत्नी और वो कौन है ये मैं पता करके आ रहा हूँ इस गाने के बाद, आप ही गाना सुनो मुझे आंसर करो मेरे व्हाट्सएप।

और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रैक, जरा हटके जरा बच के भैया रोड पर अगर आप हैं तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें, बहुत जरूरी है। हेलो जी, वेलकम बैक है। हाय हाय, हेलो हेलो हेलो जी, नमस्ते, केम छो, शू करू छू तुम्हें भाई। अरे अच्छा, मैं गुजरात में नहीं हूँ, मैं मुरादाबाद में, भूल गया था। भाई साहब देखो, घड़ी मिलाओ, 9:58 हो रहे हैं, 9:58 हो रहे हैं स्टेशन क्लॉक में। और अभी मैंने आपसे एक सवाल भी पूछा है, डेफिनेटली उस पर बात करूंगा। लेकिन ये जो अपनी हेमगिरी कॉलोनी है ना इधर भाई साहब, जो ये पानी की लाइन है भाई साहब, ये मतलब दो बार ऐसे फट गई है, मोहल्ले के लोग काफ़ी परेशान हो गए बेचारे। उधर पानी की समस्या बड़ी हो गई थी यार, कल मैं जब पढ़ रहा था इसके बारे में, मतलब 24 घंटे के अंदर दो बार पाइप लाइन जो है फट गई। बताइए ज़रा कितनी दिक्कत होती है ना जब पानी नहीं आता है, मैं भी समझ सकता हूँ यार। लेकिन मैं होप करता हूँ कि वहाँ पर डेफिनेटली अब सही हो गया होगा। तो हिमगिरी कॉलोनी में जो भी ये पानी की दिक्कतें चल रही थी पाइपलाइन फटने की वजह से, आई होप सॉल्व हो गई हो गाइस। अगर कोई वहाँ का मुझे सुन रहा है वो व्यक्ति, एंड अगर उसको लगता है कि भैया नहीं अभी कुछ लगभग चीज़ें सही हुई नहीं है, तो आप डेफिनेटली हमें बता सकते हो। देखो रेडियो पर ना सिर्फ गाने नहीं होती हैं, बातें नहीं होती हैं, रेडियो पर बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी होती हैं, पॉजिटिव चीज़ें भी होती हैं। एक बार आप अपनी प्रॉब्लम शेयर तो करो, उसका सलूशन डेफिनेटली आपको मिलेगा यार। मुरादाबाद को थोड़ा सा टाइम लग रहा है रेडियो एक्सेप्ट करने में, बट लोग कर रहे हैं, सबसे अच्छी बात यह है। फिलहाल आपको बता देता हूँ फटाफट से कुछ कड़क अपडेट मुरादाबाद से जुड़ी। सबसे पहले तो देखिए, गन्ना किसान टोल फ्री नंबर पे आप डेफिनेटली कोई भी अपडेट, अगर आपकी किसान भाई है तो आप इस नंबर पे कॉल करके डेफिनेटली अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। 24 घंटे में आपको इसका समाधान डेफिनेटली मिल जाएगा। टोल फ्री नंबर मैं आपको दे रहा हूँ इमीडिएटली, 1800-121-3203। इस नंबर पर आप कॉल करके आपकी जो भी क्वेरीज है, जो भी आपकी शिकायत है या जो भी समस्या है, उसको आप यहाँ पर डेफिनेटली दर्ज करा सकते हैं। रिपीट अगेन कर रहा हूँ फोन नंबर, 1800-121-3203। इस नंबर पर आप डेफिनेटली कॉल करके जो भी आपकी क्वेरीज है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, वो डेफिनेटली आप यहाँ पर साझा कर सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और वेदर की बात कर लेते हैं। Celsius है अभी जो टेम्परेचर है, एंड बात करता हूँ अगर मैं हाईएस्ट की तो 32 डिग्री पहुंच सकता है, लोएस्ट की बात करूँ तो 24 डिग्री तक आ सकता है। एंड गर्मी का जो असर है वो डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा ही, और सूरज चाचू मतलब जो है ऐसे प्रकट हो जाते हैं सुबह से, नहा धो के एकदम जैसे वो आ गए हों। 10 बज चुके हैं भैया सुबह के। एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा था, अगर आपने पहचान लिया है मेरी पिक्चर को बहुत अच्छी बात है, नहीं पहचाना है तो मैं इसमें कुछ नहीं करूंगा भाई, आपको दोबारा से एक हिंट दे दूंगा, आप दोबारा पहचान जाओगे तो बहुत अच्छी बात है। देखो अगर मैं आपको क्लू दे सकता हूँ, पहचानना तो आपके हाथ में ही है बॉस, है ना। तो आपको क्या करना है, आपने बस मेरे को मैसेज करना है, पहले फंडा समझ लो, अपने मैसेज बॉक्स में जाना है, टाइप करना है अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना सही जवाब, ठीक है। आज की बहुत ही अच्छी फिल्म है, बहुत ही कल्ट क्लासिक मूवी है अपने टाइम की, और बहुत ही पॉपुलर फिल्म है, काफ़ी लोगों ने मूवी मतलब काफ़ी नहीं सब ने ये फिल्म देखी होगी, यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, आप डेफिनेटली जाके वॉच कर सकते हैं, बहुत अच्छी मूवी है। एंड इसमें जो है दो हीरो होते हैं, एक हीरोइन होती है, चलिए इनका नाम सेट कर देता हूँ, डिंग डोंग एंड रोंग, ठीक है। सो जो रोंग होता है ये डिंग से बहुत प्यार करता है और डिंग भी रोंग से बहुत प्यार करती है। सो लेकिन एक बार क्या होता है ना कि जो ये लड़की होती है, ठीक है, इसके फादर से आपको पता लगता है कि हमारी बेटी किसी और लड़के से प्यार करती है, जो कि थोड़ा सा नहीं पूरा का पूरा थोड़ा गरीब है, वो मेरी बेटी को खुश नहीं रख पाएगा, तो इसलिए उसके पापा एक शाही घराने में उसकी शादी कर देते हैं। वहाँ पर उस लड़की की उस लड़के से बिल्कुल नहीं बनती है, लेकिन धीरे धीरे उन दोनों की नफरत प्यार में बदलने लगती है। लेकिन ये जो इनका हीरो होता है ना, मतलब इनका पुराना प्रेमी होता है, ये उस टाइम पर गरीब होता है, लेकिन शादी के बाद ये कम बैक करता है और ये 500 करोड़ का मालिक बन के वापस आ जाता है, और ये चाहता है कि वो लड़की वापस मेरे पास आए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, तब तक बहुत कुछ बदल चुका होता है, ये बहुत प्रयास करता है, लेकिन उसके बाद लास्ट में ये बाय बाय करके चला जाता है उन दोनों की लाइफ से। ये कौन सी फिल्म की बात कर रहा हूँ मैं, इन शॉर्ट स्टोरी आपको बताइए, बहुत ही पॉपुलर फिल्म है, इसका एक गाना बहुत पॉपुलर है, हर शादी में बजता है, ऑफ कोर्स आपको पता लग ही गया होगा। बहुत सारे आंसर्स मेरे पास आ गए ऑलरेडी, बस मुझे इंतजार है एक और सही मैसेज पहुंच जाए। चलो व्हाट्सएप करो 9837896896 पे। 10:02 हो रहे हैं, आप सुन रहे हैं आनंद को, ये ब्रांड न्यू मॉर्निंग है सैटरडे की सुबह, एंड एक अच्छा सा छोटा सा एक ब्रेक, उसके बाद एक बढ़िया सा गाना आप तक पहुंच रहा है।
1: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM।
2: आवश्यक सूचना, 400 केबी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केबी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
3: ചുവപ്പ് നിറത്തിലെ സാരി आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग।

Anand is back. Huh? You are listening.

देखो सुबह सुबह बाहर बारिश नहीं हो रही है, लेकिन गाने से आपको ऐसी फील आ रही होगी। मैं एक लकी वन को भी शॉर्टलिस्ट करता हूँ, जिन लोगों ने बहुत सारे मैसेज किए ना उनमें से कोई एक ही लकी वन हम शॉर्टलिस्ट करेंगे। एंड अभी बहुत ही अच्छा गाना आपके रेडियो पे मैंने निकाल दिया, इस गाने को आप सुनिए, एंजॉय कीजिए। और बाकी अगर आप मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं और हमारे रेडियो स्टेशन पे कोई अपना फेवरेट गाना सुनना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप जुड़ सकते हैं 9837896896 पर। चलो अभी आपको एक बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन देता हूँ जरा सी देर में, लेकिन उससे पहले दर्शन रावल की अमेजिंग वॉइस को एंजॉय कीजिए।

0: चलो जी, दर्शन रावल की ये बढ़िया सी आवाज अभी आपने एंजॉय की हमारे साथ। और आपको बता दें भैया, 10:09 हो गए, रीना जी स्टूडियो में आ गई है। सैटरडे के दिन रीना ही आती है, और रीना जैसे ही आई है उसने मुझे एक बहुत ही अच्छी जानकारी दी है। रीना, कौन सी जानकारी है, तू ही अपनी आवाज में बता दे हमारे लिसनर्स को।
1: इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच शुरू हो चुका है गाइस।
0: कितने बजे से शुरू होगा ये?
1: 10 बजे से।
0: क्या बात है जी, बहुत बढ़िया। हम इंडिया पाकिस्तान मैच जरूर देखेंगे। क्या लगता है कौन जीतेगा?
1: इंडिया।
0: इंडिया। वेलकम बैक है जी, वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह देखो, एक साथ आपको फ्री में दो लोग मिल रहे हैं, इससे अच्छी बात और क्या ही हो सकती है ना रीना, है ना। चलो जी, फिलहाल ये अपना एक पिंक बेबी बिस्कुट लेकर आई है। आई डोंट नो क्यों पिंक बिस्किट क्यों लाई है।
1: नहीं, मैंने सोचा कि खा लूंगी मैच देखते देखते, शो करते करते।
0: अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलो अच्छी बात है, फिलहाल मैच की इन्फॉर्मेशन रीना ने दे दी आपको। अगर आप मैच के बहुत बड़े प्रेमी हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन हो सकती है आज की सुबह। और बाकी अभी एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको फटाफट बता देता हूं। वो ये है, देखो ना, रात को एक प्रोग्राम आता है हमारे अखिल भैया का, और मुझे उनका मैसेज आया कि जल्दी से मेरा प्रमोशन कर दो। तो मैंने कहा ठीक है जी, आपका प्रमोशन बिना किसी देरी के हम कर देते हैं। तो विद नेम हम आपका पहले प्रचार कर देते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो ये जो अखिल जी है ना, इनको अपना प्रमोशन कराना है। इनका एक प्रोग्राम आता है दिल से दिल तक। अगर आपने सुना है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सुना है तो अभी सुन लो जरा आप।
2: कुछ बातें जो दिल में रह जाती हैं और कुछ बातें जो सीधे दिल तक पहुंच जाती हैं। तो मुरादाबाद उठाइए अपना फोन और मिलाइए फोन आरजे अखिल को, क्योंकि ये पहुंचाएंगे आपके दिल की बात उस हर एक दिल तक जहां तक आप पहुंचना चाहते हैं। सुनिए दिल से दिल तक मंडे टू फ्राइडे एवरी इवनिंग 9 PM to 10 PM आरजे अखिल के साथ। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
0: चलो जी अखिल भाई, हो गया प्रमोशन, आके बढ़ते हैं। भैया आप जरूर सुनिए, और बाकी अभी हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। हेलो जी, मैं बढ़िया हूँ सर, मैं बहुत बढ़िया हूँ। आप बताइए क्या नाम है आपका, शुभ नाम सर?
3: मेरा नीरज गुर्जर नाम
0: है। नीरज गुर्जर जी कहाँ रहते हैं सर, मुरादाबाद में है?
3: जी, मैं हेमगिरी कॉलोनी।
0: अच्छा, हेमगिरी में रहते हैं, बहुत बढ़िया सर। क्या करते हैं नीरज साहब?
3: जी मेरा ट्रांसपोर्ट का काम है।
0: अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और सर रेडियो से जुड़े रहते हैं?
3: हाँ,
0: बहुत बहुत बढ़िया। तो मतलब कब सुनने का समय मिल,

0: बताओ वो कौन सी फिल्म है जिसमें 500 करोड़ के ये मालिक बन जाते हैं लास्ट में, गरीब इंसान?
1: जी वही है, धड़कन मूवी है, सभी लोग जानते हैं।
0: अच्छा
1: सुनील शेट्टी बने थे।
0: हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि पिक्चरों में क्यों ऐसा होता है, रियल लाइफ में क्यों नहीं होता ऐसा?
1: रियल लाइफ में ऐसा होना तो पॉसिबल ही नहीं है। रियल लाइफ में कहाँ होता है सर, रियल लाइफ तो रियल ही है ना।
0: एग्जैक्टली
1: ड्रामा क्यों बोलते हैं, एक्शन ड्रामा बोलते हैं ना इसको, ये ड्रामा मूवी हो रही है।
0: बिल्कुल सही सही कहा आपने नीरज जी, और बहुत बहुत बधाइयां, आपने सही जवाब दिया है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। देखो आपके लिए मैं एक गाना बजा रहा हूँ, बहुत अच्छा था। नीरज जी कुछ कहना चाहते हैं चलते चलते?
1: चलते चलते क्या है, बस अपने घरों में साफ सफाइयां रखें, सड़क पे इधर उधर कूड़ा ना डालें और पॉलीथीन का यूज ना करें, बस
0: आज आज आज आज
1: मुरादाबाद।
0: बिल्कुल आज जो है वो वर्ल्ड नेचर डे मनाया जाता है, अपने नेचर से प्यार करने का दिन, अपनी प्रकृति से प्यार करने का दिन, उस पर क्या कहना चाहोगे? पेड़ पौधे तो सभी लगाते हैं।
1: जी जी, तो मैंने पेड़ पौधे के अलावा मैं कहना चाहूंगा वही आपको बताया अभी, ग्रीन सिटी हमको बनाना है, क्लीन सिटी हमको बनाना है, अपने घर के आसपास में नाली जो है उसमें कूड़ा ना डालें, आसपास में सफाई का ध्यान रखें क्योंकि अभी डेंगू वेंगू का इसका भी ज्यादा रहता है, तो साफ सफाई रखेंगे तो हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा।
0: बिल्कुल, और अगर आपको ज्यादा अपना स्वास्थ्य अच्छा रखना है तो आपको रेडियो सुनना पड़ेगा, उस पे अच्छे गाने बजते हैं।
1: नहीं हाँ, हार्ट बीट अपनी पॉजिटिव रखनी है तो सुनना जरूर है,
0: है ना? और म्यूजिक एक अच्छी थेरेपी भी है सर।
1: जी जी जी जी,
0: चलिए
1: मैं यही कहना चाहूंगा, ऑलवेज बी पॉजिटिव।
0: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, बहुत बहुत थैंक यू नीरज भाई, ऑल द बेस्ट आज के दिन के लिए, और बहुत बहुत बधाई है सर। थैंक यू
1: सर।
0: ओके, अरे सर थैंक यू सर।

0: 10:14 हो रहे हैं। कांग्रेचुलेशन नीरज जी, आज की सुबह आप बनते हैं हमारे शो के सुपरस्टार। बाकी लोगों ने भी दिए हैं सही जवाब, सब लोगों के लिए यहाँ पर बधाइयां जी, बधाइयां, बहुत बहुत शुक्रिया। एक एड ब्रेक आपके नाम, उसके बाद हम जा रहे हैं यहाँ से, बाय बाय कर।
1: Hey, you're tuning to FM Moradabad 89.6 FM।
2: सीने में दर्द, सांस फूलना या तेज धड़कन को बिल्कुल नजरअंदाज ना करें। श्री साई हॉस्पिटल में डॉक्टर अखिल कौशिक डीएम कार्डियोलॉजी द्वारा एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर एवं अत्याधुनिक कार्डियक कैथ लैब की सुविधा उपलब्ध है, वो भी किफायती रेट्स पर। स्वस्थ दिल, सुरक्षित जीवन, आज ही अपॉइंटमेंट ले। श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल करें 7060002430।
0: चलिए गाइस, एक छोटा सा ब्रेक था और अब मैं आपसे लेता हूँ जाने की इजाजत। थैंक यू सो मच जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया आज की सुबह, उनके लिए दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और एक भाई साहब ने मुझे लिखा था, क्योंकि इस मूवी ने 500 करोड़ कमाए थे हीरो की तरह। अरे वाह, क्या बात है। अलका वर्मा जी बुद्धि बिहार से मेरे साथ सही जवाब के साथ जुड़ रही हैं। एंड उमेश कुमार जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं आज की सुबह लोधीपुर से। एंड ये शिवपुरी से सुहानी ने मुझे राइट आंसर पहुंचाया है आज की सुबह। बाकी कपिल जी मेरे साथ जुड़े हैं, कपिल कश्यप, इन्होंने राइट आंसर दिया था। एंड बबलू जी मुंबई महाराष्ट्र से जुड़े थे मेरे साथ आज की सुबह। और बहुत सारे लोगों ने व्हाट्सएप किया है, थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर पार्टिसिपेटिंग।
3: आनंद भैया, ये धड़कन मूवी है।
0: अरे वाह, क्या बात है, थैंक यू सो मच आपको भी। नाम तो बता देती। अच्छा ओके, स्वाति सिंह जी ने भी देखो वॉइस ओवर दिया था, मुझे एक छोटा सा वॉइस भेजा था। ये विक्की सागर जुड़ते हैं राइट आंसर के साथ, थैंक यू विक्की भाई। एंड हाउ आर यू विभोर भाई, थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग, आई एम एब्सोल्युटली फाइन यार, आई होप आप भी अच्छे होंगे। एंड कोमल ने राइट आंसर दिया था। बाकी सहारनपुर से जोन रोजी पलवलीस हमारे साथ जुड़े थे, हमारे रेगुलर लिसनर, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से शाद हुसैन अंसारी, डॉक्टर सैयद शारिक अली, महराज अंसारी, बाबू अंसारी लिखते हैं, आनंद जी गुड मॉर्निंग, शो बहुत अच्छा लग रहा है और आज आपने जो ये शुगर डे पे ढेर सारी इन्फॉर्मेशन दी है उसके लिए थैंक यू। अरे भैया थैंक यू सर। चमन लाल साहब भी जुड़ चुके हैं, पुतली घर रोड से गुड मॉर्निंग पहुंचाते हैं। और बाकी लोग तो ऑलरेडी जुड़े हुए थे, अभी के लिए आप सभी को थैंक यू वेरी वेरी मच। ये मैसेज आया है, गुड मॉर्निंग आनंद भाई, उस्मान टेलर ग्राम बीजना से मेरे साथ सही जवाब के साथ जुड़ रहे थे। चलो भाई मैं यहाँ से निकलता हूँ, मेरा नैन मटक्का हो गया, बहुत देर से आपके साथ ढेर सारी बातें कर रहा था। अब रीना के साथ आप अच्छी बातें एंजॉय कीजिए। अमरोहा से नेहा ने मुझे टेक्स्ट मैसेज किया है, गुड मॉर्निंग पहुँचाती हैं, गुड मॉर्निंग मेरे पास टेक्स्ट पर पहुँच रहा है, हाय गुड मॉर्निंग। ये हमारे साथ अंजलि सिंह भी हमारे साथ जुड़ रही हैं आज की सुबह। एंड आदरणीय आरजी को गुड मॉर्निंग, कैसे हाल चाल है, थैंक यू सो मच, मैं बहुत ही अच्छा हूँ जी। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हाल चाल है। आनंद जी गुड मॉर्निंग, मैं बहुत ही बढ़िया हूँ। जसवीर जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से, आप सभी को दिल से थैंक यू। चलिए होगी मेरी आपकी मुलाकात अब मंडे की सुबह, रखिए अपना ढेर सारा ख्याल, ऐसी

वाली मॉर्निंग है, बिंदास मॉर्निंग शो में आज रीना के साथ कनेक्ट हैं आप और जुबिन नौटियाल की आवाज में बहुत ही खूबसूरत आपने गाना एंजॉय किया है कि तुम समझो ना। सवर्णा की आवाज में भी ये गाना, ओ माय गॉड, सच में बहुत ही शानदार है। अगर आपने ये मूवी नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा, बहुत ही फैंटास्टिक मूवी है, बहुत ही लाजवाब मूवी है। और ये मूवी अभी थिएटर में राइट नाउ रिलीज है, तो आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं, देख सकते हैं। और फिलहाल आप मॉर्निंग मसाला शो में आरजे रीना के साथ कनेक्ट हो गए हैं, तो आप सभी को एक प्यारी सी गर्ज वाली मॉर्निंग, सत श्री अकाल, राम राम जी। तुसी आई होप कि बहुत चंगे होंगे, बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि सुबह के 10:22 हो चुके हैं और बाहर सूर्य भगवान भी भैया बहुत ताबड़तोड़ वाली, यानी कि पूरे नहा धो के रेडी सेडी होके निकल चुके हैं और कह रहे कि है कोई मेरे मुकाबले का। नहीं नहीं भैया, उनके मुकाबले का तो कोई भी नहीं है, सच बताऊँ तो एकदम ताबड़तोड़ वाली धूप निकली हुई है बाहर। और आप क्या कर सकते हैं, मेरे शो में कनेक्ट हो सकते हैं और जो भी आप गाना सुनना चाहते हैं उसके लिए आपको हमें मैसेज करना है। नंबर है 9837896896 पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर मैच की बात करूं तो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच वो शुरू हो चुका है, तो आप देख सकते हैं, वरना फिर मैं तो हूं यहां पर बताने के लिए, आपके साथ कनेक्ट हूं। और जो भी आप गाना सुनना चाहते हैं फटाफट मैसेज करिए, और किसी का नाम भी शामिल करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आराम नाल आप मैसेज करो, कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है आपने, होले होले मैसेज करिए। और एक गाना आप सभी के लिए मैं प्ले करती हूँ, फिलहाल आप अपने जो भी गाना सुनना चाहते हैं वो मुझे बता सकते हैं।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
2: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
1: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
2: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
3: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
2: नहीं मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
3: अरे नहीं,
4: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
3: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड क्वाइन जीतने का मौका भी है।
2: अच्छा।
4: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता चैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।

गुड वाली मॉर्निंग है जी, आर्जरीना के साथ कनेक्ट है आप मॉर्निंग मसाला शो में। और समय की बात करूँ तो 10:32 हो चुके हैं। अगर इंडिया की बात करूँ तो देखिए, पहले हमारी इंडिया बैटिंग कर रही है, जिसमें यानी कि 2 विकेट तो भैया गायब हो चुके हैं और 69 रन बने हुए हैं। और अभिषेक शर्मा का भी शतक लगने में बस 4 रन की और देरी है, उसके बाद उनकी शतक लग जाएगी। फिलहाल वैभव सूर्यवंशी भी आउट हो चुके हैं। अगर आप घर बैठे बैठे मैच देख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना आर्जेंटीना आप सबको अपडेट देने के लिए है यहाँ पर। सो स्टे ट्यून्ड रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और ओवर की बात करूँ तो 5वां ओवर चल रहा है अभी, और हमारे पास आप सभी के प्यारे प्यारे जो मैसेज आ गए हैं ना, तो चलिए एक बार उनको भी शामिल करते हैं कि किनका मैसेज आते हैं हमारे पास। तो फर्स्ट मैसेज की बात करूँ तो अमरोहा से नेहा कनेक्ट होती है। नमस्ते रीना दी, कैसी हैं आप? बहुत अच्छी हैं जी, आपकी आवाज़ काफ़ी टाइम से सुना नहीं है। ओह माय गॉड, आपने मेरी आवाज नहीं सुनी है काफी टाइम से, तो कोई बात नहीं जी, अब सुन लीजिए। लेकिन मैं तो डेली आती हूँ शाम को 5 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक इवनिंग मस्ती शो में, और ये गाना सुनना चाहती है, तू ही हकीकत तू ही ख्वाब है। और जो आपने बोला है उसके लिए 2 का रिप्लाई मैंने दे दिया है आपको। और आगे बढ़ते हैं, अपने अगले मैसेज की बात करूँ तो हमारे पास मैसेज आता है,

0: I'm late. I have to go.
1: Come here.
2: भाई देखिए, मैं अभी रेडियो पर लाइव हूँ और मैं बता नहीं सकती कि मैं अभी कितनी खुश हूँ, क्योंकि हर किसी को इंतज़ार था ना कि आनंद के पापा मिल गए हैं या नहीं मिले, तो मैं बता रही हूँ कि आनंद के पापा मिल गए हैं। सच में अभी उसका कॉल आया और मतलब कुछ कह नहीं सकते हैं। कल ही हम यही डिस्कस कर रहे थे कि कल तेरे पापा आ ही जाएंगे जैसे भी होंगे, और आ ही गए, फाइनली उनके पापा मिल गए हैं। तो अभी हम मुरादाबाद में तो नहीं आए, लेकिन उनके नगीना घर पे पहुंच गए उनके पापा। तो अब बहुत अच्छी है, बहुत माता रानी का ब्लेसिंग है कि उनके पापा बहुत जल्द अब घर आ चुके हैं। फाइनली एक महीना से भी ज़्यादा हो गया उनको और आज वो अपने घर आ चुके हैं। बहुत दूर चले गए थे, उनका ये कहना है कि मैं बहुत दूर चला गया था और आ गए अब अपने घर। तो सारे अब ये मिलने जा रहे हैं उनसे। तो थैंक यू सो मच, आप सभी की दुआ ने और भगवान ने सुन ली कि उनके डैडी अब घर पर आ गए हैं।
1: Let's get out, please.
0: What?
1: Vic, मैं कह रहा हूँ, she's really nice.

0: हेलो जी, गुड वाली मॉर्निंग है। अर्जुनीना के साथ आप कनेक्टेड श्रोता हो और समय की बात करूँ तो 10:42 हो चुके हैं। मतलब खुशी का लेवल इतना ज़्यादा है ना मेरा कि मैं, मेरे पास अब शब्द ही नहीं है बोलने के लिए, कि मैं बोल ही नहीं, मतलब समझ नहीं आ रहा कि कैसे किया जाए कैसे नहीं किया जाए। इतनी ज़्यादा मुझे खुशी हो रही है और आई नो कि आप सब भी सुनकर बहुत खुश हो रहे होंगे। और भगवान की जो दुआ है ना, देखिए वो कहते हैं ना कि आप भगवान से प्रार्थना करते हो ना, देर होता है लेकिन अंधेर नहीं होता है, सब कुछ सही हो जाता है। और फाइनली आनंद के पापा अब घर आ चुके हैं, उनकी फैमिली अब फिर पूरी हो गई है, जो कि काफ़ी 1 महीने से ज़्यादा हो गया, बहुत परेशान हो रहे थे सभी। और यहाँ शो करना, मतलब डिप्रेस हो के भी इतनी टेंशन के साथ शो करना बहुत बड़ी बात होती है दोनों भाई बहन के लिए। फाइनली भगवान ने सुनी और उनके पिताजी अब घर पर आ गए हैं
1: लेकिन गया।
0: और आप अर्जुनीना के साथ कनेक्ट है तो चलिए आप सभी के मैसेज की तरफ बढ़ते हैं। और ये हमारे पास कपिल कश्यप जी कनेक्ट होते हैं। गुड मॉर्निंग रीना जी, गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं जी, हम बताइए, आप बताइए कैसे हैं। और ये एक रिक्वेस्ट है, गाना सुनना चाहते हैं दिल लौटा दो मेरा, जुबिन नौटियाल की आवाज़ में। तो सर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपका दिल है कहाँ, जो आप चाहते हैं कि मेरा दिल मेरे पास आ जाए।

0: मुझसे।
1: चलिए अगले मैसेज की बात करूँ तो रानी नांगल से रिहाना कनेक्ट होती है, गुड मॉर्निंग पहुँचाती है, वेरी गुड मॉर्निंग जी।
0: अरे हो पगले मुझे देखना।
1: और जो भी आप गाना सुनना चाहती है डेफिनेटली हम इस गाने को सुनवाएंगे। बबलू सैनी जी का कहना है कि रीना जी हमें ये खबर सुनकर बहुत अच्छी लगी, आंखों में आंसू आ गए हैं, आनंद भाई के पिताजी मिल गए हैं, बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। जी बिल्कुल सही कहा सर हमने, सेम हमारा सिचुएशन भी यही है, बहुत खुशी हो रही है कि आनंद के पापा मिल गए हैं, घर पर आ गए हैं। तो फिलहाल अगला गाना भी हम सुनवाएंगे लेकिन उससे पहले कुछ कमर्शियल एड ब्रेक है, फिलहाल आप सभी मैसेज करते रहिए, नंबर है 9823789698 9।
2: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
3: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
4: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।

0: शानदार आप लता मंगेशकर जी की आवाज में, उदित नारायण जी की आवाज में ये गाना सुन रहे
1: हैं।
0: और समय की बात करूं तो यानी कि 10:54 हो चुके हैं, गर्ड वाली मॉर्निंग है जी। मॉर्निंग मसाला शो में आप आज रीना के साथ कनेक्टेड श्रोताओं, और कुछ गाने ना वाकई में बहुत ही शानदार होते हैं जिसे हम अपनी जिंदगी से रिलेट करते हैं। और आज का डे भी बहुत खास है, बहुत स्पेशल है, क्योंकि देखिए इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच चालू है। और वही बात की जाए तो आज 1:30 पर यानी कि ODI का यानी कि फाइनल मैच आज होने वाला है, तो आप वो भी अटेंड कर सकते हैं। और साथ ही साथ आज का डे इसलिए भी स्पेशल है क्योंकि आज है बॉयफ्रेंड डे। जिन्होंने बॉयफ्रेंड बनाया ना भैया, उनके लिए डे है। वैसे लुका छुपी वाला जो प्यार होता है, घर में चोरी चोरी छुपके बात की जाती है, मैसेज की जाती है, घर पर नहीं बताया जाता है। और जब टाइम आता है, देखिए जो लॉयल होते हैं एक दूसरे को लेकर, बहुत सीरियस होते हैं, तो घर पर भी बताते हैं टाइम आने पर। लेकिन जो ये सिलसिला होता है ना, चोरी छुपके बात करना, कॉल ना उठाना, मतलब अब थोड़ा नखरे दिखाना, मतलब इस प्यार में ना एक अलग ही, मतलब यू नो कह सकते हैं कि लड़ाई नोकझोंक वाला प्यार होता है। सो बहुतों का प्यार सक्सेस हो जाता है, बहुतों का प्यार सक्सेस नहीं होता है। तो बस यही कहना चाहेंगे, देखिए अगर आप किसी से प्यार कर रहे हैं, प्यार करना गलत बात नहीं है, प्यार करना बहुत खूबसूरत चीज़ है। सो अगर आप किसी से प्यार करते हैं, किसी को पसंद करते हैं, तो मुझे लगता है कि अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। अगर जिस प्यार में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो समझिए उस प्यार में बहुत, उस लड़ाई बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि एक दूसरे को समझना बहुत ज़रूरी होता है। एक दूसरे को काम को समझना, जिम्मेदारी को समझना और उस सोच को फॉलो करना, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और मुझे लगता है कि प्यार करे तो दिल से करे, अदरवाइज ना करे, किसी के दिल के साथ मत खेले, वरना जब प्यार छोड़कर जाता है तो एक ही काम, एक ही गाना गाया जाता है, शीशा हो या पत्थर दिल टूट जाता है। बहुत से भैया गाने उस टाइम ऐसे हैं, शेड से ऐसे गाने सुनते हैं, पता नहीं क्यों। देखिए बस कहते हैं ना, जिंदगी में जो होगा देखा जाएगा। तो आपसे यही कहना चाहेंगे, जो बहुत से इंसान आपके लाइफ में आएंगे और जाएंगे, तो आपने अच्छे इंसान के साथ रहना है, अच्छे इंसान के साथ कनेक्ट रहना है। और फाइनली अब आप सभी के मैसेज शामिल कर, मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से इरशाद हुसैन अंसारी जी कनेक्ट होते हैं, सैयद शारिक अली जी, मेराज अंसारी, बाबू अंसारी, गुड मॉर्निंग रीना जी, कैसी हैं आप? बहुत अच्छे हैं जी, सैटरडे में मॉर्निंग मस्ती सुन रहे हैं, आपको सुनकर बहुत अच्छा लगता है, थैंक यू सो मच जी। और ये गाना सुनना चाहते हैं, सौदा खड़ा खड़ा, बिल्कुल जी ये गाना हम आपको डेफिनेटली सुनवाने वाले हैं रीना जी। जैसे कि आपने ये अपडेट दी है कि आनंद जी के पापा मिल गए हैं, तो बहुत अच्छा लगा ये सुनकर, बहुत खुशी हुई। हाँ जी, उनके पापा वापस घर आ चुके हैं नगीना, तो अब ये सारे जाएंगे नगीना मिलने के लिए, क्योंकि उनके पापा बुजुर्ग भी हैं और 60 की उनके 60+ एज हो चुकी हैं, और उनको सुन भी नहीं पा रहा था, मतलब उस ज़्यादा सुन नहीं पाते, लाउड बोलने पर सुनते हैं। तो अब देखिए हम जा रहे हैं बाहर, किसी को क्या पता कि मैं कितना लाउड से सुनता हूँ, कितना लाउड से नहीं सुनता हूँ। तो और वो बहुत दूर भी चले गए थे, तो अब फाइनली भगवान की कृपा है, धन्यवाद बोलना चाहिए उनको कि अब उनके पापा जी घर आ गए, उनकी भी फैमिली पूरी हो गई है अब। और अगले मैसेज की बात करूं तो ये हमारे साथ कनेक्ट होते हैं, गुड मॉर्निंग कॉफ़ी लीजिए कॉफ़ी लीजिए, क्या बात है विक्की सागर जी, बहुत ही शानदार वाला मैसेज कर दिया आपने। तो चलिए और आगे ये बोलते हैं कि रीना जी ये बात सुनकर बहुत खुशी हुई कि आनंद जी की फैमिली पूरी हो गई है, उनके पिताजी घर पर आ गए हैं जी, बिल्कुल।

0: और ये हरियाणवी ट्रैक सुनना चाहते हैं? बिल्कुल जी, हम आपको ये गाना जरूर सुनवाएंगे, हरियाणवी ट्रैक आपको सुनवाने वाले हैं। अगले मैसेज की बात करूं तो गुड मॉर्निंग रीना मैम, आपकी आवाज़ सुन रहे हैं, सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है और मैं प्रोग्राम बड़ा ही आप प्रोग्राम बहुत ही सुंदर से पेश कर रहे हैं, थैंक यू सो मच जी। और ये गाना सुनना चाहते हैं, मेरा मन डोले मेरा तन डोले। ओके जी, ये गाना हम आपको ज़रूर सुनवाएंगे। ये हमारे साथ कनेक्ट होते हैं सोनू कुमार जी, सेक्टर 10 बुद्धि बिहार से। फाइनली हम आपको गाना ज़रूर सुनवाएंगे, बस आर्जरीना के साथ कनेक्ट रहिए। जो भी आप गाना सुनना चाहते हैं, किसी का नाम मेंशन करना चाहते हैं या फिर घर में किसी का बर्थडे है तो भी आप हमें बता सकते हैं, क्योंकि रेडियो पर बर्थडे विश करना मतलब बहुत लकी की बात होती है। और जब मैं छोटी थी तब हम रेडियो सुनते थे, तो जब मेरा बर्थडे आता था तो मैं जानबूझकर मैसेज करती थी। ऐसे तो मैं कर नहीं पाती थी क्योंकि बहुत टफ होता है भैया, एक कॉल लग जाए तो ही बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं उस टाइम मैसेज बहुत करती थी, कम से कम 20-15 मैसेज कर देती थी कि आज मेरा बर्थडे है और मेरा बर्थडे रेडियो पर अब विश किया जाएगा। तो हर किसी की ख्वाहिश होती है, तो आप बिल्कुल हमें कोई टेंशन बिन टेंशन नहीं लेना है, आराम से मैसेज कर सकते हैं अगर आपका बर्थडे है तो। और जिनका जिनका आज बर्थडे है, वेरी वेरी विश यू हैप्पी बर्थडे। और आज का दिन यानी कि सैटरडे, और सैटरडे का दिन अपने आप में बहुत खास होता है क्योंकि बहुतों की ऑफिस होती हैं और बहुत इंजॉय करते हैं छुट्टी। हम आपके साथ इंजॉय कर रहे हैं शो को, तो चलिए फिलहाल कुछ कमर्शियल एड ब्रेक का टाइम हो गया है, उसके बाद हम कनेक्ट होते हैं। यानी कि समय की बात करूं तो 11 बज चुके हैं।
1: Hey, you're tuned into FM Moradabad 89.6 FM।
2: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
3: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
2: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
4: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
5: क्या आप एक ही जगह पर दुनिया की सैर और जबरदस्त रोमांच का मजा लेना चाहते हैं? तो चले आइए सात अजूबे पार्क। यहाँ शानदार अजूबों के दीदार के साथ आपको मिलेगा तीरंदाजी और मैकेनिकल बुल राइड जैसी एक्टिविटीज का फुल ऑन थ्रिल। तो पूरे परिवार के साथ आ जाइए सात अजूबे पार्क, न्यू मुरादाबाद

ओ भैया मन डोले टन डोले, बहुत ही बढ़िया गाना आपने एंजॉय किया है नागिन फिल्म से, जो कि 1954 की मूवी है। ओ माय गॉड। लता मंगेशकर जी की आवाज़ में आपने खूबसूरती गाना एंजॉय किया है। और अब भैया मैसेज की तरफ बढ़ते हैं कि समय की बात करूँ तो 11:09 हो चुके हैं और आप आरजे रीना के साथ कनेक्ट हैं, और आई होप कि आप मैच का भी आनंद ले रहे होंगे। और आज का दिन बहुत ही बहुत ही बहुत ही हैप्पी, बहुत ही खुशी वाला है, क्योंकि आप मैसेज भी देख सकते हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, मैं बोलना चाह रही हूँ कुछ और, बोल कुछ और दे रही हूँ, क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है ना आज, इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है कि मैं कुछ कह नहीं सकती, क्योंकि आनंद के पिता मिल जी मिल गए हैं। और मैसेज की बात करूँ तो गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? बहुत अच्छे हैं जी। हमको तुमसे प्यार है, टाइटल गाना सुनना चाहती हैं। बिल्कुल जी, हम आपको गाना सुनवाएंगे। कनेक्ट होती है नफरीज जी। अगले मैसेज की बात करूँ तो हेलो रीना मैम, गर्ज वाली मॉर्निंग है, वेरी गुड मॉर्निंग जी। जय भोलेनाथ की, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आप कैसी हैं? बहुत अच्छे हैं जी। आप बताइए, आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है, आपका बोलने का अंदाज भी बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच सर। और ये गाना सुनना चाहते हैं, हम तुम पर मरते हैं तुम हम पर मरते हो जी, बहुत ही शानदार गाना। अगले मैसेज की बात करूँ तो रीना जी, जय श्री राम, गौरव टेलर नवीन नगर मुरादाबाद से कनेक्ट होते हैं। क्या हाल है आपके? बहुत अच्छे हैं जी। रीना जी वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग जी। कार्यक्रम बहुत ही बिंदास पेश कर रही हैं आप, और जानकारी अभी बहुत अमेजिंग लेकर आती हैं। फिलहाल आज तो मैं कोई जानकारी लेकर नहीं आ रही हूँ, फिलहाल लेकर आऊँगी, क्योंकि मैं खुशी का लेवल है ना बहुत नेक्स्ट लेवल वाला।

गाना सुनना चाहते हैं पंछियों को देखकर जागे हम। ओके, ये वाला गाना हम आपको डेफिनेटली सुनवाएंगे। और इनका कहना है कि ये खुशी, मतलब ये

एक ही जगह पर दुनिया की सैर और जबरदस्त रोमांच का मजा लेना चाहते हैं तो चले आइए सात अजूबे पार्क। यहाँ शानदार अजूबों के दीदार के साथ आपको मिलेगा तीरंदाजी और मैकेनिकल बुल राइड जैसी एक्टिविटीज का फुल ऑन थ्रिल। तो पूरे परिवार के साथ आ जाइए सात अजूबे पार्क, न्यू मुरादाबाद।

शानदार वाला आपने गाना एंजॉय किया है। हम तुम पर मरते हैं, तुम हम पर मरते हो, कुछ गाने हैं यानी कि हीरो नंबर वन से आपने गाना एंजॉय किया है। 1997 में ये मूवी रिलीज हुई थी। और गाने की बात करूँ तो भैया गाने इतने लाजवाब है कि भाई कुछ कह ही नहीं सकते। विनोद राठौड़ जी की आवाज़ में, साधना सरगम जी की आवाज़ में ये अपने गाना एंजॉय किया है।

और अगले मैसेज की बात करूं तो फिलहाल फाइनली मैसेज पढ़ने से पहले मैं आप सभी को कह दूं कि 23 राज्यों में फिर से बताया जा रहा है कि मौसम करवट लेने वाली है, यानी कि मौसम फिर से अपना जलवा दिखाने वाला है, यानी कि बारिश आंधी तूफान की रफ्तार है वो बताई जा रही है कि अब 23 राज्यों में फिर से मौसम बदलने वाली है। और मैसेज की बात करूं तो जय श्री राम, गुड मॉर्निंग रीना जी, वेरी गुड मॉर्निंग सर, दुर्गेश सैनी कल्याणपुर मुरादाबाद से कनेक्ट होते हैं और ये गाना सुनना चाहते हैं। गाना सुनना चाहते हैं डेफिनेटली हम इस गाने को सुनवाएंगे। मॉर्निंग मसाला शो में आप कनेक्ट हैं और समय की बात करूं तो 11:25 हो गए। अगले मैसेज की बात करूं तो गुड मॉर्निंग ईदगाह मुरादाबाद से सफी अहमद अंसारी जी कनेक्ट होते हैं, इनके दोस्त है रईस दूला और ये गाना सुनना चाहते हैं। फिल्म का नाम है एक फूल के दो माली, ये पर्दा हटा दो हम प्यार करने वाले। कश्मीर से हमारे साथ कनेक्ट होते हैं मिराज उद्दीन जी और ये गाना सुनना चाहते हैं आंखों में नींद। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग जी, बहुत ही बिंदास है, थैंक यू सो मच सर, एंड आपकी आवाज भी बहुत अच्छी लगती है, शुक्रिया। अगले मैसेज की बात करूं तो जनकपुरी सहारनपुर से जोन रोजेस पलवली जी हमारे साथ कनेक्ट होते हैं और ये गाना सुनना चाहते हैं फ्रॉम मूवी नूरी, चोरी चोरी कोई आए चुपके चुपके। गाना हम आपको डेफिनेटली सुनवाने वाले सर, लेकिन उससे पहले एक और शानदार हमारे पास गाना है, सो कोई मिल गया मूवी से, यानी कि गौरव टेलर जी की रिक्वेस्ट पर ये गाना।

Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM. सिरदर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर, मुरादाबाद।

और आज बिहार में जीतिया महापर्व का व्रत है, और ये व्रत कहा जाता है कि बहुत कठिन व्रत होता है, यानी कि बच्चों के लिए व्रत रखा जाता है। पूरे दिन निर्जला निर्जला व्रत रखा जाता है, और ये अगले आई थिंक कि कल सुबह खाना पानी जो भी कुछ पी पाएंगे, अदरवाइज आज तो बिल्कुल भी कुछ खाना कुछ पीना, एक बूंद पानी भी नहीं पीते हैं। ये इतना कठिन व्रत होता है बच्चों के लिए, तो माताएं रखती हैं। और सच बताऊं तो मम्मी होती है ना, हमारी जो मम्मियाँ होती है, उनकी दुआ मिल जाए तो फिर पूरी कायनात बदल सकती हैं, और उनकी दुआ हमारे साथ हमेशा रहती है। तो आप सभी से बस यही कहना चाहूंगी कि जब भी आपके फैमिली में मम्मी पापा का कॉल आए, आप बाहर रहते हैं या फिर वो कुछ कहते हैं, तो उनकी बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि हम उनका कर्ज बिल्कुल नहीं चुका सकते हैं। और इनफैक्ट कर्ज चुकाने के लिए नहीं, उनको सम्मान दीजिए, उनको इज्जत दीजिए, उनके लिए यही सबसे बड़ी बात होती है। चलिए आप सभी के मैसेज की तरफ बढ़ते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग रीना जी, नमस्कार, हाउ आर यू? आई एम फाइन, आप बताइए कैसे हैं? थैंक्स गॉड, आज ये आनंद सर के पापा मिल गए, इसके लिए भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया। आनंद सर के पूरे परिवार साथ में रेडियो एफएम मुरादाबाद और सभी श्रोताओं और पूरी आरजे टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। यशपाल बिंदल यमुनानगर से कनेक्ट होते हैं, शुभकामनाएं देखते हैं, क्योंकि उनके पिताजी आज मिल गए हैं। और सर, आपने दोस्ती के लिए जो ये लिख के भेजा है ना, वो बहुत बारीक है, बहुत बहुत जिसको प्रॉब्लम हो रही है, सॉरी मैं इसको नहीं पढ़ पाऊंगी। अगले मैसेज की बात करूँ तो रीना जी, सुप्रभात, उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक होंगी। आज सुबह मॉर्निंग मसाला में सुनकर आपकी आवाज़ बहुत अच्छी लग रही है, एंड आनंद भाई जी के पिताजी मिल गए हैं, ये सुनकर बहुत अच्छा लगा, और बहुत दुआएं दे रहे हैं ये। रीना जी, इस अच्छी खबर के लिए हम आपने साझा किया, इसके लिए दिल से शुक्रिया। सर, ये तो बताना हमारा फर्ज है, क्योंकि काफ़ी 1 महीने से ज़्यादा हो गए और उनके पापा अब मिले हैं, और कल रविवार है, और उम्मीद करता हूँ कि कल का दिन जो सैटरडे है आपका अच्छा जाए। बिल्कुल जी, सही कहा, और इनका कहना है कि मौसम भी बदल रहा है, इसीलिए अपना जरा जरा ध्यान रखिए। जी बिल्कुल, आप सब भी अपना ध्यान रखिए। और इनका कहना है कि अब बस आपसे मुलाकात होगी सोमवार को आपके इवनिंग बस्ती शो में। अच्छा जी, आप हमारे शो में आने वाले हैं, चलिए जी आइए, बहुत मोस्ट वेलकम है कि आप हमारे शो में

साथ कनेक्ट होते हैं। अगले मैसेज की बात करूं तो गुड मॉर्निंग मैडम जी, खेमपाल सैनी कनेक्ट होते हैं हमारे साथ। आज पुराने गाने याद आई है मुझे। ओके, तो मन करा तो सुनने के लिए, बिल्कुल जी आप सुनिए। नफरत की दुनिया को छोड़ चले हम। ओके, मुझे लगता है कि नफरत नहीं करना चाहिए सर, सब कुछ ऑलवेज बहुत अच्छी होनी चाहिए। और एक वॉइस मैसेज भी आया हमारे पास, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है इसको कनेक्ट करने में, लेकिन उस गाने को सुनकर आते हैं, उसके बाद हम इनको

0: जिला रामपुर तेजस्वी मिलता खा से मोहम्मद रेहान बोल रहा हूँ। रीना जी प्यार भरा नमस्कार आदाब, कैसे हैं? फिल्म का नाम है दिलवाले, मौका मिलेगा हम बता दे, ये गाना प्ले कर दीजिएगा। क्या बात, हमारी हमारे व्हाट्सएप पर नंबर ध्यान नहीं दे रही हैं क्या? कहाँ क्या कर रही हैं आप?
1: अब जय जवाहर है।

है। रेडियो रुक रुक के चल रहा है। ओके, नेटवर्क इशू प्रॉब्लम हो गया होगा, जरा हम देखते हैं, थोड़ा रुक जाइए, बिंदास रहिए आप, अभी चेक आउट करते हैं।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
3: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
2: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहां पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
3: अरे नहीं,
4: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
3: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड कॉइन जीतने का मौका भी है।
2: अच्छा?
4: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता चैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।

0: आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहे गुनगुनाते रहे। कार्यक्रम है खेती किसानी।
1: आज हम कार्यक्रम में स्वागत करना चाहेंगे हमारे खास अतिथि डॉक्टर ए के सिंह, ये जंबल फर्टिलाइजर्स में वरिष्ठ प्रबंधक है। नमस्कार सर।
2: हाँ नमस्कार, और स्वागत के लिए आपका बहुत बहुत आभार दिव्या जी, और जो भी हमारे श्रोता सुन रहे हैं उनको नमस्कार।
1: सर हमारे साथ आज शामिल है कार्यक्रम में, और आज के कार्यक्रम का जो खास विषय है वो भी हम आपको बताते हैं। आज हम कार्यक्रम में जो खास बातें करने जा रहे हैं वो है खरीफ का समापन व रबी का आरंभ। स्कूल में बच्चों को जब पढ़ाया जाता है तो हम दो तरह के क्रॉप प्लांटेशन के बारे में पढ़ते हैं, एक रबी क्रॉप और एक खरीफ क्रॉप। बच्चों को पढ़ाते समय तो हमने भी कई बार रट्टा लगाया कि खरीफ क्रॉप क्या है, रबी क्रॉप क्या है, किन तरह की फसलों को हम लगाते हैं, और ये हमसे ज्यादा हमारे जो किसान भाई हैं वो बेहतर जानते होंगे। और आने वाले समय में ऐसे जितने भी हमारे सहयोगी हैं जो अब खेती किसानी की तरफ आगे बढ़ते जाएंगे या खेती किसानी बेहतर करना चाहेंगे, उनके लिए भी कुछ अहम जानकारी हो सकती है। तो हम कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे हमारे कार्यक्रम के से पहले कुछ अहम जानकारी के साथ। सर से बातचीत जब हो रही थी तो फिर सर ने हमें PMKSK योजना के बारे में बताया था, जो केंद्र सरकार और उर्वरक मंत्रालय की ओर से ये पॉलिसी चलाई जा रही है किसान भाई और किसान बहनों के बेहतर खेती किसानी प्रक्रिया के लिए। तो हम जानना चाहेंगे इस योजना के द्वारा किसानों को क्या लाभ मिलने वाला है, उसके बारे में कुछ जानना चाहेंगे।
2: जी हाँ बिल्कुल, मैं आपको उसके बारे में जानकारी देता हूँ। भारत सरकार और भारत सरकार के अंतर्गत ही जो उर्वरक का जो मंत्रालय है वो कार्य करता है। उर्वरक मंत्रालय हम ऐसे समझें कि जितने भी खेती में उर्वरक जो उपयोग में आते हैं उनकी जो दुकानें हैं उनसे संबंधित जो भी सारी क्रिया है, क्रियाएं से अर्थ ये है कि वहां पर खाद की पूरी जानकारी वहां की रखना, उनकी आवश्यकता क्या है, उनकी मांग क्या है, और कौन से सीजन में कौन सा उर्वरक उनको चाहिए, ये सारा काम जो उर्वरक मंत्रालय का है। अगर आपको ऐसे समझे PMKSK तो आपको लगेगा शॉर्ट फॉर्म में ये समझ में थोड़ा उतना ना आए, लेकिन मैं आपको संक्षेप में बताऊं कि जितनी भी खाद की दुकानें हैं जहां पर उर्वरक उपलब्ध होता है, उर्वरक मतलब हर तरह के खाद, जिनमें कि यूरिया है, DAP है, MOP है, NPK है, और भी अलग तरह के न्यूट्रिएंट हैं जो उपलब्ध होते हैं। इसके अलावा खेती से संबंधित जो और भी आधान है, जिनमें कि आपके खरपतवार नाशी हैं, कीटनाशी हैं, फफूंद नाशी हैं, और अन्य तरह के भी पोषक तत्व हैं जो उपलब्ध होते हैं, वो खाद की दुकानें कही जाती हैं। अब ये जो खाद की दुकानें हैं ये ऐसे ही नहीं खुल जाती, इसके लिए राज्य सरकार जो अपना एक लाइसेंस इश्यू करती है और उस लाइसेंस के आधार पर फिर उनको ये अनुमति होती है कि वो खाद उनके यहाँ सप्लाई होता है, वो उसका भंडारण करेंगे और वो उसका विक्रय करेंगे, वो एक तरह से ऑथराइज दुकानें होती हैं। ऐसा था पीछे वाले समय में कि इनमें जो लोग खाद के काम में थे या इच्छुक थे उन्होंने लाइसेंस लिए और वो इसका काम करने लगे, लेकिन लंबे समय से भारत सरकार और राज्य सरकार ने एक जो निर्णय लिया कि जितने भी उर्वरक की दुकानें या खेती के आदान की विक्रय के जो दुकानें हैं वहां पर हम ऐसे लोगों को रखें या ऐसे लोगों को ही लाइसेंस दें जो कि खेती बाड़ी के बारे में सलाह दे सकते हैं या उनको खेती के बारे में जानकारी है। मतलब आप ऐसे समझिए कि अगर कोई भी खेती का आदान इस्तेमाल होना है तो वो कैसे

0: इस्तेमाल होना है, कितनी मात्रा में इस्तेमाल होना है, कौन से समय में इस्तेमाल होना है, अगर जो किसान को वह जानकारी चाहिए तो वो उसको सही सलाह दे सके। तो एक तरह से ये मान के चले कि ये मतलब विक्रय केंद्र है और साथ के साथ सलाह केंद्र भी है। फिर भारत सरकार ने इसके ऊपर और विचार किया और उन्होंने कहा कि हम इसको एक अलग पहचान देते हैं, जो पीएम केएसके है, जो मतलब जो प्रधानमंत्री जो किसान सेवा केंद्र, ठीक है जी। तो उसका अर्थ अब ये है कि यहाँ पर जो जो भी खेती के आदान आपको उपलब्ध हो रहे हैं उनके बारे में पूरी जानकारी किसानों को देना अत्यंत आवश्यक है, और अगर उनकी कोई खेती बाड़ी से संबंधित समस्या भी है तो उसके समाधान के लिए भी उनकी ओर से प्रयास किया जाएगा। और प्रयास करने में ये शामिल है कि वहां पर कोई अगर वैज्ञानिक संस्था है, जैसे कि कोई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, कृषि विज्ञान केंद्र है, और एग्रीकल्चर के जो और अधिकारी हैं उनको भी वो उसमें शामिल करें, उनसे सलाह लें और फिर उसको वो जो किसानों तक पहुंचाए। तो खाद की विक्रय और खेती के आदान की जो सेल है उसके साथ साथ फार्मर्स को सही सलाह मिले, सही ढंग से वो इस्तेमाल करें। सही ढंग से इस्तेमाल ये है कि हम कभी भी कोई चीज जब लेके आते हैं तो अगर हमें मालूम नहीं है तो हम क्या करते हैं, किसी अड़ोस पड़ोस के किसान से पूछ लेंगे, अगर उन्होंने भी उसका सही ढंग से इस्तेमाल नहीं किया है तो वो आपको भी उतनी अच्छे से जानकारी नहीं दे पाएंगे। लेकिन हरेक उत्पाद का जो उपयोग है उसका समय, उसकी मात्रा फसल के अनुसार अलग अलग होती है, और उसको जब वैज्ञानिकों की ओर से पूरा अनुसंधान हो जाता है उसके बाद फिर उसकी रिकमेंडेशन आती है, सलाह आती है कि सपोज मान के चले कि धान की फसल है, धान की फसल में यूरिया का कब इस्तेमाल करना है, डीएपी का कब इस्तेमाल करना है, एनपीके का कब इस्तेमाल करना है और कितनी मात्रा में उसका इस्तेमाल करना है एक एकड़ में, तो वो सारी जानकारी होती है। लेकिन अगर हमें जानकारी ना हो तो हम क्या करेंगे, हम ले आएंगे और उसको ऐसे ही उसको इस्तेमाल कर लेंगे। उसकी मात्रा आपकी तरफ से ज्यादा भी हो सकती है और आपकी मात्रा कम हो सकती है, ज्यादा होगी तो आपका खर्चा हुआ लेकिन लाभ जो आपको होना था उतना ही होगा, तो जो आपने एक्स्ट्रा पैसा लगाया उसका कोई आपको लाभ नहीं मिला। और लाभ की वजह तो मैं ये ऐसा कहूंगा कि उससे जो कहीं ना कहीं नुकसान ही होता है, आर्थिक नुकसान हुआ और पर्यावरण को नुकसान होता है, और अगर आपने कम मात्रा में दिया तो उसका भी आपको लाभ उतना नहीं मिल पाएगा। उसके साथ साथ जो है मतलब कौन से समय पर इसका इस्तेमाल करना है ये पूरी जानकारी होना बहुत जरूरी है। अब आपने कहा कि चलो हमें एक बार यूरिया डालना है तो शुरू में ही सारा डाल दिया, ऐसा नहीं है, हर एक की क्रांतिक अवस्था होती है उसके हिसाब से। अब जैसे कि हम भी भोजन करते हैं, अगर हमें 24 घंटे में सिर्फ एक बार जो 24 घंटे का इकट्ठा भोजन हम अगर जो कहें कि आप ये खा लीजिए, हो सकता है आप जोर लगा के खा भी लें लेकिन वो आपके लिए सुपाच्य नहीं हो, सुपाच्य नहीं होगा, स्वास्थ्यवर्धक नहीं होगा। तो उसमें समय है अलग अलग, जैसे सुबह आपने थोड़ा सा नाश्ता लिया, फिर दोपहर में लिया, फिर संध्या को आपने कुछ जो खाया तो वो स्वास्थ्यवर्धक है, उसका पाचन भी अच्छे से होता है और कम मात्रा में आप उसका ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सकते हो। इसी तरह से खेती में इस्तेमाल होने वाले उर्वरक है, कीटनाशक है या खरपतवार नाशी है या अन्य पोषक तत्व है, उनकी मात्रा, उनका समय और उनके उपयोग का जो ढंग होना चाहिए उसके बारे में एक जो है आपके साइंटिस्ट की ओर से या जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की ओर से पूरी जानकारी होती है, तालिका होती है, तो वह तालिका है अब पीएम की एसके पर उपलब्ध है। अगर नहीं भी है, आपको लगता है कि वहां पर वो चीजें उपलब्ध नहीं है, तो आप उनसे कहिएगा कि आप ये हमें उपलब्ध कराएं।
1: इसी के साथ हम कार्यक्रम में अब शामिल करना चाहेंगे हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की एक खास मैसेज को, जो उन्होंने उर्वरक उपयोग सलाह के बारे में कुछ बातें उन्होंने हमारे साथ साझा की है। चलिए उसे सुनते हैं और फिर कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे हमारी आज के विषय पर चर्चा के साथ।
0: असल में जो भी हमारे उर्वरक है उनका सही इस्तेमाल हो वो इसलिए आवश्यक है क्योंकि ये रासायनिक उर्वरक है और इनका अगर हम अधिक मात्रा में अगर हमने इनका उपयोग किया तो वो वेस्ट भी हो जाते हैं क्योंकि जो फसल है वो उतना ही लेगी, उससे ज्यादा नहीं लेगी और उसमें खर्चा भी आपका ज्यादा होगा। दूसरा उसमें सबसे बड़ी जो खामी वो ये है, इससे हमारे जो खेत के अंदर जो हमारे मित्र जीव है या जो खेत के आसपास का पर्यावरण है जिससे कि हमारी खेती होती है उसको एक नुकसान पहुंचता है, तो ये नुकसान नहीं पहुंचे और हमारे जो खेती करने वाले लोग हैं उनको आर्थिक क्षति भी ना हो, उनका पैसा ज्यादा खर्च न हो, एक संतुलन में हम उर्वरकों का उपयोग करें। कभी कभी होता है देखी देखा हमके जैसे उन्होंने इतना खाद डाला है एक एकड़ में मैं भी इतना खाद डाल देता हूँ, या उसने ये वाला खाद लिया है तो मैं भी ये वाला खाद देता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। आप जो भी उर्वरक ले रहे हैं उसमें ये जरूर देखिए कि उसमें पोषक तत्व तो है कौन से और कितने हैं, आपको कौन सा पोषक तत्व तो चाहिए और कितनी मात्रा में चाहिए। जैसे कि हमें प्रोटीन चाहिए, प्रोटीन के लिए अगर हम शाकाहारी है तो हमें जो है मतलब उसके हिसाब से जो चुनना है भोजन के, जैसे दालें हैं, सोयाबीन है, ऐसी चीजें हमें जो मतलब चुननी है। अगर हम थोड़ा सा नॉन वेज खाते हैं तो हम अंडा भी खा सकते हैं,
2: जी हाँ
0: और चीजों का भी इस्तेमाल हमारी ओर से हो सकता है। तो ये हमें कोई भी चीज है उसके नाम से नहीं खरीद के, उसके अंदर जो उसके अंदर पोषक तत्व है और उसका जो लाभ हमें होने वाला है उसको देख के हम खरीदें, और उसकी कितनी मात्रा किस समय पर प्रयोग करनी है यह बहुत जरूरी है। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये अपने संबोधन में यही कहा है कि उर्वरकों का जो एक अंधाधुंध हम उपयोग कर रहे हैं उससे हम बचें,
2: जी
0: क्योंकि ये हमारे राष्ट्र के लिए हानिकारक है। आज जो खेती इस जो है एक तरह से सक्षम है, हमें इतने सालों से हम इसमें उगा रहे हैं, अपना पोषण कर रहे हैं, अगर हम इसी तरह से हमने ध्यान नहीं दिया तो इसका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। तो प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में यही कहा है, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि प्रधानमंत्री जी के संबोधन को आप सभी लोगों को अवश्य सुनाएं।
2: जी बिल्कुल।
3: मैं किसान भाई बहनों को भी कहूंगा कि आपको भी मेरी मदद करनी होगी, और वो मेरी मदद है इतना ही नहीं, मेरे किसान भाई बहन आपकी भी मदद है, और वो है ये धरती माता को बचाना। हम धरती माता को अगर नहीं बचाएंगे तो यूरिया की कितने ही थैले डाल दें, ये धरती माँ हमें कुछ नहीं देगी। और इसलिए जैसे शरीर में बीमारी हो जाए तो दवाई भी हिसाब से लेनी पड़ती है, दो गोली की जरूरत है चार गोली खा लें तो शरीर को फायदा नहीं नुकसान हो जाता है, वैसा ही ये धरती माँ को भी अगर हम जरूरत से ज्यादा, पड़ोस वाला ज्यादा बोरी डालता है इसलिए मैं भी बोरी डाल दूं, इस प्रकार से अगर करते रहेंगे तो ये धरती माँ हमसे रूठ जाएगी। यूरिया खिला खिला करके हमें धरती माता को मारने का कोई हक नहीं है, ये हमारी माँ है, हमें उस माँ को भी बचाना है।
1: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम खेती किसानी, और आज के कार्यक्रम का खास विषय है खरीफ का समापन और रबी का आरंभ। तो सर, हमने कार्यक्रम की शुरुआत में बच्चों के स्कूल बुक्स के
0: बिल्कुल
1: बारे में चर्चा की थी हमने, कि किस तरीके से बच्चों को पहले रट्टा लगाया जाता था क्रॉप रोटेशन, क्रॉप प्लांटेशन के बारे में,
0: जी
1: खरीफ
0: जी
1: रबी रबी फसलों के बारे में।
0: बिल्कुल
1: तो ये खरीफ फसल के समापन से हम क्या कहना चाह रहे हैं, और समापन
0: बिल्कुल
1: होता क्या है?
0: बिल्कुल। जैसे अभी जो सीजन चल रहा है हमारा वो खरीफ का चल रहा है।
1: जी
0: खरीफ मतलब ये है कि जो फसलें हमने जून जुलाई में लगाई थी
1: हाँ
0: वो हमारे पकाव की तरफ आ रही है धीरे धीरे, और वो सितंबर का आखिर हम मान लें या अक्टूबर में मान लें या ज्यादा ज्यादा नवंबर के पहले सप्ताह तक उनकी कटाई होती है।
1: जी
0: कटाई का मतलब ये है कि जो उनकी उपज है वो तैयार हो जाती है,
1: हाँ
0: अनाज पक जाता है, फिर हम उसकी कटाई करते हैं और फिर उसको अपने घर लाते हैं, फिर आगे उसके विक्रय का प्रबंध करते हैं या जो उपयोग के लिए उसको हम रखते हैं। अब उससे तात्पर्य यह है कि हमने 4.5 महीने बहुत मेहनत करी,
1: जी
0: सब कुछ किया, लेकिन इस वक्त पर जब हमें उपज लेके आनी है उस समय अगर हमारी सावधानी नहीं रही, उसका समापन अगर हमने अच्छे से नहीं किया, तो जो हमारा अहम उद्देश्य था वो हमारा उससे हम कहीं ना कहीं चूक जाएंगे।
1: जी
0: तो समापन का अर्थ से मेरा यही है कि हम सारी क्रियाओं को सोच समझकर और एक अच्छी प्लानिंग के साथ करें। प्लानिंग से अर्थ मेरा ये है कि हम ये देखें कि भाई इस समय पर हमारी फसल तैयार होगी तो इसको काटने के लिए मुझे क्या क्या संसाधन चाहिए। क्या
1: जी
0: क्या संसाधन से अर्थ ये है कि कटाई की व्यवस्था करनी है, लेबर चाहिए या कंबाइन से कराना है, ये भी कुछ है। फिर जब वो कटाई होगी तो वो आगे का अरेंजमेंट है, वो सारी चीज तो मतलब ये है कि फिर उसके विक्रय से संबंधित है कि अगर उसको बेचना है तो कैसे बेचना है, कहाँ बेचना है। तो
1: जी
0: ये सारी तैयारियां अगर हम एडवांस में करते हैं, जैसे कि हमें होता है ना कि हमारा बच्चे ने अब 8वीं कर ली,
1: हाँ
0: अब इसकी हाई स्कूल में एडमिशन होना है, इसका 9th में एडमिशन होना है। गांव में स्कूल हमारा 8वीं तक है, तो हम तैयारी करते हैं कौन से स्कूल में इसको भेजना है, कौन सा पास है, अगर दूर है तो वो यहाँ से रोज जाएगा, जाएगा तो कैसे जाएगा, या साइकिल लेनी पड़ेगी, या यहाँ से थोड़ी दूर पैदल जाएगा, वहां से उसको कोई सवारी मिल जाएगी, बस मिल जाएगी, तो ये सारी व्यवस्था हम करते हैं। अगर वो साइकिल से जाता है तो साइकिल हमारे पास है या खरीदनी है, या अगर वो किसी और साधन जाता है तो उसका किराया लगेगा, उसका कितना खर्चा होगा महीने का, सुबह जाएगा शाम तक रहेगा, क्या वो खाना लेके जाएगा, सुबह उसके लिए भोजन बना दिया जाएगा, इतने बजे लौट के आएगा, तो ये सारी व्यवस्था है। उस स्कूल की यूनिफॉर्म अलग है, उसकी व्यवस्था करनी है, तो ये सब तैयारियां हम एडवांस में सोच के रखते हैं। और अगर वो हमें चीजें चाहिए तो कहाँ कहाँ से मिलेंगी, क्या रेट होगा उसका, है ना, ये जो जो, जो तैयारियां है वो हर जीवन के हर जो मतलब पहलू के साथ है। तो एक जो समापन की तैयारी, समापन में ये है कि भाई अब जैसे ये 8वां कर लिया है तो अब ये 8वां इसका होने वाला है, कितने नंबर इसको चाहिए, कैसा क्या चाहिए
1: जी,
0: आगे के लिए इसने क्या सोचा है, तो ये समापन की होगी, फिर उसके बाद हम आगे आ गए।
1: सर जिस तरीके से हम रबी क्रॉप्स और खरीफ ये जो फसल है इन दोनों को जब हम देखते हैं तो हमें एक तो जिस तरीके के फसल उगाते हैं उसमें हमें फर्क देखने को मिलता है, उसके हिसाब से आप जिन तैयारियों के बारे में बात कर रहे हैं उन तैयारियों में भी फर्क होगा, तो क्या उस हिसाब से मिट्टी को तैयार करते हैं या फिर फसल हिसाब से बीज लेकर आते हैं या फिर मौसम का उसमें कोई असर देखने को मिलता है?
0: जैसे कि अभी जैसे खरीफ, तो खरीफ का तो समापन है
1: जी,
0: समापन से अर्थ ये है कि हमें उपज अपने घर लानी, तो इसमें तो कोई आगे के लिए हमें व्यवस्था नहीं करनी है, लेकिन जो अब तक हमने व्यवस्था करी थी उसका जो मतलब परिणाम है वो हमें लाना है। अब उसमें मेन चीज क्या है कि जैसे हमें कटाई करनी है तो कटाई के साधन हमारे पास है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने कटाई शुरू करी बीच तक हमारे साधन रहे उसके बाद फिर लेबर नहीं मिली या कंबाइन की व्यवस्था नहीं हो पाई, मतलब एक साथ हमारे काम होते चले जाए और एक बार में वो चीजें फ्लोलेसली जो मतलब जो निवट जाए, उसके लिए आपको लेगर को आगे से बोलना है, उसके लिए इक्विपमेंट आपको चाहिए, या कंबाइन को कहना है तो कंबाइन वाले को तय करने के लिए, क्योंकि उसके पास सभी लोग आ रहे होंगे तो उसको तय करने के लिए कुछ एडवांस देना है, कितना देना है, क्या रेट जो करना है, आपने अपनी तरफ से बोली डेट, वो कुछ और डेट आपको चाहता है देना, वो समायोजन करना पड़ेगा। फिर आप कटाई करके उपज लेके आ रहे हैं तो एक तरीका ये होता है कि वहां से आपने काटा और सीधा मंडी ले गए, तो साधारण है, आपने काटा ट्रॉली में डाला मंडी ले गए, मंडी में आपने उसको बेच दिया, मंडी में बेचना है तो उस समय पर ये भी ध्यान रखना है कि अगर मौसम सही है, खुला है, कोई दिक्कत नहीं, आप बेच के आ सकते हैं, एक दिन रुक भी सकते हैं, लेकिन अगर मौसम में उतार चढ़ाव है तो जो आप ट्रॉलियों से उससे लेके जा रहे हैं उसको त्रिपाल से ढक के ले जाना है,
1: कवर करके लेके जाना।
0: आप जब मंडी में लेके जा रहे हैं तो वहां कौन सी दुकान से आपका कॉन्टेक्ट है, आपको रेट का पता करना पड़ेगा कि भाई क्या क्या रेट चल रहे हैं, कैसे है, तो ये सारी तैयारियां, और फिर पूछते रहिए कि जैसे अभी कुछ फसलें होती है वो थोड़ी एडवांस में आ जाती है, उसका इस रेट में बिका, उसका इस रेट में किया, अभी रेट क्या चल रहे हैं, मंडी भाव क्या है, तो ये सारी चीजें समापन से पहले आपकी अगर तैयार होंगी तो आप बेहतर ढंग से चीजों को संभाल पाएंगे और ज्यादा फायदा ले पाएंगे। दूसरा, अगर आप घर लेके आ रहे हैं तो वहां आपकी भंडारण की व्यवस्था है, क्योंकि जो इस समय अनाज लेके आ रहे हैं उसमें नमी ज्यादा होती है, तो पहले तो उसको सुखाना है, सुखा के फिर भंडारण करना है, अगर नमी वाला ही आपने ज्यादा स्टोर कर दिया कहीं पे तो उसमें फफूंद लग सकती है, वो खराब हो सकता है अनाज, तो सुखाना फिर भंडारण करना, भंडारण की भी जो जो जो स्थान है वो साफ सुथरा हो, उसमें नमी नहीं हो, जिससे कि अगर हम कुछ लंबे समय के उसके लिए स्टोर भी करें तो वहां पे कीड़े न लगे, इंसेक्ट न लगे जो कि आपकी उपज को खराब कर सके, तो ये सारी तैयारियां जो है ये समापन की तैयारियां है। अब समापन में आपने सपोज आपने जो मतलब जो विक्रय कर रहे हो, विक्रय के बाद कितना आपके पास पैसा आने वाला है उसकी भी आपको अरेंजमेंट करनी है कि भाई ये मेरे पास इतना आया, इसमें से इतना मैं अगली फसल के लिए रख रहा हूँ, इतना मेरे और कुछ खर्चे हैं उसके लिए रख रहा हूँ, बाकी है मैं बैंक में रख सकता हूँ जिसका मुझे कुछ ब्याज मिल सकता है, कुछ आप और कुछ कर सकते हैं, FD कर सकते हैं, कुछ आपने हो सकता है कि कुछ उधार लिया हो उसका आपको आपको पेमेंट करना है, तो ये समापन से अर्थ ये है कि जो अब तक हमने प्रयास किए मेहनत की उसका जो परिणाम आने वाला है उसका हम ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सके। दूसरा, जब आपकी फसल की कटाई होती है तो फसल अवशेषों का सही प्रबंधन आपको करना है, हल से आपको खेत को तैयार कर देना है, तो ये सारी चीजें समापन से रिलेटेड है।
1: तो खरीफ फसल के समापन के समय आपने इतने जो तैयारियां है इसके बारे में बताया, तो ऐसे कौन से फसल है खरीफ सीजन में जो हम लगाते हैं और समापन के समय हमें अलग से उनके लिए स्पेसिफिकली कोई तैयारी करनी होगी?
0: अब जैसे कि अगर खरीफ में हम देखें तो धान है, मक्का है, बाजरा है, मूंगफली है, उड़द है, मूंग है, ये सारी फसलें हमारे करीब करीब क्षेत्र में होती है। हर एक की अलग अलग तैयारी होती है। जैसे कि अगर आपको धान काटना है उसका अलग तरह का उसका तरीका, उसका अलग तरह का बाजार है। मूंग काटनी है, उड़द काटनी है, उसका एक अलग तरीका है। उसको काटना है, उसका थ्रेसिंग करनी है तो हाथ से करी जाती है या उससे या बैल से करी जाती है, या कुछ ऐसे थ्रेसर आते हैं जो कि उसको दाना टूटता नहीं है। तो सबका, अब जैसे मूंगफली है, मूंगफली की खुदाई करनी है आपको, तो खोदना है, फिर उसको काटना है और फिर उसको सुखाना है। उसका जो है आपने कितनी मात्रा में लगाई है, बेचने के लिए लगाई है या खाने के लिए लगाई है, उसके हिसाब से आप तैयारी कर सकते हैं। थोड़ी लगाई है तो हो सकता है कोई कोई आसपास का ही थोड़ा थोड़ा करके ले जाए, तो वह आप व्यवस्था कर सकते हैं। मक्का है, मक्का का भुट्टा होता है, भुट्टा काट के आपको अलग करना है, उसकी एक अलग तरह से तैयारी, उसके जो फसल अवशेष है वो चारे के रूप में भी इस्तेमाल हो सकते होते हैं, और उसको उनको इकट्ठा भी किया जाता है, ठंड में चारे के रूप में काम आते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, अलग अलग फसल के हिसाब से अलग अलग होता है, लेकिन जो खेती करते हैं वो समझते हैं इसका इसका कैसे प्रबंधन करना है। लेकिन यही है कि मुख्य चीज जो है कि उससे जो आपको लाभ या आमदनी होनी चाहिए थी वो पूरी हो, उसका पूरा से।
1: खरीफ फसलों के बारे में आपने बहुत सी बातें हमें बताई, ये चलते चलते किस तरीके से खरीफ क्रॉप्स और जो हमारे खरीफ फसल है और रबी फसल जो है उनमें किस तरह के मुख्य आपको डिफरेंस देखने को मिलते हैं, क्योंकि फिर इनकी तैयारी में भी आपको।
0: जी, खरीफ फसल है वो आमतौर पे जून से लेकर या जुलाई का महीना ले लें उससे लेकर सितंबर या अक्टूबर के आखिर तक तैयार। रबी की जो फसलें हैं उनकी जो तैयारी है वो अक्टूबर के प्रथम सप्ताह से लेकर और फिर जो नवंबर तक उसकी बिजाई बिजाई के सारे काम हो जाते हैं। तो खरीफ हम ये कह दें कि जब जो समय होता है उस समय पर हम खरीफ करते हैं, और जब धीरे धीरे ठंड की ओर हम जा रहे होते हैं तो उसको हम रबी। शुरुआत में ठंड उठनी शुरू होती है, बीच में काफी होती है, फिर आखिर पका के
1: सभी फसलों की शुरुआत करके आरंभ होता है, तो उसका महत्व क्या क्या इम्पोर्टेंस है उसका?
0: हाँ, रबी फसलों जब आरंभ हम कर रहे हैं क्या महत्व है उसका या उसका क्या अर्थ है, रबी फसलों की तैयारी क्यों करें?
1: जी,
0: तैयारी नहीं होगी तो कुछ काम नहीं होगा, काम नहीं होगा तो उसका कोई पता हो जाएगा, खाद है, सारी चीजें समायोजित नहीं होंगी तो प्रॉपरली आपका आउटपुट नहीं दे पाएगी।
1: तो ये भी देखते हैं कि किस तरीके से जब हम खरीफ फसल लगा रहे हैं तो उसमें जिस तरीके की मिट्टी का हम उपयोग कर रहे हैं उसमें, और उसी खेत में जब हम रबी की फसलें लगा रहे हैं तो उस मिट्टी में कुछ फर्क आपको देखने को मिलता है?
0: हाँ, फर्क सिर्फ इतना है कि जो जो खरीफ तैयारी जो खरीफ फसल थी उसमें से जो पोषण ले लिया है, रबी की फसल अगर आप उसमें लगा रहे हैं तो उसमें आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि अब हमें क्या पोषण देना चाहिए।
1: जी, खरीफ फसलों के आरंभ की जब हम बातें करते हैं तो हम और किन किन तैयारियां या किन तरह के कार्यों पर हम?
0: हाँ, रबी की तैयारियों के बारे में अगर हम कहें तो सबसे पहली चीज आ जाती है बीज।
1: जी,
0: बीज में दो साधन है हमारे पास, एक तो हमारा अपना बीज जो हम ये कहें कि हम अपना बीज से ही फसल उगाएंगे, तो अगर वो बीज है तो बीज आपने संभाल के रखा होगा ऐसा लगता है, उसे आप लें और उसे धूप में सुखाए अगर नमी वगैरह है, और उसका बीज उपचार जरूर करें खुद लगाए, उससे बहुत सारे जो होने वाले रोग है उनको आप रोक सकते हैं। नंबर एक। नंबर दो, अगर बीज नहीं है या उनके अलावा कोई नया आप बीज जो कि अधिक उपज दे सकता है या ज्यादा अच्छा आया है तो उनके बारे में बाजार से जानकारी पता आप प्राप्त करें, और ऐसा नहीं है किसी एक ने कहा कि आप ये डाल लो ये बढ़िया नहीं, एक दो जगह से और चेक करें। आजकल तो प्रचार प्रसार है, मोबाइल फोन पे भी सुविधाएं होती हैं, बहुत सी कंपनियां भी अपना प्रचार करती हैं, सब अपनी अपनी बात कहते हैं, तो आप उनकी बात भी सुनिए, और अगर वह बीज एकदम नया आया है तो ज्यादा प्रयोग न करें, और अगर पहले से वो चल रहा है और उसके अच्छे परिणाम मिले तो कोई ना कोई आसपास में आपके उस बीज का प्रयोग किया होगा पिछले साल में, उसके अनुभव से आप जो जान सकते हैं कि वो कैसा रहा उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं, दुकान पर पूछ सकते हैं, आपको रेट भी देखने पड़ेंगे, तो सारी चीजों का तालमेल करके आप बीज को खरीदने की व्यवस्था आप करें, चाहे वो गेहूं का बीज हो, चाहे वो सरसों का बीज हो या जौ हो।

0: भी चीज हो, कोई भी जो रबी की फसल आप लेने जा सकते हैं, चना है, चना भी एक अच्छी फसल है रबी की, उसके बारे में तो बीज सही लें, रोग रहित बीज लें वो करें। दूसरा जो उर्वरकों की मांग है उसमें पूरी फसल के लिए उर्वरकों की मांग है उसके लिए प्रयास न करें, जो शुरुआत में हमें चाहिए
1: जी
0: वो उर्वरकों का प्रबंध के लिए आप जो प्रयास करें, जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटियां हैं, PMKSK है, सब जगह उर्वरक मिलते हैं, तो उसमें आप देख लें कि जो फसल लगाने जा रहे हैं उसमें क्या पोषण की हमें आवश्यकता है, उस पोषण के हिसाब से आप उर्वरक चुनें। आप ऐसा ना सोचेंगे मैं पहले ये डालता था तो ये मैंने चुन लिया, ऐसा नहीं है।
1: तो सही
0: वो
1: उर्वरक के लिए हम किसी सलाहकार से मिल सकते हैं?
0: सलाहकार से भी ले सकते हैं, जैसे कि मान के चलो कि आपको गेहूं में आपको 1 एकड़ में 20 किलो फास्फोरस डालना
1: जी
0: है नहीं, तो करीबन जो आपको जो मतलब पोटाश इस्तेमाल इतना ही करना है 20 किलो, और नाइट्रोजन आपको 20 किलो डालनी है, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। एक तो क्या है कि आप जैसे सिंगल सुपर फास्फेट ले सकते हैं, यूरिया ले सकते हैं और पोटाश मिला सकते हैं, दूसरा ऑप्शन है DAP ले सकते हैं और उसमें पोटाश मिला सकते हैं, तीसरा ऑप्शन है कि एक ही खाद में तीनों पोषक तत्व मिल जाएंगे,
1: अच्छा
0: जैसे कि उसमें नाइट्रोजन भी मिल जाएगी, फॉस्फोरस भी मिल जाएगी और पोटाश भी मिल जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि जहाँ तीनों मिल रहे हैं वो ज्यादा अच्छा चीज है, क्योंकि उसके हर दाने में जो मतलब पोषक तत्व की समान मात्रा है, अलग अलग अगर खाद से आप उर्वरक से जो अगर जो उसको देते हैं तो कोई उर्वरक कहीं पड़ा कोई कहीं पड़ा, तो एक जगह उसको पूरा नहीं मिलता है पौधे को, लेकिन अगर ये जो है NPK है इनमें पूरा एक जगह मिल जाता है, तो ये अच्छा परिणाम है। आप इस तरह से चुनाव कर सकते हैं। फिर जो फसल लगाने जा रहे हैं वहां सिंचाई की क्या व्यवस्था है वो आप देख सकते हैं, क्योंकि रबी फसलों में बारिश कम होती है, सिंचाई पर आधारित होना है, अगर
1: जी
0: पानी कम है तो उस हिसाब से फसल का चुनाव करें, पानी अगर पर्याप्त है तो उस हिसाब से फसल का चुनाव करें। तो ये कुछ रबी की तैयारियां हैं ये आपको करनी है, और अगर आप ऐसे करेंगे तो मैं आशा करता हूं कि आपको आप अच्छे से कर पाएंगे, और आपको कोई ये नहीं रहेगा कि यार ये मेरे से ठीक नहीं हुआ,
1: जी
0: मैं ऐसा कर सकता था, तो ये सब चीजें नहीं होंगी। दूसरा एक चीज और देखिए कि मार्केट रेट देखिए कि पिछले साल इन ये जो फसलें मैं लेने जा रहा हूँ इनका रेट क्या था, उससे आपको ये फायदा मिलेगा कि कौन सी फसल कितनी मात्रा में लगानी है। एक जैसी जब आप एक ही फसल लगा दिया उसके रेट गिर गए या उसमें सारी में कोई परेशानी आ गई तो
1: जी
0: सारा खत्म, तो आप थोड़ा थोड़ा लगाइए, थोड़ा थोड़ा लगाते तो किसी में कम किसी में ज्यादा ऊपर नीचे होता है, लेकिन आपका एक जो एवरेज आपको प्रॉफिट मिलना चाहिए था वो आपको मिल जाता है। तो इस तरह से फसलों का चुनाव करें, और दूसरा एक चीज और ध्यान रखें कि फसल चक्र जरूर अपना है, खेतों में अदल बदल के आप जो प्रयास करें उससे खेत की जो ताकत है वो पुष्ट होती है और फसलों में रोग बीमारियां कम आती है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं जो है अपनी ओर से कुछ बात रख रहा हूँ कि भाई रबी की जो फसल आप लगाना जा रहे हैं उसमें ये जरूर आप ध्यान रखें, और ये अगर आप ध्यान रखेंगे तो एक सार्थक उपज आपको मिलेगी, सार्थक खेती आपके यहाँ हो सकेगी। तो ये कुछ बातों थी।
1: खरीफ फसलों और रबी फसलों के समापन और आरंभ के से जुड़े आपने बहुत सी जानकारी दी सर। इसी के साथ में कार्यक्रम के समापन से पहले कुछ एक सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। कई बार हम जितनी जानकारी विशेषज्ञों से लेते हैं या फिर सलाहकारों से लेते हैं उसे इम्प्लीमेंटेशन तक का जो प्रोसीजर होता है उसके बीच में बहुत सी रुकावट आ जाती है, जिस कारण से हम जो सलाह हम लेते हैं हमें जितनी जानकारी होती है उसे हम ठीक से इम्प्लीमेंट कर नहीं पाते और उसका हमें सही
0: लाभ नहीं
1: लाभ
0: मिलता
1: नहीं मिल पाता है।
0: जी।
1: तो अगर हम ऐसी तैयारी नहीं करते तो खेतों में और हमारी फसलों में किस तरीके का दुष्प्रभाव देखने को मिलता है?
0: हाँ, अगर आप तैयारी नहीं करते तो आपके लिए ये है कि जैसे अगर आप बीज लेने जा रहे हैं और कोई बीज चाहिए था वो आपको नहीं मिला
1: जी
0: है ना, या कोई दूसरा बीज लेके आने पड़ा तो जो आप सोच रहे थे वैसा नहीं हुआ। खरीफ फसल का जो समापन है उसमें आप चाह रहे थे कि मैं बेच के आऊं मंडी में, लेकिन रेट अच्छे नहीं चले और आपने अगर स्टोरेज की कोई व्यवस्था नहीं करी तो ना आप जो मंडी ले पाए ना सही ढंग से उसका भंडारण कर पाए, तो नुकसान हो सकता है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, इनको आप अगर करते रहेंगे और इनमें थोड़े थोड़े प्रयोग करते रहेंगे तो आपको जो नुकसान होने की संभावनाएं हैं या आपको लगे कि भाई मेरे को ये ठीक नहीं हुआ वो थोड़ी कम हो जाएंगी, और धीरे धीरे अगर आप इनको अपनाते रहेंगे तो आपके पास एक अरेंजमेंट हो जाएगा। जैसे अगर सपोज भंडारण है, भंडारण का अगर आपने यहाँ पे कुछ व्यवस्था इस साल की है तो वो हमेशा के लिए होगी,
1: जी
0: वो ऐसा तो है नहीं साल खत्म हो जाएगा। सपोज कोई ज्यादा वैसा नहीं है, आपका आंगन है वहां, उसको ऊंचा कर सकते हैं टीन शेड लगा के, जिससे कि बारिश बारिश उसमें ना आए, वहां स्टोर कर सकते हैं, उसकी पुताई कर सकते हैं अच्छे से, जगह की जिससे कि चूल्हे से पुताई करते हैं ना, तो उससे क्या है कि बहुत सारे कीड़े वो आपस में अपने आप ही खत्म हो जाते
1: जी
0: हैं। तो ऐसा करके हम अपने संसाधनों को जो ठीक कर सकते हैं और लाभ ले सकते हैं।
1: इसी के साथ हम आज की कड़ी को यहीं समाप्त करना चाहेंगे। सर आपके साथ जुड़कर आपसे खेती किसानी से जुड़े हुए इतनी बातें करना बहुत ही ज्ञानवर्धक था, और मैं आशा करती हूँ कि हमारे जो किसान भाई हैं वो भी इससे बहुत से फायदे उठा पाएंगे।
0: हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद, और किसान भाई इसका लाभ लें ऐसी हम आशा करते हैं। और ये जो वार्ताएं हैं हम इसलिए करते हैं कि कोई ना कोई सार्थक परिणाम इसके हमारी
1: जी
0: खेती बाड़ी में आए।
1: आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती किसानी, आपकी बात हो रही थी दिव्या और चंबल फर्टिलाइजर्स के वरिष्ठ प्रबंधक डॉक्टर ए.के. सिंह सर के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के
0: आपका भी
1: लिए।
0: बहुत बहुत धन्यवाद दिव्या जी।
1: दिव्या को इजाजत।

0: डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग रीढ़ की हड्डी नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
1: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई और मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे रीना। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी समस्या की जो हमारे आसपास बहुत आम है लेकिन कई बार समय रहते पहचान नहीं हो पाती, गर्भ अवस्था के दौरान खून की कमी यानी अनीमिया। कई बार लोग सोचते हैं कि गर्भवती महिलाओं को कमजोरी, थकान या अचानक चक्कर आना तो सामान्य बात है, लेकिन क्या हमेशा ऐसा ही होता है? क्या इसके पीछे खून की कमी भी हो सकती है? अगर हाँ तो इसे कैसे पहचाना जाए, अब जांच करानी चाहिए, कब जांच करानी चाहिए और माँ और बच्चे दोनों को स्वस्थ रखने के लिए क्या करना चाहिए, इसी सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ हमारे अपने सेहतिया जी और टीकन देवी जी। सेहतिया जी, सबसे पहले तो यही बताइए कि आखिर ये है अनीमिया है क्या?
2: देखिए आरजी रीना, सरल भाषा में कहते हैं जब शरीर में खून की कमी हो जाती है या खून में हीमोग्लोबिन कम हो जाता है तो उसे अनीमिया कहा जाता है।
1: और गर्भवती महिलाओं में यह इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है?
2: क्योंकि गर्भावस्था के दौरान माँ के शरीर को अपने साथ साथ कई बच्चे की कई जरूरतों को भी पूरा करना होता है। ऐसे में आयरन और फोलिक और एसिड की जरूरत काफी बढ़ जाती है। अगर यही जरूरत पूरी ना हो तो खून की कमी हो सकती है।
1: तो क्या खून की कमी का असर केवल गर्भवती महिलाओं पर पड़ता है?
2: नहीं, बिल्कुल नहीं आर्जरीना, इसका असर गर्भवती महिलाओं और बच्चों दोनों पर पड़ सकता है। अगर समय पर पहचान और इलाज ना हो तो समय से पहले प्रसव, कम वजन का बच्चा और मां के स्वास्थ्य से जुड़ी कई परेशानियां बढ़ सकती हैं। इसीलिए जितनी जल्दी पहचानना होगा उतना ही बेहतर परिणाम मां और बच्चे दोनों के लिए होगा।
1: यानी गर्भवती महिलाओं का स्वास्थ्य सीधे बच्चे के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है?
2: बिल्कुल आर्जरीना, और इसी वजह से विशेषज्ञ अक्सर कहते हैं कि हम केवल बीमारी का इलाज नहीं करना चाहिए बल्कि कुपोषण और अनीमिया के दृष्टि चक्र भी तोड़ना है।
1: दृष्टि चक्र वह कैसे?
2: अगर कोई गर्भवती महिला खुद कुपोषित है और के शरीर में खून की कमी है तो उसका असर गर्भावस्था और बच्चे के स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है। बाद में बच्चे को पर्याप्त पोषण ना मिले तो वह कुपोषण और खून की कमी की समस्या से प्रभावित हो सकता है। इसी तरह कुपोषण और अनीमिया एक दुष्चक्र पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता आ रहा है, इसीलिए गर्भवती महिला का पोषण, जांच और समय पर इलाज बहुत ही जरूरी है।
1: दोस्तों, यह बात सचमुच सुनने वाली है, यानी आज माँ के स्वास्थ्य में किया गया निवेश आने वाले बच्चे के भविष्य को प्रभावित कर सकता है। सेहतिया जी, कई श्रोता सोच रहे होंगे कि खून की कमी के लक्षण क्या होते हैं?
2: देखिए आरजी रीना, अगर आयरन की कमी है, अगर गर्भवती महिला बहुत कमजोर महसूस करती है अपने आप को, अगर उसे चक्कर आते हैं, सांस फूलता है, दिल की धड़कन तेज होने लगती है या रोजमर्रा का काम भी भारी लगने लगे तो केवल थकान ही नहीं हो सकती, यह आयरन की कमी के लक्षण भी हो सकते हैं।
1: लेकिन कई बार तो लोग इन बातों को गर्भ अवस्था का सामान्य हिस्सा मानकर नजरअंदाज कर देते हैं
3: और यही सबसे बड़ी गलती है। हमारे गांव की सीमा की कहानी सुनिए। दूसरी बार गर्भवती थी, लगातार कमजोरी रहती थी। घर वाले कहते थे गर्भ में बच्चा है, थोड़ा बहुत तो होगा ही। लेकिन एक दिन आशा बहन उसे स्वास्थ्य केंद्र लेकर गई। वहां खून की जांच हुई, पता चला कि उसे एनीमिया है। अगर जांच नहीं होती तो शायद ये बात पता ही नहीं चलती।
1: फिर क्या सीमा ने इलाज शुरू कराया?
3: हाँ, उसने स्वास्थ्य कर्मी की सलाह मानी, नियमित जांच कराई और अपने खान पान पर भी पूरा ध्यान दिया। कुछ समय बाद उसकी स्थिति में सुधार आने लगा। यही वजह है कि समय पर पहचान बहुत जरूरी है।
1: यानी केवल लक्षण देखकर अनुमान लगाने के बजाय जांच करवाना जरूरी है।
3: बिल्कुल, और इलाज तब संभव होगा जब पूरा परिवार गर्भवती महिला के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देगा।
1: अब सबसे जरूरी सवाल, गर्भवती महिलाओं को जांच चेकअप कराना चाहिए।
2: गर्भ ठहरते ही स्वास्थ्य केंद्र में पंजीकरण कराना चाहिए, उसके बाद हर ANC संपर्क पर जांच करवानी चाहिए।
1: ANC यानी गर्भ अवस्था के दौरान होने वाली नियमित जांच।
2: बिल्कुल, और पूरी गर्भावस्था में कम से कम 4 ANC जांच करानी चाहिए।
1: और इन जांचों में क्या क्या देखा जाता है?
2: कई बातें देखी जाती हैं RJ, लेकिन खून की जांच बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इससे पता चलता है कि गर्भवती महिला में खून की कमी है या नहीं।
1: अगर जांच में खून की कमी मिलती है तो क्या हर स्थिति एक जैसी होती है?
2: नहीं, खून की कमी अलग अलग स्तर से हो सकती है। अगर हीमोग्लोबिन 10 से 10.9 ग्राम के बीच हो तो इसे हल्का अनीमिया कहा जाता है। 7 से 9.9 ग्राम के बीच हो तो मध्यम अनीमिया, और अगर 7 ग्राम से कम हो तो गंभीर अनीमिया।
1: यानी हर स्थिति में एक जैसा इलाज नहीं होता।
2: बिल्कुल सही कहा आपने।
1: अब बात करते हैं इलाज और बचाव की। अक्सर IFA और MMS का नाम सुनने को मिलता है, आखिर ये है क्या?
2: अर्जेरिना IFA यानी आयरन और फॉलिक एसिड की गोली, और MMS ऐसी पूरक गोलियां हैं जिनमें आयरन के साथ कई जरूरी विटामिन और खनिज भी होते हैं, जो गर्भवती महिलाओं और बच्चे के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण हैं।
1: यानी MMS सिर्फ आयरन नहीं बल्कि कई जरूरी पोषक तत्वों का समूह है।
2: बिल्कुल,
1: लेकिन क्या केवल गोलियां ही पर्याप्त हैं?
2: नहीं, पूरक गोलियां महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उनके साथ संतुलित और पौष्टिक भोजन भी उतना ही जरूरी है।
3: बिल्कुल सही, केवल गोलियां खाने से बात पूरी नहीं होती। घर का भोजन और पूरक आहार दोनों महत्वपूर्ण हैं।
1: किस तरह का भोजन करें?
3: घर में जो उपलब्ध हो उसमें पौष्टिकता पर ध्यान दें। खासतौर पर प्रोटीन युक्त भोजन बहुत महत्वपूर्ण है। दालें, चना, राजमा, दूध, दही, अंडा या स्थानीय रूप से उपलब्ध अन्य प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ शरीर को ताकत देने में मदद करते हैं।
1: यानी भोजन में केवल मात्रा नहीं गुणवत्ता भी जरूरी है।
3: बिल्कुल, गर्भवती महिला को पर्याप्त भोजन, पूरक आहार और प्रोटीन से भरपूर खाद्य पदार्थ मिलने चाहिए। परिवार को ये ध्यान रखना चाहिए कि उसे सबसे आखिर में नहीं बल्कि प्राथमिकता के साथ भोजन मिले।
1: सेहतिया जी, अब एक ऐसा शब्द जिसका नाम लोग आजकल ज्यादा सुन रहे हैं, IVFCM, यह क्या है?
2: सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि IVFCM हर गर्भवती महिलाओं के लिए नहीं होता।
1: अच्छा?
2: हाँ, इसका उपयोग उन गर्भवती महिलाओं में किया जा सकता है जिनमें जांच के बाद मध्यम या गंभीर आयरन की कमी से होने वाले अनीमिया पाया गया हो और डॉक्टर को लगे कि तेजी से सुधार की जरूरत है।
1: यानी पहले जांच, फिर डॉक्टर की सलाह।
2: बिल्कुल सही आर्जेरिना, और भी सरल भाषा में कहें तो यह आयरन शरीर में चढ़ाया जाता है। नसों के रास्ते ड्रिप लगाकर इसका इस्तेमाल उन स्थितियों में किया जा सकता है जहां जांच में आयरन की कमी होने वाले मध्यम या गंभीर अनीमिया पाया गया हो और डॉक्टर की तेज तथा निगरानी में इलाज जरूरी समझें।
1: तो लोग अपने मन में इसकी मांग नहीं कर सकते?
2: नहीं, कौन सा इलाज उचित है इसका निर्णय स्वास्थ्य केंद्र की सलाह और डॉक्टर की जांच पर आधारित होता है।
3: और एक बात याद रखिए, इलाज का सही रास्ता जांच, डॉक्टर की सलाह, नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र और जरूरत होने पर आगे की निगरानी।
1: दोस्तों, आज की चर्चा से एक बात साफ हो गई कि कमजोरी को सामान्य मानकर टालना सही नहीं है।
3: बिल्कुल, अगर घर में गर्भवती महिला है तो उसकी जांच समय पर करवाएं, उसे पौष्टिक भोजन दीजिए, पूरक आहार और IFA, MMS जैसी पूरक गोलियां नियमित लेने में मदद कीजिए और स्वास्थ्य केंद्र से जुड़े रहिए।
2: याद रखिए, जो गर्भवती महिलाएं गर्भ ठहरते ही पंजीकरण करवाती हैं, समय समय पर स्वास्थ्य केंद्र जाती हैं और पूरी गर्भावस्था में कम से कम 4 ANC की जांच कराती हैं, उनके स्वस्थ रहने और बच्चे के स्वस्थ पैदा होने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है।
1: बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। तो दोस्तों, आज का पहला कदम क्या हो? अगर घर में गर्भवती महिला है तो उससे पूछिए क्या उसका पंजीकरण हुआ है, क्या उसकी खून की जांच हुई है, क्या वह नियमित ANC जांच करवा रही है, क्या वह IFA या MMS जैसी पूरक गोलियां ले रही है, क्या उसे पर्याप्त पौष्टिक भोजन और प्रोटीन युक्त आहार मिल रहा है। याद रखिए, समय पर पहचान, अच्छा पोषक, पूरक और आहार, सही इलाज से माँ और बच्चे दोनों का स्वास्थ्य बेहतर बन बनाया जा सकता है। इसी संदेश के साथ हम लेते हैं आपसे विदा, फिर मिलेंगे सेहत सही लाभ कई के अगले अंक में, जहां हम बात करेंगे मध्यम और गंभीर अनीमिया तथा आईवी और एफसीएम की भूमिका पर। नमस्कार, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6।
2: मुरादाबाद 89.6, मेरा नाम आरजी आनंद है। प्रोग्राम सुन रहे हैं आप सेहत सही तो लाभ कहीं, और आज इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे गर्भ अवस्था में एनीमिया की पहचान, जांच, पोषण और आईएफए एमएमएस एवं समय पर जांच और इलाज। इसके विषय पर बात करने के लिए आज हम मौजूद हैं वुमेन हॉस्पिटल में, डिस्ट्रिक्ट वुमेन हॉस्पिटल फ्रॉम मुरादाबाद सिविल लाइन्स, जहां पर हमारे साथ आज हमारे बीच में मौजूद हैं डॉक्टर सोनम रस्तोगी जी, गायनेकोलॉजिस्ट, हमारे साथ इस स्टेशन में मौजूद रहेंगी। उनसे हम आज ढेर सारी बातचीत करेंगे। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ इस प्रोग्राम में। मैम थोड़ा सा मैं चाहूंगी परी आप भी हमारे लिसनर्स को अपने बारे में प्लीज बताएं।
4: नमस्कार, मैं डॉक्टर सोनम रस्तोगी जिला महिला अस्पताल में स्त्री व प्रसूति रोग विशेषज्ञ के रूप में कार्यरत हूँ।
2: ओके मैम, थैंक यू सो मच। तो मैम एक सेशन हम आपके साथ करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला मेरा क्वेश्चन होगा कि गर्भ अवस्था में अनीमिया के समय पर पहचान के लिए कौन कौन सी जांचें हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो हर बार वुमेन स्किप कर देती हैं, उनके विषय में थोड़ा सा आप बताइए।
4: गर्भावस्था में एनीमिया के लिए जो जांचें हैं, उसमें सबसे जरूरी जो जांच है वो हीमोग्लोबिन की जांच होती है।
2: ठीक है मैम।
4: जिसके लिए हम CBC कंप्लीट ब्लड काउंट कराते हैं।
2: ऑलराइट, ठीक है मैम, ओके। तो मतलब ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है जांच।
4: बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे ही पता चलता है कि आपके शरीर में खून सही मात्रा में है या नहीं।
2: ओके ठीक है। अच्छा मैम एक क्वेश्चन और रहेगा, किसी स्तर पर अगर हीमोग्लोबिन सामान्य, माध्यम और गंभीर एनीमिया माना जाता है क्या इसको?
4: बिल्कुल, हीमोग्लोबिन कम से कम 11 ग्राम होना चाहिए गर्भवती महिला के केस में, कम से कम।
2: ठीक है।
4: अगर वो 11 से कम है और 9 से ज्यादा है तो वो माइल्ड एनीमिया में आता है, मतलब हल्का एनीमिया।
2: ठीक है।
4: फिर अगर वो 9 ग्राम से कम और 7 ग्राम के बीच में है तो वो मॉडरेट एनीमिया में आता है, मतलब कि एनीमिया थोड़ा ज्यादा है।
2: ज्यादा है।
4: और अगर 7 ग्राम से भी कम है तो वो सीवियर एनीमिया में आता है। इसका मतलब कि ये जो स्टेज है ये जानलेवा भी हो सकती है।
2: ओके।
4: इनका ट्रीटमेंट तुरंत, सब लेवल्स का ट्रीटमेंट अलग अलग तरीके से होता है, और अगर 7 ग्राम से कम है तो जान का भी बहुत खतरा रहता है और तुरंत खून चढ़ाने की जरूरत भी पड़ सकती है।
2: ऑलराइट। अच्छा मैम क्या केवल आयरन की गोलियां ही पर्याप्त हैं, या इसके अलावा जो विशेष खान पान है, जो भोजन है, क्या उसमें भी कोई विशेष बदलाव जरूरी है?
4: भोजन तो सबसे जरूरी है, दवाइयां तो सबको नहीं मिल पाती है, सब लोग अस्पताल तक नहीं पहुंच पाते हैं। उन लोगों के लिए तो खान पान बहुत जरूरी है।
2: बिल्कुल।
4: जिन भी चीजों में आयरन की मात्रा है, जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, पालक हो गई, बीन्स हैं जितनी,
2: हाँ जी, ये दालें भी, आई थिंक
4: दालें, दालों में प्रोटीन्स होते हैं, वो बहुत जरूरी है।
2: बिल्कुल,
4: क्योंकि खून में आयरन भी होता है और ग्लोबुलिन भी होता है।
2: राइट।
4: हीम प्रोटीन होता है।
2: राइट।
4: तो प्रोटीन भी चाहिए हमको और आयरन भी चाहिए। उसको आयरन का एब्जॉर्प्शन बढ़ाने के लिए विटामिन सी जो नींबू संतरा इनमें होता है वो भी जरूरत है।
2: ओके, तो मतलब ये सारी चीजों को भी डाइट में मेंटेन करना है।
4: बिल्कुल करना,
2: सारे विटामिन्स,
4: और जितने सेब हैं,
2: हाँ जी, जो फ्रूट्स हैं,
4: ओके, फ्रूट्स हैं,
2: मौसमी फल को ज्यादा शामिल करें।
4: बिल्कुल सही,
2: बहुत ही अच्छा लगा मैम, थैंक यू मैम। एक क्वेश्चन और रहेगा, यदि गर्भवती महिलाएं समय पर एनीमिया का उपचार नहीं करा पाती हैं अनफॉर्चुनेटली, तो क्या माँ और बच्चे पर इसका दुष्परिणाम क्या हो सकता है?
4: बिल्कुल, गर्भावस्था के दौरान बच्चे का जो ग्रोथ है,
2: हाँ जी,
4: वो कम हो सकता है और बच्चा गर्भावस्था के दौरान खत्म भी हो सकता है अगर बहुत ज्यादा खून की कमी है तो।
2: ओके
4: ठीक है। फिर डिलीवरी के दौरान क्या दिक्कतें आती हैं? प्रसव के दौरान महिला को ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो सकती है।
2: ओके।
4: और क्योंकि जितने भी प्रसव होते हैं, चाहे हम नॉर्मल डिलीवरी से कराएं, चाहे हम सिजेरियन ऑपरेशन से कराएं, सब में खून बहता है, सब में शरीर का खून हीमोग्लोबिन कम हो जाता है।
2: कम हो जाता।
4: तो जो महिला के अंदर सही मात्रा में खून होगा उसकी डिलीवरी नॉर्मल तरीके से हो जाएगी। नॉर्मल मतलब कि उसकी डिलीवरी में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होने के चांसेस है। लेकिन जो महिला पहले से ही खून की कमी है, एक तो उसको खून भी ज्यादा होगा, दूसरा उसका खून डिलीवरी में निकल गया तो हार्ट पे और ज्यादा लोड पड़ेगा।
2: ओह माय गॉड।
4: इसलिए जान का खतरा बढ़ जाता है,
2: कॉम्प्लिकेटेड हो जाता
4: है, बहुत कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। और हमारे देश में तो जितनी भी मात्र की मोर्टैलिटी होती है, मरती हैं जितनी भी महिलाएं प्रसव में या प्रसव के दौरान या गर्भावस्था में, उसमें सबसे बड़ा कारण हमारे देश में आज भी कुपोषण है,
2: मुरादाबाद पे हमारे लिसनर्स के लिए गर्भावस्था के दौरान अनीमिया से बचाव के लिए आपका एक सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज जो आप यहाँ से रेडियो से हमारे डिलीवर करना चाहें।
4: बिल्कुल, मैं सब लोगों से ये बात कहना चाहूंगी कि घर में अपने खान पान का ध्यान रखें, गर्भावस्था शुरू होने से पहले ही, अगर बच्चा प्लान भी कर रहे हो उससे पहले ही अपनी हेल्थ को ठीक रखना है। फिर आप जब डॉक्टर से मिलें तो अपनी डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर आपको सारी जांचें करवाएंगे। अगर आप जल्दी चले जाते हैं, किसी डॉक्टर को जल्दी कंसल्ट करते हैं, तो हो सकता है कि सही स्टेज में आपके शरीर में क्या कमियां हैं वो पता लग सके और सही समय से उनका इलाज हो सके कि आपको एक हेल्दी बच्चा मिल पाए।
2: That's very nice, ma'am. Thank you so much. Lovely talking to you, ma'am.
4: Welcome.
2: हमारे साथ आने के लिए गाइज आप कहीं मत जाइए, आप सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
5: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
6: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।

0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
1: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
1: नमस्कार दोस्तों, सभी का बहुत बहुत स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और आज हम फिर लेकर आए हैं आपके लिए एक खूबसूरत सा कार्यक्रम जिसका आपको रहता है बेसब्री से इंतजार, सूरज बदलू। दोस्तों मैं हूं आपके साथ आपकी खुशी। और दोस्तों आज के हमारे कार्यक्रम सूरज बदलू में सवाल थोड़ा हटकर है, हम चीजों को इस्तेमाल करते हैं या चीजें हमें इस्तेमाल कर रही हैं। मोबाइल हमारे हाथ में है लेकिन कई बार हमारा हाथ हर थोड़ी देर में मोबाइल तक पहुंच जाता है। सोशल मीडिया हम चलाते हैं लेकिन कभी कभी वही तय करता है कि हमारा समय कहाँ जाएगा। तो जरा सोचिए, चीजें हमारी सुविधा के लिए बनी हैं या हम उनकी आदतों के हिसाब से जीने लगे हैं। क्यों भी ना, आजकल कितना लिस्ट हमारी चेंज आ गया है।
2: ये तो है यार, जब भी बैठी रहो तो फोन चाहिए, लेट हो तो फोन चाहिए, रात को 8 बजे भी 12 बजे भी आँख खुलती है तो फोन चाहिए, खाना का हो तो फोन चाहिए, शॉपिंग करना हो तो फोन चाहिए, खाना मंगाना हो तो फोन चाहिए, हर चीज तो फोन से ही होने लगा है आजकल। और हमारी जिंदगी का बहुत जरूरी हिस्सा बन चुका है। कॉल, पढ़ाई, काम, पेमेंट, जानकारी सब कुछ एक फोन में है। लेकिन सवाल है, क्या हम फोन का इस्तेमाल अपनी जरूरत के हिसाब से कर रहे हैं या फिर हर नोटिफिकेशन पर तुरंत स्क्रीन देखना हमारी आदत बन चुकी है। टेक्नोलॉजी अच्छी है, बस उसकी कमान हमारे हाथ में रहनी चाहिए।
1: हाँ, जैसे आप बात कर रहे हो कि नोटिफिकेशन, जैसे ही एक छोटा सा नोटिफिकेशन और हमारा ध्यान तुरंत काम से हट जाता है, चाहे हम स्टडी कर रहे हो या हम कोई भी काम कर रहे हो। किसी मैसेज की आवाज, सोशल मीडिया का अलर्ट या कोई नया अपडेट, हम तुरंत स्क्रीन देखने लगते हैं। कभी गौर किया है, हम सोचते हैं कि हम नोटिफिकेशन चेक कर रहे हैं लेकिन कई बार नोटिफिकेशन ही हमारा ध्यान कंट्रोल कर रहा होता है। इसीलिए आज से हर अलर्ट का जवाब तुरंत देना जरूरी नहीं है। सोशल मीडिया हमें दुनिया से जोड़ता है लेकिन कभी कभी खुद से दूर भी कर देता है। हम दूसरों की फोटो खींचते हैं, उनकी लाइफ देखते हैं और फिर अपनी जिंदगी से तुलना करने लगते हैं। याद है स्क्रीनिंग पर दिखाई देने वाली जिंदगी पूरी जिंदगी नहीं होती है। सोशल मीडिया को मनोरंजन और कनेक्शन के लिए इस्तेमाल कीजिए, अपनी खुशी का पैमाना मत बनाइए दोस्तों। क्योंकि मैंने देखा है कई बार सोशल मीडिया की जो रियल लाइफ होती है उससे लोग अपने रियल लाइफ से जज करने लगते हैं कि यार इसके पास सब कुछ है, मेरे पास ये नहीं है। तो एवरीवन, रियल लाइफ और रियल लाइफ दोनों में डिफरेंस है। आप किसी की लाइफ को देख कर ना अपनी लाइफ में जो भी चीजें हैं उनको कम मत समझिए। आपके पास जो है आप उसमें खुश रहिए।
2: अब बात कर लेते हैं, देखिए पहले शॉपिंग करना होता था तो हम पूरी फैमिली के साथ, मम्मी पापा के साथ मार्केट में जाते थे कि चलो शॉपिंग कर लेते हैं। लेकिन आजकल क्या हो गया है, देखिए फोन है हमारे पास, ऑनलाइन शॉपिंग ने खरीदारी को बहुत आसान बना दिया। लेकिन कभी कभी जरूरत और इच्छा के बीच का फर्क मिट जाता है। एक ऑफर दिखाई दिया, डिस्काउंट दिखा और हमने सोच लिया ये तो लेना ही है भैया, चाहे कुछ भी हो जाए क्योंकि हमें डिस्काउंट मिल रहा है। फिर सवाल उठता है, क्या हमने सच में उस चीज की जरूरत थी? अगली बार खरीदने से पहले बस एक सवाल पूछिए, क्या मुझे इसकी जरूरत है या सिर्फ इसे देखकर मन कर रहा और खरीद लिया। क्योंकि कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती है कि हम खरीदना नहीं चाहते, बस हमने देखा कि हाँ भैया ऑफर आ चुका है, डिस्काउंट मिल रहा है तो हम इसको खरीद लेते हैं। लेकिन जो आप चीजें खरीद रहे हैं उसको भी लाकर आप अपने घर में ऐसे ही रखेंगे, यानी कि टाइप पैसे का वेस्ट करा है आपने। क्योंकि जब वो चीज आपको नीड ही नहीं है उसकी तो लेना है भी नहीं चाहिए। जब आप उस चीज को नीड आए तब लीजिए, क्योंकि बाद में पछताना पड़ जाता है कि काश इसके बजाय हमने कुछ और ले लिया होता जो हमारे काम के होता। तो उसी लिए यूटिलाइज करिए, क्योंकि ये फोन है भैया, ये कभी आपको दूर नहीं रहने देगा। इंसान सांस लेना भूल सकता है लेकिन फोन नहीं भूल सकता है, आज के टाइम में ये हो गया है। अगर बात करें स्मार्ट वॉच, आज स्मार्ट वॉच हमें बताती है कि हमने कितने कदम चले, कितनी कैलोरी बर्न की और कितनी नींद ली। ये बहुत उपयोगी टेक्नोलॉजी है लेकिन असली सवाल है, क्या हम अपनी बॉडी की आवाज भी सुन रहे हैं? घड़ी आपको नंबर बता सकती है लेकिन थकान, खुशी और सुकून का एहसास आपको खुद समझना होगा। टेक्नोलॉजी मददगार हो सकती है मालिक नहीं, इसीलिए आप अपनी दिल की बात सुनिए, क्योंकि आप सिर्फ फोन पर स्मार्ट वॉच पर डिपेंड हो गए। तो इससे भी हटिए, इससे बाहर निकलिए, तब आपको एक्चुअल में जो रियल लाइफ होता है ना उसके बारे में पता चलेगा। क्योंकि पहले के टाइम भी पढ़े लिखे आगे बढ़े जॉब कर रहे हैं, उन्होंने सिर्फ बुक से ही पढ़ा है ना। घड़ी भी एक दीवार घड़ी होती थी, उसी से घड़ी टाइम देख लेते थे। लेकिन आज के टाइम में क्या है, एक तो पहली बात दिखावा हम इतना ज्यादा करते हैं कि किसी के पास बड़े फोन है, आईफोन है, स्मार्ट वॉच है, तो हमारे पास भी होना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात, पढ़ाई की फोकस करूं तो चैट जीपीटी फोन ले लेते हैं। जब हमें किसी चीज का आंसर नहीं मिलता है तो फोन से हम हर चीज देखने लग जाते हैं कि इसका आंसर हमें यहाँ से जल्दी मिल जाता है, लेकिन हम दिमाग लगाना भूल जाते हैं। लेकिन सोचिए, जितना आप स्मार्ट काम करेंगे ना, कभी कभी उस चीजें स्मार्ट नहीं होती है, क्योंकि दिमाग का किया हुआ काम हमेशा आपके लिए काम आता है। और आपको भी पता चलता है कि मैंने ये चीज मेहनत से करी है तो मेरे को प्रॉपर पता है कि इसका क्या करना है क्या नहीं करना है। और साथ ही साथ फोन चलाते समय स्क्रीनिंग टाइमिंग इतनी ज्यादा बढ़ जाती है ना कि कुछ नहीं कह सकते। कभी आपने फोन का स्क्रीन टाइम देखा? कई बार हम सोचते हैं कि बस एक मिनट फोन चलाया था, लेकिन पता नहीं चलता कि एक घंटा निकल गया। समय दिखाई नहीं देता लेकिन धीरे धीरे हमारे जिंदगी से निकल रहा है। तो आज एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कीजिए, अपना स्क्रीन टाइम देखिए और खुद से पूछिए, क्या मैं समय वहाँ दे रहा हूँ जहाँ मुझे समय देना चाहिए? नहीं, क्योंकि हम फोन एक्चुअल में उठाते हैं सिर्फ एक दो घंटे के लिए टाइम देखने के लिए, लेकिन सोचने लग जाते हैं कि चलो यार एक रील देख लेते हैं, किसी ने स्टोरी लगाया है वो देख लेते हैं, किसी का मैसेज आया है उसका रिप्लाई दे देते हैं। लेकिन इस चक्कर में कब हमारे दो तीन घंटे खत्म हो जाते हैं हमें भी नहीं पता चलता है। और आजकल के टाइम में स्क्रीनिंग टाइमिंग इतनी ज्यादा बढ़ गई है ना कि सर में दर्द, माइग्रेन, बच्चों की आंखों पर चश्मे चढ़ने लग गए हैं। जो छोटे छोटे बच्चे हैं, पहले के टाइम में आपने देखा होगा जो बहुत बुजुर्ग हो जाते थे, जो हमारे सीनियर सिटीजन है, तब उनको चश्मे चढ़ते थे। लेकिन आज की खाना पीना भी सही ही नहीं है और ऊपर से स्क्रीनिंग टाइमिंग हमने इतनी ज्यादा बढ़ा दी है कि चश्मे यानी कि छोटे छोटे बच्चों को भी चढ़ने लग गए हैं। तो बस यही सभी पेरेंट्स से, सभी से यही गुजारिश करना चाहेंगे कि खुद की भी स्क्रीनिंग टाइमिंग कम करिए और अपने जो बच्चे हैं उनको भी फोन ना दे। क्योंकि अगर आप फोन देते हैं और बच्चे का भी पूरा जिंदगी है और फोन देखते देखते उनकी आंखें डैमेज हो रही है, क्योंकि ये जो फोन है कह सकते हैं कि अच्छा भी है और ना अच्छा भी नहीं है। क्योंकि हमें जरूरत के लिए हम नहीं चलाते इसको, बेवजह भी हम फोन चलाते रहते हैं। थोड़ा कुछ काम किया फोन चला लेते हैं, खाना बनाते फोन चला लेते हैं, घूमने जा रहे हैं फोन चला लेते हैं, सड़क पर चलते चलते फोन चलाते हैं, गाड़ी चलाते चलाते फोन चलाते हैं, एक नोटिफिकेशन आया रिप्लाई हमें तुरंत देना है, ऐसा क्यों करना है मेरे को ये समझ नहीं आता है।
1: बात करते हैं अब एवरीवन सुविधाओं की। आज बहुत सी चीजें हमारी जिंदगी आसान बना रही हैं। खाना घर तक, सामान घर तक, रास्ता मोबाइल बताए, पैसे फोन से भेज दें, सुविधाएं अच्छी हैं। लेकिन हर काम के लिए टेक्नोलॉजी पर निर्भर होना हमें कितना आत्मनिर्भर रख रहा है। सुविधाओं का इस्तेमाल कीजिए लेकिन अपनी क्षमताओं को आराम की आदत मत बनने दीजिए। दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI कई काम आसान कर रहा है, लिखने से लेकर जानकारी पाने तक मदद मिल रही है। लेकिन एक बात जरूरी है, AI हमारे लिए सोचने में मदद कर सकता है, हमारी जगह सोचना नहीं चाहिए। टेक्नोलॉजी से मदद लीजिए लेकिन अपना दिमाग, अपनी समझ और अपनी क्रिएटिविटी हमेशा एक्टिव रखिए। एक्चुअली आप सोचेंगे कि AI कर देगा ना हमारा काम, क्यों इतने लोड लेना, क्यों इतना प्रेशर लेना, लेकिन मुझे ऐसा लगता है।

0: इतने बजे तक ये सीरियल आएगी और ये मूवी भी इतनी बजे तक ही आएगी। लेकिन अब क्या है, फोन है हमारे हाथ में तो वो नेक्स्ट एपिसोड आता रहता है आता रहता है, कब दो तीन घंटे खत्म हो जाते हैं पता नहीं चलता
1: पता नहीं चलता है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो आप,
0: जब टाइम देखते तो पता चलता है ओ टाइम ज्यादा ही निकल गया, ये काम करना था मेरे को। तो इस चीज को मुझे लगता है कि कम करना चाहिए, क्योंकि फोन अच्छी चीजों के लिए यूटिलाइज करिए ताकि आपका हर काम समय पर हो, फोकस भी आपके काम पर है और आपने सीरियल देखा वो एंटरटेनमेंट भी हो जाए। और साथ ही साथ ईयरफोन,
1: ये सबसे महत्वपूर्ण बात की आपने ईयरबड्स की, ईयरफोन की, क्योंकि मैं देखती हूँ ट्रैवल कर रहे हो या नॉर्मल घर में भी मैंने देखा है कि लोग ईयरफोन का इस्तेमाल करते हैं। रीना इसके बारे में आप जरा बताइएगा हमारे श्रोताओं को भी।
0: ईयरफोन ने सफर, पढ़ाई और म्यूजिक को आसान बना दिया है, लेकिन कभी कभी हम इतने समय तक ईयरफोन लगाए रहते हैं कि आसपास की आवाज ही सुनाई नहीं देती। कभी अपने आसपास की दुनिया को भी सुनिए, पक्षियों की आवाज, सड़क की हलचल, परिवार की बातें, हर समय कानों में कुछ बजाना जरूरी नहीं है। कभी कभी खामोशी भी सुनी, क्योंकि अक्सर देखा होगा आपने भी कि इनफेक्ट हर कोई लगाता है ईयरबड्स और ईयरबड्स लगा के ठीक है बात कर रहे हैं, कुछ पता नहीं चलता किसी।
1: मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं रीना जो पूरा दिन ईयरफोन लगा कर रखते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता सामने वाला क्या कह रहा है, कौन क्या बोल रहा है, वो सिर्फ अपनी दुनिया में ही मशरूफ रहते हैं। तो मैं कहती हूँ ईयरबड्स का आप इस्तेमाल कीजिए, लेकिन उसके साथ साथ आप बाहर पक्षियों की आवाज भी सुनिए, अपनी फैमिलीज की बातें सुनिए, उससे ना आपके कानों की जो सुनने की क्षमता है वो भी स्ट्रांग होगी। और अगर आप पूरे दिन ईयरबड्स लगाकर रखोगे, ईयरफोन लगाकर रखोगे, तो उससे सुनने की क्षमता भी आपकी कम हो जाएगी।
0: और हो रही है आजकल
1: कानों में कितनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही है आजकल के युवाओं की, साउंड करके सुनते हैं,
0: फुल साउंड में सुनते हैं, तो वो चीज नहीं होना चाहिए। और साउंड से मुझे याद आया, देखिए हम अपने साउंड आप सभी तक पहुंचाते हैं, लेकिन गानों के साउंड आप तक मुझे लगता है कि आप सभी तक पहुंचाना बहुत जरूरी है।
1: एक म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं एवरीवन, उसके बाद लौट कर आते हैं, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और अपने सफर को खूबसूरत बनाते रहिए।

0: और जो आपने गाना सुना है ना, सच बताओ बहुत ही शानदार है ना खुशी।
1: अरे वाह, गाना सुनकर तो हमारी दोपहर एकदम चमचमा गई है यार।
0: कैमरा भैया, अब इसको कैसे कोई भूल सकता है।
1: अरे ये तो सबसे जरूरी है। कहीं भी जाओ, ट्रैवल करो, घर पे रहो, कुकिंग करो, डांस करो,
0: फोटो खींचना तो बनता है।
1: अरे हर जगह सेल्फी के बिना, फोटो के बिना तो काम ही नहीं चलता। सबसे पहले हम कहीं भी जाते हैं ना, वेडिंग में या कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं भी हम अच्छी जगह जाते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं एवरीवन, फोटो खिंचवाते हैं। अरे यार एक फोटो खींच देना प्लीज, पहले मेरी फोटो खींच दे। अच्छा फोटो खींचने की बात क्या होता है, बोलते हैं कि मेरी फोटो तुरंत मुझे सेंड भी कर दे, स्टोरी जो लगानी होती है
0: उसका कान मतलब सर में दर्द होने लग जाता है इस बात
1: सामने
0: को
1: वाले पर्सन के मतलब दर्द होने लगता है सुनकर बार बार वही बात। हाँ। कि मेरी फोटो भेज दो, फोटो भेज दो।
0: इसलिए मैं अपने फोन में कभी किसी को फोटो नहीं खींचती हूँ।
1: लड़की का कैमरा, लेकिन फोन का कैमरा लड़की का बहुत ही यू नो एलिगेंट है, बहुत खूबसूरत है। अब फोटो ऐसी आती है कि हाय हर कोई फिदा हो जाए,
0: इसीलिए भाई मुझे पता है
1: इसीलिए फोटो नहीं खींचती है अपनी।
0: मैं खींच तो देती हूँ भैया, मेरा सर खा जाते हैं, मेरा फोन मैसेज आने लग जाते हैं, यार अभी तो फोन ही भेजा यार, स्टोरी लगाना मुझे यार, फोटो
1: लगते हैं ना रीना,
0: बहुत ज्यादा इरिटेटिंग लगता है मुझे तो सच बताऊं तो। लेकिन कैमरे से एक फायदा है, देखो हम इंसान के साथ काफी समय तक नहीं रह सकते हैं, लेकिन एक फोन, एक गैलरी, एक कैमरा ऐसा है कि आप इंसान के पास रहो मत रहो, लेकिन फोन आपके साथ है, पिक आपके साथ है, आप उस फोटो को देखकर महसूस कर सकते हो कि कल मैं
1: वो खूबसूरत पल हम कैप्चर कर लेते हैं।
0: हाँ, याद
1: अपने कैमरे में,
0: क्योंकि साथ होना हो लेकिन यादें जरूर साथ,
1: यादें हमारे साथ रहती हैं। तो इस क्या कहना चाहते हो आप, हमने इतनी सारी गपशप तो की है, आगे बोलो।
0: जब कोई खूबसूरत पल आता है तो सबसे पहले कैमरा निकलता है। फोटो लेना गलत नहीं है, यादें संभालना खूबसूरत है, लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि हम उस पल को जीने से ज्यादा रिकॉर्डिंग करने और फोटो खींचने में समय निकाल देते हैं। इसीलिए कुछ पल ऐसे जरूर अपने साथ रखिए, कैमरा नहीं सिर्फ आपका दिल का रिकॉर्डिंग होना चाहिए। क्योंकि जहाँ भी आप घूमने जाते हैं, पता है खुशी क्या होता है, हम घूमने चले जाते हैं नैनीताल, उत्तराखंड चले जाते हैं, मंसूरी चले जाते हैं,
1: कहीं भी ब्यूटीफुल प्लेस हम जाते हैं,
0: लेकिन वहाँ की हम जो खूबसूरती चीजें हैं ना उसको महसूस नहीं कर पाते हैं। आज के समय ये है, जबकि इनफैक्ट तुम्हें दूसरा बोलेगा यार वहाँ पे ये चीज भी है, तो नहीं यार मैंने तो नहीं देखा। अरे कहाँ से देखोगे,
1: फोन की दुनिया से आप बाहर
0: कैमरे में ही रहेगा, मेरा फोटो खींचो, यहाँ का फोटो खींचो, वहाँ का फोटो। देखिये फोटो ना गलत बात नहीं है, क्योंकि आप अपने साथ यादें लेकर आ रहे हैं, लेकिन उस यादों का, उस एहसास का क्या कि जहाँ पर आप घूमने जा रहे हैं उसकी खूबसूरती आप नहीं देख पा रहे हैं, उसको महसूस नहीं कर पा रहे हैं, पहाड़ों की वादियों को आप सुन नहीं पा रहे, तो किस लिए आप पैसे वेस्ट कर रहे हैं। मुझे लगता है कि कैमरे के साथ साथ नेचर के साथ भी अपने आप को इन्वॉल्व करिए, अपने दिल में उस चीज को, एहसास को भर कर लाइए कि कभी आपको फिर इन फ्यूचर मौका मिले वहां जाने के लिए ना, तो बस नाम सुनते ही आपको वो पूरी पल याद आ जाए, एहसास की यार कितना खूबसूरत है।
1: बिल्कुल सही कह रहे हो यार। अब बात करते हैं हम घड़ी की। हमारे पास घड़ी है, कैलेंडर है, रिमाइंडर है, अलार्म है, फिर भी कई बार हम कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है। होता है ना, वॉच हम हर कोई पहनता है। असल सवाल समय की कमी का नहीं है, समय के इस्तेमाल का है। दिन में 24 घंटे सबके पास हैं, फर्क सिर्फ इतना है कि हम उन्हें कैसे खर्च करते हैं। इसीलिए टाइम को सिर्फ देखिए मत, उसे सही जगह लगाइए, क्योंकि जो पल हमारे पास है ना वो दोबारा नहीं आता है, जो चला जाता है वो दोबारा वक्त नहीं आता है। जो आपके पास पल है उसे अच्छे से स्पेंड कीजिए, टाइम को बिताइए, यूटिलाइज कीजिए, क्योंकि मैं ये कहती हूँ एवरीवन, अपने हर पल को ना ऐसे जीना चाहिए जैसे जिंदगी का आखिरी पल हो। जियो तो हर पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। तो हर पल को ऐसे जीना चाहिए। और आपको सुनवा देंगे ये प्यारा सा गाना, भी हम सुनवाएंगे, टेंशन मत लो आप। लेकिन अभी बात कर लेते हैं हम गेमिंग की, है ना। अब देखो आप भी देख रहे हो सोशल मीडिया पर बच्चे कितने गेम्स में बिजी रहते हैं, अपने पेरेंट्स की बात नहीं मानते हैं।
0: अरे उनको लत लग जाती है ना, तो उनसे फोन छुटवाना बड़ा मुश्किल हो जाता है,
1: मुश्किल हो जाता है।
0: छोटे छोटे बच्चे भी डिप्रेस हो जा रहे हैं, तबीयत खराब हो जा रही है, चिड़चिड़ापन आ जाता है उनके अंदर। क्यों? क्योंकि पहले तो हमने फोन का आदत डाला, फिर उनसे फोन छीन रहे हैं, तो वो चीज कहीं कहीं आप उनके दिमाग पर हार्म हो रहा है कि आप एक उस चीज को हैबिट डालते हो, फिर इस हैबिट को हटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप स्टार्टिंग से ही बच्चों को फोन ना दे, गेम की लत तो बिल्कुल ना लगने दे। पहले के टाइम में हम क्या कबड्डी खेलते थे,
1: बाहर की एक्टिविटी, आप इंडोर आउटडोर उनको गेम्स कराइए, खिलाइए, जितना वो प्रकृति के साथ जुड़ेंगे, नेचर के साथ जुड़ेंगे, इतना उनका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा।
0: अब क्यों कहते हैं कि पहले का खेल खेल नहीं रहा, क्योंकि फोन में खेलने लग जाते तो पहले का खेल कौन खेलेगा।
1: देखो मैं वही बात कर रही थी ना कि गेम खेलना मनोरंजन हो सकता है, लेकिन जब गेम का समय हमारे दिन का बड़ा हिस्सा तय करने लगे ना, तब रुक कर सोचना जरूरी है। गेम में लेवल बढ़ना अच्छा लगता है, लेकिन असली जिंदगी में भी अपने लेवल बढ़ाइए, नई स्किल्स सीखिए, एक्सरसाइज कीजिए, परिवार के साथ समय बिताइए। गेम्स में जीत अच्छी है, लेकिन जिंदगी में आगे बढ़ना भी जरूरी है। क्यों ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को ना आप आउटडोर गेम्स में एक्टिविटीज में ज्यादा यू नो पार्टिसिपेट कराइए। जितना बच्चे बाहर एक्टिव रहेंगे उतने ज्यादा वो फिट एंड फाइन भी रहेंगे, और आप भी उनके साथ वक्त बिताएंगे, बच्चे भी आपके साथ समय बिताएंगे, तो कितना अच्छा लगेगा ना वो टाइम।
0: बिल्कुल, और पहले के जो खेल थे भैया, खेल नहीं थे वो हमारी उससे एक्टिविटी हो जाती थी, पूरी बॉडी की एक्टिविटी होती थी।
1: अच्छा मुझे आप बताओ, हमने अभी गेम्स की बातें की हैं, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ रीना, आपने बचपन में कौन कौन सी गेम खेले हैं?
0: मैंने कंचे भी खेले हैं।
1: हाँ ठीक है।
0: कबड्डी भी खेली हूँ मैं।
1: ओके।
0: बैडमिंटन खेलती थी मैं बहुत ज्यादा।
1: हाँ।
0: और वो जमीन के ऊपर निशान खींच के डिब्बे बना के खेलते थे ना।
1: हाँ हाँ, आई रिमेम्बर, मैंने भी खेला है वो। हाँ। गेम।
0: और पत्थर होते हैं उसे उछाल के भी खेला है, उसको खेल को मेरे को याद नहीं है क्या बोलते हैं।
1: हाँ वो मुझे भी याद नहीं आ रहा यार। और हमने लुका छुपी भी खेला। हाँ, है
0: हम बहुत से पत्थर कंकड़ इकट्ठा कर लेते थे,
1: हम सुंदर सुंदर वो जो पत्थर होते हैं छोटे छोटे से। हाँ। कंकड़ हम उनको उठाकर इकट्ठा करके हम फिर सब लड़कियां मिलकर खेलते थे। हाँ। लूडो हुआ, और उसके अलावा
0: गिल्ली डंडा हुआ।
1: हाँ एक गेम और था यार, वो पता है कौन सा, स्टैचू वाला ना।
0: और पिट्ठू भी बहुत खेलते थे हम।
1: पिट्ठू कौन सा वाला?
0: पिट्ठू इन द सेंस होता है कि आपके पास बहुत सारे बड़े बड़े पत्थर है।
1: हाँ।
0: उसको एक दूसरे के ऊपर रखना होता है,
1: उसको पार करना होता था।
0: नहीं, मान ले तुमने, हमारे पास 5 पत्थर है,
1: ठीक है,
0: तो हमने एक ऊपर रख दिया,
1: ठीक है,
0: और कोई कपड़े का गोल गोल बनाता। हाँ। था बॉल,
1: ठीक है,
0: और फिर उस ईंट को ना हमें उसको मारना होता था,
1: वो कपड़े को हमें ईंट पर मारना होता था, अगर वो गिर गया तो।
0: टीम होती थी हमारी,
1: ठीक है,
0: एक टीम में तुम्हारे पास 5 टीम है, मेरे पास 5 टीम,
1: ठीक है, 5-5
0: तो जैसे मैं फेंक रही हूँ ना।
1: हाँ।
0: जो मेरी टीम होगी।
1: हाँ।
0: फिर उसको जल्दी से ठीक भी करेगी।
1: अच्छा जैसे हमने गिरा दिया
0: उसको? आउट हो जाएंगे, किसी ने अगर उस कपड़े को तुम्हें मार दिया ना।
1: हाँ।
0: तो आप आउट हो।
1: ओके,
0: उसको पिट्ठू गेम बोलते।
1: अच्छा ये वाला गेम हमने नहीं खेला, चलो आज हम खेल के देखते हैं।
0: हाँ।
1: ठीक है।
0: हम ना मतलब जब भी स्कूल से आते थे ना, हम अपने चौक में बहुत खेलते थे।
1: अरे वाह,
0: पिट्ठू तो बहुत ज्यादा हमने खेला।
1: और पहले ना आंगन भी बड़े बड़े हुआ करते थे, तो आंगन में गेम खेलते थे,
0: घर ही छोटे,
1: अब तो घर भी छोटे छोटे हो गए हैं, है ना। लेकिन
0: घर पे ही हम कबड्डी खेलते थे, हम चारों पांचों बहन।
1: खो खो भी तो खेलते थे।
0: हाँ,
1: हम लोग
0: खो खो
1: वो कितना हमने खेला है,
0: बहुत। मैं तो इस दिन नेशनल तक खेली हूँ मैं।
1: वाओ क्या बात है, कांग्रेचुलेशन डियर।
0: थैंक यू सो मच।
1: तभी ये इतनी स्ट्रांग है, मैं भी तो सोचूं भाई इसका हाथ जो है ना इतना स्ट्रांग है, अगर एक किसी को लगा दिया ना इसने तो बंदा गिर जाना है।
0: नहीं नहीं यार, मैं पहले ना एक्टिविटी बहुत ज्यादा करती थी, मैं पेड़ पे भी चढ़ जाती थी, अभी भी मैं चढ़ सकती हूँ पेड़ पर। पर अब मुझे डर लगता है।
1: अच्छा
0: पहले मैं साइकिल भी बहुत चलाती थी, साइकिल से मेरी हाइट बढ़ी
1: तो
0: है।
1: मैंने भी बहुत चलाई है,
0: मेरी हाइट उसी से बढ़ी है
1: साइकिल चलाने से। ओके पता है साइकिल मैंने भी चलाई है, लेकिन पहले तो मैं एक बारी बहुत तेज गिरी थी, मेरे बिग ब्रदर मेरे को साइकिल चलाना सिखा रहे थे, तो मैंने कहा पीछे से पकड़ के रखना और मैं चला रही हूँ, उन्होंने कहा ठीक है मैंने पकड़ा हुआ है, और उन्होंने छोड़ दिया, मुझे पता नहीं चला, और जैसे मैंने पीछे मुड़कर देखा तभी मैं आगे गिर गई, और इतनी चोट लगी मेरे को, वो निशान आज भी है, लेकिन फिर मैंने साइकिल चलाना सीख लिया था।
0: और हमने पता क्या होता, जब मैंने पहली बार साइकिल सीखा था ना, तो मैं मतलब चला रही थी तो मेरे को आ नहीं पा रहा था, और जब मैं सो रही थी सपने में देखा मैं पहाड़ों पे से भी साइकिल चला रही हूँ, इधर से भी चला रही हूँ साइकिल, मैं क्या रात को मैं कैसे सपने में चला सकती हूँ। फिर मैंने उसी दिन अगले दिन साइकिल चलाया मैंने, और पहले के टाइम में तो जो मतलब बाउंड्री जो होती थी वो लकड़ी से भी कर देते,
1: लकड़ी से भी किया,
0: तो मेरे पापा ने मतलब ज्यादा टाइम नहीं हुआ था उसको बनाए हुए।
1: अच्छा तुमने पार कर दिया?
0: मेरे पापा
1: बनाई थी दीवारें,
0: अभी परसों ही बनाई थी मैंने इसको, तूने आज ही तोड़ दिया इसको।
1: आपकी बेटी ने रिकॉर्ड हासिल किया है।
0: हाँ,
1: साइकिल।
0: और सच बताऊँ मेरा पैर बहुत ज्यादा दूर तक चिर गया था, मतलब ब्लड बहुत निकला था, लेकिन मैं सीख गई थी एक दिन के अंदर ही साइकिल।
1: भैया
0: गिरी थी, तोड़ा भी था मैंने, तोड़ फोड़ भी करी, लेकिन सीख गई।
1: कहते हैं ना डर के आगे
0: जीत है, और हम जीत गए थे।
1: और हम जीत गए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती। तो अगर आप भी जीवन में कुछ करना चाहते हैं ना एवरीवन, तो देखिए कहीं ऐसे भी मोमेंट आएंगे, डाउनफॉल आएंगे, जहाँ पर आप सोचेंगे कि नहीं अब नहीं हो पाएगा, आप डिमोटिवेट भी होंगे, लेकिन वही जो एक ऑप्शन है वहीं पर आपको मोटिवेट होना है और आगे बढ़ना है।
0: आगे बढ़ने से पहले गाइज हम आपको पहले गाना सुनवा देते हैं, क्योंकि हमारी बातें ना कभी खत्म नहीं होती है। आई नो कि आपको भी मजा आ रहा होगा सुनकर, क्योंकि जब हमने इतनी सारी गेम्स के बारे में बात कर दी, खेल के बारे में बात कर दी, तो आप भी कनेक्ट कर पा रहे होंगे ना कहीं कि हम भी यार बचपन में ऐसे खेलते थे। लेकिन अब वो खेल खेल रहा नहीं।
1: और पानी बर्फ खेला है तुमने?
0: नहीं, नाव तो चलाया मैंने पानी में।
1: पानी में नाव कागज वाली?
0: हाँ,
1: वो तो मैंने भी चलाई है कागज वाली, बारिश में ना।
0: हाँ, बहुत चलाते
1: अब हम उसको ना, जब वो चलती नहीं थी ना तो हम उसको आगे लेके
0: पानी मारते थे।
1: चल चल,
0: डूब जाती थी वो,
1: डूब जाती थी। और पता है तुमने स्कूल में वो भी बनाए पेपर से जो हम बनाते थे?
0: हाँ, वो एरोप्लेन।
1: एरोप्लेन
0: हाँ मैंने बनाई है, अभी भी आती है मेरे को।
1: और मैंने कागज का पंखा भी बनाते थे हम लोग। हाँ, करके फोल्ड करके। बहुत सारी चीजें हम लोगों ने की है यार, वो गोल्डन बचपन। चोर सिपाही खेला है मैंने।
0: हम अभी भी अंतराक्षी भी खेलते थे जब फ्री टाइम लंच का टाइम होता था, तो जब देखते थे कि बहुत ज्यादा गर्मी है जून का समय, हम अंतराक्षी खेलते थे बैठ के। कंचे वाली गेम खेलते थे।
1: बहुत सारी हमने एक्टिविटीज की है।
0: चलिए श्रोताओं, अभी हम म्यूजिकल ब्रेक ले लेते हैं, क्योंकि हमारी बातें कभी खत्म नहीं होने वाली भैया।

0: अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों इंटरनेट की। देखिए इंटरनेट हमारे पास जानकारी का पूरा संसार लेकर आया है, लेकिन हर जानकारी सही है हो ये जरूरी नहीं है। इसीलिए सिर्फ पढ़ लेना काफी नहीं, वेरीफाई करना भी जरूरी है। सोशल मीडिया पर कुछ वायरल हो रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि वो सच ही है। टेक्नोलॉजी का समझदार इस्तेमाल यही है, जानकारियाँ ले लेकिन अपनी समझ से।
1: पासवर्ड और डिजिटल जिंदगी, आज हमारी जिंदगी का बहुत सा हिस्सा डिजिटल हो चुका है। फोटो, बैंकिंग, बातचीत, डॉक्यूमेंट, सब कुछ। इसीलिए डिजिटल दुनिया में सावधानी भी उतनी ही जरूरी है। मजबूत पासवर्ड रखें, अनजान लिंक पर क्लिक ना करें और अपने जिंदगी और अपनी निजी जानकारी सोच समझकर किसी के साथ शेयर करें। स्मार्ट डिवाइस के साथ स्मार्ट यूजर बनना भी जरूरी है। और अभी हम बात करते हैं एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, रिमोट और चॉइस। कभी गौर किया है कि हमारे हाथ में टीवी का रिमोट होता है और हम चैनल बदल देते हैं, एक दो तीन फिर वापस पहला वही, कितने भी चैनल बदल लो लेकिन पहले वाले में ही मजा आता है। कभी कभी जिंदगी में भी हम ऐसा ही करते हैं, हर चीज थोड़ा थोड़ा, लेकिन किसी का पूरा ध्यान नहीं रहता। क्योंकि हम कोई भी काम करते हैं, इस चीज को थोड़ी देर के लिए सीरियस लेते हैं, उस चीज को थोड़ी देर के लिए सीरियस लेते हैं, पढ़ाई भी करते हैं तो थोड़ी देर के लिए मन में ये आता है कि नहीं यार इस पूरे चैप्टर को खत्म करना है, लेकिन हम एक्चुअल कर नहीं पाते हैं। तो याद रखिए, हर चीज देखना जरूरी नहीं है, सही चीज पर सही ध्यान देना और सही समय पर फोकस करना वो हमारे लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट होता है।
0: दोस्तों आदत की अब हम बात करते हैं। चीजें हमें तब इस्तेमाल करने लगती हैं जब उनका इस्तेमाल आदत बन जाती है। फोन उठाना जरूरी नहीं आदत बन जाए, हर 5 मिनट में सोशल मीडिया चेक करना आदत बन जाए, तो हमें खुद से सवाल करना चाहिए। क्योंकि आदत छोटी होती है लेकिन उसका असर हमारी पूरी दिनचर्या पर पड़ सकता है। अच्छी आदतें बनाइए और खराब आदतों को धीरे धीरे बदलते जाइए, वही जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव है। अब बच्चों के लिए भी बात कर लेते हैं। बच्चों के हाथ में मोबाइल देना आसान है, लेकिन उनकी दुनिया सिर्फ स्क्रीनिंग तक सीमित करना सही नहीं है। उन्हें बाहर खेलने दीजिए, किताबें पढ़ने दीजिए, सवाल पूछने दीजिए, मिट्टी में खेलने दीजिए। बचपन का असली एक्सपीरियंस सिर्फ स्क्रीन पर नहीं मिलता। टेक्नोलॉजी सिखाइए लेकिन साथ में जिंदगी को महसूस कराना भी सिखाइए।
1: ये तो बिल्कुल सही कहा है। और साथ ही साथ बात करते हैं परिवार। एक घर में 4 लोग बैठे हैं और चारों अपने अपने फोन में व्यस्त है। सवाल ये नहीं है कि फोन गलत है, सवाल ये है कि क्या फोन की वजह से हमारी बातचीत कम हो रही है। कभी डिनर टेबल पर फोन साइड में रख कर देखिए, शायद आपको पता चले कि आपके अपने लोगों के पास भी बहुत सारी बातें हैं, बस हमें सुनने का समय मिलना चाहिए। क्योंकि एक्चुअल में देखिए, आजकल लोग बोलते हैं कि हम डिप्रेस हो रहे हैं, ओवर थिंकिंग हो रही है, वो इसलिए हो रही है कि आप हमेशा फोन में लगे रहते हो, अपनी बातें किसी के साथ शेयर नहीं करते हो। और अपनी बातें मुझे लगता है कि जब आप फैमिली वालों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर करोगे ना, तो आप सच में फील करोगे कि आपको अंदर से सुकून मिल रहा है। ऐसी एनर्जी आपके अंदर आती है और ऐसा सुकून मिलता है ना कि मानो दुनिया आपने जीत ली हो। लेकिन उस टाइम आपको फैमिली वालों के साथ सबको टाइम देना पड़ेगा, तब उस टाइम आपको लगेगा यार क्या है, टेंशन क्या होती है, कुछ भी नहीं आपको पता लगेगा, क्योंकि आप उस टाइम रिलैक्स के मूड में होगे, क्योंकि आपको उस टाइम सुकून मिलता है अपनी बातें शेयर करके और उनकी बातें सुनकर, क्योंकि फैमिली वालों के पास भी बहुत बातें हैं।
0: और दोस्तों बात कर लेते हैं हम काम और टेक्नोलॉजी की। टेक्नोलॉजी ने काम की स्पीड बढ़ा दी है, लेकिन स्पीड बढ़ाने के साथ क्या हमने आराम करना भुला दिया है? काम खत्म होने के बाद भी फोन पर मैसेज, ईमेल और नोटिफिकेशन चलते रहते हैं। जरूरी काम कीजिए लेकिन खुद के लिए ऑफ टाइम भी रखिए, क्योंकि लगातार ऑन रहना हमेशा प्रोडक्टिविटी होने की निशानी नहीं है। असली जिंदगी हम डिजिटल दुनिया में बहुत कुछ देख रहे हैं, लाइक्स, कमेंट, फॉलोअर्स और व्यूज, लेकिन असली जिंदगी के रिश्तों में कोई लाइक बटन नहीं होता है। माँ की मुस्कान, दोस्त की हंसी, परिवार के साथ बैठना, इन चीजों का कोई नोटिफिकेशन नहीं आता। इसीलिए स्क्रीनिंग के साथ साथ रियल लाइफ को भी अपडेट करते रहिए, अपनों से बातचीत जरूर कीजिए।
1: और देखिए श्रोताओं, आज का सवाल ये है, तो देखिए श्रोताओं अब एक फैंटास्टिक वाला बात करते हैं आपसे। आज का सवाल बिल्कुल सिंपल है। अगर आपका फोन आपसे बात कर सकता है और वो आपको बोलता हो कि तुम मुझे इस्तेमाल कर रहे हो, या फिर फोन आपको बोले कि मैं तुम्हें इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो आज बस 1 घंटे के लिए अपना फोन साइड में रख कर देखिए। शायद आपको महसूस हो कि जिंदगी स्क्रीन से बाहर भी उतनी खूबसूरत है। क्योंकि फोन चलाना हमेशा खूबसूरती नहीं होती है, बाहर की चीजें देखना, हर किसी की बातें सुनना उससे भी ज्यादा खूबसूरती होती है।
0: तो दोस्तों आज का सोच बदलो कार्यक्रम आई होप आपको पसंद आया होगा और चीजें हमारी जिंदगी आसान बनाने के लिए हैं, हमारी जिंदगी चलाने के लिए नहीं। मोबाइल इस्तेमाल कीजिए, सोशल मीडिया इस्तेमाल कीजिए, टेक्नोलॉजी का फायदा उठाइए, लेकिन अपनी मर्जी, अपना समय और अपनी सोच अपने हाथ में रखिए, क्योंकि असली स्मार्टनेस स्मार्टफोन में नहीं, स्मार्ट तरीके से उसे इस्तेमाल करने में है। मैं फिर मिलूंगी नई सोच नई बातों के साथ, तब तक के लिए सुनते रहिए अपने शहर का सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और मुस्कुराते भी रहिए।
2: श्री साई हॉस्पिटल में अनुभवी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शाहीन द्वारा संपूर्ण महिला स्वास्थ्य मेडिकल सेवाएं उपलब्ध हैं। आधुनिक लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, सुरक्षित सिजेरियन और नॉर्मल डिलीवरी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी की विशेष देखभाल, बच्चेदानी से जुड़ी हर प्रकार की सर्जरी, माँ और शिशु की सुरक्षित देखभाल के लिए नवजात शिशु विशेषज्ञ भी उपलब्ध है। साथ ही क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस की सुविधा और न्यूनेटल वेंटिलेटर के साथ। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7060002430।

0: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग रीढ़ की हड्डी नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
1: नमस्ते आदाब, मैं हूँ आपकी दोस्त व होस्ट छाया। आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़। रेडियो बजाते रहो, गुनगुनाते रहो। वैसे आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है आज के खास बातचीत में डॉक्टर गौरिका सिंघल। तो आइए मैम से मिलवाते हैं आप सभी को। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका हमारे स्टूडियो में।
2: थैंक यू छाया जी।
1: वैसे तो बहुत सारी बातचीत करेंगे आगे, लेकिन अपना इंट्रो दे दीजिए हमारे सभी श्रोताओं को।
2: मैं डॉक्टर गौरिका सिंघल, मैं नवजात शिशु व बच्चों की स्पेशलिस्ट हूँ। मैं अभी अपना क्लिनिक रीजन क्लिनिक्स में हूँ और साथ ही मैं एपिक्स अस्पताल के साथ एसोसिएटेड हूँ। इससे पहले 10-12 साल मैं GTB अस्पताल दिल्ली में थी और साथ ही मैं शांति गोपाल अस्पताल गाजियाबाद में भी मैंने काम।
1: वैसे मैम अगस्त का महीना चल रहा है और अगस्त का जो पहला हफ्ता होता है उसको हम मनाते हैं स्तनपान दिवस के रूप में। तो ये पूरा हफ्ता जो है स्तनपान दिवस पे लोग बात कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं एक दूसरे को। तो आप हमारे श्रोताओं को ये पहले समझा दीजिए स्तनपान सप्ताह है क्या।
2: बेसिकली इस सप्ताह का सबसे बड़ा फायदा ये है, ये इसीलिए मनाया जाता है ताकि हम जनता को जागरूक कर सकें कि बच्चे के लिए माँ का दूध व माँ को बच्चे को दूध पिलाना कितना फायदेमंद है और इसका क्या क्या फायदा बच्चे व माँ को मिलता है।
1: जी, तो अभी हम शुरुआत करते हैं इसके फायदे के बारे में। तो स्तनपान के फायदे क्या होते हैं शिशु के लिए।
2: माँ का दूध शुरू के 6 माह में शिशु के लिए पूर्ण व सर्वोत्तम आहार है। माँ के दूध में हर जरूरी पोषक तत्व होता है। शिशु के आंते जो है वो माँ के दूध के लिए ही अनुकूल है, इसीलिए इसे बच्चे को पचाने में बहुत आसानी होती है। साथ ही में जब माँ बच्चे को गोद में लेकर उसे स्तनपान कराती है तो माँ और बच्चे में भावनात्मक बंधन जो है वो और मजबूत हो जाता है। इसमें कुछ एंटीबॉडीज भी होती हैं जो शिशु को सर्दी खांसी जुकाम पेट कान के इन्फेक्शन इन सबसे रक्षा करती है। साथ में माँ के दूध पे बच्चे का मस्तिष्क का विकास सबसे ज्यादा पूर्ण होता है। 6 माह तक जो बच्चा माँ का दूध पीता है उसमें जब हम 6 माह के बाद ठोस आहार शुरू करते हैं तो आहार से होने वाली एलर्जी के प्रति सुरक्षा भी बच्चे को मिल जाती है। जो बच्चे स्तनपान कर रहे हैं उन शिशुओं में सामान्य से अधिक मोटा होने का कारण वह मधुमेह की संभावना भी कम हो जाती
1: है। ये तो रही शिशु के फायदे की बात, अब जरा हम आपसे जान लेते हैं कि माँ को क्या फायदे होते हैं।
2: स्तनपान से जितने फायदे शिशु को होते हैं उतने ही फायदे स्तनपान कराने से माँ को भी मिलते हैं। माँ का जो गर्भाशय यूट्रस होता है वह सिकुड़कर वापस अपनी गर्भावस्था की पहली स्थिति जाने में भी इस स्तनपान से मदद मिलती है।
1: जी।
2: साथ ही माँ को अपना जो बढ़ा हुआ वजन है वो कम करने में भी मदद मिलती है। एक दिन में स्तनपान कराने से लगभग 500 कैलोरी तक माँ बर्न कर सकती है। साथ में इसमें जिंदगी में आगे चलकर माँ को होने वाले टाइप 2 डायबिटीज यानी मधुमेह ब्रेस्ट कैंसर ओवेरियन कैंसर इन सब से भी माँ को खतरा कम होता है। माँ को ऑस्टियोपोरोसिस जिसमें हड्डियाँ कमजोर हो जाती हैं और हृदय रोग संबंधी जो खतरा होता है वह सब भी कम हो जाता है। ये एकमात्र ऐसा भोजन है जो हर समय हर जगह और हर अवधि पे हर सही तापमान में उपलब्ध रहता है। दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये है कि दूसरी महिलाओं के कंपैरिजन में मुकाबले में जो माँ स्तनपान करवाती है उसमें डिप्रेशन का खतरा भी कम हो जाता है।
1: जी, बहुत अच्छी जानकारी हमारे श्रोताओं तक पहुंचा रही है। आई होप एकदम मतलब मस्त वाला दिमाग में घुसेगा। वैसे मैम बच्चे कई बार दूध पीने के बाद भी रोते हैं, तो ऐसा क्यों होता है।
2: बच्चों के रोने के बहुत से कारण होते हैं। बच्चे का अगर डायपर गीला हो, उसे ठंड लग रही हो, उसे गर्मी लग रही हो, उसे गोद में आकर घूमना हो तो वह बच्चा रोकर ही बता पाता है। बच्चे का रोने का मतलब ये नहीं है कि माँ का दूध पूर्ण नहीं है। माँ का दूध पूर्ण हो सकता है, उसके बाद भी बच्चे का रोने का मतलब ये है कि वह दूध के सिवा और किसी चाहत की इच्छा रखता है।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि अक्सर हमारी भी आदत होती है बच्चे रो रहे होते हैं, हमारा एक सिंपल सा फंडा होता है कि भाई उसको भूख लगी है, पर हम अदर चीजों पर ध्यान नहीं देते हैं। सो ये बहुत ही बेसिक पॉइंट थी। कैसे जाना जाता है कि माँ का दूध बच्चे के लिए पर्याप्त है या नहीं।
2: अगर बच्चा दूध पीने के बाद आराम से एक डेढ़ घंटा सोता है, दिन में 6 से 8 बार यानी कि 24 घंटे में 6 से 8 बार सूसू जाता है और उसका वजन अगर सही तरीके से बढ़ रहा है यानी कि एक महीने में कम से कम 500 ग्राम के करीब उसका वजन अगर बढ़ता है तो इसका मतलब ये है कि माँ का दूध बच्चे के लिए पर्याप्त है।
1: जी अगर माँ को खांसी जुकाम हो रहा है उस टाइम में बच्चे को दूध पिलाना सही होगा?
2: बिल्कुल, माँ के दूध से बच्चे को वायरल इन्फेक्शन नहीं होता है। अगर माँ को वायरल इन्फेक्शन है तो बस वो सावधानी के तौर पे अच्छे से अपने हाथों को साबुन में पानी से धोकर और अगर बहुत ज्यादा खांसी है तो मुंह पर मास्क लगाकर बच्चे को दूध पिला सकती हैं। बल्कि ऐसा करने से माँ के दूध से जो माँ ने एंटीबॉडीज बनाई है उस इन्फेक्शन के अगेंस्ट वो बच्चे को मिल जाएंगी, इससे बच्चे में वो बीमारी होने का खतरा और कम हो जाएगा।
1: अगस्त का महीना है और गर्मी भाई साहब बहुत ज्यादा हो रही है, तो मैम अगर बच्चे को प्यास लग रही है उस वक्त में हम क्या बच्चे को पानी भी थोड़ा बहुत पिला सकते हैं?
2: बिल्कुल भी नहीं। शुरू के 6 माह में हमें बच्चे को सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध ही पिलाना है। माँ के दूध के ना 2 हिस्से होते हैं। जो शुरू का दूध एक छाती से आता है उसमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है, जो बाद का दूध होता है उसमें बच्चे का पेट भरने वाला तत्व फैट्स ज्यादा होते हैं। तो अगर गर्मी ज्यादा होती है तो माँ का शरीर अपने आप उस चीज को पहचानता है और शुरू के दूध में पानी की मात्रा बढ़ जाती है और वो जो पानी है वो माँ के दूध का पानी वो बच्चे के लिए उसकी प्यास मिटाने के लिए पर्याप्त होता है। इसीलिए माँ के दूध के सिवा बच्चे को ऊपर से पानी देने की जरूरत नहीं पड़ती। इसी के साथ मैं एक चीज और बताना चाहूंगी कि शुरू के 6 माह में बच्चे को सिर्फ माँ का ही दूध देना है। बच्चे को कोई घुट्टी 555 घुट्टी, 112 बाल जीवन घुट्टी, कोई भी घुट्टी बच्चे के लिए फायदेमंद नहीं है।
1: जी ये बहुत बढ़िया।

0: आपने बात बताई, हाईलाइट किया इसको, क्योंकि अक्सर लोग घुटियां पिलाते रहते हैं। तो अक्सर ऐसा होता है कि माँ दिन भर थक हार के काम करके और रात में सोने जाती है, और उस वक्त आधी रात को बच्चा उठ जाता है, उसको भूख लगती है, वो उठ जाता है। तो क्या कोई ऐसा तरीका जिससे कि माँ की नींद भी खराब ना हो और बच्चे की भूख भी मिट जाए?
1: बिल्कुल, माँ का दूध ही तो एकमात्र ऐसा भोजन है जो हर समय, हर जगह, हर मात्रा में सही तापमान पर उपलब्ध है। कुछ समय बाद दूध पिलाने के बाद तो माँ को पता चल जाता है कि वो जिस तरह बच्चा माँ दोनों कंफर्टेबल है, किस तरह से वो उस बच्चे को दूध पिला सकती हैं।
0: जी,
1: रात में बच्चे को गोद में लिया और उसे दूध पिला दिया और उसके बाद सुला दिया। बल्कि अगर बच्चा ऊपर के दूध पे है तो पहले दूध को बनाएं, उसे गर्म ठंडा करें, उसको लेकर आए, फिर धीरे धीरे बच्चे को पिलाएं, उससे तो माँ की नींद और ज्यादा खराब होगी।
0: आई होप उन महिलाओं को जो माँ बनी है पहली बार, बहुत ही ज्यादा आपसे जानकारी मिली होगी और बच्चे को स्तनपान कराने में सही एक गाइड मिल पाया आपकी बातों से। मैम, जाते जाते एक छोटा सा मैसेज हमारे सभी श्रोताओं को, उन सभी महिलाओं को जो पहली बार माँ बनी है या स्तनपान की सही जानकारी नहीं है, तो एक छोटा सा मैसेज पहुँचाइए।
1: मेरा सबसे छोटा सा और सबसे सरल मैसेज एक ही है कि माँ का दूध शुरू के 6 महीने के लिए शिशु के लिए पूर्ण व सर्वोत्तम आहार है। इसके सारे फायदे बच्चे व माँ दोनों को ही मिलते हैं, और शुरू के 6 महीने में ऊपर का दूध बच्चे को आगे के इन्फेक्शन से नहीं बचा सकता, और साथ में माँ का दूध जो बच्चे की मस्तिष्क के डेवलपमेंट में हेल्प करता है, वह ऊपर का दूध कभी नहीं कर सकता।
0: जी, बहुत अच्छा लगा मैम आपसे मिलके, आपसे बात करके। इतना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़। मैं हूं आपका दोस्त और इस शो का होस्ट आज राज। आप सभी का स्वागत करता हूं इस विशेष कार्यक्रम में। और ये कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जो शायद आपका बैंक अकाउंट खाली होने से बचा सकता है। हाँ, क्योंकि आज जो बात होने वाली है वो एक ऐसे टॉपिक पर होने वाली है जो टॉपिक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता जा रहा है। क्योंकि आप सभी को पता है कि जैसे जैसे हम ऑनलाइन अपने आप को अपडेट कर रहे हैं, वैसे वैसे बहुत सारे ऐसे अपराध हैं जो आपके साथ हो रहे हैं। और ये जो अपराध हो जाते हैं उस अपराध के बारे में आप किसी को बताना नहीं चाहते, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद हमारे साथ ये अपराध हो गया। हाँ जी, तो आज हम बात करने वाले हैं डिजिटल अरेस्ट के बारे में। तो ये कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन अवेयरनेस ISEA इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत। आज हम बात करेंगे एक ऐसे साइबर अपराध की जो न सिर्फ आपका पैसा बल्कि आपका आत्मविश्वास, मानसिक शांति और सम्मान भी छीन सकता है। इस अपराध का नाम डिजिटल अरेस्ट। श्रोताओं, सबसे पहले ये बात बिल्कुल साफ समझ लीजिए कि डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई भी कानूनी प्रक्रिया भारत में मौजूद नहीं है। यह पूरी तरह से एक साइबर ठगी है। ठग खुद को पुलिस अधिकारी, साइबर क्राइम ऑफिसर, CBI, ED या नारकोटिक्स विभाग का कर्मचारी बताकर आपसे संपर्क करते हैं। वे फोन, व्हाट्सएप कॉल या वीडियो कॉल करते हैं, डर पैदा करते हैं। तो चलिए एक ड्रामे के जरिए मैं आपको बताता हूँ कि आखिर ये साइबर ठग आपके साथ कैसा पेश आते हैं। यहाँ पर एक राजेश है और एक ठग है, तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो, कौन बोल रहा है?
2: मैं साइबर क्राइम विभाग से बोल रहा हूँ, राजेश कुमार। आपका आधार कार्ड अवैध गतिविधियों में इस्तेमाल हुआ है।
3: क्या? मैंने तो कुछ नहीं किया साहब।
2: आपके नाम से मनी लॉन्ड्रिंग और ड्रग्स ट्रांजेक्शन हुआ है, आपको अभी डिजिटल अरेस्ट किया जाता है। देखिए, ये मेरी आईडी है, कोर्ट का नोटिस है, आप किसी से बात नहीं करेंगे। अगर सहयोग नहीं किया तो जेल जाना पड़ेगा।
3: मैं क्या करूँ साहब?
2: आपकी जांच के लिए सुरक्षा राशि जमा करनी होगी। अभी UPI से पैसे ट्रांसफर कीजिए।
3: मैंने पैसे भेज दिए हैं।
1: और यही पर राजेश ठगी का शिकार हो जाता है। श्रोताओं, डिजिटल अरेस्ट ठग मानसिक दबाव का इस्तेमाल करते हैं, जल्दी जल्दी बोलते हैं, धमकी देते हैं, बदनामी और जेल का डर दिखाते हैं। यही सबसे बड़ा संकेत है कि यह ठगी है। याद रखिए, असली पुलिस कभी भी गोपनीयता के नाम पर आपको अलग थलग नहीं करती। असली अधिकारी कभी पैसे नहीं मांगते हैं। अगर ऐसा कॉल आए तो आपको क्या करना चाहिए, चलिए मैं आपको बताता हूँ। श्रोताओं, अगर आपके पास ऐसा कॉल आए, सबसे पहले एक गहरी सांस लें, डरे नहीं, कॉल तुरंत काट दें। किसी भी हालत में OTP, बैंक डिटेल, आधार कार्ड, पैन कार्ड साझा ना करें। अपने परिवार से बात करें, नजदीकी पुलिस स्टेशन या हेल्पलाइन से संपर्क करें। सबसे ज्यादा ये ठग निशाना बनाते हैं बुजुर्गों को। श्रोताओं, डिजिटल अरेस्ट के सबसे बड़े शिकारी हैं बुजुर्ग नागरिक, रिटायर्ड कर्मचारी, अकेले रहने वाले लोग। इसलिए आपसे अपील है, अपने माता पिता को ये जानकारी जरूर दें, उन्हें समझाएं कि फोन पर गिरफ्तारी नहीं होती है। अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो आप समझ सकते हैं कि ये किसी ठग का काम है आपको ठगने के लिए। अगर गलती से आप इस ठग का शिकार हो जाते हैं और आपके पैसे चले जाते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है? अगर ठगी हो जाए तो सबसे पहले तो घबराना नहीं है, तुरंत एक नंबर मैं आपको बताने वाला हूँ, वो नंबर है 1930। इस नंबर पर कॉल करके अपनी सारी परेशानी को उनसे बताएं। अगर आप कॉल नहीं कर पा रहे हैं तो www.cybercrime.government.in पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज करें। जितनी जल्दी शिकायत दर्ज होगी उतनी ज्यादा रिकवरी की संभावना बनेगी। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि डिजिटल अरेस्ट से बचने के ऐसे कौन कौन से नियम हैं जिनका आप पालन कर सकते हैं और आप इस अरेस्ट से बच सकते हैं। सबसे पहले, पुलिस फोन पर गिरफ्तारी नहीं करते हैं, ये आपको समझनी है। सरकारी अधिकारी कभी आपसे पैसा नहीं मांगता है। डर दिखाया जाए, समझ जाइए कि शायद आपके साथ ठगी हो सकती है। किसी से बात करने से रोका जाए, खतरे की घंटी हमेशा इस बात का ध्यान रखें। पुष्टि हमेशा
3: खुद से करें।
1: जाते जाते मैं आप सबसे इतना ही कहना चाहूंगा कि डिजिटल अरेस्ट सिर्फ एक झूठ है, लेकिन इसका डर सच्चा नुकसान करता है। डर को हराइए, जानकारी को हथियार बनाइए। याद रखिए, डर में लिया गया फैसला नुकसान करता है, समझदारी आपको सुरक्षित रखती है। यह कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन अवेयरनेस ISEA इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार की ओर से। जाते जाते आप सभी से इतना कहना चाहूंगा, सुरक्षित रहें, जागरूक रहें। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त और इस शो का होस्ट आज राज। आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 MHz। एक बार फिर मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि अगर आपके साथ ऐसा होता है तो कृपया करके आप सबसे पहले तो घबराएं नहीं। अगर आपके साथ ऐसी कोई चीज हो गई है तो 1930 पर कॉल करें। अगर आपको अपनी शिकायत दर्ज करनी है तो www.cybercrime.government.in पर जाकर आप अपनी कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं। हाँ, घबराना नहीं है, सुरक्षित रहें, जितनी जानकारी उतनी ज्यादा सुरक्षा। तो अभी के लिए लेता हूँ अलविदा, बाय बाय, टेक केयर।
0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
4: गुड वाली इवनिंग है अर्जरीना के साथ, FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और आप सुन रहे अपने शहर का सामुदायिक रेडियो, और आज हम एक खास मुद्दे पर बात करने वाले हैं जिसका नाम है सीनियर सिटीजन कानूनी अधिकारों के बारे में, यानी कि हमारे बुजुर्ग समाज के सबसे बड़ी महत्वपूर्ण धरोहर है, लेकिन कई बार उन्हें अपने ही अधिकारों की जानकारी नहीं होती है। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ एडवोकेट अनिरुद्ध अरोड़ा जी हमारे कनेक्ट है। सर, आपका बहुत बहुत वेलकम है।
5: थैंक यू रीना जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
4: पहले तो सर, आप अपने बारे में हमारे श्रोताओं को बता दीजिए।
5: देखिए, मैं बाय प्रोफेशन एडवोकेट हूँ, मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मैं प्रैक्टिस करता हूँ। मेरा नाम अनिरुद्ध अरोड़ा एडवोकेट है, और जो है हम बेसिकली जो समाज में किसी के साथ शोषण होता है या किसी को सताया जाता है, अगर हमें भी कुछ लगता है डेली लाइफ में, तो हम लोग उसको हेल्प करते हैं, उसको लीगल गाइडेंस देते हैं हम लोग। और मैं समझता हूँ कि सबको अपने कानूनी जितने अधिकार है उसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि डेली रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत देख रहे होते हैं और हम इग्नोर कर देते हैं।
4: बिल्कुल
5: तो सबसे बड़ी चीज है, ये इग्नोर करने से ही क्राइम पनपता है और बढ़ता है।
4: सही
5: का, तो पहले लेवल पे ही अगर हम उसको रोक लेते हैं तो एक हम आगे आने वाले बहुत बड़े किसी क्राइम से या किसी घटना से बच सकते हैं।
4: बिल्कुल सर, तो चलिए इस सिलसिले को हम शुरू करते हैं। और पहला हमारा क्वेश्चन है, भारत में सीनियर सिटीजन के अधिकारों की सुरक्षा के लिए मुख्य कानून कौन सा है?
5: देखिए, कानून के बारे में जानने से पहले मैं पहले अपने जो हमारे समाज में जो इस समय बुजुर्गों की स्थिति है उनके बारे में दो शब्द बोलना चाहूंगा। अधिकतर देखा गया जो हमारे समाज में सीनियर सिटीजन हैं उनको मोस्टली एक हाशिए पे लाके खड़ा कर दिया है आजकल के यूथ।
4: बिल्कुल
5: उनकी तरफ ध्यान नहीं देना, उनको बिल्कुल किसी भी चीज की भरण पोषण की आवश्यकता है या कोई हेल्प चाहिए, उनको इग्नोर किया जाता है। तो कहीं ना कहीं जैसे उन्होंने हमें बचपन में पाला पोसा, हमें हमारे पालन पोषण किया, भरण पोषण किया, हमारा भी दायित्व है कि अगर वो इस एज में है तो
4: उनकी सेवा करें,
5: सेवा करें हम भी। और भारत में सीनियर सिटीजन्स के अगर हम अधिकारों के लिए बात करते हैं, सुरक्षा के लिए उनकी बात करते हैं, तो मुख्य रूप से एक मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 है। ये कानून के तहत बच्चों या परिवार के सदस्यों के अपने माता पिता की देखभाल के लिए भरण पोषण का अधिकार है। अगर कोई जो भरण पोषण अपने माता पिता का नहीं कर रहा है, जैसे अधिकतर घर में देखते भी हैं कि भाई बच्चों की शादी हो जाती है तो वो अपना
4: अलग रहने की कोशिश करते हैं
5: और माता पिता को उनके हाल पे छोड़ देते हैं, और उस समय जो कठिनाइयां झेलनी पड़ती है सीनियर सिटीजन्स को, तो उसके लिए भी उनके पास राइट्स है, वो कोर्ट में विवाद दायर करके उनके मेंटेनेंस इत्यादि मांग कर सकते हैं भरण पोषण की।
4: बिल्कुल सर। अगला क्वेश्चन है हमारा सर, अगर बच्चों के द्वारा माता पिता की देखभाल नहीं की जाती तो बुजुर्ग क्या कर सकते हैं?
5: देखिए, ऐसी स्थिति में आप किसी भी लीगल लॉयर की एडवोकेट की हेल्प लें, उसे पूरी बात बताएं, और ऐसी स्थिति में आपको जो है सिटी सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल में आप शिकायत कर सकते हैं। ट्रिब्यूनल बच्चों को आदेश दे सकता है कि आप अपने माता पिता की सेवा करें। लोकल आप SDM कोर्ट में आप कंप्लेन कर सकते हैं, DM के यहाँ कंप्लेन कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे जो है कानूनी विधि हैं जिसके थ्रू आप जो है अपने बच्चों से मदद मांग सकते हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि प्रत्येक बच्चों को खुद ही आगे आके अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, दायित्व का निर्वहन करना चाहिए।
4: जिस तरीके से हमें माँ बाप जन्म देते हैं, हमें पढ़ाते लिखाते हैं, बड़े करते हैं, वही हमारा दायित्व है कि हमें उनकी सेवा करनी चाहिए।
5: करनी चाहिए, क्योंकि हम भी कभी उसी स्थिति में थे कि हमें किसी चीज का ज्ञान नहीं था।
4: बिल्कुल सर, और इनफैक्ट तो हम भी उस एज में आने वाले ही एक टाइम।
5: बिल्कुल, जैसा आप बीज
4: बोए वैसे ही फल मिलेगा।
5: फल मिलेगा आपको।
4: बिल्कुल सर। तो सर चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या सीनियर सिटीजन अपने बच्चों से भरण पोषण की मांग कर सकते हैं?
5: हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। आप जो है लोकल जो आपकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहाँ पे आवेदन करके आप जो है मांग कर सकते हैं। यदि कोई बुजुर्ग अपना खुद का खर्चा नहीं उठा पा रहा है तो वह अपने बच्चों से कानूनी वारिसों से भरण पोषण की मांग कर सकता है।
4: श्रोताओ, आपको जो ये हमारी बात है आई होप कि बहुत अच्छी लग रही होगी। तो अगर आपके भी मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हमारा मैजिकल नंबर है 9837896896। यानी कि अगर किसी बुजुर्ग को उनके ही घर में जबरदस्ती निकाल दिया जाए तो उन्हें क्या करना चाहिए?
5: देखिए, ऐसी स्थिति में अगर कोई आपके साथ दुर्व्यवहार या कोई जबरदस्ती घर से निकालने की कोशिश करे तो सबसे पहले तो आप 112 नंबर डायल करके पुलिस को बुलाएं। पुलिस आपकी तुरंत हेल्प करेगी। सीनियर सिटीजन एक्ट में भी ये आपको अधिकार दिया गया है। पुलिस आपकी तुरंत सहायता करती है। नजदीकी थाने या चौकी पे जाके अपनी पूरी बात बताएं। रिटन में अगर कंप्लेंट करने को वहाँ पे पुलिस अधिकारी आपसे कहते हैं तो लिखित में अवगत कराएं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप तुरंत किसी लीगल सलाहकार से बात करके ट्रिब्यूनल में अगर आप केस डालना चाहते हैं तो आप केस भी डाल सकते हैं, उसमें आपको मदद मिलेगी।
4: और बहुत से बुजुर्ग है सर, उनके पास फोन नहीं होते तो वो कैसे पहुंच सकते हैं?
5: देखिए, नजदीकी थाने में तो आपको पता होता है कि कहाँ पे है, तो वहाँ आप जा सकते हैं। अगर आपके अड़ोस पड़ोस में कोई आपका मित्र है या संबंधी है तो आप तुरंत उसकी मदद मांगी कैसे भी करके, लेकिन सूचना आपको पुलिस को देना जरूरी,
4: पहुंचाना जरूरी है
5: तुरंत।
4: चलिए सर, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या सीनियर सिटीजन अपनी संपत्ति की सुरक्षा के लिए कोई कानूनी कदम उठा सकते हैं?
5: जी बिल्कुल उठा सकते हैं। जितने भी सीनियर सिटीजन बुजुर्ग अपनी पति को देते समय कुछ शर्तें रख सकते हैं। अगर उन शर्तों का पालन के वारिसान नहीं करते हैं तो वो संपत्ति का ट्रांसफर रद्द भी कर सकते हैं कानूनी।
4: बिल्कुल।
5: तो लेकिन जो भी आप टर्म्स एंड कंडीशन है वो लिखित में होनी चाहिए।
4: बिल्कुल बिल्कुल, मतलब प्रॉपर यही है कि लिखित में हो।
5: हाँ,
4: तभी
5: अगर आप कोई भी संपत्ति अपने वारिसों को देते हैं या दान करते हैं और दान करने के बाद वो आपकी सेवा नहीं करते हैं, कुछ करते हैं, तो अक्सर मन में ये मलाल रहता है कि हमने संपत्ति क्यों दे दी।
4: बिल्कुल।
5: तो जो भी आपके मन की बात है, जो भी टर्म्स कंडीशन है, वो पहले ही लिखित में आप उसको रजिस्टर करा सकते हैं।
4: इससे लिखित में होगा तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी।
5: आपका अधिकार बना रहता है फिर भी। अगर मान लीजिए आपको कोई दान में दी हुई चीज रद्द करनी है या किसी चीज को लेके आप उसमें कोई पॉइंट ऐसा है कि जो आपने उसमें क्लॉज में लिखा हुआ है और उसकी वो फुलफिल आपके वारिस नहीं करते, तो आप उस चीज को लेके भी आप जो भी आपने कोई भी उनको फेवर दिया तो उस पॉइंट पे आप उनको रद्द भी कर सकते हैं।
4: ओके सर, क्या सरकार सीनियर सिटीजन के लिए अलग से अदालत या ट्रिब्यूनल की व्यवस्था करती है?
5: हाँ बिल्कुल, सीनियर सिटीजन को मुख्य रूप से प्रायोरिटी पे सुना जाता है। अगर हम कोई भी बात दायर करते हैं तो उनके लिए एक जो है कोर्ट का भी जो है अलग ही एक नजरिया रहता है। और मुख्य रूप से जो ये हमारी सरकार की नीति है या हमारी जुडिशरी की जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग सीनियर सिटीजन को प्राथमिकता प्रथम पायदान पे दी गई है,
4: दी जाती है। सीनियर सिटीजन को सरकारी योजनाओं में कोई विशेष सुविधाएं मिलती हैं?
5: सीनियर सिटीजन के लिए सरकारी सुविधाएं काफी दी गई हैं। जैसे आप सरकार की तरफ से बुजुर्गों के लिए पेंशन है, उनकी स्वास्थ्य संबंधी है, यात्राओं में छूट दी गई है, उनके सामाजिक योजनाएं कई सरकार की तरफ से चलाई जाती हैं ताकि वो अपना जीवन यापन सुरक्षित व सम्मान ढंग से कर सके।
4: बहुत अच्छी बात है सर। अगला क्वेश्चन है, अगर किसी बुजुर्ग के

0: पहले ही सख्त प्रावधान कानून के तहत बने हैं और बुजुर्गों की जो शिकायत है वो बिल्कुल प्रथम पायदान पे जाके सुनी जाती है पुलिस आला अधिकारियों द्वारा, तो निश्चित तौर पे आपको तुरंत लीगल एक्शन लेना चाहिए।
1: क्या बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार करना कानूनी अपराध है?
0: जी हाँ, बुजुर्गों के साथ कानून अगर कोई दुर्व्यवहार कर रहा है कोई, तो ये कानूनन अपराध है। आमतौर की डेली दिनचर्या में हम देखते हैं कि अगर हम कहीं सड़क पे जा रहे होते हैं या पड़ोस में ही होते हैं तो हम किसी बुजुर्ग को कुछ उल्टा सीधा बोल देते हैं, धमका देते हैं, तो ये भी क्राइम है अपने आप में।
1: अच्छा अच्छा, मतलब कोई धमका रहा है, हाँ, कुछ गलत
0: तो
1: बोल रहा है
0: आपका, आप किसी को भी आप ऐसे अगर आप बोलते हैं बुजुर्गों को, तो खास तौर पे अगर आपने कोई भी ऐसी अपशब्द बोल दी तो पुलिस तुरंत कार्रवाई करती है। और खास तौर पे जो है पुलिस के आला अधिकारियों को जुडिशरी की तरफ से भी साफ इंस्ट्रक्शन है कि बुजुर्गों का, बच्चे और बुजुर्गों दोनों के लिए अगर कोई भी क्राइम होता है तो तुरंत तत्काल लीगल एक्शन लिया जाए उसके।
1: बिल्कुल सर। और सर मुझे लगता है बुजुर्ग हो चाहे कोई भी हो, हमें किसी के बारे में बोलने का कोई राइट?
0: बिल्कुल, आप किसी को अपशब्द कैसे बोल सकते हैं? आप किसी को कानून कैसे आप हाथ में ले सकते हैं? तो आपको निश्चित तौर पे जो है सबका आदर सम्मान करना चाहिए और जो है बुजुर्गों को तो खास तौर पे आपको जो है उनकी सेवा भाव रखना चाहिए मन के अंदर।
1: बिल्कुल। श्रोताओं, तो हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि हमारे बुजुर्ग जो होते हैं उनकी हमें सेवा करनी चाहिए। अगर आप सेवा करते हैं तो भगवान भी आपके साथ होते हैं। अगला क्वेश्चन है सर हमारा अंत में, यानी कि आप सीनियर सिटीजन और उनके परिवार को क्या संदेश एक देना चाहेंगे?
0: देखिए, मेरा सभी जितने भी आपके FM मुरादाबाद 89.6 MHz के कम्युनिटी रेडियो के लिसनर्स हैं, मैं उनको यही संदेश दूंगा कि हम सभी को अपने घर में बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए और साथ ही सीनियर सिटीजन को अपने कानूनी अधिकारों की भी जानकारी रखनी चाहिए। अगर उनके साथ कुछ भी गलत हो रहा है, कोई भी मिसहैपनिंग हो रही है, तो तत्काल वो उस पर लीगल एक्शन ले सके, बस यही मैं बोलना चाहूंगा। और जो है बुजुर्गों को खास तौर पे हमें जो है वॉच भी करना चाहिए, क्योंकि उन इस एज में आके उनको हमारी जरूरत पड़ती है, वो शरीर से भी दुर्बल होते हैं, थोड़ी सी याददाश्त भी कमजोर हो जाती है।
1: बिल्कुल सर, सही।
2: अब समाचार विस्तार से। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति देने के लिए पशुपालन से जुड़ी व्यवस्था विकसित कर रही है। इसमें गोबर से बायोगैस और जैविक खाद बनाने से लेकर दुग्ध उत्पादों के प्रसंस्करण और बाजार तक पहुंच उपलब्ध कराने के प्रयास शामिल हैं। श्री शाह ने आज भोपाल में राज्य स्तरीय गौपालक सम्मेलन में कहा कि सहकारिता मंत्रालय के गठन से सर्वाधिक लाभ पाने वालों में पशुपालक भी शामिल होंगे। गृह मंत्री ने आपराधिक न्याय व्यवस्था में सुधारों का उल्लेख करते हुए कहा कि भारतीय न्याय संहिता के पूरी तरह लागू होने के बाद भारत की आपराधिक न्याय व्यवस्था दुनिया में सबसे आधुनिक हो जाएगी।
3: कानून पूर्ण इम्प्लीमेंटेशन के बाद हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम दुनिया की सबसे आधुनिक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बन जाए, और इसके अंदर विज्ञान को हमने डाला है, ऑनलाइन सुनवाई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, FSL के प्रावधान और कई आधुनिक प्रकार के वैज्ञानिक संशोधनों को इसके साथ जोड़ा है। महिला सुरक्षा, गुमशुदा बच्चे, आतंकवाद, लिंचिंग, ये सारी चीजों से प्रोटेक्शन की व्यवस्था है।
2: श्री शाह ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता के पूरी तरह लागू होने के बाद प्राथमिकी दर्ज होने से लेकर उच्चतम न्यायालय तक मामलों का निपटारा 3 वर्ष के भीतर किया जा सकेगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज भोपाल के भेल दशहरा मैदान में राज्य स्तरीय गोपालक सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने 11 जिलों के करीब 35,000 गोपालकों के इस सम्मेलन में गौशालाओं के लिए 101 करोड़ रुपए दिए। श्री शाह ने उज्जैन में 255 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले डेयरी प्लांट का वर्चुअली भूमि पूजन भी किया। श्री शाह ने कहा कि भोपाल में 12 करोड़ की लागत से केंद्रीय प्रयोगशाला बनाई गई है और शिवपुरी में मिनी डेयरी प्लांट बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसमें गोवंश और भैंस की नस्ल सुधार का काम होगा। गोपालक सम्मेलन से पहले केंद्रीय मंत्री ने भेल दशहरा मैदान में ही नए आपराधिक कानूनों पर मध्य प्रदेश पुलिस की प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया। कार्यक्रम में श्री शाह ने कहा कि अंग्रेजों के बनाए कानून अपनी सरकार और प्रशासन को बचाने के लिए थे, लेकिन अब नए कानून नागरिकों के सम्मान, संपत्ति और शरीर की रक्षा के लिए हैं। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
2: सरकार मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले कुख्यात सरगना

0: गुरप्रीत सिंह को तुर्की से सफलतापूर्वक भारत वापस लाई है। देश की कानून प्रवर्तन एजेंसियों की इस उपलब्धि पर श्री शाह ने बताया कि नवप्रीत सिंह नवाब विर्क की फर्जी पहचान से तुर्की की नागरिकता प्राप्त करके अफगानिस्तान से भारत में मादक पदार्थों की तस्करी करता था। गृहमंत्री ने बताया कि नवप्रीत सिंह को नशीले पदार्थों की तस्करी और अन्य अपराधों से जुड़े कई मामलों में जेल भेजा गया है। श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने भगोड़ों को वापस लाने के लिए एक समन्वित अभियान चलाया है। वर्ष 2019 से इस वर्ष अगस्त तक 36 देशों के कुल 288 भगोड़ों को भारत वापस लाया गया है। इस सफलता के लिए सभी एजेंसियों को बधाई देते हुए गृहमंत्री ने कहा कि सरकार दिसंबर 2029 से पहले हर नशीले पदार्थों के गिरोह को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ऐसे मुक्त व्यापार संबंधों के लिए आगे बढ़ रहा है जो विश्व की लगभग 75% से 80% अर्थव्यवस्था बनाने में योगदान देगा। शिकागो में यूएस इंडियन कम्युनिटी फाउंडेशन द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि भारत ने हाल के वर्षों में अपने व्यापार समझौतों का काफी विस्तार किया है और कई अन्य वार्ताएं जारी हैं। उन्होंने कहा कि ये बढ़ता क्षेत्र भारत से संचालित कंपनियों को एक बार किया है और कई अन्य वार्ताएं जारी हैं। उन्होंने कहा कि ये बढ़ता क्षेत्र भारत से संचालित कंपनियों को एक बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच प्रदान करेगा। श्री गोयल ने कहा कि वर्ष 2014 से पहले भारत के लगभग 10 ट्रिलियन डॉलर के सकल घरेलू उत्पाद वाली अर्थव्यवस्थाओं के साथ मुक्त व्यापार समझौते थे।
1: 2014 के पहले हमारे पास फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स कई देशों के साथ थे और वो सब छोटे छोटे देश थे अभी था, और कुल मिला के जितने देशों में हमारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स थे उनकी आज की अगर हम अर्थव्यवस्था देखें या जीडीपी देखें तो 10 ट्रिलियन डॉलर की। गत 4-4.5 वर्षों में हमने 38 और देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने का निर्णय लिया। 38 डेवलप विकसित देश, और उन सब की अगर जीडीपी का आंकड़ा ले तो वो 60 ट्रिलियन डॉलर होगा।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: आपको हर खबर से रखे अपडेट एक्सपर्ट एट AIR न्यूज हिंदी और पब्लिक पर एट AIR न्यूज अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात ने आज 12 वर्ष पूरे कर लिए हैं। मन की बात कार्यक्रम की पहली कड़ी वर्ष 2014 में आज ही की तारीख को विजयदशमी के दिन प्रसारित हुई थी। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने इस कार्यक्रम की 138वीं कड़ी में देशवासियों को संबोधित किया। मन की बात के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। यह यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से प्रेरित है। सेवा और सुशासन की इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में परिवर्तन भी ला रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में हम आपको आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के माध्यम से इस सोच को किस तरह अमल में लाया गया है इस बात की जानकारी देंगे।
3: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी ABPMJAY सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वास्थ्य आश्वासन योजना है। इसके तहत पात्र परिवारों को हर वर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य कवर मिलता है। योजना के अंतर्गत देश भर के सूचीबद्ध सरकारी और निजी अस्पतालों में सेकेंडरी और टर्शियरी केयर के लिए कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध है। अस्पताल में भर्ती होने से पहले के 3 दिन और अस्पताल से छुट्टी के बाद के 15 दिन तक के निर्धारित खर्च भी इसमें शामिल है। पहले से मौजूदा बीमारियां भी योजना में पहले दिन से ही कवर होती है। योजना के तहत परिवार के सदस्यों की संख्या, उम्र या लिंग पर कोई सीमा नहीं होती। पात्र लाभार्थी देश के किसी भी राज्य में योजना के तहत सूचीबद्ध अस्पताल में इसका लाभ ले सकते हैं, यानी लाभार्थियों को इलाज के लिए अपने गृह राज्य तक सीमित रहने की आवश्यकता नहीं। इसके अलावा 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र की सभी वरिष्ठ नागरिक उनकी आय या सामाजिक आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना आयुष्मान भारत PMJAY के तहत 5 लाख रुपए तक के स्वास्थ्य कवर के पात्र होते हैं। आइए सुनते हैं लाभार्थी की ये रिपोर्ट।
4: 1 ईयर पहले मम्मी का कुछ प्रॉब्लम हुआ था गायनी केस, तो हम बाहर भी गया था दिखाने के लिए, यहाँ भी

0: आया था, तो बाहर दिखाने के बाद मेन बीमार पाता होने के बाद फिर यहाँ से भी कंसल्ट किया था गायनी सर लोग से, तो सर लोग ने बोला था कि ये में हो जाएगा ऑपरेशन, जो कार्ड भी आपका पास है ना नहीं पूछा था, हम बोला सर हाँ मेरे पास में कार्ड है बोल के, तो उसी में क्लेम करने से वो पैसा को भी आपको गवर्नमेंट से मिल जाएगा बोल के। तो फिर हम अपना ऑफिस में सीपीस में जाके ऐसा कागज डॉक्यूमेंट बताया ऐसा है, तो वहीं से हमको बेनिफिट जो मिल गया और ऑपरेशन जो सक्सेसफुल हमका ये तेजू जोरम जोन हॉस्पिटल से ही हुआ था।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने कहा है कि आर्थिक मजबूती को सामाजिक मजबूती से अलग करके नहीं देखा जा सकता। उन्होंने कहा कि तेजी से बदलती दुनिया में समावेशिता ही मजबूती की बुनियाद है। श्री राधा कृष्णन आज नई दिल्ली में 5वें कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। सम्मेलन का विषय था बदलते दौर में मजबूती। उपराष्ट्रपति ने कहा कि आम सहमति, समावेशिता और परिस्थितियों के अनुरूप नीतियां बनाने से लोकतंत्र और विकास साथ साथ आगे बढ़ सकते हैं तथा सतत विकास की मजबूत नींव तैयार हो सकती है। उन्होंने कहा कि वास्तविक मजबूती तभी है जब कोई नागरिक, उद्यम या क्षेत्र पीछे ना छूटे।
2: Faster transformation is taking place in the economical growth of India. Once we were the underdeveloped economy, from there we moved on to the developing economy. From there we are moving towards the developed economy. We can call ourselves as a developed economy if it is an inclusive development of everyone. That is where the real development benefits should reach the nook and corner of the country.
1: रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है कि मूल्य और वित्तीय स्थिरता को भू राजनीतिक और भू आर्थिक विखंडन, व्यापार प्रतिबंधों, आपूर्ति में अचानक आए अवरोधों और तकनीकी व्यवधानों से अलग करके नहीं देखा जा सकता। आज नई दिल्ली में 5वें कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन में गवर्नर ने ये बात कही। वायुसेना का 94वां स्थापना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इस वर्ष के समारोह का विषय है भारतीय वायुसेना अचूक, अडिग और सटीक। एक रिपोर्ट।
3: वायुसेना दिवस के अवसर पर इस वर्ष एयरफोर्स डे परेड, भारतीय वायुसेना के विमानों और हथियार प्रणालियों का स्थैतिक प्रदर्शन, टीम शक्ति एयर वॉरियर ड्रिल टीम, एयरफोर्स ड्रमर्स और हेरिटेज फ्लाइट की विशेष प्रस्तुतियां होंगी। मुख्य परेड एयरफोर्स स्टेशन हिंडन में आयोजित की जाएगी, जहां वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह के अलावा सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ, नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन और पूर्व वायुसेना प्रमुख भी उपस्थित रहेंगे। इस वर्ष वायुसेना दिवस के आयोजन के बारे में नई दिल्ली में जानकारी साझा करते हुए स्क्वाड्रन लीडर पल्लवी सांगवान ने कहा कि परेड से पहले MI-17 राष्ट्रीय ध्वज और भारतीय वायुसेना के ध्वज के साथ ध्वज फ्लाई पास्ट करेंगे। परेड के बाद अलंकरण समारोह में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली इकाइयों को प्रशस्ति पत्र दिए जाएंगे। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: वायुसेना दिवस से पहले नई दिल्ली में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल SP सिंह ने कहा कि वैश्विक संघर्ष के इस दौर में जब हर देश के पास गोला बारूद, विमान, परिचालन प्रणाली और सीमित रसद आपूर्ति भंडार है, आत्मनिर्भरता आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: अपडेट रहे, आगे रहें, X@AIRNewsHindi और Instagram पर AIRNews Alerts को फॉलो करें।
1: ये आकाशवाणी है। हुरमूज जलडमरू मध्य में कुवैत के ध्वज वाले टैंकर पर हुए हमले में 5 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उसने MT काजिमा 3 पर सवार 5 भारतीयों के बचाव अभियान का समन्वय किया। संयुक्त अरब अमीरात UAE के अटॉर्नी जनरल काउंसलर डॉक्टर हमाद सैफ अल शमसी ने कहा है कि फ्लाई दुबई की उड़ान FZ1073 की घटना की जांच में पाया गया है कि सह पायलट ने आतंकवादी कृत्य करने का प्रयास किया था। और जापान एशियाई खेलों की ताजा जानकारी के साथ हैं अब जागृति शर्मा।
5: जापान एशियाई खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत ने पुरुष क्रिकेट में पाकिस्तान को हराकर दूसरी बार स्वर्ण पदक अपने नाम किया। टी20 फाइनल में भारत ने चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को 19 रन से मात दी। भारत के 212 रन के लक्ष्य के जवाब में पाकिस्तान 196 रन ही बना सका। इससे पहले टॉस जीतकर भारत ने बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट पर 211 रन बनाए। इससे पहले इन खेलों में महिला क्रिकेट में भी भारत ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। आज ही प्रणवी उर्स ने गोल्फ में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। महिला रिकर्व तीरंदाजी में कुमकुम मोहोत ने इस स्पर्धा में देश के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। भारत पदक तालिका में पांचवें स्थान पर पहुंच गया है। कुल 81 पदकों में 19 स्वर्ण, 26 रजत और 36 कांस्य पदक शामिल हैं।
1: धन्यवाद जागृति इस तमाम जानकारी के लिए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार पशुपालन पर आधारित तंत्र विकसित कर रही है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे रही है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत के मुक्त व्यापार समझौते विश्व की 75% अर्थव्यवस्थाओं को शामिल करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के आज 12 वर्ष पूरे। हुरमूज जलडमरू मध्य में कुवैत के ध्वज वाले टैंकर पर मिसाइल हमला, 5 भारतीय नागरिकों को बचाया गया। और एशियाई खेलों में क्रिकेट में भारत ने पाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। पुरुष हॉकी के फाइनल में भारत का मुकाबला मलेशिया से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
7: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
6: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
8: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी आरजे रीना और मेरे साथ है आरजे खुशी। आप सभी को पता है कि देखिए हम जब भी आते हैं ना तो अकेले तो आते नहीं है, दोनों आ जाते हैं गपशप करने के लिए आप सभी के बीच। फिलहाल आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसका नाम सुनते ही हमारी जो प्यारी महिलाएं हैं ना और गर्ल्स भी इनफैक्ट उनके अंदर ना पता नहीं कौन सी पावर आ जाती है, कौन सा सुपर मैन आ जाता है उसके अंदर कि एकदम भैया वो घर का पूरे मैनेजर बन जाती हैं और घंटों का काम कैसे आधे घंटे में वो मैनेज कर लेती है कुछ भी नहीं पता चलता है। मतलब एकदम वो सुपर से भी डुपर हो जाती है। जलीली ये भी काम करना है, वो भी काम करना है, लेकिन किसका नाम लेने से पता चलता है कि वो जलीली घर का काम करने लग जाती है। इनफैक्ट पता चले कि उनके घर के कोई और आने वाले फिर तो और भी डबल वाली, मतलब उनके अंदर और भी ज्यादा पावरफुल एनर्जी आ जाता है। मैं बात कर रही हूँ घर पर, मान लिया आप बैठे हैं और एकदम आपको कॉल आता है कि आज घर पर मेहमान आने वाले, फिर तो भैया जो काम चुटकियों में होता है ना वो खुद भी नहीं समझ पाते। घर पर इनफैक्ट सब्जी भी नहीं होती है, सामान भी नहीं होते ना, वो भी चुटकियों के अंदर हम दुकान से मंगवा लेते हैं और हर चीज मतलब किसी भी चीज की कमी ना रहे एकदम पूरा करने लग जाते हैं। तो खुशी तुम क्या कहना चाहोगी?
9: हाँ मैं कहना चाहती हूँ, देखो आपने इतनी खूबसूरत बात छेड़ी है ना आज, तो आज बात उस फोन कॉल की है जो सुनते ही ना घर का पूरा माहौल बदल देती है। हेलो, हम बस आधे घंटे में पहुँचने वाले हैं। और बस इतना सुना होता है और घर की महिलाओं का दिमाग तेजी से काम करना शुरू कर देता है। कौन सा कमरा साफ करना है, सोफे पर कपड़े क्यों पड़े हैं, टेबल पर इतनी सारी चीजें क्यों रखी हैं, और सबसे बड़ा सवाल चाय के साथ क्या बनेगा। अभी तक जो महिला आराम से बैठी थी वो अचानक पूरे घर की मैनेजर बन जाती हैं। एक हाथ में झाड़ू, दूसरे हाथ में कपड़े और दिमाग में मेहमानों का पूरा मेन्यू। आपके घर में भी मेहमान आने की खबर मिलते ही ऐसा ही माहौल बनता है क्या? हाँ बताओ बताओ। ओहो, हमारी जो महिलाएं हमें सुन रही है ना वुमेनिया, वो बड़ा स्माइल कर रही है कि हाँ हमारे साथ तो ऐसा होता है। और सबसे पहले कौन सा कमरा साफ करना है, मेहमान आने वाले हो तो घर की महिलाएं सबसे पहले कौन सा कमरा ठीक करती हैं, जाहिर है वही कमरा जहां मेहमान बैठने वाले हैं, बाकी कमरों का क्या, उनके दरवाजे बंद? क्योंकि मेहमानों को साफ सफाई का वही हिस्सा दिखना चाहिए जो उनकी नजरों के सामने है। कुशन सीधा, चादर ठीक, सेंटर टेबल खाली और टीवी के आसपास की सारी चीजें अपनी जगह। कई बार तो ऐसा लगता है कि घर की साफ सफाई नहीं हो रही, बस मेहमानों के लिए एक टेम्परेरी एग्जिबिशन तैयार हो रही है। आपके घर में मेहमान आने पर सबसे पहले कौन सी चीज चमकाई जाती है, बताओ रीना, मैं आपसे जानना चाहती हूँ।
8: भाई देखिए, हमारे घर में सबसे ज्यादा मतलब ऑलमोस्ट सफाई तो रहती है, लेकिन बैठक को बहुत अच्छे से चकमका दिया जाता है।
9: ओहो, आपका जो गेस्ट रूम है वो चमचमाने लगता है।
8: और भी ज्यादा मेहमानों के आने की खबर मिलते ही दूसरा बड़ा सवाल होता है, चाय के साथ क्या खिलाए। बिस्किट हो, नमकीन है, लेकिन मन कहता है कुछ अच्छा होना चाहिए। फिर किचन में काम शुरू हो जाता है, आलू कितने हैं, बेसन है या नहीं, ये सवाल पूछते हैं, ब्रेड बची है कि? और अगर समय कम हो तो दिमाग में झटपट बनने वाली चीज की पूरी लिस्ट घूमने लगती है। मजेदार बात ये है कि मेहमान कहेंगे अरे कुछ बनाने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन घर की महिला फिर भी कहेगी ऐसे कैसे, कुछ खाइए। आपके घर में मेहमान आए तो चाय के साथ सबसे पहले आप क्या बनाते हैं,
9: ये आप हमारी ऑडियंस से पूछना चाहती हैं?
8: हाँ, वही बता सकते हैं।
9: अच्छा, तो उसके लिए आप नंबर भी बताइए ना,
8: 9837896896 पर आप हमें मैसेज करके बता सकते हैं।
9: और दोस्तों, जब घर में गेस्ट आते हैं ना, तो बच्चों का कमरा और अचानक सफाई, मेहमान आने वाले हों और घर में बच्चे हों, तो एक और मिशन शुरू होता है, बच्चों का कमरा साफ करना। बच्चे बोलेंगे अभी तो ठीक है, माँ की नजर जाएगी तो खिलौने, किताबें, कपड़े और जूते हर जगह दिखाई देंगे। फिर शुरू होता है ये यहाँ किसने रखा है, और बच्चों का क्लासी जवाब, पता नहीं किसने रखा है। आखिर में माँ खुद ही सामान समेटने लगती है, लेकिन असली सवाल ये है कि बच्चे रोज थोड़ी थोड़ी सामान अपनी जगह पर रखें तो मेहमान आने पर इतनी परेशानी क्यों होगी। आपके घर में भी मेहमानों से पहले बच्चों की सफाई की क्लास लगती है क्या? वैसे मुझे ऐसा लगता है रीना, पता है आपको, जब हमारे घर में गेस्ट आते थे ना और हम बहुत छोटे हुआ करते थे, तो मम्मा कहती थी घर पे मेहमान आ रहे हैं, शरारतें बिल्कुल नहीं करनी है और चुपचाप एकदम अच्छे बच्चों की तरह शांत बैठ जाना है, ठीक है, बातें नहीं करनी है और एकदम शांत बैठना है। जैसे हम घर में क्या करते हैं, बहुत हलचल मचाते हैं, बहुत ज्यादा खेलते थे, तो जैसे मेहमान आते थे हम खुद शर्माने लगते थे और शर्म के मारे हम तो रूम में चले जाते थे, बाहर निकलते ही नहीं थे।
8: मैं सच में मैं नहीं निकलती हूँ, अभी भी मेरी आदत है।
9: और पता है रीना, लेकिन हाँ, जब मेहमानों को जाने के टाइम होता था तो सबसे पहले हम बाहर निकल कर आते थे, स्पेशली मैं, क्योंकि जब मेहमान जाते हैं तो पैसे देते हैं ना, स्पेशली लड़कियां, तो लड़कियों को पैसे मिलते हैं, तो मैं ना जब मेहमान जाया करते थे घर से बाहर, मतलब जाया करते थे, तब मैं बाहर आती थी और मेहमान कहते थे गुड़िया इधर आओ, फिर मैं जाती थी तो वो मेरे को पैसे दिया करते थे, तो मैं ना शर्माती नहीं थी, मैं ले लेती थी। मम्मी कहती थी थोड़ा तो शर्माया करो बच्चा,
8: पैसों के मामले में शर्माना क्यों, कुरकुरे खाने के काम जो आते हैं,
9: काम जो आते हैं, राइट।
8: और बात, अचानक आई सफाई की याद, घर की, कई घर में रोज की सफाई अपनी जगह चलती रहती है, लेकिन मेहमान आने की खबर मिलते ही सफाई का लेवल अचानक बढ़ जाता है। पंखे के ऊपर धूल है या नहीं, पर्दे ठीक है या नहीं, टेबल पर निशान तो नहीं, बाथरूम में सब कुछ साफ है या नहीं, एक एक चीज चेक होने लगती है। जो कोना पीछे कई दिनों से नजर नहीं आया, वही आज सबसे जरूरी लगने लगता है। और फिर घर की महिलाएं खुद से कहती है मेहमान रोज तो नहीं आते, आज बस परफेक्ट होना चाहिए।
9: अब रीना, अपने मेहमानों की बातें भी की हैं और साफ सफाई की बात कर रहे थे आप, तो बिल्कुल जैसे ही मेहमान आते हैं तो घर में सबसे पहले ना साफ सफाई का ही ख्याल आता है जहन में। अब बात कर रहे हैं कपड़े कहाँ से आ गए। भाई मेहमान आने वाले हो तो घर में एक ऐसी चीज जरूर मिलती है जो अचानक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है, बिखरे हुए कपड़े, कुर्सी पर कपड़े, बिस्तर पर कपड़े, सोफे पर कपड़े, और कभी कभी तो कपड़े सूखने की जगह भी भर जाती है। एक एक करके सब उठाकर सही जगह रखने का काम शुरू, और इस दौरान घर की महिलाएं सोचती हैं ये कपड़े यहाँ किसने छोड़े। जवाब किसी के पास नहीं होता, लेकिन मेहमानों के आने से पहले सब कुछ व्यवस्थित करना जरूरी हो जाता है, क्यों रीना?
8: और घर की खुशबू भी जरूरी है,
9: ओहो खुशबू। हाँ
8: मेहमान आने से पहले ही सिर्फ घर साफ सफाई ही काफी नहीं लगता, घर की खुशबू भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। कोई रूम फ्रेशनर लगाता है, कोई अगरबत्ती, कोई किचन में अदरक वाली चाय बना रहा है, क्योंकि घर में प्रवेश करते ही एक अच्छी खुशबू पूरे माहौल को बदल देती है। लेकिन ज्यादा परफ्यूम भी नहीं, वरना मेहमान सोचेंगे कि घर की सफाई हुई है या परफ्यूम की दुकान खुल गई है। ये सोचते हैं दिमाग में आता है। और किसी किसी को हार्ड परफ्यूम वाली जो फ्रेग्रेंस होती है वो शूट भी नहीं होती है, तो ये भी ध्यान रखना होता है। असल में साफ घर के साथ हल्की सी फ्रेश खुशबू घर को और भी वेलकमिंग बना देती है। और साथ ही साथ एक और टेंशन हो जाती है, मेहमानों के लिए खास बर्तन।
9: अरे हाँ यार, ये तो सही बोल रहे हो आप। कुछ घरों में मेहमान आने की खबर मिलते ही ना स्पेशल क्रॉकरी बाहर आ जाती है। वो कप जो रोज नहीं निकलते, वो प्लेटें जो सिर्फ खास मौके पर इस्तेमाल होती हैं, घर की महिलाएं बड़े ध्यान से सब निकालती हैं और सोचती हैं किस कप में चाय अच्छी लगेगी, कौन सी प्लेट में स्नैक्स अच्छे दिखेंगे। ये छोटी छोटी चीजें मेहमानों का स्वागत खास बना देती हैं। लेकिन कई बार घर वाले पूछते हैं रोज क्यों नहीं इस्तेमाल करते। जवाब होता है ये मेहमानों के लिए है। आपके घर में भी कोई ऐसा स्पेशल बर्तन है जो सिर्फ मेहमानों के आने पर ही निकलता है? वैसे हमारे घर में रीना बहुत प्यारी प्यारी ब्यूटीफुल बाउल से कांच की एंड प्लेटें
8: सबके घर में होते हैं। वो जब मेहमान आते हैं तभी निकलते हैं, सिर्फ मेहमान नवाज।
9: लेकिन बच्चे जो होते हैं ना घर में वो बहुत नटखट होते हैं, वो बोलते हैं कि मम्मा मुझे इसी प्लेट में खाना है, मुझे इसी बाउल में देना है।
8: दो चार दिन के लिए तो उनके दिमाग से निकलता ही नहीं। नहीं नहीं मैं भी तो बच्चा हूँ ना, मेरे लिए भी अलग से प्लेट होना चाहिए।
9: बहुत, और बहुत से बच्चे बहुत जिद्दी भी होते हैं, वो मानते नहीं जब तक उनको नए बर्तन में खाना ना मिले।
8: लेकिन देखिए खाने के साथ साथ मुझे लगता है गाना सुनना भी बहुत जरूरी है।
9: गाना और खाना दोनों लाइफ में बहुत जरूरी है।
8: हाँ, तो हम यहाँ पर लेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद कनेक्ट होते हैं और करेंगे ढेर सारी बातें। फिलहाल आपको हमारी बातें सुनकर मजा तो आ रहा होगा, लेकिन देखिए आज आपके पास कॉल भी आ जाएगी किसी ना किसी का, भैया कि हम आ रहे हैं आपके घर, रेडी रहिएगा, कुछ अच्छा ताजा बना कर रखिएगा हमारे लिए। और आप बताइएगा जरूर कि आज आपके घर कॉल आया किसी मेहमान का कि हम आने वाले हैं। चलिए फिलहाल ये गाना परफेक्ट वाला सुनते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं।

0: देखिए श्रोताओं, बहुत अच्छा आपने गाना एंजॉय किया है और मेहमान का पसंदीदा खाना उस टाइम ये बहुत ज्यादा परफेक्ट होता है। जब वो मेहमान घर पर आते हैं तो जो उनसे ना पूछ भी लेते हैं, अच्छा क्या खाएंगे आज आप खाने में, बताइए आप जो बोलेंगे ना वही बनेगा घर पर। चाहे हम मम्मी को 10 दिन से बोले मम्मी आज पनीर बना लो, अरे कल तो बनाया था अभी 10 दिन बाद बनेगा, लेकिन जैसे मेहमान आते उन्होंने बोला कि बनेगा। हर परिवार में कुछ ऐसे मेहमान होते हैं जिनकी पसंद घर की महिलाओं को याद रहती है। किसी को चाय कम चीनी वाली पसंद है, किसी को नमकीन ज्यादा, किसी को मिठाई पसंद है और कोई आते ही पूछता है आज क्या बना है भाभी जी। ये सवाल आता है। ऐसे में मेहमानों की पसंद का ध्यान रखना भी प्यार दिखाने का एक अलग ही तरीका है। कई बार महिला को खुद याद नहीं रहता कि उसने कब क्या खाया, लेकिन मेहमान की पसंद जरूर याद रखती हैं। यही महिलाओं के अंदर की खासियत होती है कि वो हर किसी का ध्यान रखती हैं। अपनी ध्यान की तो छोड़ो, लेकिन मेहमानों का, घर वालों का ध्यान अच्छे से रख लेती है, अपना ही भले रखे ना रखे।
1: अब बात करते हैं हम मेहमान आते हैं तो बच्चों का मूड भी बदल जाता है रीना, पता है। खासकर अगर मेहमानों के साथ उनके हम उम्र बच्चे हों तो घर में अलग ही रौनक हो जाती है। पहले बच्चे थोड़ी शांत बैठते हैं, फिर धीरे धीरे खेल शुरू करते हैं और कुछ ही देर में पूरा घर प्लेग्राउंड बन जाता है। माँ एक तरफ चाय पानी संभाल रही होती है और दूसरी तरफ आवाज आती है, बच्चों को जरा देखो। लेकिन सच कहें तो बच्चों की ये मस्ती मेहमानों की बातचीत में और इंटरेस्टिंग चीजें, मतलब इंटरेस्टिंग ये हो जाता है जब बच्चों को वो खेलता हुआ देखते हैं कि चलिए अच्छी बात है, बच्चे अपने लगे हुए हैं खेल में और हम भी अपनी बातों में लगे हुए हैं, है ना रीना।
0: और साथ ही साथ मेहमान बोले हम बस चाय पियेंगे, ये बहुत फेमस वाला डायलॉग है, हम बस चाय पी के चले जाएंगे। और घर की महिलाएं मन ही मन सोचती है अच्छा जी देखते हैं, क्योंकि भारतीय घरों में ना चाय अकेली थोड़ी आती है, उसके साथ कुछ नमकीन, कुछ बिस्किट, कुछ मिठाई और अगर मौका हो तो गर्मा गर्म स्नैक भी आ जाता है। मेहमान मना करते रहते हैं और घर की महिलाएं कहती रहती हैं थोड़ा सा और ले लीजिए। यही छोटी सी नोक झोंक में हमारे मेहमान नवाजी की अंदाज को खास बना देती है।
1: और घर में पता है सबसे पहले क्या आते हैं, गर्मा गर्म समोसे।
0: हाँ, वह हमारे घर में जब समोसे आते हैं ना तो मम्मी जैसे मेहमान के लिए टेबल उसमें बाउल में रखती है।
1: हाँ।
0: लेकिन मैं कहती हूँ कम से कम एक तो बचा लेना, अभी बचा लेना क्योंकि मैं अभी खाऊंगी।
1: हाँ होता है ऐसा किचन में, मतलब जैसे ये सामान बाहर से लेकर आते हैं तो पहले हम क्या करते थे बच्चे, हम मम्मी को बोलते थे कि मम्मा हमारे लिए थोड़ा साइड में रख दो ना, हमें चुपके चुपके किचन में खाया करते थे और मेहमानों के लिए मम्मी लेकर जाती थी, तो वो टाइम भी बहुत ही खूबसूरत है यार।
0: टाइम नहीं, मेरा तो अभी भी है, सच बताऊं ये टाइम ये चीज मेरा बदलने वाला नहीं है। हाँ, मतलब अभी भी मैं घर पे रहती हूँ, जाती हूँ जब पता चलता है कि कोई आने वाला है तो उनके लिए कुछ चीजें बाहर से आती है तो उनके लिए तो प्लेट में रख दी जाती है, लेकिन मैं एक अलग से निकाल लेती हूँ। मैंने कहा नहीं, मुझे भी अभी मेहमान वाली फीलिंग चाहिए भैया।
1: अच्छा, मतलब पहले तुम भूख लगाती हो तब मेहमान भूख लगाते हैं।
0: नहीं नहीं, उनके लिए प्लेट चली जाती फिर मैं अंदर जाके उन्हें रूम में खा लेती हूं।
1: अच्छा जी।
0: मतलब मुझे लगता है कि ये जो आदत है ना, कुछ आदतें मुझे बदलनी नहीं चाहिए। हाँ। मैं ऐसी रखूंगी
1: जो ना, नहीं एक ना कहते हैं दिल तो बच्चा है जी,
0: और क्या,
1: तो थोड़ा बच्चा बनाकर रखना चाहिए। हम कितने भी बड़े हो जाएं एंड मैच्योर हो जाएं, लेकिन वो नटखट सा छोटा सा बच्चा अपने दिल में हमेशा होना चाहिए।
0: ये तो मैं हमेशा अपने आप को चेंज करने वाली नहीं हूँ।
1: हाँ ठीक है, बहुत प्यारा सा है ये आपका नीचो। एंड अब हम बात कर लेते हैं, खुद तैयार होना भी जरूरी है ना।
0: Yes.
1: मेहमान आने वाले हो तो घर की साफ सफाई और खाने की तैयारी में महिला इतनी व्यस्त हो जाती है कि खुद तैयार होना भूल जाती है। आखिर में दरवाजे की घंटी बजती है और सोचती है अरे मैं तो अभी तक ऐसी ही हूँ, फिर जल्दी से बाल ठीक, कपड़े ठीक और चेहरे पर स्माइल, क्योंकि मेहमानों का स्वागत करने वाली महिला खुद भी तो फ्रेश और खुश दिखनी चाहिए ना, ये भी जरूरी है। घर को सुंदर बनाने के चक्कर में ना खुद को इग्नोर करना सही नहीं है आपकी नजर। क्यों एवरीवन, अगर आपके घर मेहमान आ रहे हैं, आपने घर भी चमका दिया है, सब चीजें परफेक्ट हैं, नाश्ता भी बना दिया है, किचन भी चमाचम चमक रही है, लेकिन आप खुद भी तो चमकिए, तभी तो आप यू नो घर भी खुशहाल लगेगा जब आप खुद चमकेंगी। तो इसलिए मैं आपसे कहती हूँ कि आप भी सज संवर के रहिए, काम के साथ साथ ना तैयार होती रहिए। एक काम, किचन में चाय बना के आइए, फटाक से बाल बाल लीजिएगा, फिर किचन में जाइए, फिर तैयार होकर आ जाइए।
0: नहीं, मुझे लगता है कि एक बार रेडी हो जाओ फिर काम करो।
1: हाँ,
0: भाग दौड़ में ना चाय भी गैस से निकल जाती है भैया, डबल काम बढ़ जाता है।
1: ये बड़ा इग्नोर होता है, पता है हम जब तक किचन में खड़े रहते हैं ना तब तक तो लगता है कि अभी यार चाय बनी नहीं रही है, बॉयल ही नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे ही हम एक पलक झपकते हैं तुरंत गैस से बाहर चाय आ जाती है ना।
0: और मेहमानों के सामने बच्चों की शिकायतें, भैया ये तो भर के होती है, ये कोई छुपाने वाली बात नहीं है। मेहमान आए नहीं कि कभी कभी बच्चों की शिकायतें शुरू हो जाती है, ये पढ़ाई नहीं करता, ये मेरी बात नहीं सुनता, इसने कमरा गंदा कर दिया है। लेकिन बच्चों को सबसे डर तब लगता है जब माँ मेहमानों के सामने उनकी पुरानी सारी बातें बताने लगे। मेहमान बेचारे चाय पीते हुए सुनते रहते हैं और बच्चा चुपचाप नीचे देखता रहता है। वैसे बच्चों की छोटी मोटी शरारतें घर की जिंदगी का हिस्सा है, हर बात मेहमानों के सामने बताना जरूरी भी नहीं है, है ना, क्योंकि बच्चे ना थोड़ा सा नर्वस फील करते हैं फिर उस टाइम। और साथ ही साथ पड़ोस में मेहमान आए तो क्या होता है, कभी कभी पड़ोस के घर में मेहमान आते हैं और पूरा मोहल्ला समझ जाता है कि आज उनके घर कुछ स्पेशल बन रहा है। किचन की खुशबू आती है, घर के बाहर चप्पलों की लाइन दिखाई देती है और अंदर से बातचीत की आवाजें। हमारे मोहल्ले में पड़ोसी सिर्फ पड़ोसी नहीं होते, एक दूसरे की सुख दुख में शामिल भी होते हैं। ऐसे में अगर अचानक नमक, चीनी या कोई सामान कम पड़ जाए तो पड़ोसी ही काम आते हैं। उनके मोहल्ले में भी ऐसा ही कोई घर आए जहाँ मेहमान आए तो आपको भी खुशबू से ही पता चल जाता है, भैया पक्का इनके घर तो आज कोई आया है।
1: अब मेहमानों के आने से पहले जितनी तैयारियां होती है ना, उनके जाने के बाद किचन में भी उतना ही काम बढ़ जाता है। कप प्लेट वापस रखने हैं, बचे हुए खाने को सही जगह रखना है, गैस साफ करनी है और किचन फिर से व्यवस्थित करना है। उस समय घर की महिलाएं सोचती हैं अब थोड़ी देर बैठूं, लेकिन तभी कोई आवाज लगा देता है चाय मिलेगी और फिर महिला बस मुस्कुराकर रह जाती है। असल सवाल यही है, मेहमानों के जाने के बाद क्या घर की महिला को भी आराम मिलना चाहिए?
0: चाहिए तो सही, लेकिन मिलता नहीं है, क्योंकि पहली बात तो उनके दिमाग में भी खिचड़ियां पकती रहती है, यार पहले ये काम खत्म हो जाए उसके बाद ही मैं आराम से रिलैक्स करूंगी। और मुझे लगता है कि मेहमान आने की जितनी खुशी होती है ना, जाने में भैया जाते हैं ना, जब उतना ही काम इतना फैल जाता है कि उसके संभालने में, क्योंकि जो नई प्लेटें होती हैं फिर से जब उसको पैक करके रखते हैं तो अच्छे से वॉश करके सुखा के उसको धूप में थोड़ी देर रख के तब उसको पैक करके रखते हैं ताकि वो उसमें कोई जंग वगैरह कुछ इस तरीके से ना लगे। तो काम तो पहले भी बढ़ता है और जाने के बाद भी बढ़ता ही बढ़ता है। बाहर जाके अगर 4-5 घंटे में रिलैक्स करने का मौका मिलता है, इतने फिर शाम के खाने की तैयारी शुरू हो जाती है। मेहमानों की मेहमान नवाजी सिर्फ खाना नहीं होती, उनके आराम का ध्यान रखना भी जरूरी है। पानी चाहिए या नहीं, बैठने में आराम है या नहीं, बच्चों के लिए जगह है या नहीं, ये छोटी बातें बहुत मायने रखती हैं। खासकर अगर कोई बुजुर्ग मेहमान आए तो उनके लिए कुर्सी, पानी और आराम का ध्यान बहुत जरूरी है। अच्छी मेहमान नवाजी का मतलब बहुत सारा खाना नहीं होता, बल्कि सामने वाले को अपनापन महसूस कराना है। और आपके हिसाब से मेहमान नवाजी घर की सबसे खास बात क्या होती है? मुझे लगता है कि प्यार से आप उनके साथ हंस के बोलेंगे ना, उनके लिए वो बहुत मायने रखते हैं। और आपके चेहरे पर ना एक हल्के से मुस्कान होनी चाहिए ताकि उनको भी देख कर ये ना लगे कि हमारे आने से ये परेशान है, कि इनके काम बढ़ गई है। उनके आगे हमेशा हैप्पी रहते हैं ताकि उनको भी अच्छा लगे और अपनापन फील होए और उनको ये भी ना लगे कि हम आ गए हैं तो यहाँ बोझ तो नहीं बन गए। इसीलिए हमेशा मुस्कुराते रहिए, दूसरों को भी खुशियाँ बांटते रहिए और यूं ही हमारा एफएम मुरादाबाद सुनते रहिए। एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे, क्योंकि हम लेने वाले हैं यहाँ पर एक म्यूजिकल ब्रेक।

0: हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं फिर मुरादाबाद 89.6 और हम ब्यूटीफुल शो में आप सभी के साथ हाजिर हैं। और आज हमारा जो थीम है वो बहुत ही स्पेशल है। अब देखिए, मेहमानों की बात हमने की है, चर्चा की है, तो मेहमान और घर की असली तस्वीरें। कई बार हम सोचते हैं कि मेहमान आएंगे तो घर बिल्कुल परफेक्ट दिखना चाहिए, लेकिन सच ये है कि घर कोई होटल नहीं है। यहाँ बच्चे खेलते हैं, कपड़े सूखते हैं, सामान इधर उधर होता है और जिंदगी चलती रहती है। इसीलिए मेहमानों के लिए घर को साफ रखना अच्छी बात है, लेकिन इतना स्ट्रेस लेना भी जरूरी नहीं है कि घर की महिला खुद परेशान हो जाए। आखिर मेहमान घर की जिंदगी देखने आते हैं, किसी 5-स्टार होटल में नहीं आए हैं, तो इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। ओके एवरीवन,
1: मेहमानों की यादें। कुछ मेहमान ऐसे होते हैं जो आते हैं तो सिर्फ घर नहीं, यादें छोड़ जाते हैं। घंटों बैठकर बातें करना, पुरानी यादों पर हंसना, साथ खाना खाना और आते जाते कहना फिर जल्दी मिलेंगे, ऐसे रिश्तों में घर की साफ सफाई और खाने से ज्यादा जरूरी अपनापन होता है। कई बार साधारण चाय और घर का खाना भी बहुत खास लगने लगता है, क्योंकि साथ बैठने वाले लोग खास होते हैं। शायद यही वजह है कि हमारे घरों में मेहमानों को सिर्फ मेहमान नहीं, परिवार का हिस्सा माना जाता है और उनके साथ बिताई हुई बातें हमें अक्सर उनके जाने के बाद भी बहुत याद आती हैं।
0: तो एवरीवन, आज की हमारी बात का आखिरी पड़ाव यही है, मेहमान आने वाले हैं। सुनकर अगर घर की महिला के चेहरे पर सबसे पहले टेंशन आ जाए तो थोड़ा रुकिए। घर साफ करना, कुछ अच्छा बनाना, सबकी पसंद का ध्यान रखना अच्छी बात है, लेकिन मेहमान हमारे घर की खुशी बांटने आते हैं, सिर्फ हमारी परीक्षा लेने नहीं। इसीलिए अगली बार मेहमान आने की खबर मिले तो काम के साथ एंजॉय, थोड़ा एंजॉय भी कर लीजिएगा। चाय बनाएं, बातें कीजिए, हंसिए और यादें बनाइए, क्योंकि आखिर में याद घर कितना चमक रहा था ये नहीं याद रहता। याद रहता है कि उस दिन सब साथ बैठकर कितना खुश थे, कितना हंस रहे थे, कितनी प्यारी प्यारी बातें की हैं। तो एवरीवन, अगर आपके घर नेक्स्ट टाइम गेस्ट आए तो उनका जब कॉल आए तो सुनकर ना मुस्कुराइए और ज्यादा काम का लोड बिल्कुल भी मत लीजिए। देखिए, काम भी हो जाएगा जब आप खुश रहेंगे, और जब मन से कोई भी काम करते हैं ना तो वो काम अच्छा होता है और टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कहते हैं ना कि मेहमान भगवान का रूप होते हैं, तो बस खुश रहिए और अपने मेहमानों को अच्छा अच्छा पकवान बनाकर खिलाइए और खुद भी खाइए। और सुनते रहिए फिर मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। अब हम चलते हैं, फिर मिलेंगे आपको नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।
2: मैं चाहता हूँ कि हम दोनों का बिजली का बिल एक ही एड्रेस में आए।
3: पहले कनेक्शन तो एक हो जाए।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
2: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
3: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
2: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
3: अरे नहीं,
1: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
3: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड क्वाइन जीतने का मौका भी है।
2: अच्छा।
3: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता जैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।

0: हेलो जी, गुड वाली आफ्टरनून है। अर्जुरीना के साथ आप कनेक्ट हो गए हैं, यानी कि आपकी फरमाइश शो है वो शुरू हो चुका है। और समय की बात करूँ तो 3:07 हो चुके हैं और आज की तारीख 3 अक्टूबर अपने आप में बहुत ज्यादा खास है। अगर अब मैं मैच के बारे में बात करूँ, जैसे कि मैंने आपको सुबह ही बताया था, यानी कि ICC T20 फाइनल मैच था आज पाकिस्तान के बीच, तो पाकिस्तान वालों को भाई इंडिया टीम ने 19 रन से हरा दिया है। और अब वही मैच की बात करूं तो ODI का मैच यानी कि वेस्ट इंडीज के साथ फाइनल मैच चल रहा है, जिसमें हमारी टीम इंडिया यानी कि 2 विकेट तो गायब हो चुकी है और 47 रन हुए हैं। और इस टाइम रोहित शर्मा की बल्ला कुछ ज्यादा ही, सच बताऊं तो उनकी जो बल्ले की भाई तूफानी है ना, वो अलग ही झंकार बजा रही है। तो इसके बारे में हम बात करते रहेंगे। फिलहाल आपका जो फरमाइश शो है वो शुरू हो चुका है, तो आपने क्या करना है, हमें कॉल करना है। नंबर है 9823789689 पर कॉल करके आप जो भी गाना सुनना चाहते हैं डेफिनेटली आप उस गाने को सुन सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कॉल तो करना पड़ेगा। फिलहाल मुरादाबाद का टेम्परेचर है यानी कि 32 डिग्री सेल्सियस। तो चलिए हम अपने फर्स्ट कॉलर से बात करते हैं कि वो कौन सा गाना सुनना चाहते हैं। हेलो
1: हेलो रीना जी, राधे राधे।
0: राधे राधे सर, कैसे हैं?
1: बढ़िया है, बस मौज आ रही है, और कॉल लग गई तो और बढ़िया होगा।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है, मौज ही आनी चाहिए। और बताइए क्या नाम है सर आपका, कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: जी मैं जिला मुरादाबाद संभल रोड बस्तौर से अतल सिंह सैनी बोल रहा हूँ।
0: जी फैमिली में सब कैसे हैं सर?
1: सब बढ़िया है बस, और इस टाइम धान
0: है। अच्छा अच्छा धान कटाई चल रही है, कट गई खेतों की धान?
1: हाँ कटने शुरू हो गई है।
0: बताइए सर कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: आज रफी की आवाज में गाना है, तुमने किसी की जान को जाते हुए देखा है, वो देखो रोट कर मेरी जान जा रही है।
0: ओके मैंने देखा है सर।
1: और मेरे परिवार के कुछ लोग हैं, मैं नाम ले सकता हूँ?
0: जी बिल्कुल श्योर।
1: जैसे मीना मुन्नी, पवित्रा, अजय आंचल, आकांक्षा आकाश और खंडिया गेट से हैं अमरजीत भाई, और जितने भी सुनने वाले हैं सभी के लिए ये गाना सुनना चाहता हूँ।
0: चलिए जी सभी के साथ आपको ये हम गाना सुनवाते, ठीक है?
1: जी राधे राधे।
0: राधे राधे। तो चलिए गाना सुनते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में, बहुत ही खूबसूरत गाना। तुमने किसी की जान को जाते हुए देखा, तो इस गाने को सुनते हैं अभी कॉल करते हैं।

0: सनम हरजाई मूवी से आपने गाना एंजॉय किया है, जाने कौन ही हसीना जिसने दिल को है छीना। आपने सनम हरजाई मूवी से गाना एंजॉय किया है श्रोताओं। और अगर सिंगर की बात करूँ तो आशा भोसले जी अभिजीत सिंह की आवाज़ में ये गाना एंजॉय किया है। और आप आरजे रीना के साथ कनेक्ट हैं फरमाइश शो में। और समय की बात करूँ तो 3:22 हो चुके हैं। और आपने क्या करना है, बस थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना है और हम आपसे बात करते रहेंगे। और फिलहाल आपसे यही कहना चाहेंगे कि अगर आप कॉल करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें हमारा नंबर है 9837896896 पर कॉल करके आप अपना फेवरेट वाला गाना एंजॉय कर सकते हैं। हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी सर।
1: मैम आप कौन हैं?
0: नमस्कार सर।
1: हेलो,
0: हाँ जी सर। रंग फिल्म का गाना सुनना है, क्या नाम है आपका, कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: गुजरात से बात कर रहे हैं, मुंबई वसीम नाम हमारा।
0: ओके सर, बताइए कौन सा गाना
1: आपको
0: क्या कह रहे
1: हैं?
0: थैंक यू सो मच सर।
1: बहुत अच्छा था, बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम आपका।
0: सर मेरा नाम पता है आपको? सर मेरा नाम पता है आपको?
1: आपका नाम तो कल तो खुले थे, आपका नाम क्या है?
0: मेरा नाम रीना है सर।
1: रीना जी,
0: हाँ जी।
1: खुशी आई थी कल तो?
0: हाँ कल खुशी दीदी, मैं सैटरडे को आती हूँ। हाँ जी,
1: आज भी कॉल लग गया आपका, कॉल लगाने का जवाब है आपका।
0: तो बताइए कौन सा गाना सुनेंगे आप? चलिए सर, आपको एक गाना सुनवाते हैं, किसी का नाम लेना चाहेंगे?
1: हमारे भाई सलीम।
0: ठीक है सर, उन्हीं के साथ आपको ये गाना सुनवाते हैं। ठीक है, ओके। कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही साथ अगर मैं मैच की बात करूँ तो 15वां ओवर हमारा यानी कि इंडिया का शुरू हो चुका है और रन अभी ठीक ठाक है। उसके बाद बताएंगे, जब 100 से ऊपर क्रॉस हो जाएगा तब हम बताएंगे आपको, यानी कि 62 है अभी। और रोहित शर्मा 51 बॉल में यानी कि 35 रन बना चुके हैं। और अपने शो में हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने से पहले कुछ कमर्शियल एड ब्रेक है श्रोताओं, तो पहले हम कुछ कमर्शियल एड ब्रेक सुनेंगे, उसके बाद मैं आप सभी के साथ कनेक्ट होंगी। फिलहाल आप कॉल करते रहिए, नंबर है 9837896896। और एक बात और ध्यान रखिए, जिन्होंने मंडे ट्यूसडे वेनसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे मतलब फ्राइडे तक जिन्होंने कॉल किया है, कृपया सैटरडे में कॉल ना करें, क्योंकि मैं यहाँ पे हर चीज शो होता है, तो इसीलिए जिन्होंने कॉल नहीं करा आप उनको नंबर मौका दीजिए, वो कॉल करेंगे, क्योंकि उनकी भी फरमाइश बहुत अच्छी है, बहुत चॉइस उनकी बहुत अच्छी है, तो उनकी सुनिए, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ आ जाता है तो मैं नहीं उठाऊँगी, तो आप बार बार कॉल करेंगे, तो इसीलिए जिनको मौका नहीं मिला है वो कॉल करें। चलिए फिलहाल ये गाना सुनते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ कमर्शियल।
2: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
3: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
4: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।

0: दिया। क्या बात है जी, रंग मूवी से आपने बहुत ही शानदार वाला गाना एंजॉय किया है अलका याग्निक और कुमार सानू जी की आवाज में 90 सुपर हिट गाना। और आप आरजू रीना के साथ कनेक्ट है फरमाइश शो में। और समय की बात करूं तो 3:32 हो चुके हैं और ODI अगर आप मैच घर पर नहीं देख पा रहे हैं, ऑन द वे हैं या फिर आप कहीं से भी सुन रहे हैं तो डोंट वरी, आप बेफिक्र रहिए, मैं हूँ आपको बताने के लिए। यानी कि 78/2 के नुकसान पर इंडिया अभी 78 रन बनाई है। और ओवर की बात करूँ तो 17 ओवर चल रहा है अभी। और आप सभी तक हम अपडेट पहुंचाते रहेंगे, बेफिक्र रहिए, बस आप अपने काम पर फोकस रखिए और कॉल करते रहिए और गाना सुनते रहिए। चलिए फिलहाल हम अपने अगले कॉलर से बात करते हैं कि वो कौन सा गाना सुनना चाहते हैं। हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी सर, नमस्कार।
1: नमस्कार, मैं रामपुर से आयुब जी बात कर रहा हूँ।
0: जी बहुत बढ़िया है आयुब जी, आप बताइए कैसे हैं?
1: बस बढ़िया है जी, नहीं।
0: हाँ जी सर,
1: काम कर रहे हैं, आपका प्रोग्राम सुनना है।
0: चलिए जी, बहुत अच्छी बात है, बताइए क्या काम करते हैं आप?
1: मेरा काम तो वही है, गार्डनिंग का काम।
0: अच्छा अच्छा जी, ओके। तो बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं सर आज?
1: आज गाना है ऐसे तेरी याद आती है।
0: ओके जी, ऐसे तेरी याद आती है। चलिए, किसी के साथ सुनना चाहते हैं ये गाना? चलिए सभी दोस्तों के साथ आपको ये गाना सुनवाते हैं, ठीक है? ओके, तो हम गाना सुनते हैं खलनायक मूवी से ऐसी तेरी याद आती है, यानी कि अलका याग्निक और अलका याग्निक मोहम्मद अजीज जी की आवाज में ये हम गाना सुनेंगे। और आपसे बस यही कहते रहेंगे कि कॉल करते रहिए, नंबर है 9823789689। लेकिन जिन्होंने इस वीक कॉल किया है वो थोड़ा सा सतर्क रहिए, फिलहाल रोहित शर्मा जी ने अर्धशतक बना ली हैं। तो चलिए ये गाना हम एंजॉय करते हैं।

0: मूवी से आपने गाना एंजॉय किया है, कैसे तेरी ऐसी तेरी याद आती है, माधुरी दीक्षित। ओ माय गॉड, इनकी अदाएं वाकई में बहुत ही खूबसूरत है। और समय की बात करूं फरमाइश शो में, तो 3:41 हो चुके हैं श्रोताओं, और आज की तारीख 3 अक्टूबर। और आपने क्या करना है, हमें कॉल करना है। अगर आप गाना सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल कॉल करिए। और टेम्परेचर की बात करूं तो 32 डिग्री सेल्सियस मुरादाबाद का टेम्परेचर है, यानी कि बाहर बहुत ही गर्मी है। तो देखिए, पानी का भी आपने ध्यान रखना है, पानी भी टाइम टाइम पर पीते रहना है। ऐसा नहीं है कि पानी आपने नहीं पीना है, पानी पीते रहेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। अदरवाइज बॉडी में हल्का सा भी पानी की क्वांटिटी कम हुई तो सर दर्द, बॉडी आपको लेजीपन फील होने लगेगा, इसीलिए पानी भी अपने साथ रखें। और शाम का वेदर, शाम होते होते थोड़ा वेदर चेंज भी हो जाता है, तो इस चीज़ का भी आपने पूरा ध्यान रखना है। और बाहर शाम को आप बाहर जाते हैं तो फुल स्लीव के कपड़े ज़रूर पहनिए, क्योंकि मच्छरों की जो टोली है ना वो कम नहीं होती, शाम होते होते उनकी टोली शुरू हो जाती है कि चलिए दावत इश्क में चलते हैं, वो दावत में आ जाते हैं, खून चूसने लगते हैं। चलिए फिलहाल हम अपने अगले कॉलर से बात करते हैं कि वो कौन सा गाना सुनना चाहते हैं। हेलो,
1: नमस्ते बहन जी।
0: नमस्कार जी,
1: मैं डॉक्टर सितारे बिहार के वैशाली जिले में आपका स्वागत करता हूँ।
0: थैंक यू सो मच सर, बताइए कैसे हैं
1: जी। अच्छा हूँ, दुआ करता हूँ कि आप लोग निरोग रहिए।
0: जी जी बिल्कुल, आपकी दुआ बस मिलती रहे। बताइए सर क्या करते हैं आप।
1: मैं जनरल फिजिशियन हूँ, मान की सेवा करता हूँ, खेती भी करता हूँ, फल भी उगाता हूँ, दोनों काम करता हूँ।
0: अच्छा, कौन कौन से फल उगाते हैं आप।
1: आम है, लीची है, कटहल है, बड़हल है।
0: तो आम लीची तो सर अब खत्म हो गया।
1: हाँ तो फल का पेड़ है, गागर नींबू है, कागजी नींबू है।
0: गागर नींबू लेकर आइएगा सर, जब मुरादाबाद आइएगा आप।
1: थैंक यू, थैंक यू, बहुत अच्छी बात।
0: बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं।
1: सरस्वती चंद्र का फूल तुम्हें भेजा है खत में।
0: चलिए जी, आपने भेज ही दिया मुरादाबाद में फुल, और गाने आपके प्ले करने वाले हैं हम। बताइए किसी का नाम लेना। हाँ हाँ बिल्कुल,
1: मदिरा चंदेल, विजय कुमार पांडे, गजराज लोधी और आप लोग हुए।
0: चलिए जी, सभी के साथ आपको ही हम गाना सुनवाते हैं, ठीक है।
1: धन्यवाद।
0: चलिए जी, शुक्रिया कॉल करने के लिए। और बात करूं तो 102 रन बन चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पर। चलिए फिलहाल ये गाना सुनते हैं, फूल तुम्हें भेजा है खत में। लेकिन गाना सुनने से पहले कुछ कमर्शियल एड ब्रेक का टाइम हो गया है।
2: Hey, you're tuning to FM मुरादाबाद 89.6 FM।
3: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का थ्रिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120+ rooms, स्पा एंड मच मोर।
4: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
5: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
6: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
5: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।

0: हेलो जी, गुड वाली आफ्टरनून है आर्जे रीना के साथ कनेक्टेड श्रोताओं, और बहुत ही शानदार वाला आपने गाना एंजॉय किया है। रब ने बनाया तुझे मेरे लिए, लता मंगेशकर जी की आवाज में ही रांझा मूवी से आपने गाना एंजॉय किया है। फिलहाल हम अपने अगले कॉलर से बात करेंगे कि वो कौन सा गाना सुनना चाहती हैं। हेलो।
1: हेलो मैम
0: जी, बोलिए। नमस्कार।
1: नमस्कार मैम, कैसी हैं आप?
0: बहुत बढ़िया हूँ, आप बताओ कैसी हो?
1: हम बहुत बढ़िया मैम, अच्छे हैं। और आपकी फैमिली में, स्टूडियो में सभी लोग बढ़िया?
0: हाँ जी, हाँ जी, मेरी फैमिली में, स्टूडियो में सब बहुत बढ़िया है। आप अपना नाम बता दीजिए।
1: मैं सूरज खेड़ा, जिला मुरादाबाद से निशा बात कर रही हूँ।
0: निशा जी बताइए, क्या कौन सा गाना सुनना चाहती हैं आप?
1: मैम आप अपनी पसंद से कोई भी गाना सुनवा देना।
0: ठीक है जी, गाना हम आपको अपनी पसंद से सुनवाते हैं। ठीक है,
1: ठीक है मैम, थैंक यू।
0: ओके, वेलकम। तो चलिए श्रोताओं, हम गाना सुनते हैं, बहुत ही शानदार वाला आपको गाना सुनवाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले कुछ कमर्शियल एड ब्रेक।
2: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM. सिरदर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर, मुरादाबाद।
3: स्किन एलर्जी, मस्त से नाखून बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग। यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2, निकट विवेकानंद अस्पताल, मुरादाबाद। 7983153386।

आवाज में बहुत ही प्यारा गाना एंजॉय किया आपने, थोड़ी जगह दे दे मुझे। और समय की बात करूँ तो 4:23 हो चुके हैं, गर्ड वाली इवनिंग है जी फरमाइश शो में। फिलहाल हमारे पास नरेंद्र जी का कॉल आया था, तो एक्चुअली उनका मतलब नेटवर्क इशू के वजह से कॉल कट गया है, लेकिन उन्होंने जो गाना बताया वो डेफिनेटली हम प्ले करेंगे, क्योंकि नेटवर्क इशू के वजह से कॉल कट जाता है तो उसमें अब गलती तो किसी को भी नहीं कह सकते हैं, तो इसलिए ये गाना हम प्ले करते हैं। फिलहाल आप भी कॉल करते रहिए, नंबर है 9837896।

0: Hey, you're tuned into FM Moradabad 89.6 FM.
1: अरे सुनो, बैटरी और इन्वर्टर ऑनलाइन मिल सकता है क्या?
2: हाँ है ना, श्रीहरि डॉट इन। यहाँ मिलती है लुमिनस, माइक्रोटेक, एक्साइड, ओकाया और यूटीएल जैसे 100% जेन्युइन प्रोडक्ट, ऑथराइज्ड ब्रांड्स, एक्सपर्ट इंस्टॉलेशंस, सेम डे डिलीवरी और हैसल फ्री एक्सचेंज। तो आज ही विजिट करें श्रीहरि डॉट इन पर जाकर।
1: हेलो जी,
2: अनुभवी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शाहीन द्वारा संपूर्ण महिला स्वास्थ्य मेडिकल सेवाएं उपलब्ध हैं। आधुनिक लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, सुरक्षित सिजेरियन और नॉर्मल डिलीवरी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी की विशेष देखभाल, बच्चेदानी से जुड़ी हर प्रकार की सर्जरी, माँ और शिशु की सुरक्षित देखभाल के लिए नवजात शिशु विशेषज्ञ भी उपलब्ध है। साथ ही क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस की सुविधा और न्यूनेटल वेंटिलेटर के साथ संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल 7060002430।

0: हेलो जी, गर्ज वाली इवनिंग है आर्जरीना के साथ। फरमाइश शो में और समय की बात करूँ तो 4:28 हो चुके हैं और बहुत ही प्यारा आपने गाना एंजॉय किया है, भंवरे ने खिलाया फूल फूल, लता मंगेशकर जी की आवाज़ में, सुरेश वाडकर जी की आवाज़ में, फ्रॉम मूवी प्रेम रंग मूवी से आपने गाना एंजॉय किया है। और आइए बिना किसी देरी के अपने अगले कॉलर से बात करते हैं। हेलो
1: नमस्कार
0: जी, नमस्कार, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया मैडम, आप ठीक हो मैडम?
0: हाँ जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया है। क्या नाम है सर आपका, कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: मैडम यही केवल मंसूरी मैडम, ग्राम एचोरा तहसील जिला रामपुर से बात कर रहा हूँ मैडम।
0: नाम बताइए सर आप अपना।
1: नाम मैडम दही के अमन मंसूरी।
0: ओके ओके ओके। क्या काम करते हैं सर?
1: मैडम सिलाई काम करते हैं।
0: अच्छा, सिलाई का काम करते हैं, बहुत अच्छी बात है
1: जी।
0: बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: फिल्म जानवर में मैडम।
0: कितना
1: रुलाती है, कितना सताती है, यार ये वाली
0: माँ। ठीक है, ठीक है सर, हम आपको ये गाना सुनवाते हैं। ठीक है,
1: ठीक है मैडम, नमस्कार।
0: नमस्कार जी, तो चलिए हम गाना सुनते हैं। पास बुलाती है कितना रुलाती है, बहुत ही शानदार गाना भी है ये और मूवी भी बहुत ही प्यारी मूवी है। जानवर मूवी से ये गाना एंजॉय करेंगे जो कि 1999 में ये मूवी रिलीज़ हुई थी। तो इस गाने को सुनते हैं और अभी कॉल करते हैं, नंबर है 9837896896।

0: क्या बात है जी, बहुत ही शानदार वाला आपने गाना है। सुनिधि चौहान की आवाज़ में, अलका याग्निक जी की आवाज़ में जानवर मूवी से आपने गाना एंजॉय किया है, बहुत ही खूबसूरत। और माँ के लिए जब गाने होते हैं ना, सच बताओ बहुत ही खूबसूरत होते हैं, क्योंकि माँ जैसा निस्वार्थ प्यार आपको कोई नहीं कर सकता, कोई पूछ भी नहीं सकता कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। तो इसीलिए माँ का जो प्यार होता है ना, दुनिया में सबसे अनमोल होता है, सबसे खूबसूरत होता है। तो इसीलिए माँ का हमेशा कद्र करिए, उनकी बातों पे नाराज गुस्सा मत होइए, क्योंकि उनसे अच्छा और उनसे बेहतरीन प्यार आपको कोई नहीं कर सकता है। तो बिना किसी देरी के हम अपने अगले कॉलर से बात करेंगे कि वो कौन सा गाना सुनना चाहते हैं। तो बस आपसे यही कहना चाहेंगे कि कॉल करते रहिए, नंबर है 9823789686। हेलो,
1: हेलो, नमस्कार मैम
0: जी। नमस्कार, क्या नाम है आपका?
1: राजेंद्र गंगवार, कस्बा कोड़िया, तहसील नवाबगंज, बरेली से बोल रहे हैं मैम जी।
0: बरेली से बात कर रहे हैं आप?
1: हाँ मैम जी।
0: चलिए सर, बताइए बरेली का वेदर कैसा है?
1: बरेली का मौसम अभी तो बादल आ रहे हैं जा रहे हैं, बारिश नहीं हो रही है, सुना जा रहा है कि 2 दिन के बाद बारिश हो सकती है।
0: हाँ हाँ बिल्कुल जी, सही सुना है आपने। और बताइए क्या करते हैं सर आप?
1: हम तो कुछ नहीं मैम जी, अभी तो खाली है, वैसे तो हम जरी का काम करते थे।
0: ओके ओके, बरेली में जरी का काम बहुत करते हैं, है ना?
1: हाँ जी, हमारी बरेली जरी के नाम से जानी जाती है।
0: ओके ओके, बरेली का झुमका भी फेमस है ना?
1: हाँ जी, झुमका तो खैर फेमस है ही, और झुमका बना के टांग दिया गया है, और चौराहा बना दिया गया है।
0: ओके ओके सर, बताइए कौन से गाना सुनना चाहते हैं?
1: हाँ जी, मूवी का नाम है दिलवाले, गाने की बोल है कितना हसीन चेहरा।
0: कितना हसीन चेहरा, किसी का नाम लेना चाहेंगे सर?
1: हाँ जी, सबसे पहले आपको यादव जी, सतीश रघुवंशी जी, रणवीर मीठालाल जी, भगवान परमार जी, सोनू गौतम जी, और जितने लाइव श्रोता बनेंगे सभी को गाँव के पीछे।
0: चलिए सभी के साथ आपको हम ये गाना सुनवाते हैं, ठीक है सर?
1: मैम जी, हमारा बहुत दिनों के बाद कॉल लगा है।
0: वही सर, ट्राई करते रहिए, आपका कॉल लग ही जाएगा। आज आपकी कॉल लग गई, कल अगले वीक आप फिर कॉल करेंगे तो आपकी कॉल लग जाएगी। ट्राई करना पड़ेगा सर उसके लिए तो।
1: हाँ मैम जी, ट्राई तो करते हैं बहुत, लेकिन लगता नहीं है कभी कभार।
0: हाँ जी हाँ जी, बिजी आता है ना, इसलिए बैक टू बैक कॉल आते रहते हैं।
1: हाँ जी।
0: चलिए सर, हम आपको ये गाना सुनवाते हैं, ठीक है?
1: ठीक है।
0: चलिए, तो बहुत ही दिलवाले मूवी से हम गाना एंजॉय करेंगे, कितना हसीन है चेहरा। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि इंडिया यानी कि ODI मैच में इंडिया हमारी टीम ने यानी कि 170 रन बन चुका है उनका, 4 विकेट के नुकसान पर, यानी कि 4 विकेट डुल हो चुके हैं। नहीं तो आगे अभी देखना चाहेंगे, अभी अगर ओवर की बात करूं तो तीसरा यानी कि 30 ओवर चल रहा है, 30वां ओवर। और आप बस बने रहिए आर्जेंटीना के साथ, हम हैं आप सभी को बताने के लिए गेट टू गेट अपडेट।

0: हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है। फरमाइश शो में आप आरजे रीना के साथ कनेक्ट है और समय की बात करूँ तो 4:44 हो चुके हैं और आज की तारीख 3 अक्टूबर अपने आप में बहुत ही खास डे है, यानी कि नेचर डे भी आज मनाया जाता है। तो देखिए, नेचर से प्यार करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि नेचर जब स्वस्थ और शुद्ध होगा तभी आप अपने, यानी कि जो एयर है वो हमारा सही होगा, साफ होगा, तो हमें जो बीमारियां हैं वो थोड़ा सा कम मिलेगी। और साथ ही साथ अपने अगले कॉलर से बात करते हैं कि वो कौन सा गाना सुनना चाहते हैं। हेलो
1: इवनिंग मैम, मैं
0: जी, गुड इवनिंग सर, कैसे हैं आप?
1: तो एकदम सेकंड टाइम हूँ, आप बताएं कैसी हैं।
0: मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। क्या नाम है आपका?
1: पिंटू बात कर रहा हूँ।
0: जी पिंटू जी, बताइए क्या करते हैं आप राइट नाउ, अभी क्या कर रहे हैं?
1: अभी तो मैम मैं काम कर रहा हूँ। मैम आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ, चाय का वगैरह ले रहा हूँ।
0: चाय का तड़का?
1: जी
0: चलिए, बहुत अच्छी बात है, चाय का तड़का भी होना चाहिए।
1: मैम, आप हरी मिर्ची ज्यादा खाती है लगता है,
0: मैं क्यों?
1: लगता है मुझे क्योंकि
0: ऐसा क्यों लगता है सर आपको? तीखी
1: आपकी आवाज ऐसी है ना मैम। जी
0: वाली?
1: जी
0: मतलब तीखी वाली आवाज? कौन सी तीखी वाली? एक तो होती है दूसरी तीखी वाली, एक दूसरी तीखी वाली।
1: मतलब आपकी वॉइस मैम एकदम ठीक है, फर्स्ट क्लास है।
0: अच्छा, मेरे को तो लगा था भैया एकदम तीर वाली आवाज तो नहीं लगती मेरी।
1: जी
0: ये तो सही सुना आप, सही बोला आपने। मिर्च मिर्च मैं बहुत खाती हूँ, मेरे को बहुत पसंद है। खाना खाओ और जब उसमें तो मिर्च ना हो तो मजा ही नहीं आता ना, थोड़ा सा सीसी तो होना चाहिए ना।
1: जी मैम, अपनी अपनी चॉइस है, किसी को मीठा पसंद है, किसी को तीखा पसंद है।
0: जी, बिल्कुल।
1: हाँ जी मैम, हाँ
0: लेकिन
1: जी बताइए।
0: लेकिन ज्यादा मिर्च नहीं, बस एक मिर्च आप डेली खाना चाहिए।
1: जी
0: हाँ, बहुत होते हैं ना। पहले मगर मैं पहले की अगर मैं बात करूँ, जब मैं कॉलेज टाइम में थी तो मैं उस टाइम में 5-6 मिर्च खा जाती थी।
1: मैम, उन दिनों की तो बात ही अलग थी।
0: फिर अब धीरे धीरे मैंने कम कर दिया है, अब मैं एक डेली खाती खाती हूँ।
1: जी मैम, उन दिनों तो उस समय तो हमारे जो मतलब साथ के पढ़ने वाले फ्रेंड वगैरह थे, वो होते थे तो हमें पता चलता था हम क्या क्या खा लेते थे उनके साथ।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, वो दिन
1: जी जी
0: याद
1: तो
0: आते
1: मैम,
0: हैं ना।
1: जी जी तो वो बहुत जो है वो बहुत अच्छे लम्हे हैं मैम, जो पढ़ने
0: जी
1: के टाइम होते हैं।
0: हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। और सबसे अच्छी जो याद वाले दिन होते हैं वो स्कूल वाले दिन होते हैं।
1: जी, अब जो हमारे फ्रेंड है वो पता नहीं कोई कहाँ है, कोई कहाँ है। अब हम उनसे मिलने जाओ तो मिलेंगे नहीं।
0: हाँ,
1: बिजी
0: क्योंकि सब अपने लाइफ में बिजी हो चुके हैं ना।
1: है मैम।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, मतलब वही है सर, जब तक आप कॉलेज स्कूल में हो अच्छे से एंजॉय करो इस पल को, अदरवाइज दोबारा कभी मिलती नहीं है ये पल।
1: मैम कॉलेज टाइम क्या, जो भी आपकी जिंदगी है पहले उसे अच्छे से एंजॉय करो, दुखी मत हो, परेशान मत हो, निराश मत हो, बस।
0: बिल्कुल बिल्कुल, निराश नहीं होना चाहिए क्योंकि जो होना है वो तो हो ही जाएगा, इसलिए निराश नहीं होना चाहिए।
1: जी, अपना काम करता रहना चाहिए और मैम ऊपर वाले पे भरोसा रखना चाहिए, बस।
0: करेक्ट, ये आपने सही बात की है कि विश्वास बहुत जरूरी है। बताइए आप पिंटू जी, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
1: मैंने बताया था अरिजीत सावंत का गाना है मोहब्बत लौटाऊंगा।
0: ठीक है जी, ये वाला हम गाना आपको सुनवाते हैं, ठीक है?
1: जी मैम, मैं शायरी अच्छा करना चाहता हूँ आपकी जरा तो। ये है
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: कि खुली ही रह गई वो आंखें, मेरे आने में देरी हो गई थी। मैं गुल्ला फोड़ के जब वापस आया वो गुड़िया और भी महंगी हो गई थी।
0: बहुत ही खूबसूरत आपने शायरी पेश करी है। तो पिंटू जी,
1: जी
0: हम आपको एक गाना सुनवाते हैं, ठीक है?
1: थैंक यू वेरी मच मैम।
0: वेलकम सर। तो चलिए हम एक गाना सुनते हैं अभिजीत सिंह की आवाज़ में, मोहब्बत दिल लौटा दो। तो फिलहाल आप भी कॉल कर सकते हैं, अभी टाइम है आपके पास। नंबर है 9837896896। फिलहाल कुछ कमर्शियल एड ब्रेक के टाइम हो गए हैं।
2: Hey, you're tuned into FM Moradabad 89.6 FM.
3: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा। 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद। कॉल 7055011681।
4: डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
5: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
6: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
5: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।

0: किया। वहीं हॉकी में भारत और मलेशिया के बीच फाइनल मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 3-1 की बढ़त बना ली है। पदक तालिका में भारत 20 स्वर्ण, 26 रजत और 37 कांस्य सहित 83 पदकों के साथ पांचवें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने शानदार प्रदर्शन के लिए पदक विजेताओं को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति देने के लिए पशुपालन से जुड़ी व्यवस्था विकसित कर रही है। इसमें गोबर से बायोगैस और जैविक खाद बनाने से लेकर दुग्ध उत्पादों के प्रसंस्करण और बाजार तक पहुंच उपलब्ध कराने तक के प्रयास शामिल हैं। श्री शाह आज भोपाल में राज्य स्तरीय गौपालक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। गृह मंत्री ने आपराधिक न्याय व्यवस्था में सुधारों का उल्लेख करते हुए कहा कि भारतीय न्याय संहिता के पूरी तरह लागू होने के बाद भारत की आपराधिक न्याय व्यवस्था दुनिया में सबसे आधुनिक हो जाएगी।
1: कानून पूर्ण इम्प्लीमेंटेशन के बाद हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम दुनिया की सबसे आधुनिक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बन जाए, और इसके अंदर विज्ञान को हमने डाला है, ऑनलाइन सुनवाई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, FSL के प्रावधान और कई आधुनिक प्रकार के वैज्ञानिक संशोधनों को इसके साथ जोड़ा है। महिला सुरक्षा, गुमशुदा बच्चे, आतंकवाद, लिंचिंग, ये सारी चीजों से प्रोटेक्शन की व्यवस्था है।
0: श्री शाह ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता के पूरी तरह लागू होने के बाद प्राथमिकी दर्ज होने से लेकर उच्चतम न्यायालय तक मामलों का निपटारा 3 वर्ष के भीतर किया जा सकेगा। सरकार मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले कुख्यात सरगना नवप्रीत सिंह को तुर्की से सफलतापूर्वक भारत वापस ले आई है। देश की कानून प्रवर्तन एजेंसियों की इस उपलब्धि पर गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि नवप्रीत सिंह नवाब विर्क की फर्जी पहचान से तुर्की की नागरिकता हासिल करके अफगानिस्तान से भारत में मादक पदार्थों की तस्करी करता था। गृह मंत्री ने बताया कि नवप्रीत सिंह को नशीले पदार्थों की तस्करी और अन्य अपराधों से जुड़े कई मामलों में जेल भेजा गया है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि आर्थिक मजबूती को सामाजिक मजबूती से अलग करके नहीं देखा जा सकता। उन्होंने कहा कि तेजी से बदलती दुनिया में समावेशिता ही मजबूती की बुनियाद है। श्री राधाकृष्णन आज नई दिल्ली में 5वें कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। सम्मेलन का विषय था बदलते दौर में मजबूती। हॉर्मुज जलडमरू मध्य में कुवैत के ध्वज वाले टैंकर पर हुए हमले में 5 भारतीय नागरिकों को बचा लिया गया है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दूतावास ने MT Kazima 3 पर सवार 5 भारतीयों के बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों से समन्वय किया। सभी को सुरक्षित तट पर पहुंचा दिया गया है। आंध्र प्रदेश के सत्यवेदु मंडल की श्री सिटी स्थित एक निजी औद्योगिक इकाई में आज बॉयलर विस्फोट में 4 श्रमिकों की मौत हो गई और एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुख्यमंत्री N. चंद्रबाबू नायडू ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि सार्वजनिक सुरक्षा, कानून व्यवस्था और यातायात के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए नई दिल्ली में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लागू है। एक सार्वजनिक सूचना में नई दिल्ली के पुलिस उपायुक्त ने कहा कि अनधिकृत सभाओं, सार्वजनिक भाषणों, नारेबाजी, जुलूस, प्रदर्शन, धरना और अन्य निर्धारित गतिविधियों पर रोक है। न्यू चंडीगढ़ में भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीसरा और अंतिम एकदिवसीय क्रिकेट मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 37वें ओवर में 5 विकेट पर 225 रन बना लिए हैं। रोहित शर्मा ने 92 और ऋतुराज गायकवाड़ ने 57 रन बनाए। श्रृंखला में भारत ने 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशाह जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
2: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
3: नमस्कार मुरादाबाद, आप सुन रहे हैं 89.6 मेगाहर्ट्ज़ मुरादाबाद और मैं हूं आपका दोस्त और आपका

0: हेलो जी, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6। मेरा नाम आरजे आनंद है और आज का जो ये सेशन आप सुनने वाले हैं, एक खास बातचीत, बेहद ही अहम और बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पे आज हम बात करने वाले हैं। आपको पता है ना, जब भी हम स्टूडेंट के साथ बात करते हैं, स्पेशली उनके करियर को लेकर, तो बहुत सारे स्टूडेंट बड़े कन्फ्यूज हो जाते हैं। 12 के बाद स्पेशली बच्चे बहुत ज्यादा कन्फ्यूजन में रहते हैं कि यार 12 तो कर लिया लेकिन अब आगे क्या करें। स्पेशली पेरेंट्स बहुत ज्यादा कन्फ्यूज रहते हैं बिकॉज उनको भी नहीं समझ में आता कि बच्चों के लिए क्या बेस्ट होगा और क्या नहीं। इन सभी पर बात करने के लिए मैंने सोचा अपने वीडियो भी कुछ तो इंटरेस्टिंग होना चाहिए और आज हमने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंस्पायरिंग लेडी को इनवाइट किया है अपने शो में। आज हमारे साथ कौन कहां से जुड़ी है, जब आप उनके बारे में सुनेंगे तो आपको भी ना थोड़ा सा ऐसे लगेगा, ओ माय गॉड, सच में इतनी दूर से आप लेकर आए हैं हमारे करियर को शॉर्टलिस्ट करने के लिए कि हम क्या चुने क्या ना चुने। यस ऑफ कोर्स, ये हमने सोचा आप एफएम मुरादाबाद सुन रहे हो तो मुरादाबाद पे कुछ तो इंटरेस्टिंग होना चाहिए और आज इंटरेस्टिंग करने के लिए मैं अकेला नहीं हूं। मेरे साथ कौन है, आइए जरा बात करते हैं। हेलो, गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू डूइंग, वेलकम टू एफएम मुरादाबाद।
1: थैंक यू सो मच आरजे आनंद मुझे इनवाइट करने के लिए, तहे दिल से शुक्रिया आपका। बहुत खुश हूँ आपके साथ ये मंच शेयर कर पा रही हूँ टू डिस्कस विद द स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और के साथ।
0: मैं भी बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ और बहुत कम मौका मिलता है हमें कि जब हम मतलब ऐसे लोगों से भी कनेक्ट होते हैं जो हमारी प्रॉब्लम को छू मंतर करते हैं और उन्हीं एक आप हैं।
1: बहुत अच्छा लग रहा है कनेक्ट करके एंड आज जो टॉक शो होने वाला है इसको आगे जाने के।
0: मैं चाहूंगा थोड़ा सा आपका परिचय हो जाए हमारे मुरादाबादीज आपके बारे में जानने के लिए उत्सुक है, एक्साइटेड है, सो प्लीज टेल अस अपने बारे में थोड़ा सा क्विकली बता दें आप।
1: ओके, आई एम कृति मोहित वोरा, मैं करियर काउंसलर हूँ बाय प्रोफेशन एंड मैंने स्टडीज की भी है यूनिवर्सिटी ऑफ हेलसिंकी से फॉर सोशल एंड इमोशनल लर्निंग स्किल्स एंड सर्टिफिकेशन कोर्स किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, एनईपीएससी की तरफ से फॉर करियर एंड एजुकेशन काउंसलर एंड करेंटली मैं एक एकेडमिक पोजिशन होल्ड कर रही हूँ एक कंपनी में एंड आई डू टेक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्लासेज आउट।
0: दैट्स वेरी नाइस मैम, ब्यूटिफुल। एंड बट राइट नाउ वेयर आर यू, ये तो हमारे लिसनर्स को पता चलना चाहिए आप किधर हैं अभी।
1: मैं अमची मुंबई से हूँ।
0: ओ माय गॉड, मुंबई से, मुंबई से। अच्छा, तो मतलब वो उसे मुंबई में उसे बोलते हैं तुम्हें कशिक आई।
1: यस यस,
0: मुंबई की थोड़ी थोड़ी भाषा हमने भी, तो सोचो गाइस मुरादाबाद में सीधा मुंबई वाली फील आपको दे रहे हैं कृतिका मैम। सो मैम थैंक यू सो मच, इतना इम्पोर्टेंट टाइम आपने शेयर किया। और मैम आपको पता है ना, जैसे ही 12th हो जाता है बच्चों का, पेरेंट्स और बच्चे दोनों ही बड़े टेंशन में चले जाते हैं। उनको ये लगता है पता नहीं यार 12th तो जैसे तैसे कर लिया बच्चे ने, अब आगे क्या कराएं, ये बड़ी कन्फ्यूजन है स्पेशली हम भारतीयों में।
1: एग्जैक्टली, मैं समझ सकती हूँ एक्चुअली ये कन्फ्यूजन होना भी जरूरी है क्योंकि आजकल ऑप्शन भी इतने सारे हैं। पहले तो स्टैंडर्ड ऑप्शन थे,
0: अच्छा
1: पढ़ने वाला बच्चा हो तो वो साइंस में जाएगा, एवरेज हो तो कॉमर्स जाएगा,
0: एब्सोल्युटली
1: नहीं हो तो ह्यूमैनिटीज में।
0: राइट,
1: आजकल की एरा में बहुत सारे ऑप्शन है, इंजीनियरिंग, डिजाइन, डिजिटल मार्केटिंग, डेटा साइंस,
0: करेक्ट।
1: तो अगर वो बच्चा करियर काउंसलिंग लेता है तो उसको एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस मिलता है और एक गाइडेंस मिलती है कि आगे क्या कर सकता है, रादर देन सिर्फ ट्रेंड फॉलो करने से कंफ्यूजन बढ़ता है।
0: एब्सोल्युटली कृति मैम, आपने बहुत अच्छे से इसको बताया एंड आई थिंक मुझे भी यही चीज लगती है। और आजकल इतने सारे ऑप्शन आने के बाद भी लोगों में बहुत सारी कन्फ्यूजन है कहीं ना कहीं। सो वेल, इस विषय में हम डेफिनेटली आपसे टॉक करेंगे लेकिन सबसे पहले मैं आपसे पहला क्वेश्चन यही पूछूंगा, व्हाट एग्जैक्टली इज करियर काउंसलिंग, क्या है ये, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए हमारे सुनने वालों को कि आखिर करियर काउंसलिंग है क्या। बहुत सारे लोगों को नहीं पता है इस विषय में।
1: बेसिकली ये गाइडेड प्रोसेस होता है जिसमें हम एक्सपर्ट एडवाइस लेते हैं, बच्चे को समझते हैं, उसका इंटरेस्ट, एबिलिटी, उसकी पर्सनालिटी, स्किल्स क्या क्या है और उस हिसाब से उसको एक राइट दिशा दिखाते हैं जहाँ पे वो अपना करियर चूज कर सकता है।
0: करेक्ट, ओके। वही ना, एक्चुअली जिस फॉर्मेट पे हम बात कर रहे हैं, जिस चीज पे हम बात कर रहे हैं, ये आज के समय में ना बहुत सारे लोगों को अभी भी नहीं पता है। हालांकि डिजिटल टाइम है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से सारी चीजें अवेलेबल है, बट अंदर की जो चीजें होती है ना, करेक्ट, वो चीजें लोगों को समझ नहीं आ रही होती है कहीं पर ही।
1: वो बात है क्योंकि इतना इन्फॉर्मेशन है बट वो उनके लिए कितना सूटेबल है, एक्यूरेट है, वो अप्लाई कर पाएंगे कि नहीं, वो कंफ्यूजन अभी भी होता है।
0: एग्जैक्टली मैम, एक और क्वेश्चन जो मेरे जहन में अक्सर आता रहता है कि व्हाई इज करियर काउंसलिंग बिकम सो इम्पोर्टेंट टुडे, बिकॉज मुझे लगता है कि आज के समय में करियर काउंसलिंग इतनी जरूरी क्यों हो गई है, तो ये जानना तो डेफिनेटली बनता है, वो भी जब आप मेरे साथ हैं तो।
1: यस आज आनंद, मैं समझती हूँ, जैसे मैं आपको बता रही थी कि पहले के जमाने में मैक्सिमम क्या ऑप्शन आते थे, हाथ में गिनने लायक उतने ही ऑप्शन,
0: करेक्ट,
1: इंजीनियरिंग, डॉक्टर, टीचर या कोई सरकारी नौकरी कर लो।
0: राइट,
1: से ज्यादा तो कोई ऑप्शंस किसी के मन में आते ही नहीं थे। बट अभी के कॉम्बिनेशन एंड जो चूज कर सकते हो. जैसे बायो इन्फॉर्मेटिक्स एक एग्जाम्पल मैं बोलूँ, तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्यूटर साइंस विद बायोलॉजी. तो अगर बच्चे को बायोलॉजी में भी इंटरेस्ट है बट टेक्नोलॉजी भी उसका समथिंग पैशनेट है वो, तो ये दो कंबाइन करके वो बायो इन्फॉर्मेटिक्स में जा सकता है.
0: बिल्कुल.
1: तो अभी ऐसे मेजर माइनर ऑप्शन बहुत सारे हैं जिसमें बच्चा समझ नहीं पाता है, ट्रेंड के हिसाब से कंफ्यूज हो जाता है.
0: करेक्ट.
1: एंड फिर लेटर रिग्रेट करता है. तो वेयर करियर गाइडेंस विल हेल्प हिम विद द प्रॉपर गाइडेंस देयर.
0: ऑल राइट. ओके. सो आई होप लिसनर्स जितने भी मुझे सुन रहे हैं इस वक्त उनको इस सवाल का जवाब डेफिनेटली मिल गया हो, इस क्वेश्चन का आंसर. अच्छा मैम, जो स्टूडेंट है वो करियर चुनते समय सबसे बड़ी कौन कौन सी गलतियां हैं जो आपको लगता है कि अफकोर्स करते ही करते हैं, और क्या गलतियां हैं जो हो ही जाती हैं अक्सर स्टूडेंट से?
1: पांच मेजर गलतियां मैं बताना चाहूंगी एक्चुअली जो मेजरली बच्चे करते हैं. एक तो जो दोस्तों ने चूज किया है वो करियर ही हमारा करियर होता है, डिसाइड कर लेते हैं.
0: करेक्ट करेक्ट.
1: दूसरा होता है पापा ने बोला मेरे को इंजीनियर बनना चाहिए, मम्मी ने बोला मुझे डॉक्टर बनना चाहिए, सो लेट्स डू इट.
0: मैं
1: बनना चाहता हूँ कि नहीं चाहता हूँ अपने आप को हम पूछते ही नहीं है.
0: करेक्ट. हमारी क्या खुद की इच्छाएं हैं?
1: यस. फिर दूसरा रहता है द ग्लैमर साइड या पैसा जिसमें ज्यादा है मैं वो बनना चाहता हूँ. बट तुम्हारे अंदर वो कैपेबिलिटीज है नहीं है, पॉसिबिलिटी है तुम्हारे जगह में जॉब मिल पाएगी, पॉसिबिलिटी है कि नहीं उसका करियर कितना अच्छा जाएगा वो डोमेन में, ये सब नहीं ध्यान रखते हैं. एंड फोर्थ जैसे मैं बता रही थी, सबका इंटरेस्ट और स्ट्रेंथ हमेशा देखना चाहिए, अकॉर्डिंगली यू विल बी एबल टू वर्क रियली वेल. एंड देन चूजिंग द करियर बेस्ड ऑन प्रॉपर रिसर्च इज समथिंग दैट इज वेरी इम्पॉर्टेंट. क्योंकि अब अगर आप पेट्रोलियम इंजीनियर होना चाहते हो एंड मुरादाबाद में ही रहना चाहते हो फॉर एन एग्जाम्पल, तो उधर तो कोई माइंड ही नहीं है पेट्रोलियम के लिए. जैसे नांतला आप मुरादाबाद छोड़ के जाना चाहते हो, कहीं अब्रॉड वर्क करना चाहते हो या कोई माइनिंग में वर्क करना चाहते हो, देन ओनली उसका कोई फायदा होगा आप पेट्रोलियम इंजीनियरिंग पढ़ने का भी.
0: ओके.
1: तो दीज आर द मेजर फाइव थिंग्स मैं आपको बोल सकती हूँ. एक फ्रेंड्स की तरफ से स्ट्रीम चूज मत कीजिएगा पेरेंटल प्रेशर या सोसाइटी के प्रेशर से. दूसरा ट्रेंड या पैसा देख के अपनी इंटरेस्ट अपनी स्ट्रेंथ को इग्नोर करके और प्रॉपर एडमिशन ना लेके रिसर्च करने के अलावा.
0: वेरी नाइस मैम, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया. एंड आई एम श्योर जितने भी स्टूडेंट सुन रहे हैं, जो भी पेरेंट्स हैं, उनको बहुत ही अच्छे तरीके से चीजें समझ में आ रही होंगी, क्योंकि बहुत ही बारीकी से आप चीजों को एक्सप्लेन कर रही हैं. थैंक यू सो मच. एंड एक क्वेश्चन जो मेरे नहीं हर किसी के जहन में होता है कि जो करियर काउंसलिंग है वो किस उम्र में या किस स्टेज में एक्चुअली शुरू होनी चाहिए, आपको मैम क्या लगता है?
1: जो आइडियल एज बोलते हैं करियर काउंसलिंग के लिए,
0: या.
1: वो ग्रेड 8 टू 10 होता है.
0: ऑलराइट.
1: ऐसा नहीं है अगर अभी मेरा कोई लिसनर अभी होगा कि 11th ग्रेड का है, इट्स नॉट द राइट टाइम, उसका टाइम चला गया है. नहीं, बट आइडियल जो बोलते हैं वो क्लास 8 टू 10th ग्रेडर्स के लिए होता है. बट ये यू कैन इवन टेक करियर काउंसलिंग एट दी ग्रेड 11 और व्हेन यू आर वर्किंग, या आप कॉलेज में एक्चुअली एडमिशन ले चुके हो बट फिर कंफ्यूज हो, तो देर इज नो इश्यूज, नहीं ले सकते. बट आइडियल इज ग्रेड 8 टू 10.
0: 100%. बहुत ही बढ़िया कॉटन मैम. एक्चुअली मुझे भी लगता है मैम जो आपने बहुत अच्छे से जो चीजें डिफाइन करी, जो आपने किया, ये बहुत अच्छा एक तरीका और लोगों को समझ में भी आ रहा है. आई एम श्योर जितने भी लोग सुन रहे हैं

0: पूछना चाहिए, जो करियर काउंसलिंग है, क्या सच में वो जो कमजोर बच्चे होते हैं, जो कंफ्यूज होते हैं बहुत ज्यादा चीजों को लेके, जो सही डायरेक्शन नहीं पकड़ पाते हैं, क्या उन्हीं के लिए है या फिर सबके लिए है करियर काउंसलिंग? क्या लगता है आपको मैम?
1: बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है कोई बच्चा जो वीक है या टॉपर है उनके लिए ही होता है। ये करियर काउंसलिंग हर एक बच्चे के लिए है जिसको यू नो राइट डायरेक्शन चाहिए, अपनी पर्पस एबिलिटी समझ के करियर चूज करना है, सो दैट यू नो हैप्पीनेस एंड फुलफिलमेंट दोनों मिल पाए। करियर इज चॉइस ऑफ लाइफ बेसिकली, जिस हिसाब से मैं हमेशा बोलती हूँ। इट इज नॉट यू नो सिर्फ वीक बच्चा अपना चॉइस बनाता है कि यू नो टॉपर बनाता है, सबको अपनी लाइफ चॉइस करना होता है।
0: एग्जैक्टली आई एग्री विद यू। कृतिका मैम, दिस इज माई पर्सनल क्वेश्चन, आई वांट टू आस्क यू, दिस इज वेरी वेरी यू नो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड आई डोंट नो, मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी हो रही है क्योंकि मैं पहली बार किसी करियर काउंसलर से कनेक्ट कर रहा हूँ अपने स्टेशन के थ्रू, एंड आई एम वेरी ग्लैड आई एम हियर विद यू, दिस इज वेरी वेरी स्पेशल कॉन्वर्सेशन विद यू मैम, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आपका इतना इंपॉर्टेंट टाइम आपने शेयर किया हमारे स्टेशन पे हमारे लिसनर्स के लिए, सो थैंक यू वेरी मच बाय द वे।
1: आई एम टोटली हैप्पी टू बी हियर एंड डिस्कस, बिकॉज ये मेरा बड़ा पैशन है टू गाइड यंग एडल्ट्स, यू नो।
0: सो यू नो, थैंक यू वेरी मच मैम, माय प्लेजर मैम। दिस इज माय क्वेश्चन कि क्या करियर काउंसलिंग सेशन बेसिकली जो होती है वो किस चीज के लिए? हालांकि इसमें करियर ऑप्शन जब ये दे दिया गया है करियर काउंसलिंग, सो आई नो वेरी वेल, बट मुझे अंदर की चीजें जाननी है, इसमें किस चीज के बारे में बात होती है, कैसे जो काउंसलर्स होते हैं, जो एक्सपर्ट होते हैं, वो क्या चीज करते हैं? मेरे जैसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको जानना है कि बेसिकली करियर काउंसलिंग सेशन में होता क्या है।
1: तो मैं आपको बता दूंगी, अगेन ये भी एक 5 पॉइंट्स डिस्कस कर लूंगी। पहले हम स्टूडेंट को समझते हैं उसका इंटरेस्ट क्या है, उसके गोल्स क्या है, उसकी हॉबीज क्या है। देन सेकेंडली उसका एकेडमिक बैकग्राउंड,
0: ओके,
1: पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट है नहीं है, एवरेज है, ट्यूशन क्लासेस का जाना आना बंद है नहीं, ऑल दिस एकेडमिकली वी अंडरस्टैंड द स्टूडेंट। नेक्स्ट एक्सप्लोर करते हैं उसके साथ करियर ऑप्शन, एंड देन वी ऑल्सो कंडक्ट अ साइकोमेट्रिक टेस्ट जिसमें यू नो थ्रू दैट रिपोर्ट मैं समझ पाती हूँ उनका इंटरेस्ट, स्ट्रेंथ, एबिलिटी, वीकनेसेस सब जान पाते हैं, एंड देन लास्टली वी क्रिएट द करियर रोड मैप।
0: ऑल राइट, अभी मेरा क्वेश्चन भी यही होने वाला था कि व्हाट इज द रोल ऑफ साइकोमेट्रिक्स, इसी पर हम लोग अभी बात करने वाले थे।
1: यस यस, तो साइकोमेट्रिक बेसिकली एक साइंटिफिक टूल है जिससे हम बच्चे को समझ पाते हैं।
0: ऑल राइट,
1: जैसे ईसीजी होता है जिससे हार्ट का पता पड़ता है, विद द सेम वे एक करियर काउंसलर एक टूल यूज करता है टू अंडरस्टैंड द इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड, पर्सनैलिटी एंड स्किल्स। तो ये बहुत डेटा बेस्ड है एंड इट इज रिसर्च बैक, साइंटिफिकली बैक टूल है, विच इज नॉट रैंडम गेस वर्क के हिसाब से, नहीं मैं बताती हूँ कि ये चूज कर लो ये कर सकते हो, नहीं, इट्स ऑल साइंटिफिकली बैक।
0: ऑल राइट मैम, जेन्युइनली आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हो एंड वंस अगेन थैंक्स अ लॉट। अगला मेरा क्वेश्चन, इनफैक्ट ये क्वेश्चन मेरा नहीं है, ये पब्लिक के भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो हमें डेली पूछते रहते हैं हमारे लिसनर्स, रेडियो के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्टिविटी बनती रहती है, तो बहुत सारे स्टूडेंट हमें क्वेश्चन करते हैं, स्पेशली पेरेंट्स सबसे ज्यादा। वैसे मैम अगर मैं बात करूँ करियर चूज करने में पेरेंट्स की क्या भूमिका होती है, कितना इंपॉर्टेंट होता है उनका रोल स्पेशली पेरेंट्स का?
1: पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है एक बच्चे के भविष्य प्लान करने के लिए, रादर देन एक पेरेंट को हमेशा अपनी ड्रीम्स इम्पोज नहीं करनी चाहिए, लाइक मैं चाहती हूँ आप इंजीनियर बनो, कि मैं चाहती हूँ आप डॉक्टर बनो, ये नहीं होता है। इनफैक्ट बच्चे का इंटरेस्ट समझना, उसकी एबिलिटी समझ के उसको सपोर्ट करना, एनकरेज करना, ओपन कॉन्वर्सेशन करना बच्चे के साथ, ओपनली डिस्कस करना कि ये करना चाहते हो, क्यों करना चाहते हो, क्या सोचा गया था, कैसे आपने ये मन में आया, वेरी ओपन डिस्कशन विद द स्टूडेंट, सो दैट यू नो वो भी बहुत कॉन्फिडेंट लगेगा। इट इज फ्रॉम क्लैरिटी टू कंफ्यूजन टू क्लैरिटी बेसिकली।
0: या That's very nice, ma'am. That's very nice. कृतिका मैम, कृति मैम, मेरा जो क्वेश्चन एक और है कि स्टूडेंट भविष्य में जो उनके करियर को लेके वो खुद को मतलब कैसे प्रिपेयर करें, कैसे खुद को तैयार करें ताकि जो भी चैलेंजेस है, जो भी कंपटीशन का टाइम है, उसमें वो खुद को आगे लेकर जा सकें, खुद को कॉन्फिडेंट फील कराएं। होते हैं ना स्टूडेंट करना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन कभी कभी वो अनकॉन्फिडेंट हो जाते हैं, अनकॉन्शियस हो जाते हैं, जिसकी वजह से आधी चीजें उनकी ऑटोमेटिकली पीछे हो जाती हैं।
1: मैं कुछ 4 पॉइंटर्स बताऊंगी जो नॉर्मली एक बच्चा कर सकता है अपना एकेडमिक

0: प्रोफाइल बिल्ड करने के लिए बेसिकली. फर्स्ट है जो 21st सेंचुरी के जो बिल्ड करने को बोलते हैं, तो सारी 4 C's इन एजुकेशन. वन इज क्रिटिकल थिंकिंग, कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन, क्रिएटिविटी.
1: ऑलराइट,
0: अगर ये 4 स्किल्स आप डेवलप कर सकते हो अपने में बहुत अच्छा रहेगा. नेक्स्ट इज जितना हो सके प्रैक्टिकल एक्सपोजर के लिए जाओ, समर कैंप, प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप, जितना भी करेक्ट कर सकते हो विद इन योर लोकैलिटी या बाहर कॉलेजेस में. दैट इज समथिंग दैट आई वुड हाईली रेकमेंड.
1: That's very nice.
0: Third thing is to read books, to have a LinkedIn profile of yourself, connect with a mentor.
1: Absolutely, this is very important.
0: अगर आप कोई कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हो, if you want to go for your graduation, तो उधर के पास स्टूडेंट, करेंट स्टूडेंट से समझो कैसा है एनवायरमेंट, ऐसा भी आप कॉलेज जा रहे हो, क्या मेंटर्स सिखाते हैं. तो कनेक्ट विद दोस लाइक माइंडेड पीपल. नेक्स्ट इज यू नो टू बी अपडेटेड विद द इन टेक्नोलॉजी. एंड लास्टली विच इज क्वाइट एसेंशियल करियर के लिए भी, पर्सनली भी, कॉन्फिडेंस एंड टाइम मैनेजमेंट.
1: एब्सोल्युटली 100% सही बोला आपने मैम. आजकल ना मोबाइल का बहुत ज्यादा आपको भी पता है क्रेज बढ़ गया है. आजकल के यंगस्टर, जेंजी, सभी लोग मोबाइल में, पेरेंट्स भी सबसे ज्यादा यूज करते हैं, नो डाउट. तो ये जो मोबाइल टेक्नोलॉजी की दुनिया है, मोबाइल की दुनिया, इसमें लोग बहुत सारी चीजें इंटरनेट पे सर्च करते हैं, गूगल पे जाते हैं. आजकल ChatGPT, AI सब कुछ आ गया है, तो लोगों को लगता है यहाँ से भी बहुत सारी चीजें मिल सकती हैं. जबकि मुझे लगता है कि प्रैक्टिकली जब आप किसी करियर काउंसलर के पास जाते हो, तो जो डायरेक्शन वहां से मिलती है वो आपको ChatGPT या AI से नहीं मिल सकती है. इस पे आप क्या कहना चाहेंगी?
0: उसमें इंफॉर्मेशन बहुत मिलता है, बट आपके लिए क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, वो नहीं समझ में आता है.
1: करेक्ट, करेक्ट.
0: इट्स वेरी वास्ट, एक फूल की तरह मैं बोल सकती हूँ, या नदी की तरह इंफॉर्मेशन रहता है. बट उसको फिल्टर करके समझना कि आपके लिए क्या अप्लाई कर सकती हो, क्या नहीं कर सकती. सो बिलीव इन योर सेल्फ, योर पैशन कैन बिकम योर स्ट्रेंथ लेटर ऑन.
1: Absolutely, ma'am. Thank you so much. इतना टाइम आपने शेयर किया हमारे लिसनर्स के साथ, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर प्रिविलेज टाइम. एंड आई एम सो हैप्पी आपने इतना टाइम निकाला और आपने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करी. थैंक यू सो मच वंस अगेन. और आपको मैम आई होप अच्छा लगा हो हमारे साथ, हमारे मुरादाबादी से बातचीत करके.
0: यस, यस, बहुत अच्छा लगा. एंड आई वुड एंड विद अ स्मॉल कोट बेसिकली.
1: प्लीज मैम,
0: चूज अ जॉब यू लव एंड यू विल नेवर हैव टू वर्क अ डे इन योर लाइफ.
1: ऑलराइट मैम. एंड बाय द वे एक और एक लास्ट मैसेज, एक छोटा सा आपकी तरफ से कोई एक संदेश, व्हाट फाइनल मैसेज वुड यू लाइक टू गिव स्टूडेंट एंड पेरेंट्स लिसनिंग टुडे?
0: पेरेंट्स के लिए यू नो सपोर्ट योर चिल्ड्रेन, समझो उनको जितना भी हो सके, और भरोसा रखो उनकी जर्नी में भी. दैट इज क्वाइट एसेंशियल. एंड बच्चों के लिए यू नो बिलीव इन योर सेल्फ, योर पैशन कैन बिकम योर स्ट्रेंथ इज समथिंग दैट आई वांट टू ऐड ऑन टू.
1: दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. थैंक यू सो मच मैम, लवली टॉकिंग टू यू. आई कांट बिलीव दिस, कितनी जल्दी से हमारा टाइम हो गया, और हमें तो ऐसा लग रहा है कि अभी कितनी सी बात हुई, अभी तो और करनी थी हमें आपसे बातचीत. टू बी वेरी ऑनेस्ट, अनबिलीवेबल 20 मिनट होने को आ गए, बट पता ही नहीं चला. मैंने इंटरव्यूज तो बहुत सारी किए, लेकिन ये बड़ा डिफरेंट था.
0: थैंक यू सो मच, इट रियली मींस अ लॉट.
1: सीरियसली,
0: आई विश ऑल माय लिसनर्स अ वेरी ग्रेट डे अहेड.
1: एंड थैंक्स टू माय प्रोड्यूसर अखिल जी, जिन्होंने आपसे हमें कोऑर्डिनेट कराया. आई एम सुपर ग्लैड, बिकॉज बहुत कम चीजें ऐसी होती है जिनके साथ आप जब बात करते हो तो एक पॉजिटिविटी भी आती है और कुछ सीखने को भी मिलता है. एंड आई एम श्योर बहुत सारे लिसनर्स को भी, बहुत सारे पेरेंट्स को भी नॉलेज मिलेगा. इनफैक्ट मुझे भी बहुत कुछ जानने को मिला है. सो थैंक यू मैम वंस अगेन. सो मैम, जाते जाते हमारे मुरादाबादीज को आप कोई संदेश देना चाहें और साथ में कुछ कहना चाहें जो आपको लगता है कि छूट गया, नहीं ये चीज भी मुझे बोलनी चाहिए. आनंद,
0: तो करियर एक ऐसा है यू नो इट इज ऑल योर लाइफ चॉइस. तो एक अच्छा डिसीजन, इन्फॉर्म डिसीजन लीजिएगा. बिलीव इन योर सेल्फ, योर पैशन, एंड दैट विल वर्क यू एज अ स्ट्रेंथ. एंड पेरेंट्स के लिए जितना हो सके उनको सपोर्ट कीजिए, समझिए, और उनकी जर्नी में साथ दीजिए. बहुत लंबा जाएंगे वो. एंड एट एनी टाइम किसी को भी करियर में कंफ्यूजन है, क्लैरिटी चाहिए, डिस्कस करना है, यू कैन रीच आउट टू मी. आई वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू ऑल. मैं एक मैसेज या एक कॉल के थ्रू हमेशा अवेलेबल रहती. आई वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू. कभी भी आपको क्लैरिटी चाहिए, कंफ्यूजन है करियर में चूज करने के लिए, यू कैन रीच आउट टू मी, कॉल या मैसेज कुछ भी कर सकते हो. माय नंबर इज 9137406647.
1: थैंक यू सो मच मैम. बाय बाय मैम. थैंक यू सो मच, लवली टॉकिंग टू यू मैम.
0: ग्रेट, थैंक यू सो मच.
1: थैंक यू मैम. थैंक यू सो मच.
2: क्या आप एक ही जगह पर दुनिया की सैर और जबरदस्त रोमांच का मजा लेना चाहते हैं? तो चले आइए सात अजूबे पार्क। यहाँ शानदार अजूबों के दीदार के साथ आपको मिलेगा तीरंदाजी और मैकेनिकल बुल राइड जैसी एक्टिविटीज का फुल ऑन थ्रिल। तो पूरे परिवार के साथ आ जाइए सात अजूबे पार्क, न्यू मुरादाबाद।
3: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
4: अरे सुनो, बैटरी और इन्वर्टर ऑनलाइन मिल सकता है क्या?
5: हाँ है ना, श्रीहरि.in। यहाँ मिलती है लुमिनस, माइक्रोटेक, एक्साइड, ओकाया और यूटीएल जैसे 100% जेन्युइन प्रोडक्ट, ऑथराइज्ड ब्रांड्स, एक्सपर्ट इंस्टॉलेशंस, सेम डे डिलीवरी और हैसल फ्री एक्सचेंज। तो आज ही विजिट करें श्रीहरि.in पर जाकर।

0: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे रीना। फिर मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे। जी कहते हैं ना श्रोताओं, एक घर एक परिवार। जहां कभी एक ही थाली में खाना खाया जाता था, एक दूसरे की खुशियों में मुस्कुराया जाता था, लेकिन जैसे ही माँ बाप की उम्र ढलती है और बात जमीन जायदाद की आती है, वही अपने ही लोग आपस में लड़ने लगते हैं। कई बार माँ बाप पूरी जिंदगी मेहनत करके घर जमीन और संपत्ति बनाते हैं, उनकी बस एक ही इच्छा होती है कि उनके जाने के बाद परिवार प्यार से रहे। लेकिन अफसोस, कई घरों में सबसे पहले सवाल यह उठता है कि किसके हिस्से में आएगा संपत्ति। यही से शुरू होती है वसीयत की अहमियत। वसीयत सिर्फ कागज का एक टुकड़ा नहीं होती, बल्कि माता पिता की आखिरी इच्छा होती है कि अगर समय रहते सही तरीके से वसीयत बना दी जाए तो कई पारिवारिक झगड़े, कोर्ट कचहरी के चक्कर और रिश्तों में आने वाली दरारें रोकी जा सकती हैं। तो आइए आज हम बात करेंगे वसीयत क्या होती है, इसे कैसे बनाया जाता है, क्या यह जरूरी है और इससे परिवार को क्या फायदा मिलता है। इन्हीं सभी सवालों का जवाब देने के लिए मेरे साथ आज एडवोकेट अनिरुद्ध अरोरा जी कनेक्ट है। सर, आपका बहुत बहुत वेलकम है हमारे स्टूडियो में। और आप बताइए कि हमारे स्टूडियो में आकर आपको कैसा लगता है, जरा हमारे श्रोताओं को बताइए आप।
1: नहीं, मैं तो वेट करता हूँ हर वीकेंड्स पे कि आप कोई अच्छी सी नई सीरीज लेके आओगे लीगल टॉक्स में, अपने प्रोग्राम में, अवेयरनेस प्रोग्राम की, जिससे हमारे जितने भी लिसनर्स हैं कम्युनिटी रेडियो को, उनको कुछ नया जानने को मिलेगा।
0: पर अब की बार आपने वेट ज्यादा करवा दिया सर।
1: देखिए, कुछ होती है, कुछ प्रायोरिटीज होती है, तो मैं माफी चाहूंगा अपने रेडियो के लिसनर्स से भी, कम्युनिटी रेडियो के, कि मैं टाइम नहीं दे पाया था। लेकिन अब मैं कंटिन्यू रहूंगा आपके साथ में और आपकी सारी जितनी भी क्वेरीज है मैं उसको आंसर करने की कोशिश करूंगा। और आप बने रहिए अपने रेडियो कम्युनिटी सेंटर से, आपका मुरादाबाद कम्युनिटी जो 89.6 रेडियो है। शुरू करते हैं आज का।
0: जी बिल्कुल सर। तो श्रोताओं, आज का हमारा ये शो बहुत ही खास होने वाला है। कहते हैं इंसान अपने बच्चों के लिए पूरी जिंदगी मेहनत करता है, दिन रात की कमाई से घर बनाता है, जमीन खरीदता है ताकि उसके बाद भी परिवार खुशहाल रहे। लेकिन कई बार वही घर और वही जमीन अपनों के बीच दूरियों की वजह बन जाती है। प्यार की जगह हिस्सों की बातें होने लगती है और रिश्ते अदालतों तक पहुंच जाते हैं। ऐसे में एक समझदारी भरा फैसला न सिर्फ संपत्ति का सही बंटवारा तय करता है, बल्कि परिवार के रिश्तों को भी सुरक्षित रखता है। मुझे लगता है कि इसके बारे में बात होना बहुत जरूरी है।
1: ये बहुत छोटा सा वर्ड है वसीयत, लेकिन इम्पैक्ट बहुत अच्छा है इसका।
0: कहते हैं ना सर, छोटा पैकेट बड़ा धमाल।
1: टॉपिक बहुत आज का जो है बहुत ही के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनिएगा अपने लिसनर्स से मैं बोलूंगा।
0: बिल्कुल। तो सर, यानी कि आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वसीयत होता क्या है?
1: देखिए, वसीयत जिसको हम हिंदी में विल बोलते हैं, वसीयत एक तरीके का एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है, कानूनी दस्तावेज होता है, जिसमें कोई व्यक्ति ये लिखता है कि इसकी मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति जो है, उसकी एसेट्स जो है, किसको देनी है, कितने रेशो में देनी है और उसको डिवाइड कैसे करना है। तो ये सारी जानकारी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो एक अपनी विल के माध्यम से उसको जो है वो डिक्लेयर करता है कि मेरे ना होने के बाद मेरे, ताकि मेरे जो चिल्ड्रंस हैं या जो भी मेरे जो और जो मेरे रिलेटिव्स हैं उनके बीच में लड़ाई झगड़ा ना हो या कोई डिस्प्यूट पैदा ना हो, तो उससे प्रिवेंटिव होने के लिए वो एक डिक्लेरेशन देता है। उसी डिक्लेरेशन को उसको हम विल बोलते हैं, उसको हम लीगल डॉक्यूमेंट होता है वो एक, तो उसको ही वसीयत बोलते हैं।
0: मतलब फैमिली वालों का नाम मेंशन होता है उसमें।
1: हाँ, उसे जो भी उसकी कमाई हुई एसेट्स है, जो भी उसके पास जो संपत्ति है, उसका डाइवर्सिफिकेशन या डिवाइड उसको कैसे करना है, तो उसके बारे में वो सारी डिटेल्स खोल देता है, उसको अपने जीते जी वो जो है सब उसको डिक्लेयर कर देता है कि कल को उसके जाने के बाद इस दुनिया से कि कोई भी कंट्रोवर्सी उसके रिलेटिव्स में या उसके बच्चों में क्रिएट ना हो।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्या हर व्यक्ति वसीयत बना सकता है?
1: हाँ बिल्कुल बना सकता है, अगर आप 18 वर्ष के हैं या उससे अधिक आयु के हैं और आप मानसिक रूप से स्वस्थ हैं, एकदम आप बिल्कुल साउंड माइंड से जो है बिल्कुल होश और आवास में अगर कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, तो आप अपनी वसीयत, अपनी विल आप अनाउंस कर सकते हैं, अपने लीगल जो भी आपके कंसल्टेंट है या एडवोकेट है उनसे आप मिलके आप अपनी वसीयत बना सकते हैं और उसको आप जो है आने वाले फ्यूचर के लिए कोई भी अगर लगता है आपको कोई कॉन्ट्रोवर्सी आ रही है, तो उसको आप पहले ही उसे प्रिवेंट कर सकते हैं।
0: मतलब इसके लिए एज क्या होना चाहिए? सर?
1: एज देखिए 18 वर्ष हो या उससे ऊपर होनी चाहिए।
0: अच्छा,
1: एटलीस्ट आपको बालिग होना जरूरी होता है।
0: क्या वसीयत बनाने के लिए वकील की आवश्यकता होती है?
1: देखिए अनिवार्य तो नहीं है ये, लेकिन कई एक ऐसी कानूनी पेचीदगियां होती है उसमें, कानूनी लैंग्वेज आपको नहीं पता होती है तो आपको एक जो एडवोकेट है वो हायर जरूर करना चाहिए, जिससे कोई भी आपको अगर कोई लीगल वर्ड है या लीगल टर्म है जिसका आपको मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है तो कोई अगर देखिए आप प्रोफेशनल हायर करेंगे तो निश्चित तौर पे आप ही के लिए अच्छा है। तो मेरा सजेशन है कि आपको अपने जो भी लीगल कंसल्टेंट है या लॉयर्स हैं उनसे कंसल्ट करके ही आपको वसीयत बनवानी चाहिए।
0: सो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्या वसीयत स्टाम्प पेपर पर ही बनानी आवश्यकता होती है?
1: देखिए साधारण कागज पे भी आप कोई अगर अपनी विल करना चाहे तो कर सकते हैं और स्टाम्प पेपर भी कर सकते हैं, साधारण कागज पर भी वैध वसीयत बनाई जा सकती है।
0: क्या वसीयत का रजिस्ट्रेशन जरूरी है?
1: जरूरी नहीं है, लेकिन रजिस्ट्रेशन कराने से उसकी विश्वसनीयता बढ़ जाती है और अगर कोई विवाद सामने कोई आगे फ्यूचर आने वाला होता तो उसकी संभावना कम हो जाती है उससे।
0: और क्या सर वसीयत में दो गवाह होना आवश्यक है?
1: हाँ, वसीयत में विटनेस जरूर चाहिए होती है, ऑर्डिनरी तौर पे दो, एटलीस्ट दो विटनेस तो मैंडेटरी है, दो गवाह बिल्कुल होने चाहिए। बिल्कुल।
0: क्या वसीयत को कभी भी बदला जा सकता है?
1: हाँ, वसीयत अगर आपने कोई भी करी हुई है और आपको लग रहा है कि भाई मैं अपना माइंड आपका चेंज हो गया या आपको लगता है कि मैं वसीयत मैंने अपने जो है अब चेंज करना है या मुझे अपना ये हिस्सा बढ़ा के इतना देना है या कम करना है या नहीं देना, तो आपका राइट बनता है, आप अपने जीते जी अपनी वसीयत जो है आपकी वो अपने लाइफ में अपने जीवन काल में कभी भी रद्द कर सकते हैं, उसको कैंसिल भी कर सकते हैं या उसको बदल भी सकते हैं आप।
0: यदि किसी व्यक्ति ने वसीयत नहीं बनाई तो उसकी संपत्ति क्या क्या होगा?
1: देखिए ये प्रॉब्लम्स बहुत आती हैं आज की डेट में, लोग इतना डीप में सोचते नहीं है, वो सोचते हैं कि भाई चलो ठीक है वसीयत की क्या जरूरत है, लेकिन कॉमन देखिए लाइफ जो है हमारी जो है सबको पता है कि लाइफ का कोई भरोसा नहीं होता है ना, तो कभी भी कुछ मिस हैपनिंग हो सकती है, तो वसीयत तो एटलीस्ट कम से कम सबको करनी ही चाहिए। और अगर वसीयत नहीं बनाई होती है तो उस केसेस में प्रॉब्लम्स ये आती हैं जो उसके लीगल हायर्स हैं, जो उसके रिलेटिव्स हैं, जो चिल्ड्रंस हैं, उसमें आपस में थोड़ा कॉन्ट्रोवर्सी है, डिस्प्यूट्स होने की संभावना रहती है और फिर वो जो भी डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट हो जाता है सब्जेक्ट, वो आप कोर्ट के सू के माध्यम से ही उसको आप फिर चैलेंज कर सकते हैं। कोर्ट जो डिसीजन सुनाएगा जैसा भी कोर्ट को ठीक लगेगा, ऑन रिकॉर्ड क्या चीजें हैं और जो पार्टीज अपना अपना जो पक्ष रखती हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो कोर्ट डिसाइड करेगा उसी रेशियो में सबको जो है प्रॉपर्टी मिल पाती है। फिर
0: उत्तराधिकार का क्या अर्थ है?
1: देखिए उत्तराधिकार एक तरीके का सक्सेशन होता है, सक्सेशन मतलब अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है तो मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति उसके कानूनी वारिसों को मिलने की प्रक्रिया को हम उत्तराधिकार कहते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति है उसने जो है वसीयत कोई अपनी करी हुई है और उसकी डेथ हो जाती है तो उसके बाद जो संपत्ति मिलती है उसके उत्तराधिकारी को मिलती है, यानी जिसको उसने सक्सेशन किया है, जिसको उसने ऐसे।
0: एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है सर जो कि हर किसी के मन में घूमता रहता है, ये तो क्या बेटी को भी पिता की संपत्ति में बराबर का अधिकार होता है?
1: देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और मुझे लगता है कि मोस्टली लड़कियों को इसका आंसर नहीं पता होगा, वो सोचती हैं बचपन से ही उन्हें ये पता है कि मुझे तो शादी होके घर चले आना है, बस बात खत्म, तो ना वो कभी संपत्ति के लिए अपने हिस्से के लिए कभी कहती हैं अपने घर में और ना ही कभी उनको मिलता भी होगा, तो बहुत ही कम मैंने देखे हैं केसेस की लोग अपनी बेटी को शादी के बाद भी अगर हिस्सा देते हों, लेकिन हाँ वर्तमान में कानून के अनुसार बेटी को भी बेटे के समान अधिकार प्राप्त है, हर लड़की का हर बेटी का अपने परिवार में अपने फादर की संपत्ति में उसका अधिकार है, उनके बाद में वो अधिकार के लिए अपनी संपत्ति में हिस्से के लिए वो कोर्ट में सू कर सकती है, उसे राइट मिलता है।
0: क्या बात है, तो सुन लिया भाई लड़कियों बहुतों को नहीं पता था सर, सच में एक्चुअल में नहीं पता होता है क्योंकि उनको बचपन से यही कहा जाता है कि ये अभी तुम्हारा घर है, शादी के बाद तो वो हमारा अगला घर हो जाता है।
1: संपत्ति में जो है बेटी का भी अधिकार बनता है, बराबर का हिस्सा है, जितना बेटे का हिस्सा है उतना बेटी का हिस्सा।
0: सर एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या शादी के बाद बेटी का संपत्ति पर अधिकार समाप्त हो जाता है, यानी कि शादी हो जाने के बाद?
1: ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही भ्रांतियां फैली हुई हैं कि इस भाई लड़की की शादी हो गई अब तो उसका हिस्सा नहीं मिल सकता, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, शादी के बाद भी बेटी का संपत्ति पर, पैतृक संपत्ति पर अधिकार हमेशा बना रहता है, ये उसका लीगल राइट।
0: पैतृक संपत्ति और स्वयं अर्जित संपत्ति में क्या अंतर है?
1: देखिए, स्वयं अर्जित संपत्ति वह संपत्ति होती है जिसे व्यक्ति ने अपने परिश्रम से अर्जित किया है, अपना खुद उसने कमाया है, जबकि पैतृक संपत्ति वो होती है जैसे पीढ़ियों से कोई बाबा के या दादा के जमाने से कोई पीढ़ियों से चली आ रही कोई संपत्ति होती है, तो उसको हम पैतृक संपत्ति बोलते हैं।
0: क्या बात है श्रोताओं, बस यहाँ पर लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद आप सभी के बीच कनेक्ट होते हैं। आपने कितने नहीं जाना जी, रेडियो किसी बिल्कुल भी नहीं घुमानी यार, जो रीना के साथ कनेक्ट रही ऑल न्यू ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते।

0: म्यूजिकल ब्रेक के बाद एक बार और स्वागत है श्रोताओं आप सभी का, और आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहे गुनगुनाते रहे जी। और बहुत ही शानदार आपने गाना एंजॉय किया है, और बहुत से लड़कियों को भैया यही लगता है कि अभी भी कि शादी के बाद मायके का जमीन जायदाद हमारी नहीं है, हमसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इन फ्यूचर आपके साथ कुछ होता है तो देखिए मायके का गेट आपके लिए हमेशा खुला रहता है, आप कभी भी आ सकते हैं, क्योंकि मम्मी पापा के जायदाद में आपका भी पूरा अधिकार होता है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्या कोई व्यक्ति अपनी पूरी स्वयं अर्जित संपत्ति किसी एक व्यक्ति के नाम वसीयत करा सकता है?
1: हाँ बिल्कुल करा सकता है, ये संबंधित व्यक्तिगत कानून है और मामले की परिस्थिति पर निर्भर करता है, वो जो भी अपनी संपत्ति हो किसी एक व्यक्ति को भी डोनेट कर सकता है, वसीयत कर सकता है उसके लिए।
0: क्या मौखिक वसीयत मान्यता होती है?
1: समानता लिखित वसीयत अधिक सुरक्षित और प्रमाणिक मानी जाती है, मौखिक वसीयत केवल कुछ विशेष परिस्थिति में ही मान्य हो सकती है। और विशेष परिस्थिति ये होती है जैसे कोई बहुत ही सीरियस कोई बीमारी है, या बिल्कुल उसको लगता है कि वो इसकी लाइफ सर्वाइवल बहुत कम है या थोड़े टाइम की है, तो रजिस्ट्रार के सामने अगर वो कोई ओथ लेता है या मजिस्ट्रेट के समक्ष कोई ओथ लेता है और वो कोई ऐसी संपत्ति को डिक्लेयर करना चाहे या लिखने पढ़ने में असक्षम हो, तो उस समय मौखिक जो वसीयत भी वो किसी रजिस्ट्रार या मजिस्ट्रेट के समक्ष डिक्लेयर करके कर सकते।
0: यदि वसीयत पर विवाद हो जाए तो क्या किया जा सकता है?
1: देखिए संबंधित पक्ष न्यायालय में जाकर वसीयत की वैधता को चुनौती दे सकता है, और अदालत जो भी निर्णय होगा, जो भी डिसीजन लेगी साक्ष्यों के आधार पे और जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे उसके आधार पे, जो भी डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट होगा, जो डिसीजन होगा वो पक्षों को मानना पड़ेगा।
0: क्या नाबालिग बच्चों के नाम पर वसीयत किया जा सकती है?
1: बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक अभिभावक गार्जियन का उल्लेख करना उचित रहेगा, क्योंकि नाबालिग के लिए आप अगर कोई भी वसीयत कर रहे हैं तो उसको गार्जियन मतलब उसकी जो है मैच्योरिटी जो 18 ईयर्स ऑफ एज होने तक जो है गार्जियन अभिभावक जो है उसका उल्लेख करना मैंडेटरी होता है।
0: मतलब 18 प्लस होना ही चाहिए?
1: नहीं, वसीयत कर सकते हैं आप जो है नाबालिग के लिए भी, लेकिन एक गार्जियन जो है गार्जियन अभिभावक का उल्लेख करना उसमें उचित रहता है।
0: ओके,
1: उससे कोई भी उसमें आगे प्रॉब्लम्स नहीं आती है फिर।
0: ओके, क्या वसीयत में किसी भी व्यक्ति या संस्था को समर्पित की जा सकती है?
1: समर्पित, हाँ, आप कोई भी अगर कोई भी अपनी संपत्ति है, आप कानून के हिसाब से अनुसार व्यक्ति अपनी स्वयं अर्जित संपत्ति जो है वो किसी भी संस्था को आप डोनेट भी कर सकते हैं, वो उसमें कोई इशू नहीं है सर।
0: क्या परिवार के सभी सदस्यों को वसीयत की जानकारी देना जरूरी है?
1: देखिए वैसे तो ये लीगल डॉक्यूमेंट होता है और जो है कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है, जरूरी नहीं है, लेकिन पारदर्शिता बनाए रखने के लिए कोई आपका फ्यूचर में कोई कॉन्ट्रोवर्सी या डिस्प्यूट ना हो तो उसके लिए अगर आपको लगता है कि ये बताना जरूरी है तो आप बता सकते हैं, लेकिन कोई ऐसा मैंडेटरी नहीं है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप बताना चाहते हैं तो बता दीजिए और नहीं बताना है तो आप उसको कॉन्फिडेंशियली भी रख सकते हैं, लेकिन ये है कि अगर आगे फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट ना हो तो
0: मतलब बताना बहुत जरूरी है सर।
1: वो आपको लगता है कि अगर हाँ भी ठीक है मेरे बताने से ये चीजें जो है डिस्प्यूट पैदा नहीं होगा और मेरे मरने के बाद कल को लड़ाई झगड़ा ना हो, तो आप बता सकते हैं कि भाई मैंने इस तरीके से वसीयत विल कर दी है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आप लोगों को ये संपत्ति को पार्टीशन करना है।
0: संपत्ति के बंटवारे को लेकर विवाद होने पर सबसे पहले क्या करना चाहिए?
1: देखिए पहले तो कोशिश करनी चाहिए कि भाई म्यूचुअली आप जो रिकंसाइल करें, आपसी बातचीत से समझौते का प्रयास करें, कोई सॉल्यूशन निकालें कि वो जो है जो भी जो है डिस्प्यूट है आपका रिजोल्व हो जाए, बातचीत से ही रिजोल्व हो जाए। और उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि भाई जो है डिस्प्यूट रिजोल्व नहीं हो पा रहा है तो आप कोई भी लीगल जो है अपना कंसल्टेंट या लीगल कोई जो है आपके लॉन्गे या एडवोकेट्स होंगे, आप उनको जो है उनसे राय लेके आपका मशवरा करके आप कोर्ट के थ्रू केस डाल के भी आप उसको रिजोल्व करा सकते हैं।
0: एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है सर, आम जनता के लिए आपकी सबसे महत्वपूर्ण कानूनी सलाह क्या होगी?
1: देखिए यही सलाह है कि अपनी संपत्ति के संबंध में समय रहते स्पष्ट और विधि सम्बद्ध वसीयत बनवाए जो भी एस पर लॉ है, और आवश्यक दस्तावेज हमेशा व्यवस्थित रखें। किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय से पहले किसी योग्य अधिवक्ता से या कोई भी जो आपके लीगल कंसल्टेंटों से आप कानूनी सलाह अवश्य लें, और बस मैं यही बोलूंगा कि जो है प्रॉब्लम्स जो है हमें पता नहीं होती कब आने वाली है, तो आने वाले फ्यूचर के लिए अगर आपको भी लगता है कि कोई प्रॉब्लम आ सकती है तो आपको भी अपनी वसीयत जरूर बना के रखनी चाहिए और ये सेफ है प्योरली। और जो आप अपने रहते कभी भी वसीयत आप उसको चेंज कर सकते हैं, रद्द कर सकते हैं।
0: क्या बात है, एक छोटा सा संदेश क्या देना चाहेंगे सर आप?
1: देखिए संदेश मेरा अपने लिसनर्स से यही है कि आपका रेडियो कम्युनिटी रेडियो जो इतनी अच्छी अच्छी लीगल टॉक्स में इतनी अवेयरनेस की बातें लेके आते हैं उसको सुनते रहें और अपने लीगल जो आपके जो राइट्स हैं उसके प्रति सजग रहें और जो है हमेशा जो है जागरूक रहें और जो है बस यूं ही जो है हमारे शो को आप प्यार देते रहें।
0: थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छी बात कही सर आपने, क्योंकि श्रोताओं का प्यार हमारे लिए बहुत
1: जरूरी
0: है,
1: उन्हीं के लिए हम लोग हर वीक वेट करते हैं कि उनसे बात हुई हम जो है उनके लीगल राइट्स के बारे में हम डिस्कशन कर पाएंगे।
0: बिल्कुल, उम्मीद करते सर अगली बार बहुत जल्द हमारे साथ कनेक्ट होंगे,
1: नए टॉपिक के साथ मिलेंगे आपसे।
0: बिल्कुल बिल्कुल, चलिए सर धन्यवाद, थैंक यू सो मच।
1: धन्यवाद।
0: तो श्रोताओं आज के इस खास बातचीत में हमने जाना कि वसीयत आखिर क्या होती है, इसे बनाना क्यों जरूरी है और यह कैसे आपके परिवार के भविष्य को सुरक्षित रखने में मदद कर सकती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि वसीयत सिर्फ अमीर लोगों के लिए होती है, लेकिन सच तो यही है कि जिसके पास भी कोई संपत्ति, घर, जमीन, बैंक बैलेंस या कोई कीमती चीज है, उनके लिए वसीयत बनाना एक समझदारी भरा कदम। समय रहते बनाई गई एक सही वसीयत परिवार में होने वाले कई विवादों, गलतफहमियों और कानूनी परेशानियों से बचा सकती है। सबसे बड़ी बात, आपकी मेहनत की कमाई आपकी इच्छा के अनुसार सही व्यक्ति तक पहुंचती है। उम्मीद है कि आज की इस चर्चा ने आपकी कई शंकाओं का समाधान किया होगा और आपको यह समझ आया होगा कि वसीयत सिर्फ एक कागज नहीं बल्कि अपने परिवार के प्रति आपकी जिम्मेदारी और समझदारी की ओर लेके जाता है। और इसी उम्मीद के साथ मैं लेती हूँ यहाँ से जाने की इजाजत। थैंक यू सो मच सर कि आपने हमारे श्रोताओं को इतनी अच्छी जानकारी दी। बहुत सी गलत फहमियाँ होती है लोगों के अंदर जो आज क्लियर हो गया है, तो थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। फिर मिलेंगे श्रोताओं एक ऐसे टॉपिक के साथ, आप सभी के साथ, जहाँ करेंगे ढेर सारी बातें। अभी के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना और खुश रहिए अपनी जिंदगी में और अपने परिवार वालों के साथ मिलजुल कर रहिए। बाय।
2: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
3: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
2: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
3: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस टू, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
4: कॉल 7500153841। DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: आवश्यक सूचना 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन की मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
1: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
2: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
1: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
2: अरे नहीं,
3: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
2: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड कॉइन जीतने का मौका भी है।
1: अच्छा?
3: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता चैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।
4: हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त छाया और आप मुझे सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 MHz पर। रेडियो बजाते रहो, गुनगुनाते रहो। वैसे रेडियो बजाना और गुनगुनाना तो हमारा दिन भर का काम है, लेकिन आज के इस खास मौके पर, क्योंकि आज 9 अगस्त है, आज हम मनाते हैं बुक लवर्स डे, तो आज के इस खास दिन पर खास मेहमान हमारे स्टूडियो में हमारे बीच मौजूद हैं। आपको बता दूं, आज हमारे साथ हैं श्रीमती अमृता जैन, जो लिप्टोपिया पुस्तकालय की संस्थापक हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत हमारी स्टूडियो में आपका।
5: थैंक यू छाया, इट्स अ प्लेजर। मुझे बहुत खुशी हो रही है यहाँ आके इस स्पेशल दिन पर।
4: जी, तो इस खास दिन पर सबसे पहले बहुत सारी बातचीत होगी हमारी, लेकिन आपके बारे में थोड़ा बहुत जानना चाहेंगे हमारे सभी श्रोता और मैं भी।
5: ओके, सो सारे श्रोताओं को सबसे पहले बुक लवर्स डे की बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। और मेरे बारे में बस ये कह सकती हूँ कि मुझे किताबें पढ़ना बचपन से पसंद था, लेकिन किताबें पढ़ के कई

0: सारे फेजेस मैंने अपनी लाइफ की ऐसे पार कर दिए इजीली जो प्रोबेबली किसी के सुझाव से या किसी के हेल्प से मैं नहीं पार कर सकती थी। और मैंने अपने जो एजुकेशन प्रोग्राम है उसमें भी बहुत सारे बच्चों को किताबें पढ़ने की आदत डाली और उनमें वो चेंज देखा। तब मुझे लगा कि किताबें पढ़ना इस एज में, बच्चों के एज में बहुत जरूरी है। और वहां से ये मुझे आइडिया आया कि क्यों ना हम एक लाइब्रेरी खोले और एक क्यों हर स्कूल में लाइब्रेरी खोले, जिससे कि बच्चे स्कूल में जब वो जा ही रहे हैं तो वहीं से पढ़ना शुरू करें, ताकि स्कूल से बाहर आने के बाद उन्हें अलग टाइम न ढूंढना पड़े पढ़ने के लिए, उनके माँ बाप को परेशान न होना पड़े कहाँ ले जाए बच्चों को पढ़ने के लिए, कितने किताबें हम बाय करेंगे। तो ये सारी जो मोटिव्स हैं एक ही छत के नीचे हासिल हो जाए, पढ़ना भी, किताबें भी, कन्वीनियंस भी, इकोनॉमिक भी। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं लाइब्रेरीज खोलूंगी। और मेरी कंपनी मैंने स्टार्ट करी 2 साल पहले, जिसका नाम है लिप्टोपिया लाइब्रेरीज। तो मेरी कंपनी स्कूल्स के साथ जुड़ती है, उनके साथ लाइब्रेरीज खोलती है एंड इंश्योर करती है कि बच्चे किताबें पढ़े, वो कल्चर वापस आए, बच्चों में प्यार और रुझान बढ़े किताबें पढ़ने।
1: क्या बात है। तो मैम ने बच्चों के बारे में इतना सोचा, बच्चे किताब पढ़े, और मुझे भी बुक पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अभी तो बच्चों के लिए इन्होंने बहुत कुछ किया है, आज इनके बारे में हम जानेंगे। मैम आपको भी किताबें पढ़ना बहुत पसंद है?
0: मुझे किताबें पढ़ना मतलब आई लिव विद बुक्स, मैं सारा दिन हमेशा मेरे साथ, अभी भी मैं तुमसे बात कर रही हूँ तो मेरे पास किताब है बैग में, तो वो हमेशा मेरे पास रहती है। जो किताबें पढ़ने का शौक रखते हैं उसे कहते हैं बिब्लोफाइल, और एक होता है लेक्टोफाइल जिसको पढ़ने का ही शौक है, फिर आप उसे टूथपेस्ट का पैकेट भी पकड़ा देंगे तो पीछे जो लिखा हुआ रहता है ना वो भी पढ़ लेगा। तो मुझे इतना ज्यादा पढ़ने का शौक है।
1: क्या बात है। तो आपकी जो पसंदीदा बुक है वो कौन सी है और उसके लेखक कौन है?
0: मुझे वैसे तो एक बुक लवर से ये पूछना कि आपकी पसंदीदा बुक कौन सी है, ये धर्म संकट है छाया। तुमने मुझे धर्म संकट में डाल दिया। लेकिन जो मेरी टॉप 10-50 जो भी है उसमें से एक बुक जो मुझे हमेशा याद आती है, पसंद है, जिसको मैं काफी पढ़ती हूँ अगेन एंड अगेन, इज क्रिस्टिन हाना ने बुक लिखी हुई है और बुक का नाम है द नाइटिंगेल।
1: जी।
0: सो नाइटिंगेल इज एक्चुअली रिटन फ्रॉम एक ट्रू स्टोरी से इंस्पायर्ड बुक है, और ये बुक लिखी गई है जब World War II हुआ था, उस बैकड्रॉप को उठाकर इस स्टोरी को लिखा गया। तो ये हिस्ट्री फिक्शन बुक है, सो देर इज लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, हिस्ट्री इन्फॉर्मेशन इन इट, एंड देन देर इज अ फिक्शन, एक स्टोरी भी साइड बाई साइड चल रही है। तो ये मेरी सबसे फेवरेट बुक है।
1: क्या बात है। हिस्ट्री अगर जाननी हो तो ये बुक जरूर पढ़ लेना, मैं तो पढ़ने वाली हूँ। और अभी कोई किताब पढ़ रही है क्या आप?
0: हाँ जी, मैं बुक पढ़ रही हूँ, जैसे मैंने आपको कहा मैं हमेशा बुक पढ़ती रहती हूँ। और मैं पढ़ रही हूँ इस वक्त अमिश त्रिपाठी की, उनकी रामचंद्र सीरीज आई हुई है, उसके शिवा ट्रायोलॉजी के बाद। अमिश त्रिपाठी के बारे में तो बहुत लोग जानते हैं, ही इज वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग एंड रॉक स्टार जो हमारे इंडियन लिटरेचर के जो करंटली है। तो उनकी मैं किताब पढ़ रही हूँ लंका। तो रामचंद्र सीरीज में बेसिकली 4 किताबें हैं, राम, सीता, रावण एंड लंका। तो मैं 4th बुक पे पहुंच गई हूँ, लंका। एंड मुझे लगता है हर नौजवान ने, हर यंगस्टर ने ये किताब पढ़नी चाहिए, अमिश त्रिपाठी की एंटायर सीरीज। ये जिस तरह से माइथोलॉजी के बारे में बोलती हैं कि अमिश हैज रीडिफाइंड माइथोलॉजी, उसका वो जॉनर जो है माइथोलॉजी का, उन्होंने जिस तरह से उसमें लिखना शुरू कर दिया है, आज तक किसी ने उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लिखा था। तो और इतनी इन्फॉर्मेशन, जब हमारा देश सोने की चिड़िया था, जब हमारा देश अखंड भारत था, तो वो कितना रिच था, उसका क्या कल्चर था, क्या पावर थी, क्या एबिलिटीज थे, हम लोग क्या करते थे। सो ऑल दैट इन्फॉर्मेशन इज पावर पैक्ड इन किताबों में, और ये इन्फॉर्मेशन इतनी यूनिक और इतनी डेप्थ है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन विकिपीडिया पे भी अभी जल्दी से नहीं मिलेगी। तो सारी इन्फॉर्मेशन 4 किताबों में बिल्कुल पैक करके डाली गई है, विद अ लवली स्टोरी ऑफ राम, सीता, रावण, एवरीथिंग अलॉन्ग विद इट।
1: क्या बात है। अब आपने ये विकिपीडिया का नाम लिया है, तो मेरा सवाल आपसे अगला यही है कि किताबें पढ़ना मैक्सिमम लोगों को बहुत पसंद होता है, जैसे आप तो बुक लवर हैं ही, आप क्या बताना चाहेंगे कि मतलब डिजिटल बुक पढ़ना ज्यादा सही होता है या फिर नॉर्मल बुक ही पढ़े?
0: ओके, तो छाया आपका तो प्रोफेशन है सवाल पूछना, तो मैंने सोचा चलिए आपको मैं एक सवाल पूछती हूँ। जब आप न्यूज़पेपर पढ़ती हैं तो कौन सी न्यूज आपके दिमाग में ज्यादा रजिस्टर होती है, न्यूज़पेपर हाथ में पकड़ी हुई या जब आप न्यूज न्यूज के जो छोटे छोटे स्निपेट्स आप मोबाइल पे देखते हैं वो पढ़े हुए आपको याद?
1: मुझे न्यूज़पेपर हाथ वाले बहुत पसंद आते हैं और वही मैं पढ़ना ज्यादा प्रेफर करती हूँ, वो समझ आते हैं मेरे।
0: राइट, क्योंकि जवाब आपने दे दिया। उसकी वजह ये है कि जब हम न्यूज़पेपर हाथ में पकड़ते हैं वो हम कनेक्ट कर रहे हैं, हमारा डायरेक्ट कनेक्शन है। और डिजिटल में क्या होता है, इट्स आप बुक बेशक पढ़ रहे लेकिन वो टेक्स्ट है, वो बस स्क्रीन के ऊपर आता हुआ टेक्स्ट है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फीलिंग नहीं आती बुक वाली। सेकेंड, आपका कनेक्शन बार बार टूटता रहेगा बिकॉज नोटिफिकेशन आते रहेंगे, वो स्क्रीन है वो डायरेक्ट कनेक्ट नहीं आता। वो हाथ में बुक को पकड़ने का मजा, वो पन्नों को पलटने का मजा, वो बुक की जो खुशबू होती है, दिस ऑल थिंग गिव्स अ टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस। डायरेक्ट कनेक्ट, कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट जिसे कहते हैं, वो एक फिजिकल किताब से आता है, डिजिटल किताब से नहीं आता। हाँ, डिजिटल किताब आप कब पढ़ सकते हैं या कब पढ़ना चाहिए? जब आप इतने डेवलप्ड रीडर बन गए हो कि आप इतने इमीडिएटली कनेक्ट कर रहे हो किताब के साथ कि आपको कोई चीज डिस्टर्ब कर नहीं सकती और आप हर जगह किताबें कैरी नहीं कर सकते बहुत सारी, तब आप किंडल लेके घूमे, डिजिटल पढ़े कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपको बच्चों को रीडर बनाना है तो किंडल या डिजिटल इज नॉट द वे। सही तरीका बच्चों को किताबें में रुचि जगाने के लिए है हार्ड, जो रियल फिजिकल किताबें होते हैं जिसे हम हाथ में पकड़ सकते हैं।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बताई आपने, और कहीं ना कहीं ये मोबाइल से दूर रहने के लिए भी एक संकेत दिया है।
0: एब्सोल्युटली, हम डिजिटल अगर कंटेंट पढ़ेंगे या किताबें स्क्रीन पे पढ़ेंगे तो हम उनका और स्क्रीन टाइम भी बढ़ा रहे हैं।
1: जी हाँ। और चलिए, तो फिर आपका जो फेवरेट जॉनर है क्या और क्यों?
0: ओके, सो इतने सारे जॉनर्स हैं लेकिन फेवरेट बताना तो सच में, लेकिन यस आई कैन क्लियरली से हिस्ट्री फिक्शन इज माई फेवरेट जॉनर, बिकॉज मुझे जानना पसंद है कि क्या हुआ था, क्या हमारी हिस्ट्री है, क्या किसी और कंट्री की हिस्ट्री, कैसे हमारी और उनकी हिस्ट्री कनेक्टेड है, कैसे हमारा कल्चर किसी और कल्चर से इंस्पायर्ड है। अब ये सारा बैठ के अगर हम पढ़ने लग जाए विकिपीडिया पे तो अक्सर हम बोर हो सकते हैं, लेकिन यही अगर आप एक खूबसूरत स्टोरी के थ्रू व्यू करके एक सुंदर से किताब अगर बना दें जिसे हम हिस्ट्री फिक्शन कहते हैं, क्योंकि उसमें हिस्ट्री भी है और फिक्शन मतलब एक झूठी स्टोरी, तो आपका एंटरटेनमेंट भी हो रहा है और आपका इन्फॉर्मेशन भी हो रहा है साथ में, तो दैट्स माई फेवरेट जॉनर।
1: क्या बात है। और आपने कभी किसी बुक क्लब में शामिल होकर चर्चा की है?
0: बुक क्लब में, फिजिकल बुक क्लब में मैंने कभी पार्ट नहीं लिया है, लेकिन हाँ खुद की मेरी अपनी लाइब्रेरी है जो मैं चलाती हूँ, तो उस लाइब्रेरी में बहुत बच्चे आते हैं, तो हम लोग यूजुअली कोई बुक जब सारे बच्चे पढ़ लेते हैं तो हम लोग मिलके उसके बारे में डिस्कस करते हैं, कोई गेम क्रिएट करते हैं उसके अराउंड, वो खेलते हैं, तो उस टाइप का डिस्कशन कि इसको क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा, सो इस तरह से बैठ कर डिस्कशन करते हैं, तो वो जरूर होता है। लेकिन एक बहुत अच्छे वेबसाइट के बारे में मैं आपके लिसनर्स को बताना चाहूंगी।
1: जी जरूर।
0: उस वेबसाइट का नाम है goodreads.com। ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है सारे बुक लवर्स के लिए। आपको कोई भी बुक के बारे में जानना है, कौन सी बुक को प्राइज मिल रहा है, कौन सी बुक टॉप में है, किस बुक के क्या रिव्यूज है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस बुक साइट पे मिलती है। तो उसी बुक इस साइट पर एक क्लब भी है जहाँ पे आप उसका पार्ट हो सकते हैं और किसी ऑथर के फैन क्लब का पार्ट हो सकते हैं। तो मैं इनफैक्ट क्रिस्टीन हाना, जो मैं आपका बता रही थी अभी, किताब जो मेरी फेवरेट है, उसके फैन क्लब में भी मैंने पार्ट लिया था। एंड देन यू आप बात कर सकते हैं उस बुक के बारे में, और आपको जो बुक पसंद है वो इतने सारे लोगों को पसंद है, लेकिन फिर भी आपको नए नए पॉइंट ऑफ व्यू पता चलते हैं उस क्लब में ज्वाइन करने के बाद, और आप और भी ज्यादा उस किताब को और ऑथर को पसंद करना शुरू करते हैं। तो यस, वो एक क्लब मैंने ज्वाइन किया था।
1: ओके, और आपने तो वैसे बहुत सारे बुक्स पढ़े हैं, लेकिन कोई ऐसा किरदार जो आपको बहुत पसंद आया हो जिससे आपने रिलेट कर पाया हो?
0: ओह गॉड, मुझे लग रहा है मैं बार बार उसी किताब पे जा रही हूँ।
1: कोई बात नहीं, अब
0: कमिंग बैक टू क्रिस्टीन हानाज नाइटिंगेल, उसमें जो मेन किरदार है वियाना, बेसिकली ये स्टोरी है दो बहनों के बारे में, वियाना और इसाबेल। तो वियाना मुझे बहुत स्ट्रांग किरदार लगी और बड़ी सिमिलर मेरे से लगी, और जब मैंने उस किताब को पढ़ा मुझे इतना मोटिवेशन मिला, मैंने कई चीजें उसकी तरह इनफैक्ट अपने आप के अंदर ढालने की कोशिश करी, द वे आई डेल्ट विद प्रॉब्लम्स, मैं प्रॉब्लम को कैसे डील करती थी उसको भी मैंने थोड़ा सा चेंज करा, बिकॉज आई सॉ कि वो ऐसा करती है और वो बहुत मेरी तरह है, तो दैट इज वन थिंग, एक किरदार ने मुझे बहुत इंस्पायर करा था।
1: क्या बात है, इसीलिए ये बुक आपकी फेवरेट है क्योंकि इस किरदार से आप खुद को रिलेट कर पाए हैं।
0: यस एब्सोल्युटली।
1: और चलिए बातों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। बुक पढ़ना अगर नहीं पसंद है तो आपको सुनने के बाद दोस्त जरूर बुक पढ़ने की कोशिश करेंगे। वैसे आपने जो भी बुक्स के नाम बताए हैं मैं तो जरूर पढ़ने वाली हूँ। वैसे आपके लिए एक यादगार पढ़ने का अनुभव क्या है?
0: एक किताब है कॉल्ड द मिडनाइट लाइब्रेरी, ये किताब मेरे लिए बहुत स्पेशल रही और बहुत यादगार अनुभव जो आप कह रहे हैं बिल्कुल वैसा ही रहा है, क्योंकि ये किताब इंसान को अपने रिग्रेट्स को भूलने में काइंड ऑफ मदद करती है। और मुझे लगता है हर इंसान, आप है, मैं हूँ, हमारे श्रोता है, सुनने वाले, सबको लाइफ में रिग्रेट्स होते हैं, अरे मैंने काश ऐसा कर लिया होता, काश वैसा कर लिया होता, ये कह दिया होता वो। हम इस बोझ को कई बार लेके चल रहे होते हैं और इस बोझ का हमारे फर्दर एक्शंस पर सब पे इफेक्ट पड़ता है। जो हमारा परफॉर्मेंस है वो कम हो जाता है बिकॉज हम लोग बिजी हैं पुरानी चीजों में, हाँ, सोचने में। इस किताब ने मुझे वो बोझ, लेट इट गो जिसे कहते हैं, वो करने में बहुत हेल्प करी। तो आई थिंक किताबों की एक्चुअली यही खासियत है, हर किताब आपको कुछ ना कुछ आपकी पर्सनैलिटी में डेफिनेटली ऐड करेगी, आपको कोई चीज नई सिखाएगी, कोई आपकी आपकी कोई बुरी आदत निकालने में भी हेल्प कर सकती है। जैसे मेरी आदत थी, लेकिन आई स्टार्टेड हाउ टू लेट गो एंड एक्सेप्ट लाइफ एज इट इज। सो मिडनाइट लाइब्रेरी वाज एक ऐसा एक्सपीरियंस जो काफी यादगार था, लाइफ चेंजिंग।
1: जी, वैसे आप अपने पुस्तक संग्रह को कैसे व्यवस्थित करती हैं?
0: ओके, सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे अच्छे से चीजों को रखना बहुत पसंद है वैसे भी। तो किताबें, अब हम नॉर्मली लाइब्रेरी में जब देखते हैं तो हम देखते हैं किताबों का स्पाइन बाहर है,
1: yes.
0: है ना। तो मेरे लाइब्रेरी में मैं दो तरीकों से किताबों को अरेंज करती हूँ, घर की लाइब्रेरी भी और जिस स्कूल में मैं लाइब्रेरी चलाती हूँ, न्यूडल्स मॉन्टेसरी में, लिप्टोपिया लाइब्रेरी, तो उसमें भी मैं बुक्स को अलग अलग तरीके से अरेंज करती हूँ। जैसे एक तरीका होता है स्टैटिक अरेंजमेंट और दूसरा होता है डायनामिक अरेंजमेंट। स्टैटिक तरीके में आप बुक की स्पाइन को बाहर करके रखते हैं, लाइक एक के ऊपर एक लगा के, वेरिन आप स्पाइन के ऊपर का लिखा हुआ नाम पढ़ सकते हैं। एंड दूसरा है डायनामिक अरेंजमेंट। डायनामिक अरेंजमेंट में आप बुक्स को सामने, उसका जो फ्रंट कवर है वो सामने प्लेस करके बुक्स को अरेंज करते हैं।
1: हाँ जी।
0: तो इसका बहुत फर्क पड़ता है। डायनामिक अरेंजमेंट जो है बच्चों को इतना एंटाइस करता है क्योंकि वो किताब के फ्रंट कवर को देख रहे हैं
1: जी।
0: उनको एंटाइस करता है, उनको और ज्यादा बुक्स को उठाने में मोटिवेट करता है, एंड दे वॉन्ट टू रीड ये भी वो भी। उन्हें बुक्स को समझने में भी उनको आसानी होती है, पिक्चर देख के वो एनालाइज कर सकते हैं। हम कहते हैं डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, बट चिल्ड्रन इवन वी ऑल्सो जज अ बुक बाय इट्स कवर। तो वो किताब के लिए एक्चुअली लागू होता है, लोगों के लिए लागू नहीं होता।
1: हाँ जी।
0: तो हम किताब को जब उठाते हैं तो अगर कवर अच्छा है देखने में तो हमें समझ भी आता है, हम बेटर चॉइस कर पाते हैं, किताबों को उठा लेते हैं। तो दीज आर टू वेज और मैं दोनों तरीके अपने लाइब्रेरीज में यूज करती हूँ। द डायनामिक वन वर्क्स वेरी गुड छोटे बच्चों के साथ, डायनामिक अरेंजमेंट ऑफ बुक्स।
1: ओके, तो मैं भी इस चीज से रिलेट कर पा रही हूँ। मुझे भी, मैं बुक्स के कवर्स को पहले देखती हूँ और exactly. फिर उसे पढ़ना पसंद करती हूँ।
0: स्वाभाविक है, ये हमारा ह्यूमन नेचर है, हम कोई भी चीज जब देखते हैं तो उसको शक्ल से टटोल के फिर अंदर उसको फाइनल करते हैं।
1: जी हाँ। वैसे पहले आपने अभी बताया है अपने बातों में, लेकिन फिर से मैं जानना चाहूंगी कि कोई ऐसी आपकी फेवरेट बुक जिसको आपने दोहराई हो, और अगर उसे दोहराई है तो क्यों?
0: वैसे तो मैं काफी आई कीप री रीडिंग बुक्स, जिससे मेरे लाइब्रेरी में जितनी भी बुक्स है, जब आप किताब पढ़ते हैं तो आप एक फीलिंग से, एक एक्सपीरियंस से गुजर रहे होते हैं। तो मान लीजिए अगर आप सैड हैं और कोई किताब आप पढ़ रहे हैं तो वो किताब कभी कभी आपको मोटिवेट करती है, तो वो जो मोटिवेशन वाला एक्सपीरियंस आपने उस किताब को पढ़ने से लिया
1: जी।
0: वो कभी कभार जब आप वापस जाके कभी कभी वो किताब खोल के उसके दो पन्ने भी पढ़ लेते तो यू अगेन गो थ्रू दैट एक्सपीरियंस ऑफ मोटिवेशन बिकॉज आपने वो उस वक्त एक्सपीरियंस करा था। इसलिए मैं किताबें वैसे बहुत री रीड करती हूँ, पूरी नहीं तो थोड़ी थोड़ी। बट एक किताब जो मैंने बहुत बार रीड करी है वो है किंसुगी। किंसुगी इज रिटन बाय अनुकृति उपाध्याय, इंडियन ऑथर है, फैंटास्टिक ऑथर है। और ये जो किताब है, किंसुगी का मतलब है जापानीज आर्ट है ये, जिसमें जो बर्तन होता है जब वो टूट जाता है तो उसको कितने सुंदर तरीके से ये लोग फिर से जोड़ते हैं। तो ये किताब स्पेशली मुझे इसलिए मैं बार बार पढ़ती हूँ या पढ़ चुकी हूँ, क्योंकि हमारे सबके अंदर कुछ ना कुछ कमियां हैं, कुछ पार्ट्स हैं जो उतने अच्छे नहीं जितने हम चाहते हैं, कुछ एपिसोड्स हमारे लाइफ के ऐसे हैं जो भी हैं, तो वो सारे कैसे मिलकर हमें एक खूबसूरत हमारी लाइफ बनाते हैं। जितने हमारा सक्सेस और हमारी क्वालिटीज हमें बनाती हैं, उतने ही हमारे वीकनेसेस हमें फेलियर बनाते हैं। किंसुगी इज दैट आर्ट जो हमें सिखाता है कि कैसे हमें अपने हर एपिसोड को, हर सक्सेस को, फेलियर को, क्वालिटीज को, वीकनेस को जोड़ के हमारी एक सुंदर सी लाइफ बनानी चाहिए। सो ये बुक मुझे इंस्पायर करती है, इसलिए मैं वो किताब बार बार पढ़ती हूँ।
1: वैसे मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज लिए हैं, लेकिन आपकी बातें ऐसी हैं मतलब लग रहा है कि कोई बुक रीडर अभी फिलहाल बैठा है और उससे हमारी बातें हो रही हैं। बस बातें ऐसी हो जिसमें सामने वाला अपना क्वेश्चन भी भूल जाए कि उसको आगे क्या पूछना है।
2: बहुत अच्छा लगा मैम बात करके। कुछ लोगों को बुक्स अपनी लाइब्रेरी में ही पढ़ना पसंद होता है, कुछ ऐसे होते हैं जिनको सोते वक्त में थोड़ा बुक रीडिंग करना पसंद होता है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी आपकी वो पसंदीदा जगह जहाँ या जब आप पसंद करती हूँ बुक पढ़ना।
0: ओह गॉड, तुम छाया ऐसे सवाल पूछ रहे हो जिसका मुझे यू रियली मेकिंग मी थिंक, मुझे सोचना पड़ रहा है। तो यस, मुझे लगता है मुझे मेरी बालकनी में किताब पढ़ना बहुत पसंद है, सराउंडेड बाय ग्रीनरी एंड एकदम क्वाइट। एंड अनदर वन प्लेस यू वोंट बिलीव छाया मुझे कहाँ किताब पढ़ना पसंद है, वो है

0: एंड रीड समथिंग गुड.
1: बिल्कुल, लेकिन बहुत सारे दोस्तों के साथ ऐसा भी होता है कि जब शोर होती है ना आसपास में, तो वो अपना वो कनेक्शन नहीं बना पाते हैं बुक्स के साथ. मैंने बहुत पहले सुनी थी, एक लड़का था जो तैयारी कर रहा था यूपीएससी की, और वो जहाँ रहता था उसके एक साइड में मस्जिद था और दूसरी साइड में मंदिर था, फिर भी उसने यूपीएससी निकाल लिया. तो ये हमारा कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए माइंड पे, आप जो कर रहे हैं वहाँ पे बने रहें.
0: बिल्कुल. और इसी बात पे एक्चुअली छाया मैं एक चीज बोलूंगी, शुरुआत कैसे करें, तो आप कैसे अपने आप को रीडर बनाएं.
1: बिल्कुल.
0: तो ऑलवेज एक कोट है बहुत अच्छा, मैंने कहीं पढ़ा था, इनिशियली अगर आप रीडर नहीं है तो स्टार्ट रीडिंग व्हाट यू लव, जो पसंद है बस उतना ही पढ़िए, उसी चीज ढूंढिए, एंड देन यू विल बिकम अ रीडर हु विल लव एवरीथिंग. Everything you read. So, love, read what you love until you start loving to read.
1: किताबों का क्या रोल है आपकी जिंदगी में?
0: I think किताबें आज के तारीख में तो स्पेशली बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो इंसान के अंदर वो क्वालिटीज डेवलप करती है जिसे हम लाइफ स्किल्स कहते हैं. पेशेंस, प्रोफाउंड किसी चीज में इन्वॉल्व होके किसी चीज में एंगेज होना. जब हम किताबें पढ़ते हैं, हम इतने सारे लोगों के बारे में, किरदारों के बारे में पढ़ते हैं, हम उनको पहचानना सीखते हैं. अगर आपने लोगों को पहचानना सीख लिया तो आई थिंक आपने जिंदगी की बहुत इम्पोर्टेंट ट्रेट लर्न कर ली, क्योंकि आप जिंदगी भर लोगों के साथ डील करने वाले हैं, अलग अलग लोगों के साथ, अलग अलग सिचुएशन. तो किताबें आपको बैठे बैठे उस चीज की ट्रेनिंग दे देती हैं. एक बहुत बड़े इंसान है, उनका नाम है अशोक अलेक्जेंडर, जो मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन जो है उसके सीईओ रह चुके हैं. उन्होंने एक बार एक किताब लिखी स्ट्रेंजर थ्रुथ बोल के. उस किताब में उन्होंने बताया, उन्होंने स्टडी की जो प्रोस्टिट्यूट एरिया होता है वहाँ के बच्चों की वर्सेस जो मैनेजमेंट में बच्चे पढ़ते हैं उन बच्चों की. सो और उन्होंने एनालाइज करा कि जो स्ट्रीट के जो वो बच्चे हैं वो ज्यादा स्मार्ट हैं और बेटर डील करते हैं लाइफ में, क्योंकि हम जितनी ज्यादा मुसीबतों से लाइफ में गुजरते हैं उतने हम वाइज होते चले जाते हैं. अब हम जैसे लोग जो हैं, हम एक सिल्वर स्पून के साथ, नसीब के साथ पैदा हुए, तो हम तो इतनी मुसीबतें लाइफ में झेल नहीं पाते हैं, आती नहीं है, बिकॉज हमारे मम्मी पापा ने हमें इतने अच्छे से सराउंड कर रखा है सारी सुविधाओं से, तो हमें इतना उनकी तरह स्ट्रगल नहीं करना पड़ता. तो हमारे अंदर इतनी विजडम, इतना स्ट्रीट स्मार्टनेस कैसे आए? तो वो एक तरीका हो सकता है किताबें. तो जो चीज आप रियल में एक्सपीरियंस नहीं कर सकते वो आप किताबों के थ्रू एक्सपीरियंस करो, अलग अलग सिचुएशन. तो वो सिचुएशंस के थ्रू आप वर्चुअली वो इमोशंस डेवलप कर सकते हो, वो एबिलिटी, वो स्किल्स डेवलप कर सकते हो, और लोगों को पहचानने की परख डेवलप कर सकते हो. आई थिंक ये सारी चीजें आपको एक स्ट्रांग इंसान बनाती है, एंड अल्टीमेटली आपकी पर्सनैलिटी अगर स्ट्रांग हुई तो उसके ऊपर अगर आपके पास कोई एक स्किल है, कोई बहुत अच्छा स्किल है, जैसे आप बहुत अच्छा बोलती है, कोई कंटेंट क्रिएटर है, कोई आईटी में बहुत अच्छा है, आईएएस वाले जो होते हैं उनका अपना अलग स्किल होता है, इंजीनियर के अलग है, लेकिन हर स्किल के पीछे एक स्ट्रांग पर्सनैलिटी चाहिए, वो आपको सक्सेसफुल करेगी. तो वो जो स्ट्रांग पर्सनैलिटी डेवलप होती है, मुझे लगता है वो डेवलप करने के लिए किताबें बहुत यूजफुल हो सकती है. सो मेरे लिए तो किताबों का रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रेज अ स्ट्रांग पर्सनैलिटी. मैं अपने बच्चों के साथ भी बहुत करती हूँ.
1: क्या बात है, वैसे आपकी शादी हो गई है मुझे अभी पता चला.
0: और मेरे दो बच्चे भी है.
1: ओह माय गॉड, कितने साल के होंगे?
0: मेरी बड़ी बेटी है 11 साल की और मेरा छोटा बेटा है 6 साल का, और छाया के एक्सप्रेशन देखने वाले
1: मतलब आपको देख के ऐसा नहीं लग रहा बिल्कुल कि आप शादीशुदा है, तो जाहिर सी बात है बच्चे इतने बड़े हैं ये जान के तो फिर थोड़ा अजीब लगा. वैसे आप करती क्या है, कुछ स्पेशल खाती पीती है?
0: हाँ, किताबें पढ़ती हूँ.
1: हाँ, बुक रीडिंग बहुत अच्छी एक्सरसाइज भी है.
0: देखिए, आपको अगर यंग रहना है तो भी किताबें काम आएगी.
1: मतलब हर मायने में किताब पढ़ना हमारे लिए बहुत अच्छी बात है. तो
2: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM.
3: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशाह जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर.
4: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081. सिरदर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।

0: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे रीना। फिर मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। कहते हैं ना श्रोताओं, एक घर एक परिवार। जहां कभी एक ही थाली में खाना खाया जाता था, एक दूसरे की खुशियों में मुस्कुराया जाता था, लेकिन जैसे ही माँ बाप की उम्र ढलती है और बात जमीन जायदाद की आती है, वही अपने ही लोग आपस में लड़ने लगते हैं। कई बार माँ बाप पूरी जिंदगी मेहनत करके घर जमीन और संपत्ति बनाते हैं, उनकी बस एक ही इच्छा होती है कि उनके जाने के बाद परिवार प्यार से रहे। लेकिन अफसोस, कई घरों में सबसे पहले सवाल यह उठता है कि किसके हिस्से में आएगा संपत्ति। यही शेयर शुरू होती है वसीयत की अहमियत। वसीयत सिर्फ कागज का एक टुकड़ा नहीं होती, बल्कि माता पिता की आखिरी इच्छा होती है कि अगर समय रहते सही तरीके से वसीयत बना दी जाए तो कई पारिवारिक झगड़े, कोर्ट कचहरी के चक्कर और रिश्तों में आने वाली दरारें रोकी जा सकती हैं। तो आइए आज हम बात करेंगे वसीयत क्या होती है, इसे कैसे बनाया जाता है, क्या यह जरूरी है और इससे परिवार को क्या फायदा मिलता है। इन्हीं सभी सवालों का जवाब देने के लिए मेरे साथ आज एडवोकेट अनिरुद्ध अरोरा जी कनेक्ट है। सर, आपका बहुत बहुत वेलकम है हमारे स्टूडियो में। और आप बताइए कि हमारे स्टूडियो में आकर आपको कैसा लगता है, जरा हमारे श्रोताओं को बताइए आप।
1: नहीं, मैं तो वेट करता हूँ हर वीकेंड्स पे कि आप कोई अच्छी सी नई सीरीज लेके आओगे लीगल टॉक्स में, अपने प्रोग्राम में, अवेयरनेस प्रोग्राम की, जिससे हमारे जितने भी लिसनर्स हैं कम्युनिटी रेडियो को, उनको कुछ नया जानने को मिलेगा।
0: पर अब की बार आपने वेट ज्यादा करवा दिया सर।
1: देखिए, कुछ होती है, कुछ प्रायोरिटीज होती है, तो मैं माफी चाहूंगा अपने रेडियो के लिसनर्स से भी, कम्युनिटी रेडियो के, कि मैं टाइम नहीं दे पाया था। लेकिन अब मैं कंटिन्यू रहूंगा आपके साथ में और आपकी सारी जितनी भी क्वेरीज है मैं उसको आंसर करने की कोशिश करूंगा। और आप बने रहिए अपने रेडियो कम्युनिटी सेंटर से, आपका मुरादाबाद कम्युनिटी जो 89.6 रेडियो है। शुरू करते हैं आज का।
0: जी बिल्कुल सर। तो श्रोताओं, आज का हमारा ये शो बहुत ही खास होने वाला है। कहते हैं इंसान अपने बच्चों के लिए पूरी जिंदगी मेहनत करता है, दिन रात की कमाई से घर बनाता है, जमीन खरीदता है ताकि उसके बाद भी परिवार खुशहाल रहे। लेकिन कई बार वही घर और वही जमीन अपनों के बीच दूरियों की वजह बन जाती है। प्यार की जगह हिस्सों की बातें होने लगती है और रिश्ते अदालतों तक पहुंच जाते हैं। ऐसे में एक समझदारी भरा फैसला ना सिर्फ संपत्ति का सही बंटवारा तय करता है, बल्कि परिवार के रिश्तों को भी सुरक्षित रखता है। मुझे लगता है कि इसके बारे में बात होना बहुत जरूरी है।
1: ये बहुत छोटा सा वर्ड है वसीयत, लेकिन इम्पैक्ट बहुत अच्छा है इसका।
0: कहते हैं ना सर, छोटा पैकेट बड़ा धमाल।
1: टॉपिक बहुत आज का जो है बहुत ही के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनिएगा अपने लिसनर से मैं बोलूंगा।
0: बिल्कुल। तो सर, यानी कि आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वसीयत होता क्या है?
1: देखिए, वसीयत जिसको हम हिंदी में विल बोलते हैं, वसीयत एक तरीके का एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है, कानूनी दस्तावेज होता है, जिसमें कोई व्यक्ति ये लिखता है कि इसकी मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति जो है, उसकी एसेट्स जो है, किसको देनी है, कितने रेशो में देनी है और उसको डिवाइड कैसे करना है। तो ये सारी जानकारी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो एक अपनी विल के माध्यम से उसको जो है वो डिक्लेयर करता है कि मेरे ना होने के बाद ताकि मेरे जो चिल्ड्रंस हैं या जो भी मेरे जो और जो मेरे रिलेटिव्स हैं उनके बीच में लड़ाई झगड़ा ना हो या कोई डिस्प्यूट पैदा ना हो, तो उससे प्रिवेंटिव होने के लिए वो एक डिक्लेरेशन देता है। उसी डिक्लेरेशन को उसको हम विल बोलते हैं, उसको हम लीगल डॉक्यूमेंट होता है वो एक, तो उसको ही वसीयत बोलते हैं।
0: मतलब फैमिली वालों का नाम मेंशन होता है उसमें।
1: हाँ, उसे जो भी उसकी कमाई हुई एसेट्स है, जो भी उसके पास जो संपत्ति है, उसका डाइवर्सिफिकेशन या डिवाइड उसको कैसे करना है, तो उसके बारे में वो सारी डिटेल्स खोल देता है। उसको अपने जीते जी वो जो है सब उसको डिक्लेयर कर देता है कि कल को उसके जाने के बाद इस दुनिया से कि कोई भी कंट्रोवर्सी उसके रिलेटिव्स में या उसके बच्चों में क्रिएट ना हो।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्या हर व्यक्ति वसीयत बना सकता है?
1: हाँ, बिल्कुल बना सकता है। अगर आप 18 वर्ष के हैं या उससे अधिक आयु के हैं और आप मानसिक रूप से स्वस्थ हैं, एकदम आप बिल्कुल साउंड माइंड से जो है बिल्कुल होश और हवास में अगर कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, तो आप अपनी वसीयत, अपनी विल आप अनाउंस कर सकते हैं। अपने लीगल जो भी आपके कंसल्टेंट है या एडवोकेट्स है, उनसे आप मिलके आप अपनी वसीयत बना सकते हैं और उसको आप जो है आने वाले फ्यूचर के लिए कोई भी अगर लगता है आपको कोई कॉन्ट्रोवर्सी आ रही है, तो उसको आप पहले ही उसे प्रिवेंट कर सकते हैं।
0: मतलब इसके लिए एज क्या होना चाहिए सर? सर?
1: एज देखिए 18 वर्ष हो या उससे ऊपर होनी चाहिए।
0: अच्छा,
1: एटलीस्ट आपको बालिग होना जरूरी होता है।
0: क्या वसीयत बनाने के लिए वकील की आवश्यकता होती है?
1: देखिए अनिवार्य तो नहीं है ये, लेकिन कई एक ऐसी कानूनी पेचीदगियां होती है उसमें, कानूनी लैंग्वेज आपको नहीं पता होती है तो आपको एक जो एडवोकेट है वो हायर जरूर करना चाहिए, जिससे कोई भी आपको अगर कोई लीगल वर्ड है या लीगल टर्म है जिसका आपको मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है, तो कोई अगर देखिए आप प्रोफेशनल हायर करेंगे तो निश्चित तौर पे आप ही के लिए अच्छा है। तो मेरा सजेशन है कि आपको अपने जो भी लीगल कंसल्टेंट है या लॉयर्स हैं उनसे कंसल्ट करके ही आपको वसीयत बनवानी चाहिए।
0: सो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्या वसीयत स्टाम्प पेपर पर ही बनानी आवश्यकता होती है?
1: देखिए साधारण कागज पे भी आप कोई अगर अपनी विल करना चाहे तो कर सकते हैं और स्टाम्प पेपर भी कर सकते हैं, साधारण कागज पर भी वैध वसीयत बनाई जा सकती है।
0: क्या वसीयत का रजिस्ट्रेशन जरूरी है?
1: जरूरी नहीं है, लेकिन रजिस्ट्रेशन कराने से उसकी विश्वसनीयता बढ़ जाती है और अगर कोई विवाद सामने कोई आगे फ्यूचर आने वाला होता तो उसकी संभावना कम हो जाती है उससे।
0: और क्या सर वसीयत में दो गवाह होना आवश्यक है?
1: हाँ, वसीयत में विटनेस जरूर चाहिए होती है, ऑर्डिनरी तौर पे दो, एटलीस्ट दो विटनेस तो मैंडेटरी है, दो गवाह बिल्कुल होने चाहिए। बिल्कुल।
0: क्या वसीयत को कभी भी बदला जा सकता है?
1: हाँ, वसीयत अगर आपने कोई भी करी हुई है और आपको लग रहा है कि भाई अब मैं अपना माइंड आपका चेंज हो गया, या आपको लगता है कि मैं वसीयत मैंने अपने जो है अब चेंज करना है या मुझे अपना ये हिस्सा बढ़ा के इतना देना है या कम करना है या नहीं देना, तो आपका राइट बनता है, आप अपने जीते जी अपनी वसीयत जो है आपकी वो अपने लाइफ में अपने जीवन काल में कभी भी रद्द कर सकते हैं, उसको कैंसिल भी कर सकते हैं या उसको बदल भी सकते हैं आप।
0: यदि किसी व्यक्ति ने वसीयत नहीं बनाई तो उसकी संपत्ति का क्या होगा?
1: देखिए ये प्रॉब्लम्स बहुत आती हैं आज की डेट में, लोग इतना डीप में सोचते नहीं है, वो सोचते हैं कि भाई चलो ठीक है वसीयत की क्या जरूरत है, लेकिन कॉमन देखिए लाइफ जो है हमारी जो है सबको पता है कि लाइफ का कोई भरोसा नहीं होता है ना, तो कभी भी कुछ मिस हैपनिंग हो सकती है, तो वसीयत तो एटलीस्ट कम से कम सबको करनी ही चाहिए। और अगर वसीयत नहीं बनाई होती है तो उस केसेस में प्रॉब्लम्स ये आती है जो उसके लीगल हायर्स हैं, जो उसके रिलेटिव्स हैं, जो चिल्ड्रंस हैं, उसमें आपस में थोड़ा कॉन्ट्रोवर्सी या डिस्प्यूट्स होने की संभावना रहती है और फिर वो जो भी डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट हो जाता है सब्जेक्ट, वो आप कोर्ट के सू के माध्यम से ही उसको आप फिर चैलेंज कर सकते हैं। कोर्ट जो डिसीजन सुनाएगा जैसा भी कोर्ट को ठीक लगेगा, ऑन रिकॉर्ड क्या चीजें हैं और जो पार्टीज अपना अपना जो है पक्ष रखती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो कोर्ट डिसाइड करेगा उसी रेशियो में सबको जो है प्रॉपर्टी मिल पाती है। फिर
0: उत्तराधिकार का क्या अर्थ है?
1: देखिए उत्तराधिकार एक तरीके का सक्सेशन होता है, सक्सेशन मतलब अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है तो मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति उसके कानूनी वारिसों को मिलने की प्रक्रिया को हम उत्तराधिकार कहते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति है उसने जो है वसीयत कोई अपनी करी हुई है और उसकी डेथ हो जाती है तो उसके बाद जो संपत्ति मिलती है उसके उत्तराधिकारी को मिलती है, यानी जिसको उसने सक्सेशन किया है, जिसको उसने ऐसे।
0: एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है सर जो कि हर किसी के मन में घूमता रहता है, ये तो क्या बेटी को भी पिता की संपत्ति में बराबर का अधिकार होता है?
1: देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और मुझे लगता है कि मोस्टली लड़कियों को इसका आंसर नहीं पता होगा, वो सोचती हैं बचपन से ही उन्हें ये पता है कि मुझे तो शादी होके घर चले आना है, बस बात खत्म, तो ना वो कभी संपत्ति के लिए अपने हिस्से के लिए कभी कहती हैं अपने घर में और ना ही कभी उनको मिलता भी होगा, तो बहुत ही कम मैंने देखे हैं केसेस की लोग अपनी बेटी को शादी के बाद भी अगर हिस्सा देते हों, लेकिन हाँ वर्तमान में कानून के अनुसार बेटी को भी बेटे के समान अधिकार प्राप्त है, हर लड़की का हर बेटी का अपने परिवार में अपने फादर की संपत्ति में उसका अधिकार है, उनके बाद में वो अधिकार के लिए अपनी संपत्ति में हिस्से के लिए वो कोर्ट में सू कर सकती है, उसे राइट मिलता है।
0: क्या बात है, तो सुन लिया भाई लड़कियों बहुतों को नहीं पता था सर, सच में एक्चुअल में नहीं पता होता है, क्योंकि उनको बचपन से यही कहा जाता है कि ये अभी तुम्हारा घर है, शादी के बाद तो वो हमारा अगला घर हो जाता है।
1: संपत्ति में जो है बेटी का भी अधिकार बनता है, बराबर का हिस्सा है, जितना बेटे का हिस्सा है उतना बेटी का हिस्सा।
0: सर एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या शादी के बाद बेटी का संपत्ति पर अधिकार समाप्त हो जाता है, यानी कि शादी हो जाने के बाद?
1: ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही भ्रांतियां फैली हुई हैं कि इस भाई लड़की की शादी हो गई अब तो उसका हिस्सा नहीं मिल सकता, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, शादी के बाद भी बेटी का संपत्ति पर पैतृक संपत्ति पर अधिकार हमेशा बना रहता है, ये उसका लीगल राइट।
0: पैतृक संपत्ति और स्वयं अर्जित संपत्ति में क्या अंतर है?
1: देखिए स्वयं अर्जित संपत्ति वह संपत्ति होती है जिसे व्यक्ति ने अपने परिश्रम से अर्जित किया है, अपना खुद उसने कमाया है, जबकि पैतृक संपत्ति वो होती है जैसे पीढ़ियों से कोई बाबा के या दादा के जमाने से कोई पीढ़ियों से चली आ रही कोई संपत्ति होती है, तो उसको हम पैतृक संपत्ति बोलते
0: हैं। क्या बात है श्रोताओं, बस यहाँ पर लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद आप सभी के बीच कनेक्ट होते हैं। आपने कितने नहीं जाना जी, रेडियो किसी बिल्कुल भी नहीं घुमानी यार, जो रीना के साथ कनेक्ट रही ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते

0: म्यूजिकल ब्रेक के बाद एक बार और स्वागत है श्रोताओं आप सभी का, और आप सुन रही हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहे गुनगुनाते रहे जी। और बहुत ही शानदार आपने गाना एंजॉय किया है, और बहुत से लड़कियों को भैया यही लगता है कि अभी भी कि शादी के बाद मायके का जमीन जायदाद हमारी नहीं है, हमसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इन फ्यूचर आपके साथ कुछ होता है तो देखिए मायके का गेट आपके लिए हमेशा खुला रहता है, आप कभी भी आ सकते हैं, क्योंकि मम्मी पापा के जायदाद में आपका भी पूरा अधिकार होता है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्या कोई व्यक्ति अपनी पूरी स्वयं अर्जित संपत्ति किसी एक व्यक्ति के नाम वसीयत करा सकता है?
1: हाँ बिल्कुल करा सकता है, ये संबंधित व्यक्तिगत कानून है और मामले की परिस्थिति पर निर्भर करता है, वो जो भी अपनी संपत्ति को किसी एक व्यक्ति को भी डोनेट कर सकता है, वसीयत कर सकता है उसके लिए।
0: क्या मौखिक वसीयत मान्यता होती है?
1: समानता लिखित वसीयत अधिक सुरक्षित और प्रामाणिक मानी जाती है, मौखिक वसीयत केवल कुछ विशेष परिस्थिति में ही मान्य हो सकती है। और विशेष परिस्थिति ये होती है जैसे कोई बहुत ही सीरियस कोई बीमारी है, या बिल्कुल उसको लगता है कि वह इसकी लाइफ सर्वाइवल बहुत कम है या थोड़े टाइम की है, तो रजिस्ट्रार के सामने अगर वो कोई ओथ लेता है या मजिस्ट्रेट के समक्ष कोई ओथ लेता है और वो कोई ऐसी संपत्ति को डिक्लेयर करना चाहे या लिखने पढ़ने में असक्षम हो, तो उस समय मौखिक जो वसीयत भी वो किसी रजिस्ट्रार या मजिस्ट्रेट के समक्ष डिक्लेयर करके कर सकते।
0: यदि वसीयत पर विवाद हो जाए तो क्या किया जा सकता है?
1: देखिए संबंधित पक्ष न्यायालय में जाकर वसीयत की वैधता को चुनौती दे सकता है, और अदालत जो भी निर्णय होगा, जो भी डिसीजन लेगी, साक्ष्यों के आधार पे और जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे उसके आधार पे जो भी अदालत जो भी डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट होगा, जो डिसीजन होगा, वो पक्षों को मानना पड़ेगा।
0: क्या नाबालिग बच्चों के नाम पर वसीयत किया जा सकती है?
1: बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक अभिभावक गार्जियन का उल्लेख करना उचित रहेगा, क्योंकि नाबालिग के लिए आप अगर कोई भी वसीयत कर रहे हैं तो उसको गार्जियन मतलब उसकी जो है मैच्योरिटी जो 18 ईयर्स ऑफ एज होने तक जो है गार्जियन अभिभावक जो है उसका उल्लेख करना मैंडेटरी होता है।
0: मतलब 18 प्लस होना ही चाहिए?
1: नहीं, वसीयत कर सकते हैं आप जो है नाबालिग के लिए भी, लेकिन एक गार्जियन जो है गार्जियन अभिभावक का उल्लेख करना उसमें उचित रहता है।
0: ओके।
1: उससे कोई भी उसमें आगे प्रॉब्लम्स नहीं आती है फिर।
0: ओके। क्या वसीयत में किसी भी व्यक्ति या संस्था को समर्पित की जा सकती है?
1: समर्पित, हाँ, आप कोई भी अगर कोई भी अपनी संपत्ति है, आप कानून के हिसाब से अनुसार व्यक्ति अपनी स्वयं अर्जित संपत्ति जो है वो किसी भी संस्था को आप डोनेट भी कर सकते हैं, वो उसमें कोई इशू नहीं है सर।
0: क्या परिवार के सभी सदस्यों को वसीयत की जानकारी देना जरूरी है?
1: देखिए वैसे तो ये लीगल डॉक्यूमेंट होता है और जो है कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है, जरूरी नहीं है, लेकिन पारदर्शिता बनाए रखने के लिए कोई आपका फ्यूचर में कोई कॉन्ट्रोवर्सी या डिस्प्यूट ना हो तो उसके लिए अगर आपको लगता है कि ये बताना जरूरी है तो आप बता सकते हैं, लेकिन कोई ऐसा मैंडेटरी नहीं है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप बताना चाहते हैं तो बता दीजिए और नहीं बताना है तो आप उसको कॉन्फिडेंशियली भी रख सकते हैं, लेकिन ये है कि अगर आगे फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट ना हो तो
0: मतलब बताना बहुत जरूरी है सर।
1: वो आपको लगता है कि अगर हाँ भी ठीक है मेरे बताने से ये चीजें जो है डिस्प्यूट पैदा नहीं होगा और मेरे मरने के बाद कल को लड़ाई झगड़ा ना हो तो आप बता सकते हैं कि भाई मैंने इस तरीके से वसीयत विल कर दी है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आप लोगों को ये संपत्ति को

0: क्वेश्चन करना है।
1: संपत्ति के बंटवारे को लेकर विवाद होने पर सबसे पहले क्या करना चाहिए?
0: देखिए, पहले तो कोशिश करनी चाहिए कि भाई म्यूचुअली आप जो रिकंसाइल करें, आपसी बातचीत से समझौते का प्रयास करें, कोई सॉल्यूशन निकालें कि वो जो है जो भी जो है डिस्प्यूट है आपका रिजोल्व हो जाए, बातचीत से ही रिजोल्व हो जाए। और उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि भाई जो है डिस्प्यूट रिजोल्व नहीं हो पा रहा है, तो आप कोई भी लीगल जो है अपना कंसल्टेंट या लीगल कोई जो है आपके लॉन्गे या एडवोकेट्स होंगे, आप उनको जो है उनसे राय लेके आपका मशवरा करके आप कोर्ट के थ्रू केस डाल के भी आप उसको रिजॉल्व करा सकते हैं।
1: एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है सर, आम जनता के लिए आपकी सबसे महत्वपूर्ण कानूनी सलाह क्या होगी?
0: देखिए, यही सलाह है कि अपनी संपत्ति के संबंध में समय रहते स्पष्ट और विधि सम्बद्ध वसीयत बनवाएं, जो भी एस पर लॉ है, और आवश्यक दस्तावेज हमेशा व्यवस्थित रखें। किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय से पहले किसी योग्य अधिवक्ता से या कोई भी जो आपके लीगल कंसल्टेंटों से आप कानूनी सलाह अवश्य लें। और बस मैं यही बोलूंगा कि जो है प्रॉब्लम्स जो है हमें पता नहीं होती कब आने वाली हैं, तो आने वाले फ्यूचर के लिए अगर आपको भी लगता है कि कोई प्रॉब्लम्स आ सकती है, तो आपको भी अपनी वसीयत जरूर बना के रखनी चाहिए, और ये सेफ है प्योरली। और जो है आप अपने रहते कभी भी वसीयत आप उसको चेंज कर सकते हैं, रद्द कर सकते हैं।
1: क्या बात है, एक छोटा सा संदेश क्या देना चाहेंगे सर आप?
0: देखिए, संदेश मेरा अपने लिसनर्स से यही है कि आपका रेडियो कम्युनिटी रेडियो जो इतनी अच्छी अच्छी लीगल टॉक्स में इतनी अवेयरनेस की बातें लेके आते हैं, उसको सुनते रहें और अपने लीगल जो आपके जो राइट्स हैं उसके प्रति सजग रहें, और जो है हमेशा जो है जागरूक रहें, और जो है बस यूं ही जो है हमारे शो को आप प्यार देते रहें।
1: थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छी बात कही सर आपने, क्योंकि श्रोताओं का प्यार हमारे लिए बहुत
0: जरूरी
1: है,
0: उन्हीं के लिए हम लोग हर वीक वेट करते हैं कि उनसे बात हुई, वो हम जो है उनके लीगल राइट्स के बारे में हम डिस्कशन कर पाएंगे।
1: बिल्कुल, उम्मीद करते हैं सर अगली बार बहुत जल्द हमारे साथ कनेक्ट होंगे,
0: नए टॉपिक के साथ मिलेंगे आपसे।
1: बिल्कुल, चलिए सर, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।
0: धन्यवाद।
1: तो श्रोताओं, आज के इस खास बातचीत में हमने जाना कि वसीयत आखिर क्या होती है, इसे बनाना क्यों जरूरी है, और यह कैसे आपके परिवार के भविष्य को सुरक्षित रखने में मदद कर सकती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि वसीयत सिर्फ अमीर लोगों के लिए होती है, लेकिन सच तो यही है कि जिसके पास भी कोई संपत्ति, घर, जमीन, बैंक बैलेंस या कोई कीमती चीज है, उनके लिए वसीयत बनाना एक समझदारी भरा कदम। समय रहते बनाई गई एक सही वसीयत परिवार में होने वाले कई विवादों, गलतफहमियों और कानूनी परेशानियों से बचा सकती है। सबसे बड़ी बात, आपकी मेहनत की कमाई आपकी इच्छा के अनुसार सही व्यक्ति तक पहुंचती है। उम्मीद है कि आज की इस चर्चा ने आपकी कई शंकाओं का समाधान किया होगा और आपको यह समझ आया होगा कि वसीयत सिर्फ एक कागज नहीं, बल्कि अपने परिवार के प्रति आपकी जिम्मेदारी और समझदारी को लेके जाता है। और इसी उम्मीद के साथ मैं लेती हूँ यहाँ से जाने की इजाजत। थैंक यू सो मच सर कि आपने हमारे श्रोताओं को इतनी अच्छी जानकारी दी। बहुत सी गलत फहमियाँ होती है लोगों के अंदर, जो आज क्लियर हो गया है, तो थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। फिर मिलेंगे श्रोताओं एक ऐसे टॉपिक के साथ, आप सभी के साथ, जहाँ करेंगे ढेर सारी बातें। अभी के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना और खुश रहिए अपनी जिंदगी में, और अपने परिवार वालों के साथ मिलजुल कर रहिए। बाय। अरे सुनो, बैटरी और इन्वर्टर ऑनलाइन मिल सकता है क्या?
2: हाँ है ना, श्रीहरि.in, यहाँ मिलती है लुमिनस, माइक्रोटेक, एक्साइड, ओकाया और यूटीएल जैसे 100% जेन्युइन प्रोडक्ट, ऑथराइज्ड ब्रांड्स, एक्सपर्ट इंस्टॉलेशंस, सेम डे डिलीवरी और हैसल फ्री एक्सचेंज। तो आज ही विजिट करें श्रीहरि.in पर जाकर।
3: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल? तो स्वागत है देवशाह जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट, रामनगर, नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
4: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।

0: नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। मैं हूं आपकी दोस्त प्राची और मेरे साथ हैं अखिल। और आज हम बात करेंगे हमारे विशेष कार्यक्रम विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश, और हमारा स्पेशल टॉपिक रहेगा लखनऊ की मक्खन मलाई और चाट।
1: नमस्कार उत्तर प्रदेश, आप सुन रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश, जहां बात होती है विकास की, विरासत की और उस स्वाद की जो दिल में उतर जाए।
0: और आज हम पहुँचे हैं बाबू की शहर, तहजीब की शहर यानी लखनऊ में, जहाँ पहले आप सिर्फ एक जुमला नहीं बल्कि जिंदगी जीने का अंदाज है।
1: अब यही लखनऊ अपने शानदार स्वादों की वजह से भी दुनिया में नई पहचान बना रहा है।
0: योगी सरकार की वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन यानी ODOC पहल ने लखनऊ के पारंपरिक व्यंजनों को लोकल से ग्लोबल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है।
1: दोस्तों, लखनऊ सिर्फ बड़ा इमामबाड़ा, चिकनकारी और अदब के लिए नहीं जाना जाता, बल्कि यहाँ का खाना भी शहर की रूह माना जाता है।
0: और भाई, लखनऊ का खाना सिर्फ पेट नहीं भरता बल्कि एहसास भी भर देता है।
1: यही वजह सरकार अब इन पारंपरिक स्वादों को ब्रांडिंग, पैकेजिंग और आधुनिक मार्केटिंग से जोड़ रही है, ताकि दुनिया लखनऊ को सिर्फ नवाबी शहर नहीं बल्कि स्वाद की राजधानी के रूप में भी पहचाने।
0: और अब बात करते हैं लखनऊ की सर्दियों की सबसे नाजुक मिठास, मक्खन मलाई की।
1: वाह, नाम सुनते ही जैसे मुंह में मिठास घुल गई। मक्खन मलाई, जिसे कुछ लोग निमिष भी कहते हैं, इतनी हल्की होती है कि मुंह में रखते ही पल भर में घुल जाती है, जैसे ठंडी सुबह धूप की पहली करण, बिल्कुल वैसा एहसास।
2: ये सबसे पहले अपना नाम हमें बता दें।
3: हमारा नाम पप्पू जी है।
2: पप्पू जी, पप्पू जी आपका ये प्रतिष्ठान कब से है?
3: 40-45 साल हो गया।
2: खासियत क्या है, क्योंकि भीड़ काफी कुछ देखा, बहुत देखने
3: जैसे हम लोगों का यहाँ छोला समोसा मिलता है और यहाँ से व्यवहार भी बहुत अच्छा, हम लोग बहुत अच्छे स्पेस आते हैं सबसे।
2: जी जी, इसकी खासियत क्या है? चीज
3: खासियत हमारे यहाँ लहसुन पड़ता है, सोयाबीन पड़ता है और क्वालिटी भी अच्छा रहता है हमारे यहाँ।
2: मैंने सुना है लहसुन
3: प्लेट में पड़ता है।
2: तो उससे क्या स्वाद में?
3: स्वाद आप खाएंगे खुद जान जाएंगे, खा के देखिए।
2: बिल्कुल, ये भीड़ तो मुझे बता ही रही है कि उसमें जरूर कोई ना कोई खासियत है, तभी इतनी ज्यादा भीड़ आपके हमेशा बनी हुई। वैसे जैसे मैंने आपको बताया कि मुख्यमंत्री हमारे जो है योगी जी, उनके एक प्रोजेक्ट के तहत एक जनपद एक व्यंजन हम यहाँ पे आपको चुने हैं। ये लहसुन वाला छोला आपका काफी प्रसिद्ध है, जिसकी वजह से हम आए और आपसे खास वार्ता हो रही है। तो योगी जी के लिए क्या कहना चाहेंगे?
3: बहुत धन्यवाद है, हमारे उत्तर प्रदेश के राजा है, उनका क्या पूछा जाए।
2: हमारे शहर के राजा है,
3: हमारे शहर का क्या, हमारे पूरे देश के राजा है वो।
2: बिल्कुल बिल्कुल, हम भी उन्हें महाराज हैं।
4: धन्यवाद योगी जी।
0: और दोस्तों, इसकी सबसे खास बात ये है कि ये मिठाई सिर्फ स्वाद नहीं बल्कि लखनऊ की पुरानी नवाबी परंपरा का भी हिस्सा है। कहा जाता है कि पुराने समय में नवाबों की रसोई में भी इसे बड़े अंदाज में तैयार किया जाता था,
1: और इसे बनाने की प्रक्रिया भी किसी कला से कम नहीं। सबसे पहले ताजे दूध को घंटों तक धीमी आँच पर पकाया जाता है, फिर उसमें मलाई तैयार की जाती है।
0: उसके बाद असली जादू शुरू होता है। पूरी रात उस दूध को खुले आसमान के नीचे रखा जाता है, ताकि सर्दियों की ओस और ठंडी हवा उसकी मिठास में घुल जाए।
1: यानी ये सिर्फ मिठाई नहीं है बल्कि मौसम और मेहनत का अनोखा संगम है।
0: बिल्कुल, और सुबह सुबह जब हलवाई उस दूध को बड़े प्यार से फेंटता है तो धीरे धीरे उसमें हल्के हल्के झाग बनने लगते हैं।
1: उसमें डाली जाती है केसर की खुशबू, इलायची का स्वाद और ऊपर से पिस्ता बादाम की हल्की सजावट। उफ़, ये सुनकर ही दिल खुश हो जाए।
0: और खास बात ये भी है कि मक्खन मलाई सिर्फ सर्दियों में ही मिलती है, क्योंकि इसकी असली पहचान ही ठंडी हवा और ओस से जुड़ी हुई है।
1: इसलिए लखनऊ में लोग सुबह सुबह दूर दूर से इसे खाने निकल पड़ते हैं। कई लोग तो कहते हैं कि अगर आपने सर्दियों में चौक की मक्खन मलाई नहीं खाई तो समझिए लखनऊ को पूरी तरह महसूस ही नहीं किया।
0: और चौक, अमीनाबाद और पुराने लखनऊ की गलियों में सुबह के वक्त बड़े पीतल के बर्तनों में सजी मक्खन मलाई का नजारा अपने आप में एक अलग ही अनुभव होता है।
1: लखनऊ के चौक इलाके में मक्खन मलाई कॉर्नर पर सर्दियों में सुबह सुबह लोगों की भीड़ लग जाती है। कोई कुल्हड़ में खा रहा होता है, फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर डाल रहा होता है।
0: यानी पारंपरिक स्वाद अब नई पीढ़ी को भी खूब पसंद आ रहा है।
1: और अब ODOC योजना के जरिए इस मिठाई को नई ब्रांडिंग और पहचान मिल रही है, जिससे छोटे दुकानदारों को भी बड़ा फायदा होगा। दोस्तों, ODOC योजना सिर्फ लखनऊ के पारंपरिक स्वादों को पहचान दिलाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे जुड़े हलवाइयों, चाट विक्रेताओं, छोटे उद्यमियों और कारीगरों को आगे बढ़ाने का भी एक बड़ा माध्यम बन रही है।
0: बिल्कुल, सरकार सरकार इन पारंपरिक व्यंजनों से जुड़े लोगों को प्रशिक्षण, कौशल विकास और आधुनिक व्यवसायिक तकनीकों जानकारी उपलब्ध कराने पर जोर दे रही है।
1: भिन्न भिन्न सरकारी योजनाओं के माध्यम से छोटे उद्यमियों को ऋण, वित्तीय सहायता और स्वरोजगार से जुड़ी सुविधाओं का लाभ भी दिलाया जा सकता है, ताकि वे अपने व्यवसाय का विस्तार कर सके।
0: स्वयं सहायता समूह, महिला उद्यमियों और युवाओं को भी इस पहल से जोड़कर नए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर सृजित किए जा रहे हैं।
1: सरकार की कोशिश है कि छोटे दुकानदारों और पारंपरिक व्यंजन बनाने वाले रेगरों को बेहतर पैकेजिंग, ब्रांडिंग और मार्केटिंग की सुविधाएं मिले, जिससे उनके उत्पाद बड़े बाजारों तक पहुंच सके।
0: डिजिटल प्लेटफॉर्म, फूड फेस्टिवल, रिटेन आयोजनों और विशेष प्रदर्शनियों के माध्यम से चार प्रसार का अवसर दिया जा रहा है।
1: यानी ODOC योजना स्थानीय उत्पादों को वैश्विक पहचान देने के साथ साथ हजारों परिवारों की आय बढ़ाने और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का भी काम कर रही है।
0: और यही वजह है कि लखनऊ की मक्खन मलाई, चाट और रेवड़ी जैसी पारंपरिक स्वाद अब नए बाजारों और नए ग्राहकों तक भी पहुँच रहे हैं।
1: अब चलिए लखनऊ की गलियों में, जहाँ चाट की खुशबू देर से लोगों को अपनी ओर खींच रही है।
0: अरे भाई, लखनऊ की चाट मतलब स्वाद का धमाका। खस्ता, आलू टिक्की, मटर चाट, दही बड़े, हर चीज में नवाबी अंदाज।
1: और सबसे खास बात यह है कि लखनऊ की चाट सिर्फ तीखी या मसालेदार नहीं होती, बल्कि उसके स्वाद में एक संतुलन होता है। खट्टापन, मिठास, मसाले और कुरकुरापन, सब कुछ बिल्कुल सही मात्रा में।
0: सही कहा, यहाँ की चाट वाली खाने सिर्फ खाना नहीं।

0: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
1: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
0: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
1: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: कॉल 7500153841। DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
3: हेलो, मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी आर्जरीना, और मेरे साथ आरजे खुशी है। आप सभी को पता है कि देखिए, जब भी हम आते हैं ना, तो दोनों कुड़िया साथ में ही आते हैं गप्पे शप्पे करने के लिए, आपसे ढेर सारी बातें करने के लिए। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है भैया, सच में बहुत ही स्पेशल, बहुत ही खास टॉपिक है, क्योंकि हर किसी इंसान के लाइफ में ना एक ऐसा पर्सन जरूर होता है जो उसके लिए हमेशा खास होता है, चाहे कुछ भी हो जाए। मतलब उसकी एक मैसेज, एक कॉल देखकर ना हमारे चेहरे पर एक प्यारा सा स्माइल आ जाता है। मतलब वो इंसान हमारे लिए बेहद खास होता है। आई नो कि आपके लाइफ में भी कोई ना कोई ऐसा इंसान जरूर होगा जो बेहद और बहुत ज्यादा खास भी होगा। कहते हैं ना, जिंदगी में भीड़ बहुत मिलती है, लेकिन उस भीड़ में कोई एक ऐसा इंसान जरूर होता है जो बाकी सबसे अलग होता है, जिसके सामने आपको अपनी खुशी एक्सप्लेन नहीं करनी पड़ती है, दुख छुपाना भी नहीं पड़ता है। वो बस देखकर समझ जाता है कि आज मन ठीक नहीं है। जरूरी नहीं है कि वो आपका सबसे पुराना दोस्त हो या परिवार का सदस्य ही हो। कभी कभी कोई इंसान अचानक जिंदगी में आता है और धीरे धीरे बहुत खास बन जाता है। आपके लिए भी ऐसा कोई इंसान जरूर होगा जिसके बारे में सोचते ही चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ जाती है। हाँ भाई खुशी, तुम बताओ, तुम इतनी टहल क्यों रही हो, ये बताओ पहले।
0: टहलना बहुत अच्छा होता है, इसलिए मैं टहल रही हूँ। और मैं बताती हूँ कि जिंदगी में ना सबसे खूबसूरत रिश्ता शायद वही होता है जहाँ आपको हर बात बोलकर समझानी नहीं पड़ती, सामने वाला आपकी चुप्पी से भी समझ जाता है कि कुछ तो हुआ है। एक बात, एक छोटा सा सवाल, क्या हुआ, और अचानक लगता है कि चलो कोई तो है जो मुझे पूछने वाला है। ऐसे लोग हमारी जिंदगी में किसी गिफ्ट से कम नहीं होते, और हो सकता है आप रोज उनसे बात ना करते हों, लेकिन जब जरूरत पड़े तो उनका एक मैसेज भी बहुत बड़ी उम्मीद दी जाता है। ऐसे इंसान को संभाल कर रखिए, क्योंकि हर इंसान को ऐसा इंसान समझने वाला नहीं मिलता।
3: ये तो बिल्कुल सही कहा तुमने, और उस वक्त का साथ ये बहुत जरूरी होता है। अच्छे समय में तो हर कोई साथ दिखाई देता है, असली पहचान तो तब होती है जब जिंदगी थोड़ी मुश्किल हो जाती है और जब चेहरे पर स्माइल नहीं होती, बस कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, और जब लगता है कि सब कुछ उल्टा चल रहा है, तब कोई एक इंसान अगर आपके पास खड़ा रहता है तो उसकी जगह जिंदगी में बहुत खास हो जाती है। उसने शायद आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ना की हो, लेकिन उसने आपको अकेला महसूस नहीं होने दिया। और कई बार इंसान को सॉल्यूशन से ज्यादा जरूरत इस बात की होती है कि कोई उसके साथ खड़ा है।
0: और रीना, तुम्हें पता है, पुराने दोस्त, कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जिनसे महीनों बातें ना हो, लेकिन जब फोन पर बात शुरू होने लगती है ना, तो जैसे कल ही मिले थे। ना कोई फॉर्मल कन्वर्सेशन, ना कोई हिसाब किताब, बस वही पुरानी हंसी, वही पुराने किस्से और वही बेफिक्री बातें। जिंदगी आगे बढ़ती रहती है, लोग बदलते रहते हैं, लेकिन कुछ दोस्त हमारी यादों में वही के वही रहते हैं। अगर आपके पास ऐसा कोई पुराना दोस्त है जो आज, उसे एक छोटा सा मैसेज जरूर देना, यार याद आ रही थी। हो सकता है सामने वाले का पूरा दिन ही बन जाए, तो आप भी अपने दोस्त को मैसेज कीजिए ना जिनसे आपने महीनों बात नहीं की है, शायद आपका मैसेज का वो इंतजार कर रहे हो और उनका पूरा दिन बन जाए, या फिर आप किसी को मिस कर रहे हैं कोई आपके पास ही मैसेज कर दे, है ना दोस्तों। ये दोस्ती का रिश्ता ना बहुत खास होता है, चाहे आप दूर हो या आप नजदीक हो, तो इस दोस्ती के रिश्ते को ना हमेशा संभाल कर रखिए और बीच बीच में वीकली मंथली जब आपको टाइम मिले तो जरूर टाइम स्पेंड करें, एक दूसरे से मिले झूले, उससे रिश्ते और ज्यादा खूबसूरत होते हैं।
3: हर परिवार में कोई ना कोई ऐसा इंसान होता है जिसके पास बैठते ही मन हल्का हो जाता है, कभी वो माँ होती है, कभी पापा, कभी भाई बहन, कभी दादा दादी, या कोई ऐसा रिश्तेदार जो आपकी बात ध्यान से सुनता है। उसकी खासियत ये नहीं कि हर समस्या का हल जानते हैं, उसकी खासियत ये है कि वो आपको आपकी प्रॉब्लम के साथ एक्सेप्ट करते हैं। परिवार की यही छोटी सी खुशी हमें बाहर की बड़ी बड़ी परेशानियों से लड़ने की ताकत देती है, इसीलिए अपने घर के उस खास इंसान को कभी कभी बता भी दिया कीजिए कि वो आपके लिए कितना मायने रखते हैं, क्योंकि आपके लाइफ में जो भी इंसान खास हो ना वो आपके लिए बेहद आपके लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं।
0: कभी कभी दोस्तों हमारी जिंदगी में ना ऐसा वक्त आता है जब हमें खुद पर भी भरोसा नहीं रहता, लेकिन तभी कोई एक इंसान बोलता है तू कर लेगा, मुझे पूरा भरोसा है। बस ये चार पांच शब्द अंदर से कुछ बदल देते हैं, क्योंकि किसी का आप पर विश्वास करना बहुत बड़ी बात होता है। हो सकता है दुनिया आपकी कमी दिख रही हो, लेकिन वो इंसान आपकी पोटेंशियल दिख रहा होता है। अगर आपकी जिंदगी में ऐसा कोई इंसान है जो आपकी क्षमता पर आपसे ज्यादा भरोसा करता है तो समझ लीजिए आप बहुत लकी हैं। हाँ हाँ, आप जो मुस्कुरा रहे हैं मैं आप ही को बोल रही हूँ, वो लकी पर्सन आप ही हैं।
3: ये तो बिल्कुल सही कहा तुमने, और साथ ही साथ आजकल बहुत से रिश्तों में मतलब ढूंढ लिया जाता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बिना किसी एक्सपेक्टेशन के आपके साथ खड़े रहते हैं, ना उन्हें बदले में कुछ चाहिए ना कोई फायदा, बस इसीलिए साथ है क्योंकि उन्हें आपकी परवाह है। ऐसे लोग शायद ज्यादा बड़ी बड़ी बातें नहीं करते, लेकिन जब जरूरत होती है तो सबसे पहले पहुंच जाते हैं, और सच कहे तो जिंदगी में ऐसे लोगों की कीमत किसी महंगे गिफ्ट से ज्यादा कहीं ज्यादा होती है। और जब आपके पास ऐसे इंसान है तो मैं कहती हूँ उसको संजो कर रखिए, अपने पास से कभी दूर मत होने दीजिए। चाहे आप बात ना करें, लेकिन जब भी मिले तो आपको मिलकर ऐसा ना लगे कि हम काफी टाइम बाद मिल रहे हैं।
0: दोस्तों हमारी लाइफ में ना कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ हमारे साथ नहीं रहते, वो हमें बदल भी देते हैं। कोई हमें कॉन्फिडेंस देना सिखाता है, कोई खुद के लिए खड़ा होना, कोई मेहनत करना, और कोई ऐसा समझाता है कि जिंदगी में हार के बाद भी उठना जरूरी है। हो सकता है वो इंसान आज आपकी जिंदगी में ना हो, लेकिन उसकी कही हुई कोई बात आज भी आपके साथ चल रही हो। ऐसे लोग हमारे सफर का हिस्सा भले ही कम समय के लिए बने हों, लेकिन उनका असर बहुत लंबे समय तक रहता है। क्यों दोस्तों, होता है ना ऐसा, आपकी लाइफ में भी ऐसे ही लोग हैं जो आपको कहीं ना कहीं मोटिवेशन देते हैं, कॉन्फिडेंस देते हैं और आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हौसला देते हैं, तो आप भी आगे बढ़ते रहिए।
3: मतलब बात तो वही है ना कि जो अच्छे दोस्त होते हैं ना, वो आपके अंदर कोई कमी है तो उसको बताते हैं कि इस कमी को ठीक करो, तुम ऐसे करो तभी आगे बढ़ोगे। लेकिन जो इंसान आपसे मतलब के लिए रिश्ता रखता है, मतलब के लिए दिखावे रखता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन काम गलत कर रहे हो, क्या सही है क्या गलत है, कभी इंटरफेयर नहीं करता वो आपके लाइफ में। लेकिन जो आपके सच्चे मित्र होते हैं वो हमेशा आपकी परवाह करते हैं और आपकी गलतियों को हमेशा बताते हैं। किसी खास इंसान की पहचान हमेशा बड़ी बड़ी यादों से नहीं होती, कभी उसकी याद किसी छोटे से काम से आ जाती है। कोई गाना सुनकर, कोई जगह देखकर, कोई चाय की खुशबू या फिर कोई पुराना डायलॉग सुनकर अचानक मन कहता है अरे ये तो वो कहा करता था, और चेहरे पर अपने आप स्माइल आ जाती है। यही तो खास रिश्तों की खूबसूरती है। इंसान दूर हो सकता है, लेकिन उसकी छोटी छोटी बातें हमारी जिंदगी में कभी ना कभी हमारी जिंदगी में कहीं ना कहीं रह जाती हैं।
0: सही समय पर सही इंसान का मिल जाना, साथ देना अपने आप में ब्लेसिंग्सफुल होता है एवरीवन। कभी कभी ना जिंदगी में कोई इंसान ऐसे समय पर आता है जब हमें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। शायद उसे खुद भी नहीं पता होता कि उसकी एक बात, एक सलाह या एक छोटा सा सपोर्ट हमारे लिए कितना बड़ा था। जिंदगी में हर इंसान हमेशा हमारे साथ नहीं रहता, लेकिन कुछ लोग बिल्कुल सही समय पर आकर ना हमें संभाल जाते हैं। इसीलिए हर रिश्ते की उम्र नहीं देखनी चाहिए। कभी कभी किसी इंसान का कुछ समय के लिए आना भी जिंदगी में बहुत मायने रखता है।
3: जो आपकी छोटी छोटी बातें याद रखता है। आपने कभी नोटिस किया है, खास इंसान वही नहीं होता जो आपके लिए बड़े काम करे। कभी कभी वो इंसान खास इसलिए होता है क्योंकि उसे आपकी छोटी छोटी बातें याद रहती हैं। आपको कौन सी चीज पसंद है, किस बात से आपको बुरा लगता है, आप परेशान होने पर चुप हो जाते हैं, ऐसी छोटी बातें याद रखना बताता है कि सामने वाला आपको ध्यान से सुनता है। और आज के बिजी समय में किसी को इतनी अटेंशन देना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है श्रोताओं। और इसी के साथ हम लेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक और इसके बाद फिर कनेक्ट होंगे और करेंगे ढेर सारी बातें। फिलहाल आप सभी से यही कहना चाहेंगे, रेडियो के सिवा बिल्कुल नहीं घुमानी है, हमारे साथ कनेक्ट रहिए और ढेर सारी बातें एंजॉय करते रहिए। आपके लाइफ में ना कोई पर्सन तो ऐसा जरूर होगा, तो आप हमें मैसेज करके बता सकते हैं। नंबर है 9837896896।

0: हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। मैं आपके साथ आपकी खुशी, और अभी आपने ये हैपनिंग ट्रैक एंजॉय किया एंड अब हम बात करने वाले हंसी वाले इंसान की। जी हाँ दोस्तों, कुछ लोग ना हमारी जिंदगी में हैप्पीनेस की तरह होते हैं। इनके साथ 5 मिनट बैठो और मूड अपने आप ठीक होने लगता है। वो कोई जादू नहीं करते, बस अपनी बातें करके आपको हंसा देते हैं। कभी बेवकूफी वाली बात, कभी पुराने किस्से, और कभी ऐसे जोक कि हंसी रुकने का नाम ही नहीं लेती। ऐसे इंसान जिंदगी में ना बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि हर दिन सीरियस रहने के लिए नहीं बना है एवरीवन। अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसा पर्सन है ना जो आपको बिना किसी वजह के हंसा सकता है, तो उसे जरूर संभाल के रखिए। क्योंकि दोस्तों, तकलीफ देने वाले ना हजारों लोग मिल जाएंगे, लेकिन खुशियां देने वाले लोग बहुत कम मिलेंगे। और अगर ऐसे पर्सन आपके पास है तो संभाल के रखो और खुश रहो।
1: दूर रहकर भी करीब, ये बहुत देखा जाता है। क्योंकि देखिए, आज के टाइम में ना हर कोई आगे बढ़ रहा है, ग्रो कर रहा है, और हमेशा के लिए एक साथ रहते भी नहीं है। तो कुछ रिश्तों में दूरी सिर्फ जगह नहीं होती, दिल की नहीं। इंसान किसी दूसरे शहर में हो सकता है, रोज बात ना होती हो, लेकिन जरूरत पड़ते ही कनेक्शन वही महसूस होता है कि फोन कॉल एक मैसेज और लगता है जैसे दूरी खत्म हो गई। ऐसे रिश्ते हमें बताते हैं कि किसी के करीब रहने के लिए हमेशा उनके पास रहना जरूरी नहीं। अगर दिल में जगह है तो हजारों किलोमीटर की दूरी भी रिश्ते को कमजोर नहीं कर पाती है। और चाहे आप कितने भी दूर रहो, और जब कॉल आती है ना तो भाई लगता ही नहीं है कि हम कब मिले हैं, यानी कि लगता है कि बस जस्ट अभी तो मिले हैं। और कैसे वही, यानी कि अनप्रोफेशनल वाली बातें हम करने लग जाते हैं, जैसे हम मिलते थे, बात करते थे। मतलब सोचना ही नहीं पड़ता कि क्या बोले क्या ना बोले, मतलब जो दिल में आता है हम बोल देते हैं। तो वो होती है असली इंसानियत और असली दोस्ती।
0: दोस्तों, हर इंसान की जिंदगी में ना कभी ऐसा मोमेंट आता है जब वो खुद को कमजोर महसूस करने लगता है। उस वक्त अगर कोई आपके कंधे पर हाथ रखकर कह दे कि तुम कर सकते हो, तो वो बात लंबे समय तक याद रहती है। क्योंकि कई
2: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
0: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
3: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
0: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
3: अरे नहीं,
4: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
3: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड क्वाइन जीतने का मौका भी है।
0: अच्छा?
4: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता चैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।
5: हेलो, युवा को बना रही है आत्मनिर्भर। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मुक्ता शर्मा, समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में चालू वित्त वर्ष के लिए पूर्व दशम, 9-10 तथा दशमोत्तर कक्षाओं के 4,60,000 से अधिक विद्यार्थियों के खाते में 148 करोड़ रुपए से अधिक की छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति हस्तांतरित की, और 11 विद्यार्थियों को अपने हाथ से छात्रवृत्ति प्रमाण पत्र भी सौंपे। इस अवसर पर श्री योगी ने आश्वस्त किया कि छात्रों के लिए सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, हर पात्र बच्चे तक छात्रवृत्ति पहुंचाएंगे। श्री योगी ने कहा कि गत वर्ष 69 लाख बच्चों को 6,200 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति वितरित की गई, 9 वर्ष में 4 करोड़ से अधिक बच्चों को छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति मिली है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश अब सही दिशा में आगे बढ़ा है, युवा यूनानिहाल यूपी के सारथी हैं।

0: बच्चों से कहा कि आप जब 36-37 साल के होंगे तब 2047 तक आपको खुशहाल व समृद्ध भारत मिलेगा, इसके लिए आपको भी योगदान देना होगा।
1: आप इस यूपी के सारथी हैं। यूपी का भविष्य कैसे होना है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों के सामने 2047 यानी 15 से 18 वर्ष के जो छात्र आज हैं, अगले 21 वर्ष में आपकी आयु क्या होगी, 36 से लेके 38-39 के बीच जब आपकी उम्र होगी, तब भारत 2047 में एक विकसित भारत की संकल्पना को लेकर के बढ़ रहा होगा, उसको पूरा कर रहा होगा, और उस के लिए आपका प्रयास भी होना चाहिए, आपको भी लग करके काम करना होगा।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में वाराणसी के नमो घाट पर आगामी 24 से 26 अक्टूबर तक प्रस्तावित भव्य एयर शो की तैयारियों की उच्च स्तरीय समीक्षा की। 25 अक्टूबर को प्रस्तावित मुख्य समारोह में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तथा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति संभावित है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: समीक्षा बैठक में भारतीय वायुसेना के अधिकारियों, वाराणसी जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने मुख्यमंत्री के समक्ष एयर शो की तैयारियों और संपूर्ण कार्ययोजना का विस्तृत प्रस्तुतीकरण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस एयर शो को लेकर आम नागरिकों में भी उत्सुकता है और बड़ी संख्या में लोग भारतीय वायुसेना के प्रदर्शन को देखने के लिए पहुँच सकते हैं। इसे देखते हुए क्राउड मैनेजमेंट, सुगम यातायात, पार्किंग और जोनवार स्थल चिन्हांकन की व्यवस्था पहले से सुनिश्चित की जाए। उन्होंने प्रशिक्षित पुलिस कर्मियों की तैनाती के साथ प्रत्येक सेक्टर के लिए मजिस्ट्रेट की सुनियोजित तैनाती सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने वाराणसी मंडल के सभी जनपदों के जिलाधिकारियों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। समाचार कक्ष से ओम अवस्थी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात ने आज 12 वर्ष पूरे कर लिए हैं। मन की बात कार्यक्रम की पहली कड़ी वर्ष 2014 में आज ही की तारीख को विजयादशमी के दिन प्रसारित हुई थी। हाल ही में प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम की 138वीं कड़ी में देशवासियों को संबोधित किया। मन की बात के माध्यम से प्रधानमंत्री देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करते हैं। पिछले 12 वर्षों में मन की बात ने देशभर में हो रहे सकारात्मक बदलावों को सामने लाने और नागरिकों को भारत की विकास यात्रा में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करने का एक अनूठा मंच प्रदान किया है। इस मासिक कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री देश भर के ऐसे लोगों की प्रेरक कहानियां साझा करते हैं जो शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण, नवाचार और सामाजिक सेवा सहित विभिन्न क्षेत्रों में बदलाव ला रहे हैं। वाराणसी खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉ प्रमोद कुमार मिश्रा ने आज नामांकन दाखिल किया। उनके साथ 6 अन्य प्रत्याशियों ने भी नामांकन किया। नामांकन स्थल पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। जांच के बाद ही प्रत्याशियों और प्रस्तावकों को प्रवेश दिया गया। उधर उत्तर प्रदेश विधान परिषद के गोरखपुर फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव के लिए डॉ शरदेन्दु कुमार त्रिपाठी ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों के बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। और अब शेष समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के क्षेत्र में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और लगातार जारी रहने वाले समर्पण से संभव हुआ है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से यह समर्पण लोगों की जिंदगी बदल रहा है। आज अपनी विशेष श्रृंखला में हम बात कर रहे हैं प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से इस संकल्प को कैसे वास्तविकता में बदला गया।
3: 2014 में शुरू की गई प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी डीबीटी के माध्यम से सरकार की ओर से दी जाने वाली धनराशि पारदर्शिता के साथ सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुंचाई जा रही है। 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री ने कहा था कि गरीबों के लिए भेजे गए हर एक रुपए में से केवल 15 पैसे ही लाभार्थियों तक पहुँचते हैं। 2014 के बाद केंद्र सरकार ने इस व्यवस्था को बदलते हुए यह सुनिश्चित किया कि डीबीटी के माध्यम से सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में पहुंचे। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आज सैकड़ों सरकारी योजनाओं का पैसा डीबीटी के माध्यम से सीधे लोगों के बैंक खातों में पहुंच रहा है।
4: हम भारत में डिजिटल टेक्नोलॉजी से ट्रांसपेरेंसी लेकर आए हैं। आज सरकार की सैकड़ों स्कीम्स के तहत डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया जाता है। इसमें सिस्टम से लीकेज बंद हुई है।
3: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए वाराणसी के अमित कुमार ने कहा कि डीबीटी के माध्यम से सरकार सीधे जनता के खातों में पैसा हस्तांतरित कर योजनाओं का लाभ पहुंचा रही है।
5: मोदी सरकार ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से अपनी जितनी भी योजनाएं हैं केंद्र सरकार की भी और केंद्र के ही पैरामीटर पर राज्य सरकारों ने भी डीबीटी के जरिए ही अब ज्यादातर जो सरकारी योजनाएं हैं उसके तहत अब लोगों के बैंक अकाउंट में डायरेक्ट जो लाभ है वो पहुंचाते हैं।
3: इस साल अगस्त तक डीबीटी के माध्यम से 320 सरकारी योजनाओं के तहत 53 लाख करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि लाभार्थियों को सीधे हस्तांतरित की जा चुकी है। आकाशवाणी समाचार के लिए वाराणसी से मनीष सिंह।
0: केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा कि युवाओं को सरकार स्वरोजगार योजनाओं के तहत आत्मनिर्भर बना रही है और रोजगार स्थापित करने के लिए बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। श्री प्रसाद आज पीलीभीत जिले के पूरनपुर में आयोजित युवा सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने पूरनपुर के अलावा कई अन्य गांवों में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रमों में भाग लिया। स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान में उत्तर प्रदेश ने राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। प्रदेश ने अभियान के विभिन्न प्रमुख घटकों में शानदार प्रदर्शन करते हुए लगातार तीसरे वर्ष अपनी अग्रणी स्थिति को बनाए रखा है। नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री श्री ए के शर्मा ने अभियान की सफलता पर प्रदेशवासियों, जनप्रतिनिधियों, नगरीय निकायों के अधिकारियों, कर्मचारियों, सफाई मित्रों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि स्वच्छ, सुंदर और स्वस्थ उत्तर प्रदेश का निर्माण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है। भारी बारिश के कारण प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में प्रभावित हुई बिजली और सड़क व्यवस्था को जल्द सामान्य करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। एक रिपोर्ट।
6: मुख्यमंत्री ने बारिश से क्षतिग्रस्त बिजली के खंभों और तारों को जल्द दुरुस्त कराने के साथ प्रभावित क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति शीघ्र बहाल करने पर जोर दिया है। मुख्यमंत्री ने जलभराव और बारिश के कारण क्षतिग्रस्त सड़कों को चिन्हित कर आवश्यक मरम्मत कार्य जल्द पूरा कराने को कहा है ताकि लोगों के आवागमन में किसी तरह की बाधा न हो। श्री योगी ने प्रभावित क्षेत्रों में राहत और व्यवस्थाओं की बहाली के कार्यों में किसी तरह की देरी न होने पर जोर देते हुए कहा कि स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार संबंधित अधिकारी प्राथमिकता तय करें और प्रभावित लोगों को जल्द राहत पहुंचाएं। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
0: वाराणसी सहित कई जिलों में आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर आज महिलाओं ने अपने संतानों के अच्छे स्वास्थ्य, दीर्घायु और सुख समृद्धि की कामना से निर्जला जीवित पुत्र का जीवितिया व्रत रखा है। व्रत को लेकर महिलाओं में खासा उत्साह देखने को मिला। व्रती महिलाओं ने भोर में सरगही ग्रहण करने के बाद निर्जला उपवास शुरू किया। कल सुबह उदित सूर्य को अर्घ्य देने के बाद व्रत का पारण किया जाएगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज 4,60,000 से अधिक विद्यार्थियों के खाते में हस्तांतरित की 148 करोड़ रुपए से अधिक की छात्रवृत्ति। बच्चों से की विकसित भारत 2047 का भागीदार बनने की अपील। मुख्यमंत्री ने 24 से 26 अक्टूबर तक वाराणसी के नमो घाट पर होने वाले एयर शो की तैयारियों को परखा। सेक्टरवार मजिस्ट्रेट और पुलिस बल तैनात करने के दिए निर्देश। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात ने आज पूरे किए 12 वर्ष। 3 अक्टूबर 2014 को विजयदशमी के दिन प्रसारित हुई थी पहली कड़ी। और केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने पीलीभीत में युवा सम्मेलन को किया संबोधित, कहा सरकार की योजनाएं युवाओं को बना रही हैं आत्मनिर्भर। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन अब समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
7: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशाद जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
8: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
9: हेलो, मैं हूँ आपके साथ आपके अपनी आर्जरीना, और मेरे
10: से उनका जो कहते हैं ना कि गर्व से उनका सर उठ।
9: जिंदगी में ऐसे मोमेंट्स और ऐसे लोग कभी भूले नहीं जाते, क्योंकि उन्हें हमें उस वक्त संभाला जब खुद को संभालना मुश्किल हो रहा था। तो ऐसे इंसान आपकी ताकत बनते हैं, और मुझे लगता है कि जब वो आपके साथ खड़े रहते हैं तो आपको भी उनके साथ हर मुश्किल में साथ देना चाहिए।
10: अब दोस्तों, एक मैसेज की ताकत पता है ना, जब एक मैसेज आ जाता है तो हमारा हौसला बढ़ जाता है। हमारे चेहरे पर कहां हमारा मूड कभी कभी सैड होता है, लेकिन जैसे ही एक मैसेज आता है, एक नोटिफिकेशन आता है, हमारे चेहरे पर ऑटोमेटिकली स्माइल आ जाती है। कभी कभी किसी खास इंसान का सिर्फ एक मैसेज पूरे दिन को बदल देता है। कैसे हो, खाना खाया? परेशान मत होना, सब ठीक हो जाएगा। या बस एक सिंपल सा मैं हूं ना। शब्द छोटे होते हैं लेकिन उनका असर बहुत बड़ा होता है, क्योंकि असली बात मैसेज की नहीं होती है, असल बात होती है किसी ने आपको याद किया है। और जिंदगी में याद किया जाना भी अपने आप में बहुत खूबसूरत फीलिंग है। देखो हम भी आपको याद करते हैं ना, तभी तो आपसे मुलाकात करने आते हैं जी।
9: और साथ ही साथ एक ऐसा पार्ट जब कोई आपकी कहानी का हिस्सा बनता है। हमारी जिंदगी एक किताब की तरह है, इसमें बहुत सारे किरदार आते हैं, कुछ कुछ पन्ने तक रहते हैं, कुछ नई चैप्टर तक और कुछ पुरानी कहानी का हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन हर किरदार की अपनी जगह होती है, कोई हमें हंसाता है, कोई सिखाता है, कोई संभालता है और कोई हमें मजबूत बनाकर चला जाता है। इसीलिए हर खास इंसान को उसकी जगह और उसके योगदान के लिए याद करना चाहिए हम। और कुछ लोगों के साथ बैठकर आपको कुछ बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती, बस उसकी मौजूदगी में मन शांत हो जाता है और ना कोई प्रेशर, ना कोई जजमेंट, ना खुद को अच्छा साबित करने की जरूरत। आप जैसे हैं वैसे ही रह सकते हैं। ऐसे लोग जिंदगी में बहुत रियल होते हैं। अगर किसी इंसान के साथ आपको खुद को बदल कर नहीं बल्कि खुद बनकर रहे कंफर्ट मिलता है तो समझ लीजिए कि वो इंसान आपके लिए बेहद खास है। और श्रोताओं, हम मुझे लगता है कि अब म्यूजिकल में ब्रेक ले लेना चाहिए, क्योंकि बातों के साथ साथ गानों का तड़का लगता है तो और भी मजा आ जाता है। तो बस हम लौट कर आते हैं आप सभी के साथ, करेंगे ढेर सारी बातें। फिलहाल कनेक्ट रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहे, गुनगुनाते रहे।

0: नहीं
1: कप्तान, क्या तुझे यकीन नहीं है?
0: हाँ पार्टनर, यकीन है, पूरा यकीन है। अगर मैं कूदा तो मैं मर जाऊंगा।
2: साले डर गया, क्यों बुलाई?
1: साले इतने हंसा गया, तू कूद गया।
2: अबे पागल नहीं हूँ तेरी तरह, मर जाएगा किसी दिन, लाश भी नहीं मिलेगी।
1: क्यों?
2: तो क्या हुआ? अबे आत्मा भटकती रहेगी तेरी, शांति नहीं मिलेगी।
1: अगर ये लाश नहीं मिली ना तो जला देना मेरी चीजें, मेरे कपड़े, मेरे जूते और उसकी राख नदी में बिखेर देना, मिल जाएगी मेरी आत्मा को शांति। अब तू

0: एवरीवन, हमारी लाइफ में ना ऐसे इंसान भी होते हैं जो हमें अकेला नहीं छोड़ते। मुश्किल वक्त में सबसे जरूरी चीज हमेशा सलाह नहीं होती, कभी कभी बस किसी का साथ चाहिए होता है। ऐसा कोई जो बोले चल मैं तेरे साथ हूँ ना, उसने आपकी परेशानी खत्म नहीं की लेकिन उसने आपका डर कम जरूर कर दिया। और यही किसी रिश्ते की असली ताकत होती है। अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान रहा है जिसने आपके कठिन समय में आपका हाथ नहीं छोड़ा, तो शायद वो आपके जीवन के सबसे खास लोगों में से एक है।
1: और श्रोताओं, कभी कभी ऐसा होता है ना कि अचानक याद आने वाला इंसान बहुत स्पेशल होता है। चाहे आप बैठे रहते हैं, कुछ काम करते रहते हैं और अचानक उसकी याद आती तो प्यारी से स्माइल आपके चेहरे पर आ जाती है और उस टाइम आपकी खुशी का जो लेवल है वो नेक्स्ट लेवल वाला होता है। दिन भर हम कितने लोगों से मिलते हैं, कितनी बातें करते हैं, कितने काम करते हैं, लेकिन दिन के किसी भी वक्त अचानक किसी एक इंसान का ख्याल आता है, कोई वजह भी नहीं होती, बस याद आ गया। यही बताता है कि वो इंसान हमारे मन में कहीं खास जगह बना चुका है। वो हो सकता है हम उसे रोज ना बताते हो लेकिन दिल के किसी कोने में उसकी तस्वीर जरूर होती है, उसकी यादें जरूर होती है, जो हमेशा उसकी याद कहीं ना कहीं कोई भी मोमेंट हो आ ही जाती हैं।
0: हमारी लाइफ का, जिंदगी का टीचर, मैं आपको बताती हूँ, कुछ लोग ना हमारे टीचर इसलिए नहीं होते क्योंकि उन्हें हमें कोई सब्जेक्ट पढ़ाया, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने हमें जिंदगी सिखाई। उन्होंने बताया कि लोगों को कैसे समझना है, मुश्किलों में कैसे खड़े रहना है और खुद की वैल्यू कैसे पहचाननी है। हो सकता है उस वक्त उनकी बातें समझ ना आई हूँ लेकिन सालों बाद वही बातें जिंदगी में काम आती हैं। ऐसे इंसान सिर्फ याद नहीं रहते, उनकी सीख हमारे साथ चलती रहती है। दोस्तों, हमारी कॉलेज की बात है, मेरी एक टीचर थी और वो मुझे हमेशा, मतलब मैं आपको बताती हूँ, मेरे को संस्कृत सब्जेक्ट मिला हुआ था और संस्कृत में मेरा इतना मतलब इंटरेस्ट नहीं था लेकिन वो मैम मेरे को जबरदस्ती संस्कृत पढ़ाती थी और हमेशा वो मेरे को संस्कृत पढ़ाती थी। तो मुझे ऐसा लगता था, उस टाइम भी मेरे को लगता था कि मैम क्यों मुझे जबरदस्ती फोर्स करके पढ़ाती हैं, लेकिन मुझे आज समझ आता है अगर वो मुझे उस टाइम पर ज्ञान नहीं देती, वो मुझे संस्कृत नहीं पढ़ाती तो मैं लाइफ में शायद बहुत कुछ मिस कर जाती।
1: देखिए, पता है खुशी क्या होता है, हमें खुद नहीं पता कि हमारे अंदर क्या क्वालिटी है।
0: Exactly.
1: जो इंसान सामने वाला होता है वो देखकर हमें जज कर लेता है। इनफैक्ट जो हमारे टीचर होते हैं वो हमारी मेहनत लगन देकर वो पहले ही डिसाइड कर लेते हैं कि ये बच्चा इस चीज में आगे है और तुम आगे एक दिन जरूर बढ़ोगे। वो इस चीज को हमेशा कहते भी हैं और कभी कभी आप परेशान होते हो तो वो संभालते भी हैं, क्योंकि एक गुरु ना निस्वार्थ होकर बच्चों को पढ़ाते हैं और वो बस यही चाहते हैं कि जो मेरे पढ़ाए बच्चे हैं वो एक ना एक दिन जरूर सक्सेस हो।
0: कहते हैं ना रीना कि हीरे की कीमत जोहरी को ही पता होती है।
1: अरे वाह, कहाँ कहाँ से लेकर आती है लड़की ऐसी ऐसी लाइनें।
0: जिंदगी का अनुभव है।
1: ओह माय गॉड,
0: सीख रहे हैं अभी, पूरी जिंदगी सीखने के ही।
1: राइट राइट,
0: जिंदगी का नाम ही है सीखना है। तो हर दिन सीखते रहते हैं कुछ ना कुछ,
1: और मुझे लगता है कि सीखना बहुत जरूरी है, हर रोज सीखिए। और अब हम बात कर लेते हैं, हम अक्सर सोचते हैं कि कभी समय मिले तो अपने खास लोगों को बताएंगे कि वो हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट है, लेकिन जिंदगी बहुत बिजी है और कभी अक्सर आता ही नहीं है। इसीलिए अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान है जिसकी वजह से आपको खुशी मिलती है, हिम्मत मिलती है या सुकून मिलता है, तो आज ही उसे बता दीजिए। जरूरी नहीं है कि कोई बड़ा गिफ्ट दे, बस इतना कह दीजिए कि तुम मेरी जिंदगी में हो, ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है।
0: वो गाना है ना, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके,
1: हाँ,
0: मेरे दिल में यूं ही रहना बस प्यार प्यार, प्यार बनके,
1: सदा बहार बनके।
0: तो वही है, कुछ लाइफ में होते हैं ऐसे इंसान,
1: हाँ,
0: जो हमारी लाइफ को खूबसूरत बनाते हैं।
1: बिल्कुल।
0: और हमारी लाइफ में सबसे अच्छा कौन है? हमारा रेडियो, जो हमारी लाइफ को एवरीडे खूबसूरत बनाता है। आप सबसे मिलने का, बात करने का मौका हमें मिलता है।
1: हाँ, मतलब हम देखा कितने भी परेशान हो लेकिन जब रेडियो पर आते हैं ना, एकदम बिंदास हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता वो सारा
0: वो
1: टेंशन।
0: खुशी ना हम शब्द में एक्सप्लेन नहीं कर सकते। एवरीवन, ये जो रिश्ता है, ये जो कनेक्शन है ना, अमेजिंग, माइंड ग्लोइंग।
1: तो तो श्रोताओं हम लेंगे यहाँ से जाने की इजाजत, लेकिन जाते जाते खुशी कुछ कहना चाहती हैं। तो जी मैडम क्या कहना चाहती हैं?
0: तो दोस्तों आज की बात यहीं से आप तक पहुंचाते हैं। जिंदगी में ना भीड़ बहुत है, कॉन्टेक्ट की लिस्ट भी बहुत लंबी है, लेकिन दिल के बहुत करीब लोग शायद गिने चुने ही होते हैं। कोई ऐसा जो आपकी खुशी देखकर खुद खुश हो जाए, कोई जो आपके दुख में बिना बुलाए आ जाए, कोई जो आपकी चुप्पी समझ ले, या कोई जो बस इतना कह दे मैं हूँ ना। अब सवाल आपका है, आपकी जिंदगी में वो खास इंसान कौन है? नाम मत बताइए तो भी चलेगा, बस मन ही मन उसे याद कर लीजिए, और अगर मौका मिले तो उसे आज बता भी दीजिएगा कि वो आपके लिए कितना खास है। ठीक है, छुपाइए मत, बता दीजिएगा उनको कॉल करके, और शर्माने की भी बात नहीं है, जो है वो है, चाहे वो आपके पेरेंट्स हैं, आपके फैमिली मेंबर्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, एंड आपका लाइफ पार्टनर भी हो सकता है। तो आज दिल की बातें कह देना, और अब हम भी अब आपको कहना चाहेंगे बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, और ये खूबसूरत सा रिश्ता हमारे साथ बनाए रखिए, दिल से दिल का।
2: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
3: श्री साई हॉस्पिटल में अनुभवी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शाहीन द्वारा संपूर्ण महिला स्वास्थ्य मेडिकल सेवाएं उपलब्ध हैं। आधुनिक लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, सुरक्षित सिजेरियन और नॉर्मल डिलीवरी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी की विशेष देखभाल, बच्चेदानी से जुड़ी हर प्रकार की सर्जरी, माँ और शिशु की सुरक्षित देखभाल के लिए नवजात शिशु विशेषज्ञ भी उपलब्ध हैं। साथ ही क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस की सुविधा और न्यूनेटल वेंटिलेटर के साथ। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल 7060002430।
4: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
5: डाकघर से आज ही संपर्क करें या इंडिया पोस्ट

0: www.govin पर लॉग ऑन करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं जया भारती। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ओखला, सिंघोला और गाजीपुर में नए कचरा निस्तारण संयंत्रों का शिलान्यास किया। दिल्ली पुलिस ने कहा, सार्वजनिक सुरक्षा, कानून व्यवस्था और यातायात के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए नई दिल्ली में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लागू। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने सचिवालय में नवाचार चुनौती को लेकर संबंधित विभाग के अधिकारियों और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के विशेषज्ञों के साथ बैठक की। उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने दिल्ली की रिज हेरिटेज पर आधारित एक ई बुक एक्सप्लोरिंग द दिल्ली रिज लॉन्च की। और जापान एशियाई खेलों में भारत 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य पदक जीतकर पदक तालिका में चौथे स्थान पर। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज ओखला, सिंघोला और गाजीपुर में नए कचरे के निस्तारण संयंत्रों का वर्चुअल माध्यम से शिलान्यास किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने गाजीपुर में बायोडिग्रेडेबल कचरे के निस्तारण के लिए 300 टन प्रतिदिन क्षमता वाले बायोगैस संयंत्र का भी शिलान्यास किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कचरा निस्तारण की वर्तमान स्थिति, साइट पर उपलब्ध क्षेत्र और नई प्रोसेसिंग सुविधाओं की क्षमता को लेकर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य केवल पुराने कूड़े को हटाना नहीं बल्कि नए वेस्ट को भी वैज्ञानिक तरीके से प्रोसेस कर उसे दोबारा कूड़े का पहाड़ बनने से रोकना भी है। उन्होंने बताया कि ओखला में 1400 टन प्रतिदिन, सिंघोला में 700 टन प्रतिदिन और गाजीपुर में 800 टन प्रतिदिन क्षमता वाले संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। वहीं दिल्ली के शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा कि पुराने कचरे को हटाने की कोशिशें की जा रही हैं, साथ ही रोजाना आने वाले कचरे को भी प्रोसेस किया जा सके इसके लिए भी काम चल रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ओखला लैंडफिल साइट पर कूड़ा निस्तारण कार्य का भी निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों से तय समय सीमा के अनुरूप काम में तेजी बनाए रखने के निर्देश भी दिए।
2: मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली को स्वच्छ और बेहतर बनाने के लिए सरकार की ओर से नई प्रोसेसिंग क्षमता, वैज्ञानिक कचरा प्रबंधन, वेस्ट टू रिसोर्स और नवीकरणीय ऊर्जा पर एक साथ काम किया जा रहा है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इसी उद्देश्य से नई प्रोसेसिंग सुविधाओं की क्षमता बढ़ाई जा रही है। उन्होंने बताया कि पिछले लगभग 1.5 वर्षों में ओखला, भलसवा और गाजीपुर में 217.17 लाख मीट्रिक टन कूड़े का निस्तारण कर लगभग 100 एकड़ भूमि को मुक्त कराया जा चुका है। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि नए प्लांटों के शुरू होने से कूड़े के वैज्ञानिक प्रसंस्करण और निस्तारण की गति को और बढ़ाया जा सकेगा।
3: हमने 100 एकड़ जमीन जो है तीनों जो हमारी लैंडफिल साइट थी वहाँ से रिक्लेम कर ली है। फ्रेश वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट जो यहाँ पे आज से हम शुरुआत कर रहे हैं ताकि जितना फ्रेश वेस्ट आए वो भी प्रोसेस हो, जितना सीएनडी वेस्ट आए वो भी प्रोसेस हो और आने वाली जनरेशन के लिए फिर कोई नया कूड़े का पहाड़ ना लगे। दिल्ली की जनता ने जो विश्वास हम पे जताया आज उसको हम चरितार्थ कर पा रहे हैं।
2: मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का संकल्प है कि दिल्ली को कूड़े के पहाड़ों से पूरी तरह मुक्ति दिलानी है। इसके लिए पूरी टीम मिशन मोड में दिन रात काम कर रही है। प्रादेशिक समाचार के लिए नीतिका गुप्ता।
1: दिल्ली पुलिस ने कहा है कि सार्वजनिक सुरक्षा, कानून व्यवस्था और यातायात के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए नई दिल्ली में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लागू है। एक सार्वजनिक सूचना में नई दिल्ली के पुलिस उपायुक्त ने कहा कि अनधिकृत सभाओं, सार्वजनिक भाषणों, नारेबाजी और जुलूस तथा प्रदर्शन और धरना और अन्य निर्धारित गतिविधियों पर रोक है। उन्होंने कहा कि आज के लिए किसी भी विरोध प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी गई है और न ही नई दिल्ली जिला पुलिस को ऐसे किसी प्रदर्शन के बारे में पहले से कोई सूचना मिली है। दिल्ली पुलिस ने नागरिकों से आदेश का सख्ती से पालन करने और सहयोग करने का अनुरोध किया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं।
4: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और YouTube पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
1: प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आज सचिवालय में नवाचार चुनौती को लेकर संबंधित विभाग के अधिकारियों और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के विशेषज्ञों के साथ बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिरसा ने कहा कि नवाचार चुनौती के अंतर्गत चुने गए उपकरणों का वाहन प्रदूषण नियंत्रण और परिवेशी वायु शुद्धिकरण के क्षेत्र में जमीनी स्तर पर परीक्षण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इन उपकरणों को दिल्ली के प्रमुख प्रदूषण प्रभावित स्थानों पर लगाया गया है, जहां आंतरिक तकनीकी मूल्यांकन समिति इनके प्रदर्शन और जरूरी मापदंडों की जांच कर रही है। श्री सिरसा ने बताया कि कुछ उपकरणों के क्षेत्रीय परीक्षण भी अभी चल रहे हैं, वहीं जिनके परीक्षण पूरे हो चुके हैं उनका प्रयोगशाला परीक्षण चल रहा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार का प्रयास है कि नई तकनीक और नवाचार के माध्यम से ऐसे समाधानों को आगे लाया जाए जो जमीन पर प्रभावी साबित हों और दिल्ली की हवा को बेहतर बनाने में मदद करें। दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू आज संजय वन में हेरिटेज वॉक में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने दिल्ली की रिज हेरिटेज पर आधारित एक ई बुक एक्सप्लोरिंग द दिल्ली रिज लॉन्च की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधू ने कहा कि यह इतिहास और सभ्यतागत विरासत का एक जीवंत संग्रह है। उन्होंने कहा कि 8 प्रमुख रास्तों पर फैली 243 ऐतिहासिक संरचनाओं के डिजिटल दस्तावेजीकरण के माध्यम से तकनीक इस विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचा रही है। श्री संधू ने कहा कि सभी का कर्तव्य है कि पर्यावरण को बचाएं, विरासत की रक्षा करें और इन दोनों को आने वाली पीढ़ियों को सौंपे। उपराज्यपाल ने दिल्ली वासियों को शानदार जगहों को खोजने और उनका आनंद लेने के लिए प्रोत्साहित किया, साथ ही शहर की पारिस्थितिकी विरासत को बचाने में इनकी अहम भूमिका को भी रेखांकित किया।
5: अगर आपको पता है कि इस एरिया में दिस इज अ ग्रीनर प्लेस, यू हैव समथिंग टू वॉक एंड फील नाइस, एंड स्पेशली फ्रॉम नाउ टिल मार्च अप्रैल यू विल हैव अ गुड एंड सन विल बी देयर, यू कैन कम सिट हियर इन द आफ्टरनून। वी हैव सच अ रिच हेरिटेज इन दिल्ली इटसेल्फ दैट वी डोंट नीड टू गो टू फार टू हैव और एंजॉय दैट एनरिच्ड एनवायरनमेंट, हम उसको यहाँ पे ही एंजॉय कर सकते हैं।
1: हेरिटेज वॉक के दौरान उपराज्यपाल ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि सम्मान और सामूहिक जिम्मेदारी के साथ एक ऐसी दिल्ली बना सकते हैं जहां हर महिला सुरक्षित और आत्मविश्वास से भरी महसूस करे और आगे बढ़कर नेतृत्व कर सके। उपराज्यपाल ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स दिल्ली के मेडिकल स्टूडेंट्स और रेजिडेंट डॉक्टर से संवाद भी किया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बातचीत के दौरान मेडिकल शिक्षा से जुड़ी चुनौतियों, भारत के स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र को लेकर विद्यार्थियों की उम्मीदों और सुरक्षा संबंधी चिंताओं पर चर्चा हुई। विशेष रूप से महिला मेडिकल स्टूडेंट और रेजिडेंट डॉक्टर्स को होने वाली दिक्कतों को भी उन्होंने गंभीरता से सुना। संधु ने आश्वस्त किया कि इन चिंताओं के समाधान और सभी के लिए सुरक्षित माहौल सुनिश्चित करने के लिए हर संभव सहयोग किया जाएगा। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आज रोहिणी सेक्टर 8 स्थित केंद्रीय विद्यालय में सेवा सेतु कैंप का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि किसी भी योजना की सार्थकता तभी है जब उसकी जानकारी, मार्गदर्शन और आवश्यक सहायता बिना किसी अनावश्यक बाधा के लोगों तक पहुंचे। श्री गुप्ता ने कैंप में तैनात विभिन्न विभागों के अधिकारियों से बातचीत की और नागरिकों के लिए की गई व्यवस्थाओं का निरीक्षण भी किया। उन्होंने अधिकारियों से कैंप में नागरिकों को दी जा रही सहायता के संबंध में जानकारी ली। सेवा सेतु कैंप को नागरिकों के लिए एक एकल सुविधा केंद्र के रूप में तैयार किया गया है, जहां दिल्ली सरकार के विभिन्न सेवाओं और जन कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित जानकारी, मार्गदर्शन और आवश्यक सहायता एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जा रही है। विधानसभा अध्यक्ष ने कैंप में आने वाले नागरिकों से बातचीत की और विभिन्न सेवाओं का लाभ लेने के उनके अनुभवों के बारे में भी जानकारी ली। उन्होंने कहा कि अलग अलग सरकारी विभागों और सार्वजनिक एजेंसियों को एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने से नागरिकों को विभिन्न कार्यालयों के चक्कर लगाने की आवश्यकता कम होगी। कैंप में विभिन्न विभागों और सार्वजनिक एजेंसियों ने हिस्सा लिया। केंद्र सरकार के रिफॉर्म उत्सव पहल के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम NCRTC ने विद्यार्थियों को नमो भारत से परिचित कराने के लिए फेमिलाइजेशन आउटरीच कार्यक्रम का उद्घाटन किया। ये कार्यक्रम नागरिक केंद्रित सेवा वितरण, संस्थागत सुधारों और जन कल्याण को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालयों और विभागों द्वारा किए गए प्रमुख परिवर्तनकारी उपायों से जनता को परिचित कराने के लिए आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रतिभागियों को नमो भारत प्रणाली के परिचालन, इसकी प्रमुख विशेषताओं और इसके सकारात्मक सामाजिक आर्थिक प्रभाव, यात्री सुविधाओं, सुरक्षा प्रोटोकॉल और आवश्यक यात्रा दिशा निर्देशों से परिचित कराना था। वहीं प्रतिभागियों ने भारत की प्रथम सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल प्रणाली के परिचालन संबंधी जानकारी प्रत्यक्ष प्राप्त की। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों और अन्य प्रतिभागियों ने सराय कालेखा स्टेशन सहित स्टेशन कंट्रोल रूम का भी दौरा किया। उन्हें स्टेशन संचालन, यात्रियों की आवाजाही और आधुनिक ट्रेनों के परिचालन से संबंधित दैनिक गतिविधियों के प्रबंधन में प्रयोग की जाने वाली उन्नत प्रणालियों के बारे में जानकारी दी गई। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद NDMC ने आज मासिक सुविधा कैंप का आयोजन किया। इस सुविधा कैंप में NDMC सचिव राहुल सिंह ने 30 विभागों के 100 से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों की टीम का नेतृत्व किया और शिकायतों के निस्तारण की व्यक्तिगत रूप से निगरानी की। उन्होंने कहा कि नागरिक संतुष्टि सेवा वितरण का मूल्य आधार होना चाहिए। उन्होंने त्वरित और अधिक पारदर्शी समाधान के लिए जन सुविधा पोर्टल का लाभ उठाने पर बल दिया। वहीं NDMC अध्यक्ष मनोज कुमार द्विवेदी ने कहा कि ये सुविधा कैंप सूचना सुविधा और शिकायत निवारण के लिए एकल खिड़की सुविधा है, जो निवासियों और वरिष्ठ अधिकारियों के बीच सीधा संवाद स्थापित करती है। ये पहल निवासियों और सेवा उपयोगकर्ता के लिए जानकारी प्राप्त करने, शिकायतें दर्ज करने और नागरिक मुद्दों के त्वरित समाधान के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सीधे संवाद करने के लिए एक प्रभावी सुविधा है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं।
6: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
1: प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। जापान एशियाई खेलों में आज भारत ने 5 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक हासिल किए हैं। एक रिपोर्ट।
7: भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने मलेशिया को हराकर स्वर्ण पदक देश के नाम किया। इस जीत के साथ ही भारत ने 2028 ओलंपिक के लिए सीधे क्वालिफाई कर लिया है। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। कुश्ती के 57 किलोग्राम पुरुष वर्ग में अमन सहरावत ने स्वर्ण और 97 किलोग्राम वर्ग में दीपक पूनिया ने कांस्य पदक जीता। अंतिम पंघाल ने महिला 53 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक हासिल किया। उधर गोल्फ में प्रणवी उर्स ने महिला व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जबकि टीम स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया। महिला रिकर्व तीरंदाजी में कुमकुम मोहोद ने स्वर्ण और नीरज चौहान ने पुरुष रिकर्व स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया। पदक तालिका में भारत 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित 85 पदकों के साथ चौथे स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक विजेताओं को बधाई दी है।
1: राजधानी दिल्ली में आज मौसम सामान्य रहा। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 37.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान 23.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग के अनुसार कल आसमान साफ रहने की संभावना है। कल का अधिकतम तापमान 35 से 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ओखला, सिंघोला और गाजीपुर में नए कचरा निस्तारण संयंत्रों का शिलान्यास किया। दिल्ली पुलिस ने कहा सार्वजनिक सुरक्षा, कानून व्यवस्था और यातायात के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए नई दिल्ली में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लागू। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने सचिवालय में नवाचार चुनौती को लेकर संबंधित विभाग के अधिकारियों और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के विशेषज्ञों के साथ बैठक की और उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने दिल्ली की रिज हेरिटेज पर आधारित ई बुक एक्सप्लोरिंग द दिल्ली रिज लॉन्च की। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
2: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
1: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
2: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेज 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
3: कॉल 7500153841।
4: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
1: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
4: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
5: एक बार फिर से स्वागत है आपका श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आपका अपना फेवरेट प्रोग्राम जहां पर ढेर सारी बातें होती हैं, शेरो शायरी की बातें होती हैं। ये वो शाम होती है जहां आप अपने थक के ऑफिस से घर आते हो और हम आपकी शाम को थोड़ा सा खुशनुमा बनाते हैं कुछ अच्छी बातों से और कुछ अच्छी लोकल आवाजें आप तक पहुंचाते हैं, और कुछ ऐसी आवाजें जो आपके बीच में ही रहती हैं, शायद आप में से बहुत लोग उन्हें जानते भी हैं। और आज एक बार फिर से उन्हीं आवाजों को आपके बीच में रूबरू कराने आपसे और उनके साथ ढेर सारी गुफ्तगू करने हम स्टूडियो में आ गए हैं। आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद, RJ आनंद और अखिल भाई के साथ, और हमारे बीच में दो और बड़े प्यारे मेहमान आफ्टर लॉन्ग टाइम एक बार फिर से पधारे हैं। बहुत दिनों के बाद इनसे आज फिर से हम जो है वार्तालाप करने वाले हैं, तो सब कुछ मैं ही बोल दूंगा तो मेरे पैसे नहीं बढ़ेंगे।
6: पिछली बार आनंद, पिछली बार तुमने मेरी बहुत खिंचाई करी है और आज मैं पूरा बदला लूंगा तुमसे, देख।
5: बिल्कुल, इसीलिए मैंने कहा ना, अगर सब कुछ मैं ही बोल दूंगा तो मेरे पैसे तो बढ़ेंगे नहीं, इसलिए मैं आपसे तो बुलवाई लूं, है ना।
6: तुम्हारे पैसे
5: देखिए, हमारे गेस्ट को हमने वेलकम भी नहीं किया, वो बीच में ही बोल गए, क्या बात है, बहुत बढ़िया। शायद उनकी आवाज पहचान तो नहीं होंगे लिसनर?
6: नहीं नहीं पहचान गए होंगे, 100% पहचान।
5: कोई बात नहीं, अभी उनका जो है इस्तकबाल कर लेते हैं। एक बार फिर से सर बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से FM के स्टूडियो में। हमारे साथ कमल जी एक बार फिर से हैं और साथ में उनके जोड़ीदार चमचमाती हुई स्माइल के साथ पहुंच गए इंजीनियर राशिद हुसैन साहब। बहुत बहुत इस्तकबाल,
6: स्वागत है आपका। और आप आज, मुझे पता है कि पूरे दिन आपका भी भाग दौड़ वाला रहा होगा, तो कैसा रहा आज आपका दिन?
5: राशिद जी और कमल जी से पूछा,
6: दोनों से ही पूछा जा रहा है, दोनों ही सोच रहे हैं अभी कि क्या बताओ यार,
5: पूरा दिन तो वही होता है,
6: भागा दौड़ी वाली रही है।
5: वैसे राशिद जी,
7: वैसे तो दिन में भागा रहती है
5: जी जी,
7: बट आज डबल हुई है,
6: डबल हो गई है,
7: क्योंकि जी ने शाम को दौड़ा दिया ना।
5: अब इनसे हम आप एक्स्ट्रा चाय पिलवाएंगे आपको कड़क, आप चिंता ना। अच्छा तो कमल जी, आप प्रोफेशनली आप जो है हमारे बहुत सारे नए श्रोता भी जुड़े हैं, आप क्या करते हैं जरा ये बताइए हमारे मुरादाबाद की जनता।
7: जॉनसन जॉनसन सर्जिकल सेल्स डिवीजन में काम करता हूँ।
5: अच्छा,
7: मतलब ये लगाइए कि जहाँ सर्जरी है वहाँ हमें।
5: और आप कब से मुरादाबाद में, मतलब इसमें हैं शेर व शायरी में, कब से आए हैं आप
7: शेर व शायरी में? ज्यादा लंबा एक्सपोजर तो नहीं है, पिछले लगभग 3-4 साल से।
5: 3-4 साल से, ओके। और इतना उम्दा जोश, इतना उत्साह है आपके अंदर उस चीज को लेकर, मतलब वो अलग ही निकल के आता है।
7: आप ये देखिए ना, मेरे पड़ोस में कौन बैठा हुआ है।
5: अच्छा, मैं उनसे भी पूछूंगा फिर यही सेम सवाल, वो फिर आपको बोलेंगे।
7: अरे वाह, कुछ लिख देता हूँ आपको सुना देता हूँ।
5: बहुत बढ़िया। अब मुरादाबाद में कहाँ रहते हैं कमल साहब? चंदन नगर। अरे हाँ, मेरे बड़े प्यारे लिसनर रहते हैं वहाँ, बहुत सारे लिसनर है चंदन नगर, यही ना अपना लोगो शीट के पुल के नीचे जाके, कभी गया नहीं लेकिन पता है मुझे अखिल जी। चलिए अब हम दूसरे अपने जो गेस्ट हैं उनका स्वागत करेंगे। हमारे बीच में इंजीनियर राशिद हुसैन साहब हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, खैर मकदम करते हैं अपने स्टूडियो में। बताइए कैसे मिजाज हैं आप?
8: बस अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है।
5: चलिए इंशाल्लाह सब अच्छा ही रहना चाहिए, और हमारे श्रोतागण भी आपको सुनने के लिए बेकरार हैं, तो आज की शाम हमने आपको परेशान किया उसके लिए तो माफी चाहेंगे।
6: तो शुरुआत सर से ही की जाए, सर एक इसी भागा दौड़ी वाली जिंदगी पे कुछ सुना दिया जाए।
5: हाँ हाँ,
8: भागा दौड़ी वाली जिंदगी तो कमल साहब की है। अच्छा। मैं तो आराम से हूँ। अच्छा। सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी ही तमाम होती है, किसी साहब का शेर है, रिपीट कर दिया। लेकिन जब बात चाय की आ रही थी, हाँ
5: हाँ।
8: चाय पी लेंगे तो थकन उतर जाएगी। हाँ, चाय का कड़क चाहिए, चाय आपने जिक्र किया तो चाय।
5: चलिए अखिल जी, आप चाय ऑर्डर करके आइए, तब तक मैं जो है इनको संभालता हूँ। अखिल जी कह रहे हैं आस पास में कोई चाय वाला ही नहीं है, कोई बात नहीं, मैं निकलता हूँ, मैं बना के ले आता हूँ।
6: मुझे मुझे थोड़ा सा जुकाम हो रहा है ना,
5: आपके जुकाम ने ऐसा माहौल बना दिया है ना,
6: तब से जुकाम रुका नहीं है मेरा, पिछले शो से काम रुका ही नहीं है।
5: अच्छा चलिए, मैं इसको रोकूंगा, भी चिंता मत करो आप, मेरे पास क्या इलाज है। तो वेल आगे बढ़ते हैं, और कमल साहब और
7: चाय से मेरे को एक और चीज ध्यान आई
5: जी जी,
7: आज या शायद कल इंटरनेशनल टी डे था।
5: हाँ हाँ,
8: अच्छा
5: नहीं, वो मैं आपको बताता हूँ, रिसेंटली हमने उसको 21 सितंबर को हम मनाते हैं राष्ट्रीय चाय दिवस, नेशनल टी डे होता है, तो हमने अभी हाल ही में सेलिब्रेट किया, अभी जो सितंबर में चल रहा है ये नेशनल वाला है, राष्ट्रीय वाला चाय दिवस है। आजकल तो नए नए आ गए हैं सरकार, तो लेकिन आपने ये बात क्यों करी, आप मतलब स्पेशल कुछ करते हैं
7: क्या? चाय पसंद है, मुझे लगा शायद भाई की बात को और जोर पड़ जाए, चाय जल्दी आ जाए।
5: अच्छा, चाय तभी आएगी जब अखिल जी चाहेंगे, राशिद जी तो सिर्फ बोल सकते हैं।
8: चाय तो जरूर पियेंगे, हमारा धन्यवाद यही है कि हम चाय पियेंगे।
5: अच्छा, तो
8: और पिछली बार जब हम आए थे तो कितना मजा आया था हमारा, अखिल जी की तबीयत उस दिन शायद ठीक थी, आज शायद
5: थोड़ी सी नशाद है। हाँ हाँ, चलिए हम दुआएं करेंगे,
8: हम दुआ करेंगे कि वो जल्दी सही हो। लेकिन पिछली बार भी इतना मजा आया था, आज भी लग रहा है कि ज्यादा मजा आने वाला।
5: चलिए काम करते हैं, हम लोग 5 मिनट से बोल रहे हैं, लिसनर कह रहे होंगे गाने नहीं चला रहे, सिर्फ बातें हो जा रही है, तो अभी हम एक गाना सुनवाते हैं, उसके बाद लौट कर आते हैं। तब तक अखिल जी क्या करेंगे ना, हमारे दो मेहमानों को पानी की बॉटल पकड़ाते हैं, और हम भी पानी की बॉटल पकड़ाने में थोड़ा बिजी हो जाते हैं, जरा उनकी खातिरदारी करके आते हैं। भाई हमारे दो स्पेशल मेहमान आए, आप ये गाना सुनिए, हम वापस आ रहे हैं।
3: ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंद

0: श्रोताओं, एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद एक बार फिर से हाजिर हो गए हम आपके रेडियो सेट पे। आप प्लीज थोड़ी वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, और हाँ, रेडियो के सेट के पास जरा अपना कान ले आओ। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ऐसे सुनना है आपने। और अभी तो फिलहाल शुरुआत हुई है, हमारे बीच में कमल जी हैं और इंजीनियर राशिद हुसैन साहब जो है एक बार फिर से हमारे स्टूडियो में आए हैं फिर मुरादाबाद के। सर, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आप शुरुआत करेंगे, अब मेरी बारी होती है यहाँ पर बंद और आप लोगों की शुरू, तो कौन पहले सुनाएंगे आप लोग डिसाइड कर लें, क्योंकि मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से इतने ज्यादा क्लोज हैं। ये वो सुनाए तो उनको बड़ा प्यार आता है, वो सुनाए तो उनको प्यार, तो मैं सोच रहा हूँ मैं किसको पहले बोलूँ। तो सर, ये लोग आप डिसाइड करें, ये कमल जी बताएंगे पहले उनको सुनना है या राशिद जी बताएंगे पहले उनको सुनना है।
1: आपके श्रोता क्या कह रहे हैं?
0: श्रोता तो ये कह रहे हैं कि भैया दोनों को ही सुनना है।
1: दोनों को सुनेंगे, खिचड़ी बन जाएगी।
0: खिचड़ी नहीं बनेगी, दोनों की अपनी अपनी अलग है भाई, बोलने का तरीका दोनों का, अपने अपने शेरो शायरी अलग है, अंदाज अलग है, नो डाउट। कहते हैं ना राशिद जी, हर इंसान में एक अलग यूनिक चीज होती है ना, हर इंसान की पहचान अपने काम से होती है, किसी की तैयारी, हर किसी का स्टाइल अलग है। जी कमल सर, जब तक राशिद जी कुछ गाने में लगे, मैं चाहूंगा आप ही शुरुआत कर दें। चलिए, मैंने आपके ऊपर ही छोड़ दिया पूरा मुद्दा।
1: चलिए पेश करता हूँ फिर, कि उभर रहे हैं भाव जो मन में, उभर रहे हैं भाव जो मन में, उन भावों को कहने दे। उभर रहे हैं भाव जो मन में, उन भावों को कहने दे, बाकी बीच में क्या तलखी है, बाकी बीच में क्या तलखी है आज की खातिर रहने दे। बाकी बीच में क्या तलखी है आज की खातिर रहने दे। यूं तो सच्चे प्यार का देखो वैसे कोई मोल नहीं, यूं तो सच्चे प्यार का देखो वैसे कोई मोल नहीं, पर सबकी औकात नहीं कि लाकर महंगे गहने दे। बाकी बीच में क्या तलखी है आज की खातिर रहने दे।
0: क्या बात है।
1: सावन का मौसम है इसमें अक्सर बारिश होती है, सावन का मौसम है इसमें अक्सर बारिश होती है, असमंजस की दीवारें अगर ढहती हैं तो ढहने दे। बाकी बीच में क्या तलखी है आज की खातिर रहने दे। सुना है थोड़ा रोने से, सुना है थोड़ा रोने से, कुछ मन का कुछ मन

0: आपको आपको सब्जेक्ट में घुसना है,
1: घुसना है,
0: उसको आगे थोड़ा बढ़ाना है और उसको शब्दों में बदलना है।
1: क्या बात है, कुछ नया सा कुछ करना है, मतलब बहुत बढ़िया। सब कुछ हमारे घटित घटनाओं से रिलेटेड होती है।
0: नकल करने से बचना है।
1: हाँ,
0: नया अपना निकालिए, आप दिमाग लगाइए, नए शब्द खोजिए, बनाइए उसको अपनी भाषा, अपने अपने अपनी अपनी लैंग्वेज आपसे बदलिए उसे,
1: अपना स्टाइल दीजिए, मतलब एक नया है ना,
0: एक नई चीज निकल के सामने।
1: बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर मैसेज भी आपने दे दिया है। और देखिए, साहित्य में तो वैसे सीखने के लिए बहुत कुछ है, मुझे भी लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा घुस जाना चाहिए, हालांकि मैं रेडियो वाला हूँ, और लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि आप जितनी नई चीज एक्सपीरियंस करो वो आपको कहीं ना कहीं यूज में आती है, काम में आती है ना। और मुझे लगता है कि एक जो एक शब्दावली है वो भी कहीं ना कहीं कनेक्टेड है आपके इसमें, है ना। बहुत सारे मैंने काव्य पाठ सुने हैं रेडियो पे, मैं बहुत रेडियो में सुनता था काव्य पाठ, बहुत सारी ऐसी शब्दावली होती है, तो कहीं ना कहीं नई नई चीजें सीखने को मिलती है आपके साहित्य में। आप जब बातें करते हैं शेरो शायरी गजल, उसमें भी कुछ ना कुछ नए नए अल्फाज निकल कर आते हैं राशिद साहब, तो कहीं ना कहीं जब हम और हम लोग जिस प्रोफेशन में, इसमें हमें हर दिन नए शब्द चाहिए होते हैं, है ना, हर सेकंड में हमें एक नया अल्फाज चाहिए, तो जब हम आप लोगों को सुनते हैं तो उसमें बहुत सारे ऐसे शब्द आते हैं जो हम सुन लेते हैं और सीख जाते हैं कि हाँ आज ये नया सीखा मैंने, तो बहुत अच्छा लगता है। और ऐसे ही हम चाहेंगे राशिद जी से भी कि वो भी कुछ नए शब्दों से, कुछ नई बातों से रूबरू कराएं अपने आप को यहाँ पर।
2: अभी कमल साहब ने बड़ी अच्छी बात कही,
1: जी जी,
2: कि सब्जेक्ट हमारे आसपास है। एक अच्छे लेखक के लिए वो जितना ज्यादा समाज में रहेगा,
1: जी,
2: जितना ज्यादा घूमेगा उतना अच्छा लिख सकता,
1: उतना अच्छा लिख सकता,
2: ये एक हकीकत है। और ये मेरा तजुर्बा भी है।
1: अरे वाह, क्या बात है,
2: इस बात पे ताहिद करता हूँ उनकी। और एक चीज और है, कुछ लोग, मैं युवाओं से कहना चाहूंगा, जो लिसनर से,
1: जी,
2: जो भी लिखने की इच्छुक है, लिखना चाहते हैं,
1: शौकीन है,
2: शौकीन है, वो जबरदस्ती ना लिखे,
1: कि मतलब दिल से आए, मन से आए,
2: जबरदस्ती ना लिखे,
1: ठीक है,
2: कि नहीं खूब लिखना है, नहीं खूब ना लिखे,
1: ओके,
2: जबरदस्ती ना लिखे, आज लिखना है, नहीं आज ना लिखे, जब ऑटोमेटिक आपके दिमाग में आएगा, एक कुदरती आपके दिमाग में कि ये शब्द आएंगे, एक मिसरा आएगा, एक लाइन आएगी, जब आपका दिमाग शब्दों से भर जाएगा, दिल से आके नहीं, अब वो टाइम रात का 1 बजे का भी हो सकता है, वो रात का 2 बजे का भी हो सकता है, वो रात का 3 बजे का भी होता है, सुबह सहर भी हो सकती है, वो कभी कभी आप काम के टाइम में लंच भी हो सकता है, कभी आप अपने किसी काम पर बैठे वो टाइम भी हो सकता है, उस टाइम का कोई टाइम नहीं है, तभी आप पन्ना उठाएं, एक कागज उठाएं, कलम उठाएं, उन लफ्जों को लिख दें, उन पंक्तियों को लिख दें, उसके बाद में फिर उसको बाद में ठीक करें, क्योंकि शायरी के लिए, जैसे कि कविता के लिए छंद और क्या होता है, वो सब एक फार्मूला होता है, जैसे मैथमेटिक्स के सवाल आप गणित में, गणित के मैथमेटिक्स के सवाल आप एक फार्मूले के तहत हल किए जाते हैं, इसी तरीके से शायरी के भी एक फार्मूला होते हैं, बहर जिन्हें बोलते हैं बहर, उस बहर में आपको रखने होते हैं अपने हर मिसरे को, तब आप उसमें मतलब एक अच्छी शायरी बन सकते हैं। फिलहाल आपने कहा कि कुछ सुनाना है, तो एक ये 4 मिसरे आपकी नजर फिर मैं कर रहा हूँ, आपकी मोहब्बतों के
1: जी जी,
2: अखिल साहब से भी तवज्जो चाहूंगा,
1: जी जी,
2: 4 मिसरों पे आपकी तवज्जो
3: जरूर साहब, जरूर जरूर,
1: आप जरा गौर कीजिए, जरा ध्यान से सुनिए,
2: मैं तो आपकी आपकी मोहब्बतों के हवाले, और ये हमारे मित्र, हमारे बड़े परम मित्र हैं हमारे कमल साहब, ये मैं जो समझ जाएंगे मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि एक शायर का मन एक शायर बड़ी अच्छी से समझ जाता है, कि कश्ती को साहिलों पे मुझे छोड़ना पड़ा,
3: क्या बात,
2: कश्ती को साहिलों पे मुझे छोड़ना पड़ा, मुंह मोड़ना कठिन था मगर मोड़ना पड़ा, कश्ती को साहिलों पे मुझे छोड़ना पड़ा, मुंह मोड़ना कठिन था मगर मोड़ना पड़ा, और राशिद गवाह बनने लगा था वो दर्द का,
3: क्या बात है,
2: राशिद गवाह बनने लगा था वो दर्द का, आईना इसलिए भी मुझे तोड़ना पड़ा, आईना इसलिए भी मुझे तोड़ना पड़ा। बहुत शुक्रिया, आपने मेरे शेर आपने पसंद फरमाया, मैं इसके लिए बड़ी आपका शुक्रगुजार हूँ, और मैं चाहूंगा कि थोड़ा मौका कमल भाई को एक बार,
1: जरूर जरूर, हम उससे पहले लिसनर को एक गाने का मौका देते हैं, मतलब एक गाना सुनाते हैं, और मैं तो बड़ी हैरत में हूँ कि इतनी सुंदर सुंदर खूबसूरत बातें, मतलब क्या कमाल की चीजें, मतलब लेकर आए कमल साहब और राशिद साहब। चलिए अभी ये लोग हमारे बीच में रहेंगे श्रोताओं, बाकी अभी हम आपके लिए छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद हम वापस आते हैं, फिर थोड़ा सा कुछ और सुनेंगे,
3: फिर उसके बाद जो है ना, मैं अल्फाज तो मेरे होंगे मगर जो अंदर दिल की बातें होंगी वो आनंद जी की होगी,
1: क्या बात है, रिचार्ज होकर आए हैं अखिल भाई, तो इनका रिचार्ज का जो बैलेंस है वो बिगाड़ के आता हूँ, आप कहीं मत जाइए, गाना सुनिए।

0: एक बार फिर से श्रोताओं स्वागत है आपका। आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे आपका फेवरेट प्रोग्राम जहां शेरो शायरी की महफिल सजती है, और यह है आपके शहर का अपना कम्युनिटी रेडियो अखिल और आनंद के साथ बने हुए प्रोग्राम में। अखिल भाई कुछ शिरकत करना चाह रहे हैं हमारे प्रोग्राम में।
1: मोहब्बत नाम है जिसका वो एहसास बन जाए,
0: क्या कहने,
1: किसी की एक मुस्कान से पूरा दिन खास बन जाए।
0: वेरी नाइस।
1: ना हो सामने फिर भी दिल के पास रहे, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो बिना बोले भी खास रहे। तो जैसे कमल जी का रिश्ता है
0: राशिद जी के साथ।
1: बिल्कुल सही,
0: मैं समझ गया हूँ।
1: तो कुछ रिश्ते होते ही ऐसे कि बिना बोले भी खास बन जाए।
0: बिल्कुल, और मैं देख रहा हूँ कमल जी जो है अपनी पोटली खोल चुके हैं और कुछ सुनाने के लिए जो है वो बिल्कुल तैयार हैं।
1: हम तो बहुत देर से वेट कर रहे हैं,
0: हमें बस ये करना है एक्शन।
1: कब उनकी पोटली से रोटी निकले, अचार निकले।
0: अब भाई रोटी अचार के लिए घर जाना पड़ेगा, यहाँ ये बातें नहीं होंगी। जी कमल जी, आप अपनी शेरो शायरी का जो फलसफा है वो शुरू कीजिए।
1: पिछली बार आपने भिंडी की सब्जी खाई थी, नहीं खाई थी ये बताइए।
2: खाई थी, बिल्कुल खाई थी।
0: वो आपको जरूर खिलाएंगे, लेकिन थोड़ा वक्त,
1: क्या पता भाभी जी शाही पनीर बना रही हो और सुनते के साथ ही भिंडी बन गई हो।
0: जी जी कमल जी प्लीज।
2: कुछ लिखा है उनके लिए जो एकदम शॉर्टकट से ऊपर जाना चाहते हैं।
0: हाँ, अरे वाह, क्या बात है। ऐसे बहुत सारे लोग मेरे कॉन्टेक्ट में भी हैं जिनको रातों रात अमीर बनना और रातों रात उन्हें कामयाबी चाहिए।
2: इशारा अखिल जी की तरफ क्यों?
0: नहीं नहीं, अखिल जी की तरफ नहीं। अखिल भाई बहुत मेहनती हैं, वो शॉर्टकट जिंदगी में बहुत जल्दी अपनाना चाहते हैं लेकिन अपना नहीं पाते हैं।
1: नहीं, हमें अपनाना भी नहीं है, हमने सीखा भी नहीं है शॉर्टकट अपनाना।
0: बहुत बढ़िया, ये तो बड़ी अच्छी बात है। खैर ये बिल्कुल सच बोला इन्होंने, इससे जोक सपाट। जी
2: उन्होंने लिखा उसमें वर्ड आएगा ज्वार भाटा।
0: एक बार समझा दीजिए सर, हम नादान है थोड़े।
2: राशि साहब थोड़ी नजर डालिए ज्वार भाटे पर।
3: ज्वार भाटा जैसे
1: वॉल्केनो कहना चाह रहे हैं,
2: वो आते हैं, हाइटाइट्स आते हैं।
3: हाँ,
0: अच्छा, ओके ओके,
3: लहरें वगैरह।
0: हाँ, वो अभी अखिल भाई ने उसका पार्ट पढ़ाया था मुझे, किसी कंट्री में दिखाया था। समझ गया मैं,
1: समझ गया।
0: हाँ जी जी,
1: देर से समझते हैं मगर समझ जाते हैं।
2: उसी पंक्तियों में एक बड़ी बात कहने की कोशिश करी है राशि साहब।
3: जी बिल्कुल।
2: नींद क्या ख्वाबों का केवल दोष था, नींद क्या ख्वाबों का केवल दोष था, हैसियत को देखकर बांटे गए, हैसियत को देखकर बांटे गए, और अर्श तक जाने का जिनको शौक था, अर्श तक जाने का जिनको शौक था, पेड़ बस पहले वही काटे गए, पेड़ बस पहले वही काटे गए, और ज्वार की तासीर थी जिनकी उन्हें, ज्वार की तासीर थी जिनकी उन्हें, रोकने में कितने ही भाटे गए, रोकने में कितने ही भाटे गए, और थे बताते खुद को मनसद साहिब, थे बताते खुद को मनसद साहिबे, दाल संग जूते में वो बांटे गए।
1: हाय हाय,
3: बहुत बढ़िया,
2: दाल संग जूते में वो बांटे,
1: बहुत ही बढ़िया।
2: क्या खाबों का केवल दोष था, हैसियत को देखकर बांटे गए।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, दिल को छू गई ये बात। और इससे एक मैसेज भी जाता है कहीं ना कहीं कमल जी की, जिंदगी में शॉर्टकट हमेशा इंसान को नहीं अपनाना चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: और वैसे पहली बात तो अपनाना ही नहीं चाहिए शॉर्टकट, है ना, देर से ही सही, लेकिन अपना अच्छा रास्ता चुनो जो आपको आपकी सफलता पर लेके भी जाए और आपको अच्छा भी फील कराए। फिर कमल जी कहेंगे आनंद जी देखिए मैं तो साहित्य की नजरों से देखता हूँ, तो आप उसको जरा डीपली में ना लेकर जाए। उनका अपना अपना एक तरीका है, मतलब साहित्यकार लोग जो होते हैं वो सिर्फ उनको एक शब्द चाहिए होता है, जो आज मैंने सीखा है हुजूर, सही कह रहा हूँ ना मैं। तो राशिद जी मैं आपकी तरफ भी आना चाहूंगा, आप भी अपनी पोटली खोल लीजिए और अब वक्त है आपकी पोटली की पन्नों से कुछ बाहर निकल आए, तब तक अखिल जी आपको सुना दो इमीडिएटली, तब तक हमारे राशिद जी लगे हुए हैं।
1: ये मैं फिर से अपने श्रोताओं से बोलूंगा कि अल्फाज मेरे हैं,
0: हाँ,
1: मगर जो दर्द है
0: मुझे हो रहा है,
1: हाँ,
0: अल्फाज आपके हैं।
1: हाँ, तुमसे बात हो तो दिन अच्छा लगता है, तुम्हारी आवाज सुनकर दिल बच्चा लगता है,
0: क्या कहना,
1: पता नहीं क्या रिश्ता है तुमसे मेरा, पर तुम्हारा नाम सुनकर दिल सच्चा लगता है।
0: हाँ, इतनी बच्ची शायरी सुनाई, मुझे नींद आ रही है दोस्तों, मैं एक गाना सुन के आता हूँ। सच बता रहा हूँ अखिल भाई,
1: मुझे पता, मुझे पता था तुम नहीं दिल से,
0: नहीं अखिल भाई आपने दिल से,
1: अभी तुम्हारी शादी नहीं हुई है ना, अभी तुम अभी उस फेस में हो जिस फेस में ये।
0: अखिल जी मैं चाह रहा हूँ कि एक दिल वाला गाना बजा देता हूँ, एक गाना है ना
1: दिल,
0: दिल
1: ये दिल
0: जो भी है
1: ना,
2: परदेश
1: है ये दिल।
0: अच्छा, परदेश फिल्म का गाना सुनवाया आपको, दिल,
1: दिल
0: ओके, ठीक है, दिल वाला गाना सुनाते हैं और आपको एक कप चाय पिलाते हैं। चलिए अभी वापस आते हैं।

0: श्रोताओं एक बार फिर से स्वागत है आपका, और ये जो स्वागत रहेगा ये बस अलविदा वाला स्वागत होगा क्योंकि जाने का समय भी हो रहा है। लेकिन जाने से पहले हम राशिद जी को जरूर सुनेंगे और कमल जी को हमने सुना और बाकी हम लोग भी आपसे इजाजत लेंगे, लेकिन समय को बिल्कुल ध्यान में रखते हुए हम राशिद जी की तरफ बढ़ेंगे। तो राशिद हुसैन साहब, आप चार मिश्रे रखना चाह रहे थे हमारे लिसनर के समक्ष, तो स्वागत है आपका।
1: जी बहुत शुक्रिया आनंद जी।
0: जी
1: ये मैं अपने चार मिश्रे आपकी नजर रखना चाहता हूँ।
0: जी जी।
1: घर जो पाबंदियाँ हैं होने दो, घर जो पाबंदियाँ हैं होने दो, गम के मारे हुए हैं रोने दो।
2: क्या बात है।
1: घर जो पाबंदियाँ हैं होने दो, गम के मारे हुए हैं रोने दो,
2: बहुत खूब।
1: और एक दिन छोड़ देंगे दुनिया को आनंद जी,
0: मैं सुन रहा हूं।
1: एक दिन छोड़ देंगे दुनिया को, अपना दामन जरा भिगोने दो, अपना दामन जरा भिगोने दो।
0: क्या बात है राशिद साहब, कमाल कर दिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जी कमल सर, आप कुछ कहना चाहेंगे?
3: नहीं,
0: इसी बात पे
3: मैं तो चुप हूँ।
0: क्या बात है राशिद जी,
3: मैं पहले ही बहुत बोल चुका हूँ।
0: हाँ, अब हम भी राशिद जी को सुन लेते हैं, चलते चलते क्या सुनाना चाहेंगे सर? तो क्या कह रहे हैं कि कलमों की किताब में अभी फिलहाल इतना ही?
2: क्या
0: सर कह रहे हैं कि पन्नों की किताब में अभी इतना ही?
3: नहीं है,
2: अभी है सर, सुना है, पूरा कर रहे हैं।
1: लेकिन लेकिन समय रेडियो का भी, समय भी तो देखना है।
3: समय भी
1: अगर हमें, हम तो सुनाए जाएंगे लेकिन हमें अपना समय को भी तो ध्यान रखना है, हमें फिर अगली बार नहीं बुलाएंगे।
0: बहुत अच्छा लगा राशिद जी, कमल जी, कमल सर, थैंक यू सो मच। आपकी वजह से एक नायाब हीरा और हमें मिला हमारे रेडियो को।

0: बहुत बहुत धन्यवाद, और मतलब सच में कमाल कर दिया, धोती फाड़ के रुमाल कर दिया, वो वाला था आज का ये सीन, बहुत मजा आया। और अखिल भाई आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे आज के स्पेशल मेहमानों को? चाय आपने बनवाई ली होगी मुझे पूरी पूरी उम्मीद है, और जो लिसनर हमारे सुन रहे हैं वो भी अब इस बात पे चाय बनाने जा रहे हैं कि भाई बहुत चाय चाय हो गई आज।
1: चाय जो मेरे हाथ की चाय है ना वो हर किसी के,
0: आपके हाथ की चाय हम मान ही नहीं सकते, आप तो हिली नहीं है यहाँ से, हम कैसे
2: मान। अदरक वाली चाय है, पिछली बार आपने बिना अदरक की पिलाई थी, आज मौसम जरा थोड़ा अच्छा है तो
1: क्यों नहीं अदरक वाली ही चाय मिलेगी आपको जी, वो बात अलग है, अदरक आपको ढूंढना पड़ेगा।
0: अच्छा ऐसा भी है क्या?
3: अखिल भाई का जो बैकग्राउंड रहा है ना, चाय तो ठीक है, या की जगह कुछ और चीज होती थी, या की जगह पाव होता था।
0: पाव सर एक्चुअली मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, आप अगर थोड़ा बता दें स्पष्ट हो जाएगा, हमारे लिसनर को भी तो पता चल जाएगा।
3: समझ गए, बताएंगे।
0: अच्छा चलिए,
1: माफ करना चाह रहे हैं, चाप
0: चाप। अच्छा ओ
3: ग्रिल्स,
0: हाँ हाँ हाँ बिल्कुल, क्या
1: कहना बहुत है कुछ तुमसे, कहना बहुत है कुछ तुमसे, मगर शब्द कम पड़ जाते हैं।
0: आय हाय,
1: जब तुम सामने आते हो हम खुद ही तुम्हें देखकर मुस्कुरा जाते हैं।
0: क्या बात,
1: तो बहुत ही अच्छा। मैं तो अपने दोनों
0: जी,
1: मैं अपने दोनों जो हमारे मेहमान और आज की जो रौनक बढ़ी है, मतलब कहते हैं ना, पिछली बार भी मैंने तुमसे ये बात बोली थी आनंद की वक्त का पता नहीं चलेगा, और सेम ऐसे ही हुआ कि आज जब दोबारा इतनी गुफ्तगू हुई और इतना हमने समय निकाला तो ये समय भी हमें कम लगने लगा।
0: क्या बात है, सच में बिल्कुल सही बात कही है। और दोस्तों चलिए मैं भी चलता हूँ, और मेरा भी जो है समय हो रहा है जाने का, जल्दी आपसे फिर मिलेंगे रूबरू होंगी इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे। बहुत बहुत धन्यवाद साहब आप लोगों का एफएम मुरादाबाद, और हम आपका दिल से शुक्राना करते हैं, और उम्मीद करते हैं आप आगे भी हमारे बीच में ऐसे ही शिरकत लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद साहब, बहुत बहुत नमस्कार। और दोस्तों मैं भी चलता हूँ, चलने से पहले बस इतना ही कहना चाहूंगा, दिल जवा तो बेवसी कैसी, दिल जवा तो बेवसी कैसी, और आजकल बच्चों के सफेद बालों की ऐसी की तैसी, कोई इलाज नहीं है उसका मेरे पास भी ना आपके पास। फिलहाल इसी पे बात करने के लिए जल्दी के एक्सपर्ट को लेकर आ रहे हैं, आज के लिए बहुत कॉमन समस्या हो गई, आज नहीं फिर किसी और दिन बात करेंगे, अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, रखिए अपना ढेर सारा ख्याल, रेडियो बजाते रहिए
1: और गुनगुनाते रहिए।
0: बाय।

0: सिरदर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशाह जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंकवेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
2: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
3: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, पिछले एक दशक में राजकोषीय विवेक, अवसंरचना निवेश और निरंतर सुधारों के माध्यम से भारत की आर्थिक शक्ति और लचीलापन मजबूत हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, भारतीय न्याय संहिता का पूर्ण कार्यान्वयन भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में परिवर्तन लाएगा। आंध्र प्रदेश में श्री सिटी के एक निजी औद्योगिक इकाई में बॉयलर फटने से 4 श्रमिकों की मौत। एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष हॉकी और क्रिकेट टीमों ने स्वर्ण पदक जीते। पहलवान अमन सहरावत, तीरंदाज कुमकुम मोहोज और गोल्फर प्रणवी उर्स ने भी स्वर्ण पदक हासिल किया। भारत ने आज 5 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। 21 स्वर्ण सहित 85 पदकों के साथ पदक तालिका में चौथे स्थान पर। अब समाचार विस्तार से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि राजकोषीय विवेक, अवसंरचना निवेश, बैंकिंग सुधार, बेहतर वितरण तंत्र और निरंतर सुधारों के संयोजन से पिछले एक दशक में भारत की आर्थिक शक्ति और लचीलापन मजबूत हुआ है। नई दिल्ली में आज 5वें कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन में वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने जीएसटी, दिवालियापन संहिता और 4 श्रम संहिताओं के माध्यम से राष्ट्रीय ढांचों को मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले 4 वर्षों में वैश्विक संकटों के बावजूद अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाए रखा है।
1: रियल जीडीपी ग्रू 7.8% इन क्वार्टर 1 ऑफ FY।
2: वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद बढ़कर 7.8% हो गया। वहीं अगस्त 2026 में खुदरा महंगाई दर 4.82% रही। पहली तिमाही में चालू खाता घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 0.5% रहा।
1: इन क्वार्टर 1 ग्रॉस एनपीएस ऑफ बैंक्स आर एट मल्टी डिकेडनल लो।
0: अवसंरचना विकास पर वित्त मंत्री ने कहा कि इस वित्त वर्ष के लिए पूंजीगत व्यय 12 लाख करोड़ रुपए से अधिक निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में लगभग 61% का विस्तार हुआ है और 2014 से परिचालन में आने वाले हवाई अड्डों की संख्या दोगुनी से अधिक हो गई है। उन्होंने ये भी बताया कि पीएम मुद्रा योजना के तहत 52 करोड़ से अधिक बिना गारंटी वाले ऋण स्वीकृत किए गए हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारतीय न्याय संहिता के पूरी तरह लागू होने के बाद भारत की आपराधिक न्याय व्यवस्था दुनिया में सबसे आधुनिक हो जाएगी। श्री शाह ने आज भोपाल में राज्य स्तरीय गौ पालक सम्मेलन में ये बात कही।
3: कानून पूर्ण इम्प्लीमेंटेशन के बाद हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम दुनिया की सबसे आधुनिक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बन जाए और इसके अंदर विज्ञान को हमने डाला है, ऑनलाइन सुनवाई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, FSL के प्रावधान और कई आधुनिक प्रकार के वैज्ञानिक संशोधनों को इसके साथ जोड़ा है। महिला सुरक्षा, गुमशुदा बच्चे, आतंकवाद, लिंचिंग, ये सारी चीजों से प्रोटेक्शन की व्यवस्था है।
0: श्री शाह ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता के पूरी तरह लागू होने के बाद प्राथमिकी दर्ज होने से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक मामलों का निपटारा 3 वर्ष के भीतर किया जा सकेगा। गृहमंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति देने के लिए पशुपालन से जुड़ी व्यवस्था विकसित कर रही है। इसमें गोबर से बायोगैस और जैविक खाद बनाने से लेकर दुग्ध उत्पादों के प्रसंस्करण और बाजार तक पहुंच उपलब्ध कराने के प्रयास शामिल हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज भोपाल के भेल दशहरा मैदान में राज्य स्तरीय गोपालक सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने 11 जिलों के करीब 35,000 गोपालकों के इस सम्मेलन में गोशालाओं के लिए 101 करोड़ रुपए दिए। श्री शाह ने उज्जैन में 255 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले डेयरी प्लांट का वर्चुअली भूमि पूजन भी किया। श्री शाह ने कहा कि भोपाल में 12 करोड़ की लागत से केंद्रीय प्रयोगशाला बनाई गई है और शिवपुरी में मिनी डेयरी प्लांट बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसमें गोवंश और भैंस की नस्ल सुधार का काम होगा। गोपालक सम्मेलन से पहले केंद्रीय मंत्री ने भेल दशहरा मैदान में ही नए आपराधिक कानूनों पर मध्य प्रदेश पुलिस की प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया। कार्यक्रम में श्री शाह ने कहा कि अंग्रेजों के बनाए कानून अपनी सरकार और प्रशासन को बचाने के लिए थे, लेकिन अब नए कानून नागरिकों के सम्मान, संपत्ति और शरीर की रक्षा के लिए हैं। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: सरकार मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले कुख्यात सरगना नवप्रीत सिंह को तुर्की से सफलतापूर्वक भारत वापस लाई है। देश की कानून प्रवर्तन एजेंसियों की इस उपलब्धि पर श्री अमित शाह ने कहा कि नवप्रीत सिंह नवाब विर्क की फर्जी पहचान से तुर्की की नागरिकता हासिल करके अफगानिस्तान से भारत में मादक पदार्थों की तस्करी करता था। गृह मंत्री ने बताया कि नवप्रीत सिंह को नशीले पदार्थों की तस्करी और अन्य अपराधों से जुड़े कई मामलों में जेल भेजा गया है। श्री शाह ने कहा कि 2019 से इस वर्ष अगस्त तक 36 देशों के कुल 288 भगोड़ों को भारत वापस लाया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आंध्र प्रदेश के सत्यवेदु मंडल की श्री सिटी स्थित एक निजी औद्योगिक इकाई में आज बॉयलर फटने से 4 श्रमिकों की मौत हो गई और एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों से बात की और आवश्यक उपाय करने तथा शोक संतप्त परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया। राज्यपाल एस अब्दुल नजीर ने मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायल श्रमिक के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायकों ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस दौरान विभिन्न विषयों पर सार्थक बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि बैठक में लोगों की बेहतर सेवा करने और जन कल्याण के लिए और अधिक प्रभावी ढंग से काम करने पर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से प्रेरित है। सेवा और सुशासन की इसी दृष्टि से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में परिवर्तन भी ला रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में हम आपको बता रहे हैं कि इस सोच को नए संसद भवन और सेंट्रल विस्टा के रूप में किस तरह साकार किया गया है।
6: सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना भारत के नई दिल्ली स्थित केंद्रीय प्रशासनिक और नागरिक क्षेत्र को नए रूप में विकसित करने की एक वृहद परियोजना है। इसके प्रमुख घटकों में नया संसद भवन, कर्तव्य पथ और एकीकृत केंद्रीय सचिवालय शामिल हैं। इसका उद्देश्य अत्यधिक कार्यात्मक और उद्देश्यपूर्ण बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराकर प्रशासनिक दक्षता तथा कार्यकुशलता को और मजबूत करना है। केंद्र सरकार के सभी 51 मंत्रालयों को 10 एकीकृत केंद्रीय सचिवालय भवनों में एक साथ लाने से कर्मचारियों, दस्तावेजों और संसाधनों की आवाजाही सुगम होगी। नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। नए संसद भवन के निर्माण में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के तहत देश के विभिन्न राज्यों से सामग्री मंगाई गई थी। नए संसद भवन का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि यह केवल एक भवन नहीं है बल्कि 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं और सपनों का प्रतिबिंब है।
3: ये नया भवन आत्मनिर्भर भारत के सूर्योदय का साक्षी बनेगा। ये नया भवन विकसित भारत के संकल्पों की सिद्धि होते हुए देखेगा। ये नया भवन नूतन और पुरातन के सह अस्तित्व का भी आदर्श है।
6: जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र सुधांशु रघुवंशी ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि नए संसद भवन में देश की कला, संस्कृति और विविधता को दर्शाया गया है।
7: भारत की नई संसद सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत उसने भारतीय संस्कृति को पुनः एकमेक करने का प्रयास किया है।
6: पर्यावरण संतुलन सेंट्रल विस्टा मास्टर प्लान के केंद्र में है। इन परियोजनाओं के परिणाम स्वरूप हरित क्षेत्र में समग्र रूप से वृद्धि होगी। सुपर्णा सेकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में भारत रूस संबंधों पर परामर्श समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में डॉक्टर जयशंकर ने व्यापार, निवेश, ऊर्जा, संपर्क, संस्कृति और लोगों के बीच आपसी संबंधों सहित भारत और रूस के बहुआयामी सहयोग के विभिन्न पहलुओं का उल्लेख किया। सोशल मीडिया पोस्ट में विदेश मंत्री ने कहा कि उन्होंने यूक्रेन संघर्ष समाप्त करने के लिए संवाद और कूटनीति के प्रति भारत के सक्रिय समर्थन का भी उल्लेख किया। यूक्रेन ने रूस के साथ संभावित युद्ध विराम के लिए भारत के प्रस्ताव को अब तक मिले प्राप्त चार प्रस्तावों में सबसे व्यापक बताया है। यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्री सिबिहा ने कहा कि यूक्रेन ऊर्जा अवसंरचना और काला सागर को शामिल करने वाले युद्ध विराम प्रस्ताव पर विचार करने के लिए तैयार है। इससे पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचार यूक्रेन संघर्ष के पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान खोजने के लिए बहुत अच्छे हैं। हॉर्मुज जलडमरू मध्य में कुवैत के ध्वज वाले टैंकर पर हुए हमले में 5 भारतीय नागरिकों को बचा लिया गया है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दूतावास ने MT काजिमा 3 पर सवार 5 भारतीयों के बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों से समन्वय किया। दुबई के युवराज हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने आज भारतीय पायलट स्मिथ के साहस की सराहना की। अस्पताल में कैप्टन से मुलाकात के दौरान उन्होंने संभावित बड़े हादसे को टालने के लिए स्मिथ की प्रशंसा की। बुधवार को दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की उड़ान के कॉकपिट में कैप्टन स्मिथ हमले में गंभीर रूप से घायल हुए थे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डीजल के निर्यात पर रोक लगाने की संभावना से इंकार किया है। उन्होंने कहा कि यूरोपीय देशों ने बाजार में ईंधन की उपलब्धता बढ़ाने का आश्वासन दिया है, इससे ऊर्जा की कीमतें कम करने में मदद मिलेगी। अमेरिका ने 50 देशों के नागरिकों के लिए पर्यटक और कारोबारी वीजा पर $20,000 तक की जमानत राशि तय की है। इस व्यवस्था से भारत को छूट दी गई है, जबकि बांग्लादेश, भूटान और नेपाल सहित दक्षिण एशिया के कई देश इसमें शामिल हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए @AIRNewsHindi को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़ें।
1: ये आकाशवाणी है। जापान एशियाई खेलों में आज भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 5 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक हासिल किए और अधिक जानकारी दे रहे हैं प्रशांत कुमार।
2: भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने मलेशिया को हराकर स्वर्ण पदक देश के नाम किया। इस जीत के साथ ही भारत ने 2028 ओलंपिक के लिए सीधे क्वालिफाई कर लिया है। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। कुश्ती के 57 किलोग्राम पुरुष वर्ग में अमन सहरावत ने स्वर्ण और 97 किलोग्राम वर्ग में दीपक पूनिया ने कांस्य पदक जीता। अंतिम पंघाल ने महिला 53 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक हासिल किया। उधर गोल्फ में प्रणवी उर्स ने महिला व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जबकि टीम स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया। महिला रिकर्व तीरंदाजी में कुमकुम मोहोद ने स्वर्ण और नीरज चौहान ने पुरुष रिकर्व स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया। पदक तालिका में भारत 21 स्वर्ण 27 रजत और 37 कांस्य सहित 85 पदकों के साथ चौथे स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक विजेताओं को बधाई दी है।
1: कर्नाटक में सूखे की स्थिति का आकलन करने के लिए एक उच्च स्तरीय केंद्रीय दल आज बेंगलुरु पहुंचा। कृषि मंत्रालय के संयुक्त सचिव अजीत कुमार साहू के नेतृत्व में ये दल 6 अक्टूबर तक सूखा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेगा। मौसम विभाग ने कल केरल, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में कुछ स्थानों पर भारी बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने कहा है कि तमिलनाडु, पुदुचेरी, आंध्र प्रदेश, केरलम में कल तेज हवाओं के साथ गरज के साथ बारिश हो सकती है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, पिछले एक दशक में राजकोषीय विवेक, अवसंरचना निवेश और निरंतर सुधारों के माध्यम से भारत की आर्थिक शक्ति और लचीलापन मजबूत हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, भारतीय न्याय संहिता का पूर्ण कार्यान्वयन भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में परिवर्तन लाएगा। आंध्र प्रदेश में श्री सिटी के एक निजी औद्योगिक इकाई में बॉयलर फटने से 4 श्रमिकों की मौत। एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष हॉकी और क्रिकेट टीम ने स्वर्ण पदक जीते। पहलवान अमन सहरावत, तीरंदाज कुमकुम मोहोद और गोल्फर प्रणवी उर्स ने भी स्वर्ण पदक हासिल किया। भारत ने आज 5 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। 21 स्वर्ण सहित 85 पदकों के साथ पदक तालिका में चौथे स्थान पर। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा। 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद। कॉल 7055011681।
1: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
2: Hey, you're tuned into FM Muradabad, 89.6 FM.
3: हेलो जी, कैसे हाल चाल है? आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6। मेरा नाम RJ आनंद है और इस वक्त आपने ट्यूनिंग किया है आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो। लेडीज एंड जेंटलमैन, यह है 89.6 FM जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। और आज की जो ये ब्यूटीफुल महफिल है ना, ये किन की बातों से सजने वाली, कौन है जो इस महफिल को और भी खूबसूरत बनाने वाले हैं, डेफिनेटली आपको पता लगेगा। फिलहाल तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर आपके पास भी कोई अच्छा टैलेंट है, कोई अच्छा आपके अंदर स्किल है, तो डेफिनेटली आप हमारे स्टेशन में आके पूरी जनता तक उसको पहुंचा सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर मेरे इंस्टाग्राम पर आके हमें DM कर सकते हैं। आपके अंदर जो भी टैलेंट है, व्हाटएवर, आप शेर व शायरी करते हैं, आप पोएट्री लिखते हैं, आप बहुत अच्छा बोलते हैं, आपके अंदर जो भी टैलेंट है उसके लिए आपके शहर का अपना लोकल रेडियो स्टेशन है ना, जो आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा रहा है। और आज का ये प्लेटफॉर्म हम किसको देने वाले हैं, आई नो दैट आपने इनकी आवाज़ सुनी होगी, बट वही है ना कि कभी कभी जब आप आवाज़ सुनते हो और एक लंबे अंतराल की बात सुनते हो तो शायद थोड़ा बहुत मिसिंग तो हो जाता है। बिल्कुल बात नहीं, आज हम आप उनको इंट्रोड्यूस कराएंगे आपसे उनको, एंड जब वो आपसे मिलेंगे तो शायद आपको थोड़ा बहुत कुछ याद आ जाए। वेल, आज की शाम कौन है हमारे साथ इस महफिल में, बताता हूं आपको। तो आज की इस महफिल में हमारे साथ जो साथ देने वाले हैं वो है उत्कर्ष अग्रवाल जी। एंड इनके बारे में तो मैं क्या ही बोलूं, जब मेरी इनसे भी बातचीत हो रही थी तो इन्होंने काफी कुछ बताया अपने बारे में। मतलब ही इज अ मल्टीटास्कर इंसान, बहुत ही अच्छा काम भी करते हैं एंड फिलहाल मुरादाबाद से तो बाहर ही रहते हैं, जैसे कि हम मुरादाबाद में आके कहीं और से यहाँ पर आपके लिए काम कर रहे हैं, बट अब तो मेरे लिए मुरादाबाद ही अपना शहर हो गया। आई लव मुरादाबाद सिटी। तो बिना किसी देरी के भैया को मिलवाते हैं आपसे। हेलो, हाउ आर यू भैया, कैसे हैं आप? वेलकम टू FM मुरादाबाद।
4: नमस्कार, मैं उत्कर्ष अग्रवाल, मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं?
3: मैं भी बहुत ही बढ़िया हूँ सर। मेरी जो है हालचाल आप देख ही सकते हैं, स्टूडियो में बैठने के बाद सब एकदम ऑल गुड हो जाते हैं सर।
4: बिल्कुल बिल्कुल
3: जी। आप बताइए सर, आप मतलब पहली बार आ रहे हैं या फिर पहले भी आए हैं आप?
4: नहीं, FM मुरादाबाद में मैं पहले भी आ चुका हूँ, लेकिन दिस इज वेरी फर्स्ट इंटरेक्शन विद यू और
3: आई एम सुपर हैप्पी। मेरे को भी अच्छा लग रहा है, यू नो।
4: बिल्कुल बिल्कुल, मुझे भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है और मैं सोच रहा हूँ कि शो बहुत अच्छा होने वाला है।
3: एब्सोल्युटली, डेफिनेटली। वो कहते हैं ना भैया, जब किसी भी काम की शुरुआत आप एक अच्छी वाइफ के साथ करते हो, यू नो, एक अच्छी पॉजिटिविटी के साथ करते हो, तो उसका रिजल्ट भी डेफिनेटली अच्छा ही आता है।
4: डेफिनेटली डेफिनेटली,
3: वही चीज है, यू नो, आज इस सेशन में होने वाली है। सो थोड़ा सा अपने बारे में हमारी ऑडियंस को बताएं उत्कर्ष भाई, मतलब यू नो आप किस प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं, क्या है आपका काम?
4: बिल्कुल बिल्कुल, मैं बिल्कुल आऊंगा अपनी बात बताने, लेकिन मैं उससे पहले अपनी एक लाइन में जरूर बता देना चाहता हूं, जो मैं इंट्रोडक्टरी शेयर अपने लिए कभी पढ़ना चाहता हूं। हाँ। और वो लिखा था मैंने ऐसे कि भोला भाला सादा सा जान निसारने वाला लड़का हूं।
3: क्या बात है,
4: भोला भाला सादा सा जान निसारने वाला लड़का हूं, मैं जिस्मों की दुनिया में दिल हारने वाला लड़का हूँ। तो मैं जो बेसिकली हूँ, मेरा जो काम है वो, एक तो मैं पोइट हूँ, सिंपल सी बात है, आपने मुझे समझ लिया। तो लिखता हूँ, गाता हूँ और सिंगिंग करने का शो रखता हूँ साथ में। सिंगिंग मैंने सीखी तो नहीं है, लेकिन पोइट्रीज में मेरा बहुत रुचि है, तो मैं प्रेम पे कविताएँ लिखता हूँ। प्रोफेशन मेरा है टीचिंग, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ लॉ डिपार्टमेंट में, मंगलायतन यूनिवर्सिटी में फिलहाल मैं एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर कार्यरत हूँ। उसके साथ साथ मैं अपने लिए जो टाइम निकालता हूँ उसमें मैं ये करता हूँ कि मैं पोइट्रीज लिखता हूँ, शायरी लिखता हूँ, गज़ल लिखता हूँ, या यूँ कहिए कि लोगों के जज्बातों को, फीलिंग्स को बस कागज़ों में उतारने का काम है थोड़ा सा।
3: क्या बात है, साउंड्स इट्स अमेजिंग यार. मैं मतलब बहुत लोगों को इंटरव्यूज करते हैं, बहुत लोगों से हम मिलते हैं, एंड मैं उत्कर्ष भाई को सामने से देख पा रहा हूँ, तो मतलब उनको देख के इतने इनोसेंट, इतने यू नो सेंसिटिव लग रहे हैं वो, बट उनकी आवाज और उनका यू नो टॉकिंग ऑफ वे एब्सोल्युटली अल्टीमेट है यार. मतलब यू नो वो कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, वो होता है ना उत्कर्ष भाई. एंड इतने मल्टीटास्कर हैं, मतलब आपने सारा कुछ बता डाला यार, तो एक एक करके यू नो आपका जो टैलेंट है उसको मैं चाहूंगा यहाँ पे हम पब्लिश करें, अपनी ऑडियंस के बीच में रखें. एंड गाइज ये जो सेशन है डेफिनेटली बहुत ही अल्टीमेट लेवल पे जाने वाला है, सो मैं चाहूंगा कि आप बिल्कुल हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए और इस सेशन को ऐसे एंजॉय करेंगे. अभी तो सिर्फ शुरुआत है, पिक्चर तो बाकी है मेरे दोस्त, तो आप कहीं मत जाइए, डोंट गो एनीवेयर. सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6. आज की इस महफिल को और भी खूबसूरत बना रहे हैं हमारे साथ उत्कर्ष अग्रवाल जी, स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे बहुत कुछ सुनेंगे. सो एक काम करते हैं, छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद वी कम बैक. आप सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद.
5: Sing it.

0: वेलकम बैक ही वंस अगेन, यू आर लिसनिंग टू एफएम मुरादाबाद। एक बहुत ही बेहतरीन गाना आपने सुना और इस गाने को सुनकर मुझे तो बहुत मजा आया। आई एम श्योर हमारे जो प्यारे से गेस्ट हैं उत्कर्ष जी, उनको भी अच्छा लगा होगा।
1: बिल्कुल डेफिनेटली।
0: एंड सर, आपने बताया कि आप ऑलरेडी पहले आ चुके हैं, बट अब आप काफी लंबे टाइम के बाद आए। अगर मैं ये बोलूँ तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी?
1: नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मैं बहुत समय के बाद आ रहा हूँ। आई थिंक ऑलमोस्ट नियर अबाउट 1 ईयर हो गया होगा मुझे आए, और उससे भी ज्यादा शायद।
0: ओके, सो कुछ चेंज लग रहा है, यू नो, कुछ भी डिफरेंट, यू नो?
1: बहुत बहुत ज्यादा, मैं मतलब पहले से महसूस कर पा रहा हूँ कि हम लोग कितना डेवलप्ड हो गए और कितनी ज्यादा एफएम मुरादाबाद 89.6 जिसका नाम है वो किस तरीके से इंक्रीज कर रहा है, वो एक बहुत अच्छी चीज है।
0: इनफैक्ट मुरादाबाद में हर चीज अपने आप में मतलब बहुत ही बढ़िया है, यू नो।
1: मतलब मैं ये सोच रहा हूँ कि आप आज के टाइम में भी एफएम जैसी चीज में तरक्की कर पा रहे हैं, और वो बहुत बड़ी चीज है कि लोग सुन रहे हैं।
0: Absolutely.
1: और ये सुन इसलिए रहे हैं क्योंकि आप बहुत अच्छा प्रोडक्ट उनको दे रहे हो, बहुत अच्छा एक चीज बना के उनको दे रहे हो, वो उनको मजा आ रहा है, जो पब्लिक को बना रहा है, आपका लिसनर आपसे कनेक्ट कर रहा है।
0: Got it.
1: तो मैं तो हूँ कि जैसे मैं सोशल मीडिया से तो कनेक्ट हुई, तो मैं देखता हूँ कि बहुत रीच आप लोग पकड़ रहे हो, ये बहुत अच्छा काम है यार।
0: बट दिस इज वेरी, यू नो, कह सकते हैं कि मतलब कॉम्प्लिकेटेड भी है बहुत ज्यादा, इतना इजी नहीं है। दिस इज वेरी क्रिएटिव।
1: नहीं, बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि एक जैसे मैं भी हूँ, मैं मुझे गाने का इतना नॉलेज नहीं है। मैंने आपको शायद बताया होगा, मेरा अभी कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले स्पॉटीफाई और यूट्यूब म्यूजिक और सावन पे भी मेरा एक गाना आया।
0: ओ वाह,
1: जानिया के नाम से वो लिखा मैंने है और मैंने गाया भी है, बट सम वॉइस सैंपल्स यूज करे हैं मैंने उसमें, ऑटो ट्यून किया है, क्योंकि आई एम नॉट अ हार्डकोर सिंगर टू बी ऑनेस्ट, मैं आपके एफएम रेडियो पे बता दूं, क्योंकि मैंने सिंगिंग सीखी नहीं, बट मुझे लिखना था और वो गाना मैं चाहता था कि बने और बिना खर्चे के बने, सबसे बड़ी बात। तो मैं चाहता था कि वो बने, तो मैंने खुद सिस्टम पे बैठ के उस पर 2-3 महीने जो मैंने काम किया है, मुझे पता है कि गाने को गाना बनाने में शायद कितना समय और कितनी मेहनत लगती है। इसी तरीके से एक जो पीस आप तैयार करते हैं, एक शो आप तैयार करते हैं, उस शो को शो बनाने में, जो फिनिश प्रोडक्ट लोगों को कहने में सुन के अच्छा लगता है, उसको बनाने में पीछे कितनी मेहनत होती है, कितनी रिसर्च होती है, वो डेफिनेटली मैं रिलेट कर सकता हूँ। मैं उसके लिए आपकी तारीफ भी करता हूँ भाई साहब, बहुत अच्छा शो बनाते हैं।
0: अरे धन्यवाद सर। एंड एक्चुअली मुझे लगता है कि एज अ बीइंग अ आरजे, अगर आप रेडियो कर रहे हैं तो आपको ओरिजिनल होना चाहिए, रेडियो पे जेन्युइन होना चाहिए। जैसे एक्टर को कैमरे पे बिल्कुल ओरिजिनल एक्टिंग के साथ आना पड़ता है, क्योंकि वरना कैमरा होता है छोटी छोटी चीजें पकड़ लेता है एक एक्टर की, है ना। वैसे ही हमारा माइक होता है, हम इसके साथ में ना कोई भी, यू नो, फेक चीज नहीं कर सकते हैं। आप जितना ओरिजिनल साउंड करोगे, लोग उतना ज्यादा आपसे कनेक्ट होंगे। वो कनेक्टिविटी तभी बनती है जब आप ऑर्गेनिक चीजें डिलीवर करते हो बेसिकली। सो वो चीजें, सो गाइज प्लीज बोर मत होना, बैक टू पॉइंट चलते हैं हम उत्कर्ष भाई की दुनिया में एंड कुछ उनसे इंटरेस्टिंग सुनने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम जब अभी म्यूजिकल ब्रेक पे गए थे तो मेरा उनसे एक छोटा सा डिस्कशन हो रहा था, वो यू नो कुछ वॉइस को लेके कुछ तो यू नो कर रहे थे हम लोग आपस में टॉक। आरजे उन्होंने देखे हैं और उनको अच्छा लगा मेरा, और वो भी कुछ बता रहे थे अपना एक्सपीरियंस, यू नो, वॉइस के बारे में कुछ तो चल रहा था उत्कर्ष भाई अभी हम लोग।
1: मैं आपसे ये बात कर रहा था कि वॉइस की जो बात हुई, वो मैं इसलिए बताना चाह रहा था कि वॉइस कितना मैटर करती है जब आप कोई पोइट्री डिलीवर करने वाले, आप कोई शो डिलीवर करने वाले, स्पेशली इन आरजे या एंकरिंग का जो शो होता है वो बहुत इम्पैक्ट डालता है। और यदि हमारी वॉइस अच्छी नहीं होगी या इम्पैक्टफुल नहीं होगी तो शायद वो कनेक्ट नहीं कर पाएगी।
0: Correct.
1: मैं बहुत बार देखता हूँ, मैं बहुत सारे पोएट्री शोज में जाता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि जो लोग नए नए लिख रहे हैं या नया नया पढ़ रहे हैं, वो लोग पढ़ते हैं मतलब एज अ जैसे रीडिंग कर दी उन्होंने, और उनकी वॉइस में वो इम्पैक्ट नहीं होता। शायद उन्होंने, उनकी जो इमेजिनेशन है वो बहुत ज्यादा अच्छी हो सकती है, उन्होंने लिखा बहुत अच्छा होगा, लेकिन वो डिलीवर नहीं कर पा रहे।
0: Correct.
1: और वो वॉइस उनकी कनेक्ट नहीं कर पा रही है लोगों से। और कभी कभी ऐसा होता है कि किसी ने कुछ ज्यादा अच्छा ना भी लिखा हो, और उसका पढ़ने का, कहने का अंदाज ऐसा होता है कि सामने वाले के दिल में उतर जाते। तो ऐसा कुछ होता है, जैसे आंखें और आवाज जो होती हैं वो दिल में उतरने का रास्ता होती हैं। तो अगर किसी के दिल में आपको उतरना है तो आपको अपनी आवाज में भी गहराई लानी चाहिए, जो कि आपकी तो आवाज में मुझे बहुत अच्छी लगी।
0: अरे सर, आई डोंट नो, मतलब आई एम नॉट अ शायर, आई एम नॉट पोएट्री, बट

0: जाता है कि ये वॉइस है आरजे आनंद की, तो वो क्या है, वो आवाज है.
1: आवाज,
0: आई थिंक वॉइस इज वेरी वेरी इम्पैक्टफुल. वो बहुत नेसेसरी है कि वो बहुत इम्पैक्टफुल होनी चाहिए.
1: जैसे अभी आपकी आवाज बहुत इम्पैक्टफुल है और जो हम सभी लिसनर्स को, बिकॉज मैं भी अभी आपका लिसनर ही बन के बात कर रहा हूँ आपसे, मुझे बहुत मजा आ रहा है और हम सब बहुत वेट कर रहे हैं. उत्कर्ष जी, आप कुछ इंटरेस्टिंग सा कुछ तो सुना दें जो आपके दिल के बहुत करीब है. कौन सी चीज है जिसके साथ आप, एक कहते हैं ना किसी भी काम की शुरुआत आप कुछ जब हैपनिंग तरीके से करते हो तो मजा आ जाता है.
0: बिल्कुल,
1: तो कुछ बढ़िया सा, कुछ खुशनुमा सा माहौल बनाते हैं, कुछ तो अपने लिसनर्स के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए, कुछ अच्छा सा जो आपको लगता है यार ये चीज तो मैं डिलीवर कर ही सकता हूँ. आनंद,
0: बड़ी प्यारी सी, मेरा एक शेर है छोटा सा.
1: हाँ हाँ हाँ definitely.
0: बहुत ही प्यारा है, वो सुनिए कि ये जो आहिस्ता आहिस्ता तुम हंस रही हो.
1: wow.
0: बहुत लोग इससे रिलेट करेंगे.
1: Please.
0: ये जो आहिस्ता आहिस्ता तुम हंस रही हो, मैं जानता हूँ मुझ पे ताने कस रही हो.
1: wow.
0: ये जो आहिस्ता आहिस्ता तुम हंस रही हो, मैं जानता हूँ मुझ पे ताने कस रही हो. तुम्हारे इन झुमकों में बसती है जान मेरी, इन्हें उतार कर तुम कहाँ रख रही हो.
1: क्या बात है यार. यू नो मैं अभी रिसेंटली कुछ टाइम से हमने ये पोइट वाला मतलब यू नो शुरू किया है, स्पेशली मैं अभी कुछ टाइम से ही कर रहा हूँ ये उत्कर्ष भाई.
0: अच्छा.
1: सो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब यू नो मुझे पहले ना समझ में नहीं आ रहा था क्या चल रहा है, ये होता क्या है, मतलब व्हाट इज दिस पोएट्री और ये सब. मतलब वैसे तो मैंने बहुत सारे ओपन माइक्स वगैरह में मैं गया हूँ तो देखा है मैंने, लोग करते हैं. आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, सब चीजें सामने आ जाती हैं. आप स्क्रॉल करोगे आपको नहीं पता आपके सामने क्या चीज अच्छी आ जाए जो आपको टच कर जाए, यू नो. तो वो चीजें, बट ये जो चीजें आप लोग बोलते हैं ना, जो भी आप आपके शब्द होते हैं जो पोएट्री में आप रो रहे हैं या जो भी आप शायरी कर रहे हैं, मतलब एक्चुअली ये बड़ी सच्चाई वाली चीजें हैं, बस आप उनको ना अलग तरीके से हमारे सामने प्रेजेंट कर रहे हो. बट ये ऐसा लगता है कि सच्चाई से हमारा एक सामना करा रहे हो आप लोग.
0: बिल्कुल,
1: ये पोएट्री हो गई, शायरी हो गई, ऐसा लगता है आईना दिखाया जाता है.
0: बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं. मैं मतलब कभी कभी मुझसे ये सवाल अक्सर पूछे जाते हैं, हालांकि हर राइटर इससे रिलेट करेगा. उनसे ये पूछा जाता है कि आप इतनी जो शायरियां लिख रहे हैं, क्या दिल टूटा है या दिल लगाया है किसी के लिए लिख रहे हैं?
1: ये तो मैं भी पूछने वाला था.
0: बट हाँ, मैं बता देता हूँ आपको कि हाँ, समटाइम्स ये जरूरी हो जाता है, समटाइम ये है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये जरूरी नहीं है कि आपका दिल टूटा हो अगर आप एक अच्छे राइटर हैं या फिर आप अच्छे इमेजिनर हैं. आप जितना अच्छा सोच पा रहे हैं उतना अच्छा आप लिख पा रहे हैं, और उसके लिए बहुत जरूरी कि आप अच्छा पढ़ें. पढ़ेंगे आपकी सोच अच्छी होगी. और मतलब जैसे मेरा एक और, मैं आपको एक शेर सुना.
1: अरे वाह, बिल्कुल इरशाद.
0: मैं दिल्ली में रहता था जब, तो मैं लीगल इंटर्नशिप कर रहा था हाईकोर्ट में.
1: ऑलराइट.
0: तो वहां पर हम एक रूम में रहते थे और पीजी में, उसके बराबर में एक गर्ल्स पीजी था. तो अक्सर 8 बजे एक लड़की छज्जे पे आती थी.
1: और मतलब छज्जा, जो
0: छज्जा यानी कि बालकनी.
1: ऑलराइट.
0: वो छज्जा इसलिए क्योंकि मैंने वो वर्ड बालकनी
1: यू नो, मतलब मुझे थोड़ा सा इसलिए भी लगा क्योंकि एकदम फ्लैशबैक में चला गया. छज्जा मतलब हमारे घर के बाहर एक छोटा सा बना दिया जाता था, उसमें पेड़ वेड़ रख देते थे हम लोग.
0: बालकनी तो मॉडर्नाइज घर में होती है, पहले तो छज्जा ही हुआ करते थे.
1: करेक्ट.
0: तो एक लड़की ठीक 8 बजे बालकनी में आती थी और मेरा एक जो रूममेट था वो उसको डेली देखता था, और उसके बहाने हम लोग चाय पीने जाते थे. और ये होता था कि अगर दिख गई तो चाय वो पिलाएगा, नहीं दिखी तो फिर कॉन्ट्रीब्यूशन होगा.
1: क्या बात है ये, मतलब एक बड़ा अच्छे से सेटिंग्स आप लोगों ने करके रखी हुई थी. मतलब
0: जी,
1: तो कितनी बार है जो जब आपने उनको चाय पिलाई है?
0: नहीं नहीं, नहीं मेरा केस नहीं था, ये केस मेरे दोस्त का था और उसने मुझे बहुत बार चाय पिलाई.
1: अच्छा, नहीं, मतलब तो आप लोगों की तो यहाँ पे एक बेसिकली एक टर्म्स एंड कंडीशन थी ना कि अगर वो आई तो वो पिलाएगा, नहीं आई तो आप पिलाएंगे.
0: तो मैंने तो बहुत कम पिलाई थी.
1: मतलब वो आई है इसलिए उसने आपको पिलाई है.
0: जी जी,
1: गजब. तो यार
0: हुआ ये कि कुछ दिन तक वो आई नहीं.
1: ठीक है.
0: तब एक शेर मेरा बना कि मैं एक शेर सुनाता हूँ. शेर बना
1: प्लीज यार. श्योर.
0: ओके. शेर ये था कि तभी से होठों ने मुस्कुराना छोड़ दिया.
1: वाह.
0: तुमने जब से दिल लगाना छोड़ दिया.
1: क्या बात है.
0: भी से होठों ने मुस्कुराना छोड़ दिया. तुमने जब से दिल लगाना छोड़ दिया. तुम्हें क्या मालूम इन गलियों पर क्या गुजरी.
1: वाह जी वाह.
0: तुम्हें क्या मालूम इन गलियों पर क्या गुजरी. तुमने तो बस छज्जे पे आना छोड़ दिया.
1: अरे वाह, क्या बात है यार. बहुत ही बढ़िया. मतलब
0: तो कभी कभी शेर आपके जो ऐसे पोइट्रीज होती हैं वो ऐसी सिचुएशन से निकलती हैं.
1: अच्छा, ये चीज ना बड़ा यू नो मुझे ऐसा लगता है कि इट्स नॉट इजी. आप किसी भी चीज को जब देख रहे हैं, फील कर रहे हैं, फिर उसको आप अपने शब्दों में पिरो रहे हैं.
0: बिल्कुल.
1: ये बहुत यू नो मुझे लगता है बड़ा चैलेंजिंग भी होता होगा.
0: नहीं, बिल्कुल होता है. लेकिन जब आप अच्छा पढ़ रहे होते हैं तो कभी ना कभी ये चीजें बनती हैं. जैसे एक और है, जैसे मैं टीचर ही हूँ तो मैं पढ़ा रहा था लॉ कॉलेज में, तो मैं बड़ा फ्रेंडली टीचर हूँ, तो मेरे से दो मेरे
1: वो
0: जो बच्चे
1: तो खैर मेरे को आपको देख के लग रहा है आपका एनवायरमेंट ऐसा है ही.
0: तो अक्सर बच्चे अपने एक लड़का है तो वो अपनी रिलेशनशिप के बारे में ऐसी डिस्कस

0: कर रहा था कि मैंने उससे कहा कि बेटा तुम्हारी अटेंडेंस लो हो रही है, क्यों नहीं आ रहे हो? तो क्लास के बच्चे ने चिल्लाया, सर वो भी नहीं आ रही है इसलिए नहीं आ रहा है। तो वो सिचुएशन क्रिएट होती है और तब एक शेर बनता है कि आंखों से ही दिल में उतर जाना होता है,
1: वाह जी वाह,
0: इश्क में ये भी कर गुजर जाना होता है।
1: गजब।
0: आंखों से दिल में उतर जाना होता है, इश्क में ये भी कर गुजर जाना होता है। कॉलेज बस तेरे दीदार को आते हैं,
1: अरे वाह,
0: अटेंडेंस तो महज बहाना होता है।
1: क्या बात है यार, आउटस्टैंडिंग। मतलब कितना कमाल का आपका जो है सेंस ऑफ ह्यूमर है भाई साहब।
0: अटेंडेंस है ये तो सिर्फ एक बहाना होता है, हम तो कॉलेज तेरे दीदार को आते
1: क्या
0: हैं,
1: क्या बात है।
0: तो सिचुएशनल
1: अच्छा, ये बेसिकली ये अगर देखा जाए तो ये सच भी है, कई प्रतिशत सच भी है ये बात। बहुत लोग हैं जो यू नो ये
0: चीज, मैं वही कह रहा हूँ कि जितना अच्छा आपका ऑब्जर्वेशन होगा
1: करेक्ट,
0: आप उतना अच्छा लिख पाएंगे। आप जॉन एलिया साहब को लिखिए, आप बशीर बद्र साहब, जितने बड़े बड़े पोइट्स हैं आप उन्हें अगर सुनी है तो बशीर बद्र साहब अपने शायरी में कहते हैं कि सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा, इतना मत चाहो उसे वो खुदा हो जाएगा। तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जितना अच्छा ऑब्जर्वेशन आप रख सकते हैं उतना अच्छा आप लिख सकते हैं।
1: बातें उत्कर्ष भाई से ढेर सारी हो रही है और बहुत सारी चीजें अभी आगे भी सुनेंगे। आई नो दैट थोड़ी सी लंबी कॉन्वर्सेशन होगी बट कोई बात नहीं, अभी एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक का टाइम है। इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद वी कम बैक, मैं और उत्कर्ष भाई आ जाए। आज मैं बिल्कुल भी अकेला नहीं हूँ स्टूडियो के अंदर और आज हमारे साथ उत्कर्ष भाई मौजूद है हमारे साथ स्टूडियो में। ढेर सारी बातें कर रहे हैं अपनी प्यारी प्यारी बातों से, अपनी प्यारी प्यारी शेर व शायरी से आपको जो है आज बड़ा सुकून दे रहे हैं भाई। मेरा तो मन प्रफुल्लित हो गया है भाई की बातें सुन के। अब आपको जो एक बढ़िया से गाना सुनाते हैं उसके बाद कराते हैं, आप कहीं मत जाइए। सुंदरी आपके शहर का अपना फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: वेलकम बैक ही वंस अगेन। बहुत ही मजा आ रहा है मुझे तो आज की शाम, एंड आई एम रियली श्योर आप भी बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। आई होप आपको भी ये सेशन डेफिनेटली अच्छा लग रहा होगा। यार मुझे तो एक ही शायरी आती है, इतने सारे शायर आए, मैंने एक भी शायरी नहीं करी है, बट मेरे को ना एक्चुअली वो थोड़ी गंदी वाली शायरी आती है, उसको सुन के आप लोग हंस जाते हो। वो है ना मेरी एक बड़ी वो पुरानी सी शायरी जो मैं अक्सर चिपकाता रहता हूँ कि भर लो बाहों में कर दो मदहोश, भर लो बाहों में कर दो मदहोश, कौसे कबूतर खासे खरगोश। तो भाई मेरे को इससे आगे वाली नहीं आती है। वेल लेट मी टेल यू, ये जो शायरी थी तो बहुत गंदी थी, बहुत बकवास और भयात शायरी थी मेरी, बट जो उत्कर्ष भाई सुना रहे हैं बहुत ही प्यारी है यार, बिकॉज उनका जोनर ही यू नो अलग ही है। भाई वेलकम बैक है आपका एक बार फिर से।
1: थैंक यू।
0: एंड आई होप आप भी एंजॉय कर रहे होंगे यार हमारे
1: बिल्कुल,
0: साथ इस
1: बिल्कुल,
0: सेशन
1: मैं
0: को।
1: डेफिनेटली बहुत एंजॉय कर रहा हूँ, मुझे बहुत मजा आ रहा है और मैं सोच रहा हूँ कि ये सेशन कहीं खत्म ना हो जाए।
0: ये खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा भैया, मैं क्या ही करूँ, बट बहुत मजा आ रहा है आपके साथ बात करके। यू नो मतलब दोस्तों कभी कभी होता है ना कि जब आप किसी से अच्छे से दिल से बात करते हो तो ऐसा लगता है नहीं कि आप फर्स्ट टाइम किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो, ऐसा होता है उत्कर्ष भाई? जैसे मैं एक्चुअली भाई को बाहर रिसीव करने के लिए खड़ा हुआ था, तो भाई भी मेरे को देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ ये पर्सन है जो आने वाला है, आई डोंट नो। फिर ये इन्होंने मेरे को पूछा, मैं हाँ जी हाँ जी, फिर जो ना थोड़ी सी बातचीत करी, लेकिन ऐसा लगा नहीं यार हम पहली बार मिल रहे हैं भैया। हाँ, यहाँ पे स्टूडियो में आके से हम लोग ट्रैक कर रहे हैं लाइव ऑन एयर, तो ऐसा लग नहीं रहा ना कि हम पहली बार मिले हैं, और ये होना भी चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: बहुत अच्छा लगा आप आए, और ये बड़ी खुशनसीबी हमारी कि हम आपको सुन रहे हैं यहाँ बैठ के।
1: मेरी भी खुशनसीबी है कि आपने मुझे बुलाया।
0: अरे सर थैंक यू वेरी मच, क्योंकि आप बड़े बिजी और बड़े बिजी पर्सनालिटी हैं आप, मैंने सुना है, तो आप जो है शाम को रवाना हो जाएंगे।
1: पर्सनालिटी का तो सर ये है कि मतलब जब आप काम में लग जाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज जब आपके ऊपर आ जाती हैं, तब फिर आप बिजी हो जाते हैं, वरना आपको पैशन और प्रोफेशन आपका जब अलग हो जाता है ना, तो प्रोफेशन आपको पैशन की तरफ आने नहीं देता।
0: यार मेरा ऐसा मानना है उत्कर्ष भाई कि अगर आप अपने पैशन को प्रोफेशन बना ले तो कितना अच्छा है।
1: बिल्कुल अच्छा, बहुत अच्छा, और इसी कोशिश में भी हूँ।
0: नहीं मैंने तो अपने पैशन को ही अपना प्रोफेशन बना लिया है। मेरा पैशन था मुझे रेडियो में आना है, मुझे बातें करनी है, बिकॉज आई लव यू नो टॉक करना, ये आई लव दिस जॉब, मैं हमेशा इसको बोलता भी हूँ, मुझे बहुत पसंद है।
1: ज्यादा खुश इंसान ही नहीं होगा,
0: इसीलिए अब मुझे बहुत सारे लोग
1: ये काम कर लिया है तो
0: मतलब यार मुझे ऐसा लगता है उत्कर्ष भाई, मतलब जेन्युइनली बता रहा हूँ, अगर मुझे रात को 2 बजे भी कभी ऐसा लगता आता है कि यार आपको आना है करने कुछ, तो मेरे को लगता ही नहीं रात के 2 बजे यार यही तो करना था मुझे, अब 2 बजे क्या देखना भाई, चल ये यही तो मेरा पैशन था।
1: जब दिल से काम होते हैं तो बड़े अच्छे होते हैं।
0: करेक्ट, और फिर हमें उसमें ना ऐसा नहीं लगता यार हमें टाइम पूरा करना है।
1: बिल्कुल डेफिनेटली,
0: हमें उसमें लगता है यार थोड़ा टाइम और मिल जाए।
1: जॉब होता ना तो जॉब होता 9 to 5, और आप जब 9 जॉब की तरह करते हैं तो वो 5 बजने का इंतजार होता है।
0: गॉट इट,
1: आप सुबह 9 बजने से पहले आप उठते नहीं,
0: उठते नहीं है
1: तो। लेकिन आपका जब पैशन होता है ना, काम करने का मन होता है, अच्छा होता, तो सुबह के 9 नहीं दिखते, शाम के 5 नहीं दिखते आपको।
0: करेक्ट करेक्ट, और जब आप दिल से काम करते हो,
1: जब दिल से आप काम करते,
0: बहुत ही बढ़िया आपने बोला है भाई, और हम भी आपके लिए डेफिनेटली प्रे करेंगे कि आप अगर अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बनाना चाह रहे हैं तो आई रियली होप ऐसा हो, नेक्स्ट टाइम जब मैं आपसे कनेक्ट हूं तो आप ही बोले कि आनंद आज मैं अपने पैशन के साथ आया हूं और ये मेरा पैशन ही मेरा प्रोफेशन हो गया है।
1: बिल्कुल,
0: दैट्स अमेजिंग उत्कर्ष भाई। अब जो है ना अभी थोड़ी देर पहले आप और मैं जिक्र कर रहे थे किसी फ्रेंडशिप का कोई किस्सा, आई थिंक आप सुनाने वाले थे ना।
1: हाँ, मैं एक दोस्ती का बहुत ही सच्चा और मतलब अच्छा किस्सा सुनाने वाला था।
0: डेफिनेटली,
1: लेकिन उसको बस थोड़ा सा मैंने पोएट्री में ढाल दिया है, उसके अंदर की रियलिटी बिल्कुल रियल है। तो हुआ ये कि ये फ्रेंडशिप डे पे मैंने लिखा था।
0: अरे वाह क्या बात है।
1: तो कल कुछ पुराने पन्नों को टटोला तो कुछ बिखरे अधूरे अल्फाज मिले।
0: क्या बात है।
1: उसी डायरी में तुम्हारा जिक्र किया था मैंने, जिसकी हर शायरी में सूखा सा मुरझाया हुआ गुलाब भी था, और ये वही गुलाब था जो मैं तुम्हें देने के लिए एक गरीब बच्चे से खरीद कर लाया था, और उसने मुझे साथ में एक दुआ भी दी थी, कहा था भैया आज ना आपको आपका प्यार मिल जाएगा। तो उस दिन ठान लिया कि कह दूंगा तुमसे दिल की हर एक बात, बता दूंगा तुम्हें अपने सारे जज्बात, मिटा डालूंगा दरमियां हर दूरी, और तब जाकर होगी तेरी मेरी कहानी पूरी।
0: क्या बात है यार।
1: मगर मगर मगर मगर मगर मेरी एक किस्मत, मैं तुम्हें कभी वो गुलाब दे ही नहीं पाया, और देता भी तो कैसे, तुमने उस दिन मुझसे पूछ जो लिया था कि हम अच्छे दोस्त रहेंगे ना, तू मुझे भूल तो नहीं जाएगा, और तेरे इन 2 सवालों ने मुझे तुझसे कुछ भी कहने से रोक दिया। तब दिल से यह आवाज आई कि शायद शायद तुझे मेरे हाथों में हाथ डालकर चलने से ज्यादा मेरे संग वक्त बिताना पसंद है, मेरे संग लड़ना पसंद है। तुझे बाजार के तोहफे नहीं, मेरे साथ वक्त बिताना पसंद है। और फिर इस दिल ने तय कर लिया कि अब चाहे अब कोई भी इजहार नहीं होगा, कोई मोहब्बत नहीं होगी, होगी तो सिर्फ और सिर्फ दोस्ती। और वो इसलिए भी क्योंकि मैं अपनी सबसे अच्छी और प्यारी दोस्त को खोना नहीं चाहता था। अब तुम्हारा और मेरा रिश्ता चाहे जैसा भी हो, मुझे कबूल था। हैप्पी फ्रेंडशिप डे।
0: बहुत ही बढ़िया यार।
1: तो ये जब किसी दोस्त को लिखा गया कि हैप्पी फ्रेंडशिप डे, तब ये लिखा गया था। बड़ा कनेक्टिंग है। आई होप सो कि मेरे जो लोग ये सुन रहे हैं, जो भी हमारे लिसनर्स हैं, वो जब ये सुनेंगे तो वो बहुत रिलेट कर पाएंगे इस चीज से।
0: मेरे को ना एक चीज बहुत अच्छी लग रही है, यू नो, कि आप जो भी चीज परफॉर्म कर रहे हो ना, आप उसमें यू नो घुस जा रहे हो। वो कहते हैं ना, अगर आप कोई चीज करते हो तो आप उस कैरेक्टर में घुस जाओ। आपने अभी ये फ्रेंडशिप वाला जो भी किस्सा शेयर किया, इसके अंदर ऐसा लग रहा था कि आप अपनी स्टोरी शेयर कर रहे हो। आई डोंट नो, बिकॉज ये एकदम रिलेटेबल इसलिए लगा क्योंकि वो स्टोरी आपने खुद के ऊपर यू नो एकदम से ब्रॉडकास्ट कर दी कि ये मेरी कहानी है।
1: yes, yes.
0: और आपने उसको ऐसे शेयर शायरी या पोएट्री वे में नहीं, आपने उसको स्टोरी टेलिंग के साथ में यू नो इतने फ्लुएंटली बोला, इतने अच्छे से और इतनी मधुर आवाज में मनमुक्त हो गया मैं तो।
1: इसीलिए मैं कहता भी हूँ हर बार कि आप जो लिखने वाले हो उसको पहले ऑब्जर्व करिए। ऑब्जर्व करने के बाद उस चीज को फील करिए।
0: एब्सोल्युटली।
1: जब आप फील कर लेंगे उस चीज को, दैट आप इमेजिन कर लेंगे कि आई एम इन दैट सिचुएशन, उस सिचुएशन में मैं हूँ, तब आप बहुत अच्छा लिख पाएंगे।
0: बीइंग अ
1: राइटर आप बहुत अच्छा लिख पाएंगे।
0: और मुझे लगता है कि अगर आप कुछ डिलीवर भी कर रहे हैं,
1: डिलीवर भी कर रहे हैं, तो आप उससे अच्छा नहीं डिलीवर, बिल्कुल,
0: क्योंकि वो।
2: अरे सुनो, बैटरी और इन्वर्टर ऑनलाइन मिल सकता है क्या?
3: हाँ है ना, श्रीहरि.in। यहाँ मिलती हैं लुमिनस, माइक्रोटेक, एक्साइड, ओकाया और यूटीएल जैसे 100% जेन्युइन प्रोडक्ट, ऑथराइज्ड ब्रांड्स, एक्सपर्ट इंस्टॉलेशंस, सेम डे डिलीवरी और हैसल फ्री एक्सचेंज। तो आज ही विजिट करें श्रीहरि.in पर जाकर।
4: सिरदर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर, मुरादाबाद।
2: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
5: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
2: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
5: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
6: कॉल 7500153841।
0: हेलो जी, कैसे हाल चाल है? आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद। आसान है तभी आप एक्चुअल में अपना जो भी आप देना चाह रहे हैं वो आप दे पाएंगे।
1: मैं आपको सिर्फ बताना चाह रहा हूँ कि मेरा नेचर है ऐसा कि मैं थोड़ा सा काम रहता हूँ, थोड़ा सुलझा हुआ, थोड़ा
0: नहीं। एक्चुअली मैंने बहुत सारे टीचर्स को देखा, इतने फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, भाई जाना है, उसके बाद वो वहां जा रहे हैं, क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी में आप सेम चीज कर रहे होते हैं, तो कभी कभी आ जाता है।
1: असल में क्या था कि मेरे फादर से पापा, बहुत पापा टाइप वाले पापा थे मेरे, मतलब एकदम स्ट्रिक्ट नेचर के हैं, तो उनसे कभी ना कहने की हिम्मत नहीं हुई कि पापा मुझे एक्टिंग में जाना है, सिंगिंग में जाना है, पोएट्री या शायरी कुछ करना है समझे। अभी तो क्या है कि अभी जगह जगह जाते हैं, शोज करते हैं, तो पता चल जाता है, पापा बड़े खुश होते हैं। अभी उड़ीसा मुरादाबाद में जो हुआ था लिटरेरी इवेंट, उसमें भी मुझे पढ़ने का मौका मिला और काफी अच्छा मोमेंटो वगैरह उन्होंने दिया। तो पापा को बड़ा अच्छा लगा, बड़ा प्राउड महसूस करते हैं। लेकिन पहले ये चीजें नहीं थी हमारे टाइम पे, जब हम छोटे थे तब हमें इतना मौका नहीं मिला। तो हम पढ़ाई, फिर मेरा मानना यह है कि अगर आप अपने मन का ना कर सको तो आप जो कर रहे हैं उसमें अपना मन लगा लीजिए। क्योंकि अगर मैं पढ़ाई करने बैठा हूँ, मैं पापा के डर से किताब खोल के बैठ सकता हूँ, बट मैं पढ़ नहीं सकता।
0: मतलब उनको शो ऑफ करेंगे कि हाँ, आपका प्रेशर है, हम पढ़ रहे हैं।
1: और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आज के टाइम पे यही
0: कर रहे हैं, वो दिल से नहीं आ रहा होता बेसिकली।
1: लेकिन अगर आपको पता है कि आपको पढ़ना ही है, आप इससे परे नहीं जा सकते, आप इसके अगेंस्ट नहीं जा सकते, आप अपना कोई स्टेप नहीं ले सकते, तो फिर जो कर रहे हैं उसको मन से करिए। क्योंकि इनपुट जब आप दे रहे हैं, आप अपना टाइम दे रहे हैं, विच इज मनी करंटली, मतलब टाइम इज मनी ना। और अगर आप अपना किसी चीज को टाइम दे रहे हैं तो वो बहुत इफेक्टिव होना चाहिए, उसको इम्पैक्टफुल होना चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब ये कि आप जो भी काम करें मन से करें, भले वो आपके मन का हो रहा हो या किसी और के मन का हो रहा हो।
0: पॉइंट तो है गाइज, और अगली बात जो होगी वो आपके मन की होगी, आपके हित की होगी, क्योंकि अगला म्यूजिकल ब्रेक आपके लिए आ रहा है यार। हमारी बातचीत तो चलती रहेंगी, सो आपके ही मत जाइए, रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाइए। आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आपको लग रहा है आनंद, थोड़ा सा गाने शाने की तरफ ले जाओ हमें, ठीक है। एक बढ़िया सा म्यूजिकल ब्रेक आ रहा है, एक बढ़िया सा गाना सुन के वापस जल्दी मिलेंगे आपसे इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे। उत्कर्ष अग्रवाल जी स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं और हम लौट कर आएंगे तो उनकी एक बहुत ही अच्छी सी एक वो उन्होंने बताया था ना राधा कृष्ण के ऊपर कुछ तो लिखते हैं बढ़िया सा, तो वो हम सुनेंगे। आप कहीं मत जाइए, अगर आपको ये कॉन्वर्सेशन अच्छी लगी है तो प्लीज इंस्टाग्राम पे डेफिनेटली बता सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है रेडियो वाला आनंद 95 के नाम से मिलता हूँ, रेडियो वाला आनंद 95 के नाम से मिलता हूँ। डोंट फॉरगेट, वहां भी अच्छी चीजें लेकर आते हैं। एंड ऑफिशियल आईडी डेफिनेटली फॉलो कर सकते हैं आप, एफएम मुरादाबाद 89.6 इस नाम से हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है, फॉलो कीजिए। वहां पर भी हम बहुत सारी एक्टिविटीज करते रहते हैं। और अभी एक बढ़िया सा गाना सुनते हैं, उसके बाद वापस लेकर आते हैं कर्ष जी को। आप कहीं बजाइए, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद। क्या हाल चाल है जी, सब बढ़िया चल रहा है? वेरी नाइस यार।

0: वेलकम बैक ही वंस अगेन, यू आर लिसनिंग टू एफएम मुरादाबाद 89.6 आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो। आप सुन रहे हैं आनंद विद यू। लेडीज एंड जेंटलमैन, आई होप सब बहुत ही बढ़िया से एंजॉय कर रहे होंगे इस कॉन्वर्सेशन को, इस प्रोग्राम को, और ये प्लान को और भी खूबसूरत बना रहे हैं। मेरे साथ आज के हमारे स्पेशल गेस्ट उत्कर्ष अग्रवाल जी मेरे साथ हैं, एंड आई एम सुपर हैप्पी बिकॉज उनके साथ बात करके बहुत ही मजा आ रहा है, और ऐसे मजेदार लोग मुरादाबाद में भी रहते हैं यार, पता नहीं था। वेल थैंक यू वेरी मच उत्कर्ष भाई, आप आए, आपने इतना इम्पोर्टेंट टाइम हमारे लिसनर्स के साथ साझा किया, और आपने जितना भी जो भी सुनाया वो बहुत ही मजेदार था, और बहुत ही मतलब काबिले तारीफ था यार भाई, मजा आ गया आपकी इस कॉन्वर्सेशन को सुन के। एंड आई होप यार आप तो खुद ही डिलीवर कर रहे हैं इतनी अच्छी अच्छी बातें, आपको कितना मजा आ रहा है आप बताओ यार भाई।
1: नहीं, मुझे तो डेफिनेटली बहुत मजा आ रहा है बातचीत करके, क्योंकि मैं तो चाह ही रहा था कि ये सेशन खत्म ना हो, क्योंकि मजा अच्छा, अच्छा, बातचीत में।
0: अरे वाह क्या बात है। अच्छा मतलब यू नो आपको ऐसा कुछ पता था कल तक कि आज आप इधर आने वाले हैं?
1: बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मुझे बिल्कुल नहीं पता था, कुछ भी आइडिया नहीं था। बस
0: कल रात को तो ऐसे सोचे नहीं थे कल एक आनंद नाम के लड़के से भी मुलाकात होने वाली है।
1: बिल्कुल आरजी आनंद जी से मिलके वाकई आनंद आ गया।
0: अरे वाह थैंक यू सो मच,
1: आप अपने नाम को सार्थक तो कर रहे हैं।
0: अरे सर थैंक यू सो मच। वही वापस बैक टू पॉइंट कि जब आपका पैशन प्रोफेशन बनता है ना तो आप उसमें जी जान लगा देते हो भाई, है ना, फिर उसमें जो निकल के आता है कि ओरिजिनल वाला प्यार, वो फिर लोग पसंद करते हैं यार, तो वही वाली चीज है,
1: ऑटोमेटिकली पसंद आने लग जाता है लोगों, क्योंकि आपने जो किया होता है ना वो कुछ एकदम नेक्स्ट लेवल होता है।
0: एब्सोल्युटली, क्योंकि वो आप उसमें वो चीज कर रहे होते हो जो आपको, जिससे आपको प्यार था वो चीज आप और अच्छे से करते हो, वो होता है जिस चीज में हमें मोहब्बत होती है पूछने आप ही अच्छी हो जाती है ना, वो चीज है जैसे आपको अच्छा लग रहा है क्योंकि आपको उस चीज से प्यार है, वो चीज ऑटोमेटिकली आपके अंदर से बाहर निकल रही है, मैं देख पा रहा हूँ। सो भैया आप सोशल मीडिया तो डेफिनेटली यूज करते हो?
1: हाँ मैं यूज करता हूँ मेरा सोशल मीडिया, मेरा अपना जो पर्सनल अकाउंट है मैं, हालांकि मैं
0: कितना मतलब एक्टिव है सोशली, आप अभी इतना अच्छा आप करते हो तो मुझे लगता है आपको सोशली पे जाना चाहिए।
1: मैं सोशली पोएट्रीज और इन सब चीजों को लेकर एक्टिव नहीं हूँ, सोशली मैं उतना ही एक्टिव हूँ जितना सोशल मीडिया को देखने में टाइम लगता है।
0: ओ भाई
1: मैं इसी चीज में थोड़ा सा पीछे हूँ।
0: ऑलराइट,
1: मैंने जैसे कि कहा कि मैं और कामों में इतना उलझा हूँ, जिम्मेदारियों में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज में, कि खुद को नहीं टाइम दे पा रहा हूँ, और दैट इज माई फॉल्ट। मैं इसे मानता हूँ कि ये मेरा प्रॉपर फॉल्ट है,
0: बिकॉज
1: अपने आपको जरूर टाइम देना
0: मुझे लगता है कि इतना अच्छा आप कर रहे हैं, और ये जहां तक 4-5 हजार लोगों तक जा रहा है, अगर आप ये मतलब जो आप करते हैं अपना जहां भी आप जाते हैं जितने भी आप सर्कल में करते हैं, बट सोशल मीडिया दैट इज बिगेस्ट प्लेटफॉर्म है ना, अगर आप वहां कोई चीज कर रहे हैं तो वो फिर आप बताओ उसकी क्वांटिटी कितनी, लाखों करोड़ों
1: पेज था। एक हर्फ के नाम से मैंने एक पेज बनाया था,
0: ऑलराइट,
1: क्योंकि एक हर्फ वो पहली पोएट्री थी जो मेरी बहुत वायरल हुई थी।
0: अरे वाह,
1: एक हर्फ का टाइटल था उसका, तो मैंने उसी के नाम से पेज बनाया।
0: नाम बड़ा डिफरेंट लग रहा है यार इसका, एक हर्फ।
1: हर्फ का मतलब होता है एक अक्षर, एक लेटर,
0: ऑलराइट,
1: एक अल्फाबेट आप कह सकते हैं। तो एक हर्फ मैंने लिखा था, मैं एक हर्फ की कुछ ऐसा लिखूं, तेरे नाम जिंदगी लिखूं, समथिंग ऐसा, बहुत पॉपुलर पोएट्री थी मेरी, बहुत वायरल हुई थी। बट फिर हुआ ये कि धीरे धीरे उस पर व्यूज उतना नहीं मिलता था मुझे, क्योंकि आजकल लोग जो होते हैं ज्यादातर अच्छी चीजों को कम और
0: थोड़ा
1: सा वो कहीं ना कहीं एक आर्टिस्ट को, एक कलाकार को वो प्रॉब्लम होती है कि यार मैं इतना अच्छा कंटेंट डाल रहा हूँ लोग सुन नहीं रहे हैं।
0: पर मुझे ऐसा लगता है उत्कर्ष,
1: कंसिस्टेंसी उसमें, रेगुलरिटी,
0: दिस इज ट्रू। मुझे भी वही बोलना था कि आपको ना यार, आपको ना दुनिया के लिए नहीं करना है, हमें अपने लिए करना है। आपको आपको एक्साइटमेंट मिलना चाहिए, आपको खुशी मिलनी चाहिए, वाह यार आज मैंने वीडियो डाली मतलब मजा आ गया, डजंट मैटर उस पे लाइक आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, आई डोंट केयर अबाउट दैट, मैं तो डालू भाई।
1: ये शेयर करने का मेरा मोटिव ये था कि जो भी हमारे लिसनर्स हैं, और अगर उनमें से कोई मेरे जैसा कोई या आपके जैसा कोई है जो बहुत मेहनत कर रहा है लेकिन उसे रिटर्न नहीं मिल रहा है, मैं उसको ये बताना चाहता हूँ अपने एक्सपीरियंस से कि कभी भी फ्रस्ट्रेशन में अपनी इन चीजों को खराब ना करें। आप लगे रहें, एक दिन आपको आउटपुट मिलेगा।
0: करेक्ट, जब बहुत ही शानदार,
1: जब जो खराब चीजें करने वाले लोग लगे हुए हैं मेहनत से,
0: बिल्कुल,
1: तो हम तो अच्छा कर
0: अच्छा
1: रहे हैं,
0: कर रहे हैं।
1: बस हम अच्छा करने के बाद क्यों नहीं लगे हुए,
0: बट वही है ना कि हमारा जो फ्लो है, हमारी जो कंसिस्टेंसी है, वो हम बीच में तोड़ देते हैं,
1: बीच में तोड़ते
0: हमें, क्योंकि ऐसा लगता है कि यार हमें वो मिल ही नहीं पा रहा है जो हम चाह रहे हैं।
1: बिल्कुल,
0: जो
1: सोशल मीडिया आज के टाइम पे एक सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, आप चाहे एजुकेशन के माध्यम में ले लीजिए, आप पोइट्री, शायरी, आपको कुछ भी है, ए टू जेड कुछ भी करना, आप वर्ल्ड वाइड रीच कर सकते हैं सिर्फ एक सोशल मीडिया से।
0: करेक्ट,
1: और आप उसको चलाते भी, एंजॉय भी करते हैं, एक्टिव भी रहते हैं, तो आप जितना टाइम उस पर बिताते हैं रील्स देखने में, उतना टाइम अगर हम रील्स बनाने में और पोस्ट डालने में लगाए, तो शायद हम भी किसी ना किसी मूवी में काम कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होंगे।
0: बट यार इतना इजी नहीं होता है ना उत्कर्ष भाई, है ना,
1: मेहनत तो लगती है जी
0: लेकिन
1: पेशेंस,
0: एब्सोल्युटली भाई, मैं एक्चुअली मुझे ये लगता है कि आपने बहुत सही बोला है कि हम ना व्यूवर्स बनना पसंद करते हैं, हम क्रिएटर बनना पसंद करते हैं, तो मुझे लगता है जिस दिन आप क्रिएट करना शुरू कर दोगे ना चीजों को, और वो अलग लेवल पे, नेक्स्ट लेवल पे, तो आपका अच्छा होगा।
1: मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स ऐसे होते हैं जो व्यू करके क्रिटिसाइज करते हैं कि यार इससे अच्छा तो मैं कर लेता।
0: होता है यार, बहुत बार ही होता है हमारे मन में एक थॉट आता है।
1: इसका मतलब आप जानते हो कि आप उससे कहीं ना कहीं बेहतर
0: कर सकते हो, आपका पोटेंशियल आपको पता होना चाहिए ना। मेन बात ये भी तो है। बहुत ही अच्छी बातें कर रहे हैं आप, मुझे लगता है कि नेक्स्ट लेवल आरजे आप बन जाओगे। आई थिंक मेरी मेरी मेरी चेयर हिलने लगी आपकी आवाज सुन
1: के। मेरा आरजे में आने का तो खैर इंटरेस्ट नहीं है, मैं आपका कॉम्पिटिशन नहीं हूँ।
0: अरे यार, मुझे तो कंपटीशन अगर हेल्दी वाला हो यार, अपने को तो वो वाला जमता है भैया। हाँ। क्योंकि हम ना थोड़े से पॉजिटिव माइंड मेकअप के साथ काम करते हैं।
1: कंपटीशन होना बहुत जरूरी है ग्रो करने के लिए।
0: करेक्ट करेक्ट।
1: जिनकी लाइफ में कंपटीशन,
0: मुझे लगता है कि अगर आप खुद से कॉन्फिडेंट सॉरी खुद के साथ आप कंपटीशन कर रहे हो तो वो ज्यादा आपको बढ़िया लगता
1: है, वो बेहतर। देखो, खुद से कंपटीशन तो ऑब्वियसली बेटर है, लेकिन अपने आप से भी कंपटीशन करने के लिए आपको सामने एक मोटिवेशनली कंपटीशन होना चाहिए।
0: वो तो होता ही
1: है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी पार्लियामेंट में एक बार बात कही थी, बहुत अच्छी बात कही थी कि अपोजिशन जिस देश में मजबूत नहीं होता ना, उस देश की सरकार की अर्थ जो सरकार व्यवस्था होती है, जो सिस्टम होता है, जो कानून व्यवस्था होती है, वो सही नहीं होती है। क्योंकि अपोजिशन बहुत मजबूत होना चाहिए। और इसीलिए कंपटीशन आपको अपने आप को ग्रो करने के लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आपको आईना दिखना चाहिए कि आप क्या हो।
0: बहुत ही बढ़िया बात आपने बोली है, थैंक यू सो मच। बिल्कुल मुझे भी लगता है, और देखते हैं यार, कंपटीशन तो दाएं बाएं है ही, सोशल मीडिया पे तो सबसे बड़ा कंपटीशन चल ही रहा है। और बाकी बट ये है कि अपना काम अच्छे तरीके से करो, सही डायरेक्शन में करो और सही मन से करो, तो रिजल्ट डेफिनेटली अच्छा ही होगा यार। हाँ, मेरा हाँ, मेरा मानना ये है। उत्कर्ष भाई, थैंक यू सो मच, लवली टॉकिंग टू यू भाई। आप आए,
1: थैंक यू मच,
0: मुझे बहुत अच्छा लगा। बट जाने से पहले हमने एक छोटी सी यू नो आपसे रिक्वेस्ट की थी कि भैया आप जो करते हैं राधा कृष्ण जी के ऊपर, आप कुछ बढ़िया एक बार वो जाते जाते कुछ सुना दे हमारे।
1: बिल्कुल बिल्कुल, मैं सुना देता हूँ। मैं एक स्टैंजा अपनी पोइट्री का सुना देता हूँ, जो कि उसका टाइटल है ना मैं कृष्ण हूँ ना तू राधा है।
0: वाह।
1: एक प्रेमी और एक प्रेमिका, यानी कि एक लवर और एक उसकी लवर का एक कॉन्वर्जेशन है। एक प्रेमी अपनी सारी कोशिशें करके हार गया है और उसको वो किसी भी तरीके से अपना नहीं बना पा रहा, तब वो अपनी प्रेमिका से कह रहा है और बता रहा है कि मैं और तू बिल्कुल एक ही है, लेकिन फिर भी डिफरेंट, सेम सेम बट डिफरेंट वाली सिचुएशन। तो लड़का कहता है, मैं शब्द हूँ तू भाषा है, अपने प्रेम की यही परिभाषा है।
0: गजब।
1: अधूरा हूं तुझ बिन इस तरह जैसे फलक पर चांद आधा है।
0: क्या बात है।
1: मैं शब्द हूं तू भाषा है, अपने प्रेम की यही परिभाषा है, अधूरा हूं तुझ बिन इस तरह जैसे फलक पर चांद आधा है, सात जन्मों का ये वादा है, मैं पतंग हूं तू धागा है। सात जन्मों का ये वादा है, मैं पतंग हूं तू धागा है, पर जीवन की ये बाधा है, पर जीवन की ये बाधा है, ना मैं कृष्ण हूं ना तू राधा है, ना मैं कृष्ण हूं ना तू राधा है। लेकिन इसका आंसर देती है लड़की अपने आंसर, कि ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो, क्या है मैं बताती हूं। और लड़की कहती है कि मैं प्रेम हूं तू समर्पण है, मैं रूप हूं तू दर्पण है, मैं प्रेम हूं तू समर्पण है, मैं रूप हूं तू दर्पण है, मैं अर्चना हूं शिव की तू पुष्प चरणों में अर्पण। क्योंकि आप भगवान की पूजा करते हैं तो भगवान की जो अर्चना कर रहे हैं आप, उसकी अर्चना बिना पुष्पों के बिना फूलों के संपन्न नहीं है। तो वो बताने की कोशिश करिए कि मैं प्रेम हूं तू समर्पण है, मैं रूप हूं तू दर्पण है, मैं अर्चना हूं शिव की तू पुष्प चरणों में अर्पण है, कुछ भी तो कम नहीं ज्यादा है, ये प्रेम का तर्पण है ना कि बाधा है। कुछ भी तो कम नहीं या ज्यादा है, ये प्रेम का तर्पण है ना कि बाधा है। तो फिर तुमने कैसे कह दिया प्रियतम, ना मैं तेरा कृष्ण हूं ना तू मेरी राधा है। थैंक यू सो मच।
0: वेरी वेरी नाइस भैया, मतलब बहुत ही मजा आ रहा है यार, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है, अनकररेबल, बहुत ही बढ़िया था एंड यू आर माइंड ब्लोइंग यार।
1: थैंक यू सो मच।
0: डॉक्टर पर्सनालिटी है आप।
1: मैं भी आपके लिए सेम लाइन कहना चाहूंगा कि एब्सोल्युटली यू आर फैबुलस।
0: अरे यार, थैंक यू सो मच, माय प्लेजर भैया, मुझे अच्छा लगा। और जब दो अच्छे लोग मिलते हैं तो ये तारीफें अपने आप निकल जाती हैं।
1: बिल्कुल,
0: वाइब मैच करने की बात भी होती है,
1: वाइब हमारी मैच हो गई है।
0: डेफिनेटली डेफिनेटली बिल्कुल भैया, क्योंकि एक्चुअली ना जोनर थोड़े से अलग है बट जो चीजें हैं वो थोड़ी थोड़ी सेम है।
1: बिल्कुल, बिल्कुल
0: है ना। और जब आपका एक ऑरा बढ़िया होता है ना, जब आप पॉजिटिव होते हैं, आपकी वाइब्रेशन अच्छी होती है, तो सामने वाले के साथ वो ऑटोमेटिकली मैच हो जाती है। राइट, बहुत कम लोग होते हैं जिनके साथ आपकी वाइब मैच करती है। थैंक यू सो मच वंस अगेन, एंड आई एम रियली श्योर गाइज आपने बहुत एंजॉय किया होगा सेशन को। और अभी हम उत्कर्ष भाई को फ्री करेंगे, बिकॉज अगर वो जाएंगे नहीं तो वापस आएंगे कैसे भैया। हम ये कहना चाह रहे हैं कि उनको मतलब दोबारा बुलाने के लिए इधर से बाय-बाय भी करना पड़ेगा। तो उत्कर्ष जी, मेरा बिल्कुल मन नहीं है कि हम इस सेशन को एंड करें, बट आई कांट बिलीव दिस, कैसे 40 मिनट हो गए, आई कांट बिलीव दिस यार। मतलब हमने इतना अच्छा कॉन्वर्सेशन किया है, 40 मिनट हो गए बात करते करते, तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि, और इतना लंबा तो खैर हम भी नहीं बोलते हैं, बट आपके साथ वही है ना कि जब आपके साथ कोई बातों नहीं इंसान आ जाए फिर आपको नहीं पता आपकी गाड़ी कहाँ पहुंचने वाली है. सो वो वाली चीज थी. वेल बहुत अच्छा लगा, एंड आई होप आप डेफिनेटली जब भी मुरादाबाद आए तो प्लीज आप एफएम मुरादाबाद जरूर आए.
1: थैंक यू,
0: आपका स्वागत रहेगा.
1: जरूर आऊंगा, बिल्कुल आपसे मिलता रहूंगा
0: जी. एंड बाकी हमारे लिसनर्स को जाते जाते अगर कोई आपके साथ में कनेक्ट होना चाहते हैं, कुछ आपसे सुनना चाहते हैं, कुछ आपसे जुड़ना चाहते हैं, कुछ भी कॉन्वर्सेशन करना चाहते हैं, तो आपके इंस्टाग्राम पे आके आपको फॉलो कर सकते हैं.
1: बिल्कुल कर सकते हैं.
0: मैं भी कर सकता हूँ.
1: बिल्कुल कर सकते हैं.
0: इंस्टाग्राम आप बता दीजिए.
1: मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है उत्कर्ष 1610. 1610 इज माई डेट ऑफ बर्थ, 16 अक्टूबर.
0: नाइस.
1: तो मैंने वही बना रखा है, उत्कर्ष 1610. मैं अपने जितने भी पोस्ट है अभी पर्सनल अकाउंट से ही पोस्ट करता हूँ, तो जब भी मुझे कुछ पढ़ना हो, कुछ सुनना हो, तो आप मुझे वहाँ सुन सकते हैं.
0: That's very nice. और बाकी एफएम मुरादाबाद भी सुन सकते हैं, बीच बीच में ब्रॉडकास्ट करते रहेंगे,
1: गाने वगैरह आप सुन ही सकते हैं किसी न किसी तरीके से.
0: डेफिनेटली डेफिनेटली. उत्कर्ष भैया वंस अगेन बहुत अच्छा लगा. एफएम मुरादाबाद आरजे आनंद आपका दिल से थैंक यू करता है. एंड जल्दी मिलेंगे फिर किसी और मोड पे, फिर कुछ नई मुलाकातों के साथ. तब तक के लिए आप रखिए अपना ख्याल. दोस्तों आप भी अपना ख्याल रखिए. और उत्कर्ष भाई के साथ मैं भी लेता हूँ आपसे जाने की इजाजत. उत्कर्ष भाई आपके फ्यूचर के लिए ऑल द वे बेस्ट. आप जो भी कर रहे हैं वो अल्टीमेट है, वो करते रहें. और बाकी हम भी आपके साथ हैं. बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर यार.
1: थैंक यू सो मच.
0: थैंक यू गाइज. बाय, टेक केयर. आप कहीं मत जाइए, रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाइए. सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 पीटर नगरी का आपका अपना रेडियो स्टेशन. ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो. रेडियो बनते रहिए, गुनगुनाते रहिए आनंद रेडियो. लेता हूँ अब आपसे जाने की इजाजत. जल्दी होगी मेरी आपकी मुलाकात इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे. बाय बाय, टेक केयर.

0: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी जॉइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद। कॉल 7055011681।
1: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
2: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
1: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
2: अरे नहीं,
3: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
2: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड क्वाइन जीतने का मौका भी है।
1: अच्छा।
3: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता जैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।

0: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
1: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
0: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
1: अरे नहीं,
2: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
1: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड कॉइन जीतने का मौका भी है।
0: अच्छा?
2: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता जैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।

0: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशाह जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।

सिरदर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।

बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।

स्किन एलर्जी, मस्त से नाखून बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग, यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2, निकट विवेकानंद अस्पताल, मुरादाबाद, 7983153386।

0: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।

रहती है, वो तितलियां साथ रखती है। मेरी दुनिया आबाद लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

0: मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
1: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
0: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
1: अरे नहीं,
2: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
1: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड क्वाइन जीतने का मौका भी है।
0: अच्छा?
2: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता चैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।
3: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

आवश्यक सूचना 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन की मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।